0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स को अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात का सामना जरूर होता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए दुआगो रहना चाहिए। याद रखिए कि दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। दुआएं मांगते और देते रहा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107
3: पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुमने सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पाले। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो है अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।
4: अल्हम्दुलिल्लाह।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: कभी कभार किसी शख्स का नाम किसी बहुत बड़े या ताकतवर शेर के नाम पर रखा जाता है, जैसे कि असद जो कि शेर का नाम है, लेकिन उस शख्स की शक्ल या अमल उसके नाम के मुतरादिफ नहीं होते बल्कि उसके नाम से मुख्तलिफ होते हैं। आसान अल्फाज में, कहावत की जबान में जिसे कहते हैं, जितना नाम है उतना काम नहीं, शोहरत के मुताबिक सामान नहीं, नमूद नुमाइश तो बहुत कुछ मगर असलियत कुछ नहीं। इसको अरबी जबान में कहते हैं इस्मुन आला गैर मुसम्मा या इस्मह अकबर मिन्ना, यानी नाम और शख्स एक दूसरे के मुतजाद हैं, या किसी का नाम उससे बड़ा हो, नाम और उसकी शख्सियत में फ़र्क हो, नाम और उसकी शख्सियत मील नहीं खाता हो। आज की कहावत का खुलासा है कि कभी कभी नाम सिर्फ एक लफ्ज़ होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Absolute cinema.
4: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जो मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल ना करता हो। अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता तो फिर ये समझा जाता है कि वो शायद इस जमाने में नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मोबाइल या मुख्त जो डिवाइसेस हैं उन्हें इस्तेमाल करने से हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों में खुश्की, धुंधलापन और सर दर्द शुरू हो जाता है, यानी हमारी आंखों पर बहुत ही ज्यादा उसके असरात देखने में आते हैं। इसी तरह जब हम डिवाइस पर या मोबाइल पर आप झुक कर कोई काम करते हैं और झुक कर देखते हैं तो उसमें कमर और गर्दन में दर्द जो है वो शुरू हो जाता है और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि हमारा जो मेंटल लेवल है या जो मेंटल हेल्थ है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। ज्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से डिप्रेशन ज्यादा होता है और इसी तरह आप अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, यानी तन्हाई ज्यादा हो जाती है। अब बहुत सारे जो तजुर्बात किए गए, बहुत सारी रिसर्चेस की गई, उसमें देखा गया कि सोने से पहले जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी नींद की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि स्क्रीन टाइम को कम से कम करना है। हर घंटे के बाद हमें एक वक्फा लेना जरूरी है और रात को सोने से एक घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए। एक नौजवान हमेशा रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करता था, उसका नतीजा ये हुआ कि सुबह स्कूल में वो ऊँगता रहता, पढ़ाई में पीछे हो गया और जब उसने मोबाइल का वक्त कम किया और नींद बेहतर हुई, इसके अलावा उसकी जो क्वालिटी ऑफ जो स्लीप थी वो बेहतर हुई, पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। तो लिसनर्स, ये एक बहुत अहम बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी सहूलत के लिए है मगर ये कि हमारी गुलामी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल को अपने वक्त का कैदी ना बनाइए और इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जब सही मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे या जो तरीका है सही उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे ना हमारी जो हेल्थ है वो कम्प्रोमाइज होती है, इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो काम की सलाहियत भी आप देखेंगे कि बेहतर होती चली जाएगी। और सबसे अहम बात कि अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ फॉर ऑल,
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
4: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: 201 गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सारा। सारा का दिल बहुत गमगीन था क्योंकि जिंदगी की मुश्किलात ने उसके लिए रास्ते तंग कर दिए थे। स्कूल की पढ़ाई में भी उसे मुश्किलात पेश आ रही थीं, घर में भी हर वक्त मसाइल थे। सारा दिन रात यही बात सोचती रहती थी कि आखिरकार उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। ये सब सोचने के बाद वो अपने वालिदैन के पास गई और उनसे मदद मांगी। सारा ने अपने वालिद से कहा, बाबा जानी, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं हर तरफ से परेशान हूँ और मैं नहीं जानती कि किस तरह अपने मसाइल को हल करूँ। इन मसलों का क्या हल है बाबा जानी? सारा के वालिद, जो बहुत समझदार और तजुर्बाकार थे, मुस्कुराए और कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी परेशानियों का हल इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, ठीक है? तो मेरे साथ आओ और 3 चीजें ले आओ, 1 अंडा, 2 पत्ते और 1 आलू। सारा ने अपने अब्बू की बात सुनी और फौरन इन 3 चीजों को ले आई। उसके बाद सारा के वालिद ने 3 बर्तनों में पानी डालकर उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया। एक बर्तन में उन्होंने अंडा डाला, दूसरे में आलू रखा और तीसरे में चाय की पत्तियां डाल दी। कुछ मिनट बाद पानी उबलने लगा। सारा के वालिद ने कहा, अब तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करो सारा, और जब पानी उबल जाए तो इन चीजों में जो तब्दीली आई है उस पर गौर करना। सारा चुप करके देखती रही। कुछ देर बाद सारा के अब्बू ने उससे कहा, अब अंडे को उबाल कर निकाल लो, आलू को उबाल कर उतार लो और चाय की पत्ती निकाल कर उसका पानी छान लो। सारा ने अपने अब्बू की बात सुनी और इन सब बातों पर अमल किया और फिर उनसे सवाल किया, अब आगे क्या अब्बू? सारा के वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, देखो जरा, ये जो तुमने देखा वो जिंदगी की मुश्किलात को समझे बगैर नहीं देखा जा सकता। सारा, तुमने जो अंडा पानी में डाला था वो कितना नरम था, लेकिन अब ये सख्त हो चुका है। आलू पहले सख्त था, ठीक, लेकिन अब ये नरम हो चुका है। चाय की पत्तियों ने पानी को ऐसे बदल दिया है कि अब इसका रंग और जायका बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। सारा के वालिद ने फिर वजाहत की, बेटा देखो, जब मुश्किलात हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम सबका रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। अंडा नरम था और जब उस पर उबाल आया तो वो सख्त हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग मुश्किलात के बाद ज्यादा मजबूत और पुख्ता हो जाते हैं। वैसे ही आलू सख्त था और जब उबाल आया तो वो नरम हो गया। ये हमें ये सिखाता है कि कुछ लोग मुश्किलात का सामना करके कमजोर हो जाते हैं, लेकिन चाय के पत्ते ने तो पानी को बदल दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग मुश्किलात का सामना करके हालात को अपने हक में बदल लेते हैं। सारा ने अपने वालिद की बातों पर गौर किया और उसकी आंखें चमक उठी। वो समझ गई थी कि जिंदगी में हर मुश्किल को देखने का मुख्तलिफ एंगल हो सकता है। वो ये समझ गई थी कि वो खुद ये फैसला कर सकती थी कि उसकी मुश्किलात उसे मजबूत बनाए या वो उनके सामने हार जाए। सारा ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया। अगले दिन सारा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। वो मुश्किलात के सामने हिम्मत बांध कर खड़ी रही, उनका मुकाबला करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने आप को समझाया साथियों कि जो मुश्किलात आती हैं वो सिर्फ एक वक्ती मरहला होती हैं और इनसे गुजरकर इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अब सारा की जिंदगी में तब्दीली आ चुकी थी। जो मसाइल उसे पहले बहुत बड़े और हल ना होने वाले लगते थे, अब उसने उनका मुकाबला करना सीख लिया था। उसने अपने वालिद की बातों को याद रखा और मेहनत करते हुए अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब मुश्किलात आएं, तो हम इनका मुकाबला किस तरह करते हैं। کبھی کبھار مشکلات ہمیں کمزور کر دیتی ہیں لیکن ہم انہیں اگر کسی اپرچونٹی کی طرح دیکھیں تو یہ ہمیں مضبوط اور بہتر بنا سکتی ہیں حقیقت تو یہ ہے دوستوں کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کس مشکل کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں

0: आज बात करेंगे एक और इकोनॉमिक टर्म मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। क्या आपने ये टर्म पहले सुन रखी है? नहीं तो चलिए आज इसके बारे में बात होगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज का एक्स्ट्रा फायदा या सेटिस्फैक्शन जो आपको एक और यूनिट खरीदने से मिलता है। सोचिए, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। अगर आप एक चॉकलेट खाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। अगर आपको दूसरी भी चॉकलेट मिल जाए तो आपके लिए ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस कम भी हो सकती है। जब चीजों की इफरात होने लगती है तो उनकी खुशी या वो वैल्यू उस चीज की नहीं रह जाती, अलबत्ता सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। वहीं पर कई बार जब चीजें इफरात में आपको मिलती हैं तो देखा जाता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम हो जाता है। यानी ये जो कम होता हुआ सेटिस्फैक्शन है ना, उसे ही कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है द मोर यू गेट द लेस यू वांट। अगर मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्स्ट्रा फायदा या सेटिस्फैक्शन जो आपको एक और यूनिट खरीदने से मिलता है। भले से हैप्पीनेस मिले ना मिले, वैल्यू मिले ना मिले, बट सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही मिलता है। ये सेटिस्फैक्शन जो एक्स्ट्रा फायदा आपको दे रहा है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक वर्ड में आपको समझाने की कोशिश की है और शायद आपको समझ भी आया होगा। वेल, आज के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअ الرسول فقد اطاع الله, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, इस्लाम में सिद्क को, सच्चाई को ईमान की बुनियाद करार दिया गया है और झूठ को मुनाफ़क़त की अलामत। मगर सबसे बड़ा और ख़तरनाक झूठ वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाए। इसीलिए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हर बात को रिवायत करने में एहतियात बरती जाए। हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे ऊपर झूठ घड़ना किसी और पर झूठ घड़ने जैसा नहीं। जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। समीन करम, यह हदीस हमें इस अमर पर मुतनबह करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना या गलत हदीस रिवायत करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसका अंजाम जहन्नम है। इसलिए उलमा इकराम ने ताकीद की है कि जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जाए उसे सही सनद और तहकीक के साथ पेश किया जाए। आइए हम सब अपनी जबान को झूठ से बचाएं और ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सिर्फ और सिर्फ सही और साबित शुदा शक्ल ही में आगे पहुँचाएं।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: क्रिकेट हो,
4: and he's hooked that away. That's four runs.
3: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
3: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
6: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
1: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

इंग्लिश में एक कहावत है, कैरेक्टर बिल्ड्स अ नेशन। मजबूत किरदार से कौम बनती है और नासिर अलातिया इस किरदार के कतर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी हाँ, नासिर अलातिया का शुमार दुनिया और अरब खित्ते के बेहतरीन एथलीट्स में होता है। वो एक लेजेंड है जिन्होंने मोटर रैली ड्राइविंग और राइफल शूटिंग में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। यहाँ ड्राइविंग से मुराद दोहा या मिसाइद की सड़कों पर ड्राइविंग की महारत का मुजाहरा नहीं, बल्कि डकार रैली, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल मोटर रैली समझा जाता है। वहां का इलाका, सड़कें, सब कुछ डिफिकल्ट है। इसी रैली को नासिर साहब ने 5 बार जीता है। आसान काम तो नहीं है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट रैली चैंपियनशिप है, जहां नासिर अलातिया इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इस कतरी ड्राइवर ने MERC टाइटल 17 मर्तबा जीत चुके हैं, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। अब बात करता हूँ राइफल शूटिंग में। राइफल शूटिंग में नासिर अलातिया ने 2022 में लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उस वक्त तक ओलंपिक खेलों में ये कतर का 3रा तमगा था। उनसे पहले मोहम्मद सुलेमान ने 1992 के ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था और उसके बाद 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में सैयद सैफ असद ने मेडल जीता था। मोटर रैली ड्राइविंग और राइफल शूटिंग इवेंट्स में साथ साथ हिस्सा लेना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन नासिर ने इसे कामयाबी से अंजाम दिया है, क्योंकि ही पॉसेसेस अ स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, आपके ए फॉर अमिता आपके साथ है लाइफ हैक्स लेकर। और आज का सबसे पहला लाइफ हैक है जो आपकी फोन के एडिक्शन की परेशानी को दूर करेगा। यस, इट्स अ ग्रे स्केल चैलेंज। हाँ जनाब, ये तो सब हम जानते हैं कि फोन देखे बिना, फोन के बिना हमको सुकून नहीं मिलता है, और अगर स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा तो हम थोड़े से हेल्दी भी हो सकते हैं। तो उसी के लिए ये फंडा बड़ा काम का है कि जो भी दिन आपको सूटेबल लगे उस दिन आप ये काम कीजिए कि उसे एक दिन के लिए अपने फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पे डाल दीजिए। ये ग्रे स्केल मोड आपको सेटिंग्स पर मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, सडनली आपका सोशल मीडिया उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना वो दिखता है। एंड इट्स अ फैंटास्टिक वे टू कट डाउन योर स्क्रीन टाइम। माइंड को भी डिटॉक्स कर पाएंगे और सुकून भी पा पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ दूसरा लाइफ हैक है पानी में ट्विस्ट हैक। डेफिनेटली गर्मियों का टाइम है और कभी कभी जब प्लेन वाटर या सीधा प्लेन पानी हमको पीना पड़ता है तो हम बहुत बोरियत फील करते हैं। तो सिंपल है, अपनी वाटर बॉटल में कभी कुछ मिंट लीव्स डाल लो, कभी लेमन स्लाइसेस डाल लो, कभी कुकुम्बर डाल लो, या

फिर स्ट्रॉबेरी डाल लो, इससे किसी ना किसी तरह का फ्रेश फ्लेवर आपको मिलता रहेगा जो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा पानी पीने पे मदद करेगा. सो प्लीज ख्याल रखें और अपने हाइड्रेशन पॉइंट को बैलेंस्ड रखें. इसी के साथ ये सारी ट्रिक्स को आजमाएं और हमसे जरूर शेयर करें. फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum listeners, aap sun rahe hain Green Path, ek aisi journey jahan hum baat karte hain environment ki behtri, sustainable lifestyle aur Qatar ke vision 2030 ke goals ki roshni mein. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे-छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम सस्टेनेबल फूड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएं, ये लोकल और सस्टेनेबल होते हैं और ज्यादा इंपोर्टेड फूड्स का एनवायरनमेंट इंपैक्ट कम होता है। मीट की कंसम्पशन को कम करना और प्लांट बेस्ड फूड्स का इस्तेमाल बढ़ाना एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। लेफ्ट ओवर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और कुकिंग में फूड वेस्ट को मिनिमाइज करें। लोकल फार्मर से डायरेक्टली खरीदा गया फूड फूड माइल्स को रिड्यूस करता है और फ्रेश होता है। सस्टेनेबल फूड चॉइसेस आपको हेल्दियर लाइफ और क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ गाइड करती है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं जो

तैयार है कि कौन सा बटन दबाना है। अगर आप नीचे जाने वाला बटन दबा दें और फिर कहें कि मुझे तो लिफ्ट के मालिक ने नीचे पहुंचाया है, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? हालांकि आप 8th नंबर फ्लोर पे या 20 नंबर फ्लोर में आप जाना चाह रहे हैं, तो आप अगर यूं लिफ्ट के मालिक को जिम्मेदार ठहराएं कि अरे उसके लिफ्ट ने तो मुझे ग्राउंड फ्लोर में पहुंचा दिया, हालांकि बात बिल्कुल ऐसे नहीं, लिफ्ट का निज़ाम तो दोनों रास्ते फराहम कर रहा था, फैसला आपने किया था, तो आपने नीचे जाने वाला बटन क्यों दबाया? आपको तो 8th नंबर फ्लोर पे जाने के लिए 8 नंबर वाला बटन दबाना चाहिए था। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर दोनों रास्ते दिखा दिए। कुरान कहता है वहदैना हुन्नजदैन, हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए। अब इंतखाब इंसान का है। अब आते हैं तकदीर की तरफ। तकदीर का मतलब ये नहीं सामने कराम कि इंसान मजबूर है। तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के इल्म, हिकमत और कुदरत के दायरे के अंदर रहते हुए इंसान को इख्तियार दिया गया है, यानी इंसान अपने आमाल के जिम्मेदार हैं। हमारी नीयत, हमारे फैसले, हमारी कोशिशें और हमारे आमाल हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए क़यामत के दिन हिसाब भी होगा। अगर इंसान मजबूर होता तो हिसाब बेमाना हो जाता, जजा व सजा बेमाना हो जाती, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर बेमाना हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला आदिल है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, वो किसी को मजबूर करके गुनाह भी नहीं करवाता और फिर सजा नहीं देता, बल्कि वो रास्ता दिखाता है, समझाता है, मौके देता है, मोहलत देता है, फिर इंसान खुद अपना इंतखाब करता है। सामने कलम, अब उस सवाल को दोबारा दोहराते हैं। अगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, तो फिर जो शख्स हिदायत से महरूम रह गया उसका कसूर क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान सच्चाई चाहता हो लेकिन अल्लाह ताला उसे हिदायत न देना चाहता हो? ऐसा तो कभी भी मुमकिन नहीं। कुरान करीम में इसका जवाब नहायत वाज़ह अंदाज में दिया गया है। अल्लाह ताला सूरह रात में फरमाता है إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। सामने किराम, आयत दरअसल तकदीर और इख्तियार के मसले की बुनियादी कुंजी है। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम इसी आयत के माने को वाज़ह करने की कोशिश करेंगे। कुरान कहता है कि तुम अपने अंदर तब्दीली लाओ, तुम अपना रुख बदल लो, तुम अपने इरादे को बदल दो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल देगा। और कीजिए, अगर एक तालिबे इल्म पूरा साल किताब न खोले, इम्तिहान के दिन नाकाम हो जाए और फिर कहे कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी, अरे मैं तो मजबूर ही था। वो कहते हैं ना बाज़ लोग, अरे हम बुरे अमाल कर रहे हैं, हम तो मजबूर हैं। तो आप ही कहिए, क्या ये बात दुरुस्त होगी? अगर एक मरीज दवा न ले, इलाज न करे, परहेज न करे और फिर बीमारी बढ़ जाए, तो क्या वो सिर्फ तकदीर को इल्ज़ाम दे सकता है? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने असबाब भी पैदा किए हैं और नतायज भी, हिदायत भी उस उसूल के तहत है। जो शख्स सच्चाई तलाश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल देता है, और जो शख्स खुद आंखें बंद कर लेता है, उसे कोई ज़बरदस्ती रोशनी नहीं दिखा सकता। सामने कराम, इस बात को एक और आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें किसी ने आपको सोलर पैनल दिया और कहा कि उसे सूरज की तरफ रखो, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन आपने उस पैनल को कमरे के अंदर बिस्तर के नीचे रख दिया। चंद मिनट बाद आप शिकायत करने लगे कि बैटरी तो चार्ज ही नहीं हुई। अब कसूर किसका है? सूरज का, उस शख्स का जिसने आपको सोलर पैनल दिया था, या आपके अपने फैसले का? जाहिर है मसला आपके इस्तेमाल का है। समझ कर हम, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, अंबिया भेजे, अकल अता की, फितरत दी, दिल दिया, जमीर दिया, खैर और शर की पहचान दी। अब अगर इंसान इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ ले और फिर कहे कि मुझे हिदायत क्यों नहीं मिली, तो ये बात दुरुस्त नहीं। कुरान कहता है والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर उन्हें

0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन
1: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
0: गेम ऑन
1: वॉल्यूम अप
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर एक बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

Assalamu alaikum. Right, again. Assalamu alaikum. और गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी आवाज़ भी अब आपको लाउड आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी, बिल्कुल ठीक ठाक आ रही होगी। खैर जी, हो गए 6:02 और मैं लेकर आ गई हूँ एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए समर मॉर्निंग। और आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, अगर नहीं जानते मैं बता देती हूँ, मैं हूँ आरजे महावर्ष और मेरा आपका साथ रहना है इस शो में 9 बजे तक। उम्मीद है जी कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, एकदम से आपकी लाइफ अच्छे से गुजर रही होगी और सब कुछ एकदम सेट होगा। ये 2 दिन की आपकी छुट्टी थी तो बहुत अच्छी गुजरी होगी, और अगर छुट्टी नहीं थी तब भी आपके दिन कम से कम अच्छे गुजरे होंगे और इंशाल्लाह ताला सब कुछ बिल्कुल सेट होगा। अभी आप या तो उठ गए होंगे या उठने वाले होंगे, अगर उठने वाले हैं तो फिर आपसे तो मुखातिब होना बेकार है। वो लोग जो उठ गए हैं उन लोगों को हम गुड मॉर्निंग भी कहते हैं और आपसे ये भी कहेंगे कि आप कॉल भी कीजिएगा 4434377 पे, साथ ही 6622107 वो नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप पे शामिल हो सकते हैं। खैर जी, संडे है आज, तो संडे के रोज़ क्या कुछ होगा सिलसिला।

0: राइट राइट वेलकम बैक. आप सुन रही हैं FM 107 और मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हूं. और इस वक्त वक्त हुआ है 6:24 और मेरा आपके साथ 9 बजे तक रहना है. खैर जी, आ जाते हैं. कहां आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं कि आज का हमारा सवाल क्या है. तो आज मैं आपसे सवाल करूँगी बड़े मज़े का. मतलब हम लोग सारे ये सारे ना कहीं ड्रामा और फिल्म तो होते ही हैं. तो आज का सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर आपकी ज़िंदगी टर्न कर दी जाए एक मूवी या फिर टीवी ड्रामा में, तो उसका टाइटल क्या होगा और क्यों. ठीक है, अगर अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को देखें और आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई फिल्म या फिर ड्रामा बनाया जाए, या फिर आपने कोई ड्रामा देखा हो, आपको पसंद हो, आपको लगता हो बहुत ही रिजेम्बलेंस है कि उसकी करेक्टर की लाइफ में और आपकी लाइफ में, तो वो क्या होगा. ठीक है, वो क्या मतलब नाम क्या रखेंगे उस ड्रामे का या फिर फिल्म का, तो ये आपने मुझे बताना है और क्यों ये भी बताना है. ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मज़े का है. और अभी बस अब क्या है सिलसिला कि ये हफ़्ता, फिर एक और हफ़्ता और फिर एक और हफ़्ता, यानी 3 हफ़्ते काउंट डाउन चल रहा है हमारा. तो मैंने कोशिश ऐसी की है कि थोड़े से इस तरह के सवाल हों, मज़ेदार से हों, कि जिसमें हम जो है वो थोड़ा इन्जॉय कर सकें, थोड़ा सा हट कर कुछ बात कर सकें. फिर उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ मुलाकात होती है, कौन से शो में मुलाकात होती है, उसका कोई आइडिया नहीं है. तो खैर जी, तो ये सिलसिला है. आज आपने मुझे ये बताना है कि अगर आपकी लाइफ होती एक मूवी या फिर टीवी ड्रामा, तो क्या उसका टाइटल होता और क्यों. ठीक है, शेयर कीजिएगा ये. और इसके साथ ही हम आ जाते हैं इस तरफ के आज तारीख क्या है. आज है 28 जून और 28 जून को दुनिया भर में क्या कुछ खास होता है. तो भाई ये दिन जो है वो मनाया जाता है बहुत तरह से. और सबसे पहले जो दिन है वो मनाया जाता है आज के दिन इंटरनेशनल लाइटनिंग सेफ्टी डे. और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को बिजली यानी लाइटनिंग के ख़तरे और उससे बचाव के तरीकों के बारे में अवेयरनेस दिया जा सके. और तूफ़ानी मौसम में लाइटनिंग बहुत डेंजरस होती है और हर साल दुनिया भर में हज़ारों लोग इससे मुतासर होते हैं. तो इस दिन के लिए ये ख़ास तौर पर मैसेजेस दिए जाते हैं कि बिजली गिरने के दौरान, मतलब जब ये वाला मौसम हो रहा हो, तो उस दौरान थोड़ी सी खुली जगह, जो फील्ड्स ओपन एरिया से दूर रहना चाहिए आपको. ठीक है, इसके अलावा दरख्तों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए और घर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से थोड़ी सी एहतियात बरतनी है. और वेदर अलर्ट्स को सीरियस लेना है, ऐसा नहीं कि बस सुना और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया. तो इस दिन का मकसद बेसिकली ज़िंदगियाँ बचाना और सेफ्टी हैबिट्स को प्रमोट करना है. दूसरा दिन जो मनाया जाता है वो है ग्लोबल स्मर्फ डे. और ये एक फन और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ दिन है, जो एक फेमस कार्टून कैरेक्टर है स्मर्फ्स, उसके नाम पर मनाया जाता है. और स्मर्फ्स जो है वो छोटे से ब्लू कैरेक्टर्स हैं जो कि टीम वर्क, फ्रेंडशिप, पॉजिटिविटी और मिलजुल कर रहना जैसे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस दिन की इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चों और फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट, एनिमेशन कल्चर को सेलिब्रेट करना, पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग को अप्रिशिएट करना, तो ये एक तरह का एक लाइट हार्टेड ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो हैप्पीनेस स्प्रेड करता है. अच्छा, फिर आ जाता है एक और दिन जो कि एक मजाया इंटरनेशनल डे है, जो टाइपिंग कल्चर से रिलेटेड है. और ये इस दिन ना लोग ऑल कैप्स में लिख कर मजाक करते हैं, कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, इंटरनेट कल्चर और डिजिटल कम्युनिकेशन को सेलिब्रेट करते हैं. और इस दिन का मकसद सीरियस नहीं होता, बल्कि ये ऑनलाइन दुनिया का एक फनी एक्सपेक्ट को हाईलाइट करता है. तो ये सिलसिला है. और इसके साथ ही एक और भी दिन है, लेकिन मेरा ख्याल है वो रहने दें, ये हम तो इससे रिलेट नहीं कर सकते, तो इसका क्या ही बताया जाए. तो खैर, ये कुछ दिन हैं जो मनाए जाते हैं 28 जून को. और हमारे साथ कॉल आना शुरू हो गई, तो कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत. आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जबरदस्त जबरदस्त. सुबह का आगाज हो गया, कैसा आगाज हुआ, अच्छा आगाज हुआ होगा यकीनन.
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अच्छा हुआ. गुड, जबरदस्त. और बताएं भाई, और क्या सिलसिला है और क्या कहना चाहेंगे?
1: कहना
0: नहीं
1: चाहेंगे, जो आप शुरुआत किया है प्रोग्राम में, जिस चीज से नमाज का ख्याल, नमाज के ख्याल से एक नमाज कायम करना चाहिए. तो मेरा सवाल यही है आपसे दोबारा, इसका जवाब उस लोग से लीजिए आप जो बहुत हाफिज से कहते हैं मैंने उमरा इतना किया है, हज इतना किया है, किसी को हिदायत ने दिया, हम लोग को दिया है, उन लोग से जरा पूछिएगा आप इसके बारे में. ठीक है, आज से आप सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज को कायम करना जरूरी है. मैं तो ये बात बहुत दिनों से सोच रहा था, फिर मैं सोच रहा मेरे को यार बोलने का इतना तजुर्बा नहीं होगा या कुछ जानकारी नहीं होगा, तो मैं तो बहुत कलर आप चाहते हैं ना कि बोलते हैं मैंने ये किया वो किया नमाज पढ़ता हूँ।
0: अच्छा एक बात बोलूं मैं,
1: कोई जरूरी नहीं।
0: हाँ हाँ नहीं बात सही है,
1: बहुत जरूरी,
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है नूर मोहम्मद मंसूर साहब। लेकिन एक बात ना मैं ये कहना चाहूंगी, ये बल्कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि हर कॉलर को या हर मैसेज करने वाले को ना इस बात से तो मतलब रोजाना ना इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने आप क्या कह रहे हैं, क्या हमने जो आज बात की है वो कल की बात से बेहतर है, वो हम क्या अपने आप को घूम कर रहे हैं। ये मैं बड़ी आजाना सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि हमें दूसरों को ना हम जहाँ कहीं पे अभी जैसे मैंने बात की थी नमाज कायम करनी चाहिए, उसमें एक लव एक जुमला था जो आपने सुना होगा यकीनन कि क्या हमारी नमाज हमें तकब्बुर से बचा रही है, क्या नमाज हमारे अंदर आजजी पैदा कर रही है। हम भाई जब भी किसी को जज करने लगते हैं, हो सकता है कि वो बात जो हमें गलत लगी है वाकई गलत हो, लेकिन जहाँ कहीं पे हम दूसरे को जज करते हैं ना वहाँ पे हम अपने अंदर तकब्बुर लेकर आ जाते हैं, हमें लगने लगता है हम बेहतर हैं जब भी तो हम जज कर रहे हैं दूसरे को। तो हमें ये वाला रवैया सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, हमें ये सोचना, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं किसी से भी बात कर रही हूँ उसे मुझे कोई भी जवाब दिया लेकिन क्या मैं बेहतर हो रही हूँ, मतलब कुछ मैं सीख रही हूँ, बजाय इसके कि हम ये नोट करते रहें कि दूसरा क्या कह रहा है। हमें अपनी नमाज कायम करनी है ना, हमें हुक्म दिया गया है तो हमें इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।
1: यही तो मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, आपका कॉलर है बहुत कॉलर है, मैं सुन रहा हूँ पूरा यही बोलता है नमाज पढ़ना चाहिए दूसरे को, मतलब कि मतलब मशवरा देता है। मैं भी लगभग 2000 मुसलमान के बीच में यहाँ पे रहता हूँ, मेरा भी कंपनी बहुत बड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी के साथ में भी हूँ, मतलब और कोई थोड़ा हटके उसके साथ भी हूँ, गैर मुस्लिम के साथ भी हूँ। तो जो नमाज पढ़ता है ना तो मैं देखता हूँ मस्जिद तक तो ठीक रहता है, मस्जिद के निकलने के बाद उसका रवैया जो मैं देखता हूँ ना अखलाक है ना मतलब कि बोलने का लिहाज है ना कुछ है, मतलब गुरूर में ऐसा है जैसे मैं अब नमाज मेरा छूट गया तो तुम्हें नमाज क्यों नहीं पढ़ा, तुमको मोबाइल देखने का फुर्सत है नमाज, भाई मैंने नहीं पढ़ा, पहले पूछा क्या तुम्हारा साथ मसला क्या हुआ, नहीं हुआ इस वजह से छोड़ दिया, सीधा डांटता है, ऐसा लग रहा है तुम मतलब कि मेरा वो तुम्हारी मतलब जिम्मेदारी इसका और गलत बात, मतलब ये मैं कहता हूँ। पहले एक था, मैं सुन रहा था बहुत गौर से, बहुत मतलब हॉट किया, मतलब एग्जांपल मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं हज करूँ, मैं अपने माँ बाप को हज कराऊँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मजबूरी कि मैं नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं कर लिया हूँ तो मैं ये नहीं है कि मैंने हज किया है, मैं ऐसा किया दूसरे की हिदायत नहीं दिया है, ऐसा नहीं, आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं दिया, हो सकता है अल्लाह ताला उसको थोड़ा आपके पीछे उसका मतलब कि नंबर आया हो
0: ना। बिल्कुल सही बात है, बात आपकी बिल्कुल सही
1: सुन रहे हैं,
0: सही बात है।
1: कोई आदमी रमजान में बोलता है मैंने 3 बार कलाम पाक खत्म किया, इतना क्या अब उसे पूछे कि एक पारा का तर्जुमा करके देखो, मेरे हिंदी में मालूम नहीं होगा, पढ़ना आसान नहीं हो, बहुत आसान है उसका समझना बहुत मुश्किल है, कहने का मतलब ये है आप थोड़ा सा पढ़ो लेकिन उसका तर्जुमे के साथ पढ़ो।
0: बात बिल्कुल सही,
1: पढ़ने के लिए अरबी में तो मैं भी कलाम पाक पढ़ता हूँ लेकिन उसका तर्जुमा मुझे पता नहीं है।
0: नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, हाँ नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अमूमन ये होता है ना कि हम जैसे मेरे प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें मैंने जैसे एक दिन ये सवाल किया था, मुझे लग रहा है उसी दिन क्या बात करें कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है आज तक की, तो उस पर उसने सोचा कि किसी भी कॉलर ने कि भाई

0: खैर लास्ट में उसमें तो ये सीन होता है ना कि उसको हर चीज बनी बनाई मिल जाती है,
1: हाँ.
0: तो इस तरह नहीं था. खैर मैंने स्ट्रगल बहुत की, मैंने मेहनत बहुत की.

0: वो उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने अपने मतलब मोहल्ले से वहां से निकल के एक अपनी अलग शनाख्त बनाई, तो ये सारा सिलसिला आपके साथ रहा?
1: ये सारा सिलसिला मेरे साथ रहा। मेरे वालिद साहब थे, मैं छोटी उम्र में था तो वो फोत हो गए थे।
0: अच्छा।
1: मैं पाकिस्तान में होम ट्यूशन पढ़ाता था और मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे, तकरीबन 40-50 बच्चे आते थे, गली में जगह नहीं होती थी। तो वो जो ना बाइक होती थी उनकी, साइकिल होती थी, मतलब ना घर के आगे लगाते थे। मैं सुबह जाता था स्कूल, दोपहर को मैं जाता था अपनी यूनिवर्सिटी और उसके बाद क्या कहते हैं शाम को मैं पढ़ाता था बच्चों को घर में। तो मैं सुबह उठता था 5 बजे और शाम को 7:30-8 बजे मैं फ्री होता था, बस खाना खा के मैं सोता था। और मतलब ना मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती थी उस टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 years की इंजीनियरिंग मैंने कैसे की मुझे खुद नहीं पता चला।
0: अच्छा, पता है इंजीनियर्स की कुछ ऐसी ही सेम स्टोरी, क्योंकि अभी आप ये बात कर रहे हैं ना तो मेरे ध्यान में मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के सारे क्लास फेलोज आ रहे हैं, उन लोगों की भी जिंदगी कुछ ऐसी ही गुजरी है। उन लोगों ने एनडी से पढ़ा है और अभी कुछ अर्से पहले हमारे घर पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, तो वो सारे होता है ना वो अपनी पिछली स्ट्रगल्स वगैरह सारे के सारे बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड का फिर भी थोड़ा सा उनकी जिंदगी में एक प्लस पॉइंट आ गया था कि उनकी जो बहन है उन्होंने डीएचए कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी एक मतलब फिर भी स्टेबल हो गई थी, लेकिन फिर भी मतलब एक जिम्मेदारियां थी क्योंकि अकेले थे और बहनें थी सारी। जो फ्रेंड थे ना उनके, तो उन्होंने ये सबसे बड़े थे और उनकी जिंदगी में भी मतलब उनको ये होता था कि चाय भी पीने के लिए बैठना है ना दोस्तों के साथ, तो उसके लिए भी उनको महीनों टाइम नहीं मिलता था, तो वो यही बात कर रहे थे। लेकिन ये देखिए फैजान आज कितनी खुशी होती होगी ना, मुझे अंदाजा है, मैं सुनती रहती हूँ ये स्टोरीज, तो
1: है ना। और एक और बात जो है वो मैं ऐड करूं, फिर माशाल्लाह मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की यूके से, बर्मिंघम से।
0: माशाल्लाह, ग्रेट।
1: मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर मेरा जो है तीसरा नंबर है, दो मेरे से बड़े भाई हैं और एक मेरी जो ना सिस्टर है, जिस तरह परिजात में होता है वो भी 3 भाई और 1 बहन होते हैं। तो ऐसे ही मैंने सबकी शादियां की, फिर लास्ट में मैंने अपनी की 2 साल पहले, फिर उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो पता ही है जो ना मेरी बेटी है,
0: हाँ,
1: यही पैदा हुई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अब वो भी माशाल्लाह अभी मेरी जिंदगी में, तो आप यकीन करें कि जो चीजें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से अच्छी होती जा रही हैं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशियां ही अता करे और नजरें बच से बचाए सबकी।
1: आमीन आमीन आमीन। तो जी है, तो जो ना वाइफ भी मुझे कहती हैं और जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो मेरे साथ उस टाइम होते थे यूनिवर्सिटी में,
0: हाँ।
1: तो वो भी कहते हैं कि यार हम मतलब आपको देखते हैं, वो एक तो कतर में ही है और एक जो है अभी अमेरिका गया हुआ, वो कहते हैं यार वाकई मतलब जना ये आप पे सूट होता, डेली बात होती मेरी उनसे।
0: अच्छा।
1: 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। हाँ,
0: जबरदस्त, ग्रेट। ये तो बड़ा मतलब ना परिजात वाला तो आपने बड़ा जबरदस्त बताया, बड़ा कमाल, पहले ही बड़ी जबरदस्त बात आई हमारे पास। बाकी मतलब एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इस तरह की जिन लोगों की भी है तो वो उनको जो एक कामयाबी का जो मजा है ना, जो बंदा वो लेता है जिसने स्ट्रगल की हो, वो बंदा कभी समझ ही नहीं सकता जिसे बैठे बैठाए चीजें मिल गई हो।
1: ऐसा ही है, किसी को प्लेट में मिल जाती है हर चीज और किसी को स्ट्रगल करके लेनी पड़ती है।
0: सही बात
1: है, अल्लाह ताला ने दिया हमें, बहुत मेहरबानी है अल्लाह
0: ताला
1: करें उतना काम। चलिए जी, बाकी कॉलेज भी
0: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, बहुत अच्छा लगा, मैं आपको परिजात के नाम से याद रखूंगी। ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी, अल्लाह
1: हाफिज़। एक बात मेरे बीच में रहेगी, मैं शेर व शायरी भी बहुत करता हूँ और जो ना वो भी शेर लिखा करता था, तो मतलब कोई चीज नहीं है कि जो उससे रिलेट ना करते हो।
0: जबरदस्त भाई, कमाल है, ये तो कमाल है।
1: जैसे जो ना मॉर्निंग में था ना तो कबीर भाई का, तो मैं कभी कभी शेर सुनाता था, इतने कॉलर्स मैसेज करते थे फौरन वो फिजान भाई से पोएट्री भेजते, पोएट्री भेज फिर मैंने सुना नहीं छोड़।
0: जबरदस्त, बहुत आला भाई, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो फैजान हमारे साथ थे और ये तो बड़ी ही मजेदार बात पता चली कि इन्होंने जो है वो इनकी स्टोरी फौरन से दिमाग में बंदे के आए, डेफिनेटली उन्होंने वो पूरा दौर गुजारा है कि परिजात से वो रिलेट कर सकते हैं और रीजन भी उन्होंने बताया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मरहबा, कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं भाई?
2: मैं महफूज कह रहा हूँ।
0: महफूज
2: कह रहा
0: हूँ। अच्छा जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है,
2: ठीक है। मतलब आप लोग गाना कब स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी तो गाड़ी पे हो, एफएम बजाना चाहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, हम गाना 7 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे, कोई गाना सुनना चाहते हैं?

0: कोई गाना सुनना चाहते
1: हैं? 7 बजे दे दो क्योंकि निकलूंगा 7:30 बजे।
0: अच्छा तो कोई गाना सुनना है आपने खास?
1: नहीं नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, आप लोग बात करो, लेकिन मैं बोल रहा था 7 बजे चालू करोगे गाना, कोई मुश्किल नहीं।
0: अच्छा ठीक है, चाहिए और कुछ कहना चाहेंगे भाई?
1: और कुछ नहीं, कुछ नहीं।
0: अच्छा अच्छा चलें ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 7 बजे के बाद गाना चलाते हैं आपके लिए, ठीक है? थैंक यू महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम। रही जी, तो हमारे साथ थे हमारे कॉलर्स और इसी के साथ बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि अगर आपकी ज़िंदगी पे बने कोई ड्रामा या फिल्म तो क्या होगा उसका टाइटल? कोई ऐसा है, मतलब कोई ड्रामा होना चाहिए पहले का और फिल्म भी होनी चाहिए, तो किससे आप अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने मुझे बताना है और इसी के साथ बढ़ते हैं हम म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ और इन्जॉय करते हैं, वापस आते हैं। सॉरी, म्यूजिकल ट्रैक कह रही हूँ, ब्रेक ब्रेक।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
4: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
7: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
8: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
8: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
8: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
9: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
10: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: रेडी राइट वेलकम बैक आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान और आप कॉल कर सकते हैं और 666-222-107 पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी क्या हाल चाल है खादिम भाई आपको. गुड मॉर्निंग.
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
0: सुबह खैर.
1: गुड मॉर्निंग. सुबह बखैर. अच्छा सुबह बखैर. सुबह बखैर.
0: जी
1: अब मैं तो काफी देर से ट्राई कर रहा था नहीं मिल रहा था और प्रोग्राम सुन भी नहीं रहा था.
0: अच्छा तो मैं आपको बता देती हूँ
1: ड्यूटी पे जाने के.
0: हाँ मैं आपको बता देती हूँ अगर आपकी जिंदगी मतलब कोई ऐसी फिल्म या ड्रामा है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं. जैसे भी हमारे पहले कॉलर आए फैजान तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी देखो तो वो बिल्कुल परीजात जैसी है. जो स्ट्रगल्स थी जो सब कुछ था तो बिल्कुल परीजात जैसा है. तो आप किसी फिल्म या ड्रामे की कहानी से रिलेट करते हैं अपनी जिंदगी को.
1: देखो पहले तो ये है कि मैं मूवीज ज्यादा नहीं देखता. पुराने जमाने में और पीटीवी के ड्रामे देखते थे हम लोग. फिर बाद में अभी तो ये जो आप नाम ले रही हो ये मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन से ड्रामे.
0: पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते अभी.
1: अब बिल्कुल नहीं देखता.
0: अच्छा।
1: इसलिए नहीं देखता कि हाँ कि टाइम ही नहीं मिलता ड्रामा देखने के लिए.
0: हाँ।
1: और पहले ये था कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज्यादा देखता था.
0: हाँ।
1: तो अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता.
0: टाइम नहीं मिलता
1: तो जी जी जी जी तो सही. वैसे भी अगर पुराने ड्रामों में देखा जाए यानी अपनी जिंदगी के लिए.
0: हाँ।
1: कि जैसे अगर एक ड्रामा आपको याद होगा शायद धुआं ड्रामा था.
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उसमें जो किरदार थे और वो जो इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल वाले वो अदा कर रहे थे.
0: uh-huh.
1: अगर आपको याद है.
0: हाँ, बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल.
1: वो बहुत अच्छा ड्रामा था और मुझे बहुत पसंद था वो.
0: अच्छा अच्छा. तो उससे रिलेट कर सकते हैं कुछ या बस वो ड्रामा पसंद था.
1: नहीं ऐसे मैं कहता हूँ कि उसमें यानी मुआशरे को ये जो एक वो गंद है उससे साफ करने के लिए वो जो मेहनत कर रहे थे वो लोग. तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा था और वही बस मैं चाहूंगा कि वो करे तो अच्छा है.
0: सही सही. हाँ। सही सही.
1: हाँ।
0: तो अब आपके पास टाइम नहीं होता वरना बड़े अच्छे अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं इस वक्त. बहुत अच्छे ड्रामा आ रहे हैं पाकिस्तानी.
1: अच्छा मैं बिल्कुल एक तो ये होता है ना कि टाइम नहीं मिलता. दूसरी बात ये कि वो शौक अभी नहीं रहा ड्रामा देखने के लिए. पहले क्रिकेट भी देखते थे निकालते थे वक्त. वो अभी वो शौक नहीं रहा अभी. बस सिर्फ इतना है कि अपनी जिंदगी को ऐसे थोड़ी सी मसरूफ रखी हुई है वो वक्त गुजारने के लिए.
0: अच्छी बात.
1: बाकी वो नहीं. लेकिन ज्यादातर मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ उसको. आपने दूसरा बताया था कोई डॉक्टर सुफियान साहब.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो तो आप ही की तरफ के ना. मैं आपसे पूछ भी रही थी उस दिन कि आपका कहाँ से ताल्लुक
1: है.
0: सवावी से. बिल्कुल बिल्कुल.
1: जी जी.
0: तो बहुत अच्छी उनकी वीडियोस हैं. बहुत ही अच्छा. और अगर आप मेरा फेसबुक जाके देखें तो उनकी अभी एक मैंने वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैंने वो शेयर भी की है.
1: अभी जो आपने शेयर किया उस पे मैंने कमेंट्स भी अपने दिए हुए हैं.
0: बहरहाल
1: ज्यादा तो नहीं कह सकते कुछ किसी
0: जी
1: को
0: जी जी.
1: लेकिन इसमें सिर्फ उसको सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करो.
0: हाँ बिल्कुल सही.
1: वो क्या बात है,
0: क्या बात है? आप सुनिएगा जरूर आपको बहुत पसंद आएंगे.
1: असल में मेरे साथ मैं तो एक ऐसे ड्राइविंग एकेडमी में काम करता हूँ. नाम नहीं लूंगा. बहरहाल मेरे साथ हर रिलीजन के लोग आते हैं. हर रिलीजन के. तो हम एक लड़की थी मेरे साथ आई थी वो फ्रांस की थी. तो मैंने उसको बोला कि आप मेरी सिस्टर हो मेरी बहन हो. तो मुझे बोलते है कि मैं कैसे आपकी बहन हो सकती हूँ मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ. मैं बोला ये कोई बात नहीं है. ये क्या बात हुई. बोलते अच्छा मैं यानी एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम की बहन हो सकती. मैं बोला क्यों नहीं हो सकती.
0: हाँ।
1: आप हो मेरी बहन.
0: तो
1: ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए.
0: समझनी चाहिए
1: कि हम इंसान है इंसान. बाकी जो काम है जो बातें हैं उसको उसमें हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम उस पर कुछ डिस्कशन करें किसी के साथ बात करें. ये हमारा काम नहीं है.
0: सही बात है.
1: बार हर टाइम ज्यादा ले लिया.
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. कोई मसला नहीं. और आप जरूर वो वीडियो जरूर सुनिएगा जैसे ही आपको मौका मिले. जो मैंने अपलोड की हुई है ना वो जरूर सुनिएगा. जितने लोग भी हैं मैं उनको भी यही कहूंगी क्योंकि हमारा ना सोचने का अंदाज चेंज होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की जहाँ पे ना खादिम भाई हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते वहाँ पे बड़ा जरूरी है कि हम थोड़ी सी चीजों को इस तरह के लोगों को सुने जो हिकमत के साथ दावत दे रहे हैं.
1: अगर अगर हम लोग ये वीडियोस देख लें ना, ये जो आपने अपलोड किया हो या दूसरी ऐसी कोई वीडियोस को, मेरे ख्याल में पहले तो सबसे पहले हमारे मुआशरे में बर्दाश्त का जो वो मादा है जो खत्म हो चुका है एकदम, वो वापस आएगा
0: और बर्दाश्त
1: बहुत जरूरी है। और जो भी बंदा बर्दाश्त करता है ना
0: जी जी,
1: वो हमेशा कामयाब रहता है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही।
1: कोई भी बात हो, कुछ मुश्किल हो, कोई यानी ऐसे इम्तिहान तो हर किसी के ऊपर ऐसे आता है, लेकिन बर्दाश्त बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी
1: सबसे पहले।
0: बेशक,
1: बहुत शुक्रिया जी।
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, ख्याल रखिएगा।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू जी, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: वालेकुम सलाम रही जी। तो हमारे साथ थे खादिम भाई, और इसी के साथ देखते हैं कि एक और कॉलर है, कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
2: उसामा बात कर रहा हूँ।
0: उसामा बात करें, कैसे उसामा
2: जी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? पूरी
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और आप बताएं, छुट्टी थी पहले तो ये बताएं।
2: मैं तो वैसे लॉन्ग वोकेशन पे था, आज मैं तकरीबन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैं तुर्की गया हुआ था, तो मैं अभी परसों ही आया।
0: अच्छा, अभी भी कहीं मतलब वेकेशन चल रही है या फिर ऑफिस शुरू हो गया?
2: खत्म बस।
0: हाय हाय हाय, मेरा अभी 3 हफ्ते का इंतजार है मुझे, 3 हफ्ते के बाद मेरी शुरू होने वाली है।
2: अच्छा अच्छा, चले आप बहुत अच्छे टाइम पे जाएंगे फिर।
0: जी जी हाँ, बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा मौसम वगैरह।
2: वो टॉपिक आज से सुन रहा था, मैं देख रहा था कि मैं एक और चीज से, किसी और व्यू से देख रहा था। हम देखते हैं आप कहने से किसी ड्रामा या मूवी से आप अपनी जिंदगी को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ड्रामा देखते हैं ना, उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक या कोई एक करेक्टर या कोई एक पार्ट होता है कि आप जिंदगी के उस फेज में हर एक ड्रामे के

0: सरफेस से तो जैसे आपकी लाइफ गुजरी होती है. अगर आप कोई फैंटेसी टाइप को देखें, वो आप हर किसी की तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने साथ अगर रिलेट करूँ तो मैं देखूँ कि मैं इस जिंदगी के इस फेज से भी गुजरे हैं. अगर आप इमोशनली कोई देखें जो इमोशनली इस तौर पे बना होता है, क्योंकि आपके ह्यूमन नेचर के हिसाब से बनते तो जारी बात है, सब ह्यूमन नेचर के उसके हिसाब से होते हैं कि आपके, तो आप कहीं ना कहीं आपके जिंदगी का पार्ट उससे रिलेट कर रहा होता है. अब जैसे भी पहले एक फैजान भाई की शायद कॉल आई थी, वो फरीजात से बात कर रहे थे. अगर आप उसमें देखें तो आपको अपने स्ट्रगल लाइफ याद आती है. अगर आप कोई और मूवी ऐसी देखते हैं, आपको अपने यानी के मुख्तलिफ यानी के वो फेजेस याद आती हैं आपको. तो और वो आप बात कर रहे थे कि आपने जो जिस बंदे ने स्ट्रगल करके एक सक्सेस या उसके करीब भी पहुंचा हो, उसका एक अलग ही, आप जब उसको सोचते हैं ना, एक अलग ही अंदर कि डोपामाइन पता नहीं रिलीज होता है
1: अलग ही बात है, एक बड़ी अलग खुशी होती है.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपनी जब भी ये वो भाई बता रहे थे ना, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी लाइफ तो मेरी नहीं इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद की लाइफ यानी कि हम लोगों की, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के फौरन बाद ही हम लोगों की शादी हो गई थी.
1: अच्छा.
0: असल स्ट्रगल लाइफ हमारी तब स्टार्ट हुई थी, और खासतौर पे कतर आके 2021 में.
1: सही.
0: तो जब आप उस पूरे फेज को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कभी किसी मूवी का, कभी किसी ड्रामे की फेज आपके जहन में आ रहे थे कि हाँ उसमें भी ये सीन था, उसने ऐसे स्ट्रगल किया था, चाहे उसका ये सीन था. जब आपको इमोशनल नीड होती है तब आपको किसी ड्रामे का इमोशनल डायलॉग या कोई इमोशनल सीन याद आ रहा होता है. तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में लाजमी हो रही होती है.
1: सही सही.
0: तो आप किसी एक उससे रिलेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ को.
1: अच्छा, ऐसा वाला सीन है. ठीक है. तो मतलब कोई एक टाइटल नहीं दे सकते अपनी जिंदगी को, कोई ड्रामे का या फिल्म का.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं है ना आपकी.
1: मुख्तलिफ वक्तों में आपको मुख्तलिफ जगहों पे अपना आप नजर आता है.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही.
1: सही सही. ठीक हो गया. और सामा और क्या कहना चाहेंगे? तो आज से ऑफिस शुरू हो रहा है, एक्साइटमेंट है या घबराहट है?
0: एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि आप.
1: अच्छा सामा एक सेकंड ना, बस होल्ड पे रहिएगा हमारे साथ. मेरी अभी नजर पड़ी, हम जिंगल से वापस आते हैं. ठीक है.

0: FM 107. Time check.
1: Ready, right? 7:03. हमारे साथ कॉलर जी यूसामा.
2: जी जी, मैं बात कर रहा था कि इंसान है ना, इंसान किसी एक चीज में वो नहीं रहता, क्योंकि उसको चेंज चाहिए होता है. मैं अपने रिसेंटली अभी एग्जांपल लूं, जब हम अभी ट्रिप पे जा रहे थे ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हम जाएंगे जल्दी जल्दी, बस ये वर्क लाइफ खत्म हो, ब्रेक मिले, ब्रेक चाहिए. अब दो दिन, तीन दिन, चार दिन गुजरते हैं, फिर इंसान फेड अप हो जाता है, नहीं यार
1: वापस चलो.
2: वापस जो एक रेगुलर रूटीन होती है ना, असल आपको सुकून उसी में मिल रहा होता है. आपकी एक असल यानी कि आप कंफर्टेबल भी उसी में होते हैं.
1: ऐसा ही है. लेकिन यही कि छोटे छोटे वक्फे आने चाहिए जिंदगी में, मतलब थोड़ा सा, मतलब
2: कहीं आपको ब्रेक मिलने चाहिए, जरूरी बात है.
1: बिल्कुल सही.
2: मशीन तो नहीं है कि आप एक दफा ऑन कर दिया तो बस, अब तो ये चीज है. और वैसे भी इंसान जब ब्रेक इसलिए भी जरूरी होती है, आप देखें ना कि आप रेगुलर काम करते रहेंगे, एक कंटिन्यूस आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना करते रहेंगे, आपको ब्रेक चाहिए. तो इंसान उसमें भी एक दफा तंग आ जाता है. और जब बंदे के पास यानी कि वर्क प्लेस पे नहीं होता या लॉन्ग वेकेशन पे होता है, इंसान कहता है यार फ्री रह रहा है, थक गया, वापस वर्क प्लेस पे जाया जाए.
1: सही बात है. काम आपका तो बहुत जरूरी है. काम आपका चलते रहना चाहिए, रूटीन लाइफ चलती रहनी चाहिए. और फिर बीच में फिर वही ब्रेक्स ना, जब आपको अच्छे लगते हैं, अगर ब्रेक ही ब्रेक चल रहा हो तो फिर तो बंदा उकता जाता है. बिल्कुल,
2: एक लॉन्ग ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए, एक बस क्या लें कि ऐसी हो कि आपकी एक शॉर्ट ब्रेक भी काउंट हो जाए, कि मीडियम साइज क्या लें कि
1: छुट्टियों के लिए. लेकिन जैसे ही शुरू होती है, अभी लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं मतलब उन दिनों तो जब छुट्टियां ली थी, इस दफा इतना फिर भी पता नहीं चलेगा क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी है ना साथ में, और थोड़ा मतलब सबकी छुट्टियां तो. लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने ही छुट्टियां ले ली थी, अब वो सब जल्दी सो रहे हैं और मैं जागी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो आपको एक अजीब सा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है. हाँ
2: जी जी, आपको ना एक्साइटमेंट होती है. लास्ट टाइम मैं भी, हम भी पाकिस्तान चले गए थे. और उस वक्त वेकेशंस की थे कि जल्दी जल्दी वेकेशंस पे जाएं तो रिलैक्स करेंगे बेसिकली. तो पाकिस्तान जाके तो आपके फिर पाकिस्तानी आपको सोसाइटी और ये वो सारे मामला आपको पता, आपको खुद पता. मेरा ये हिसाब है कि मेरी मिसेज कराची से है और मैं खुद पंजाब से. तो हम दोनों तो जब भी वेकेशन पे जाते हैं, हमें वो दोनों कवर करने होते हैं.
1: सही सही.
2: वो जब कवर करने होते हैं उसमें मोर सेट अप हो जाते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हम वेकेशन पे रेस्ट करने आए हैं, कि हम और थक जाते हैं, मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिजिकली वैसे ही.
1: सही सही. तो ये आप दोनों की शादी कैसे हो गई थी? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे?
2: नहीं नहीं,
1: और ज्यादा थक ही जाता है, ये सब कुछ होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. चले जी उसामा, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे. ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बाय बाय. रही जी, तो हमारे साथ है उसामा, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं. लेकिन पहले हम चलते हैं मैसेजेस की तरफ आपके. तो मेरे पास मैसेज है, जो सबसे पहले वो है ये वाला, अस्सलाम वालेकुम. मैसेज कर दें, कौन मैसेज कर दें, किसको मैसेज कर दें? तो ये मैसेज आया, अच्छा इंजीनियर मोहम्मद फैजान का मैसेज था ये, ठीक है. मेरा ख्याल है कॉल के लिए उन्होंने किया होगा. इसके साथ ही सलाम मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड. और हमारे साथ ये नाम नहीं लिखा है, नाम तो बताइए ना, मुझे कैसे पता चलेगा कौन नाम पूछ रहा है. जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ द एफ बी ऑफ मौलाना यू वर टॉकिंग. अच्छा अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. एफ बी तो नहीं, उनका जो चैनल है उसका मैं आपको लिंक अभी थोड़ी देर के बाद देती हूँ, ठीक है. और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. अभी भाई हमारे पूछ रहे थे, जिन्होंने कॉल किया था, क्या नाम था उनका, महफूज पूछ रहे थे कि भाई गाना कब चलेगा. तो गाना अब चलेगा, ये वाला गाना आप इंजॉय कीजिए, साथ रहें, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

0: बहुत सारी चीजें नहीं हो सकी हैं अब तक, उनमें से सबसे पहले तो आ जाता है वेदर। वेदर के बारे में आपको बताती चलूं कि आज कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 39 यानी 30 सबसे कम और ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है दर्जे हरारत आज का। और इसके साथ ये भी आपको बताती चलूं कि आज जो है ह्यूमिडिटी 47% है, जिसको मॉडरेट आप कह सकते हैं। एयर क्वालिटी भी मॉडरेट है और इसके साथ ही यूवी इंडेक्स आज स्ट्रॉन्ग है, तो सन ग्लासेस, कैप, हैट, ये सब कुछ जो है आपने रखना है, अम्ब्रेला वगैरह भी, तो ये ज़रूर रखिएगा अपने साथ। साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी आपने करते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम आपको कहते रहते हैं। अच्छा जी, वेदर के अलावा अगर ट्रैफिक अपडेट के हवाले से बात करें तो आज जो है सिलसिला, मैंने जो खुद नोटिस किया था वो ये कि फिरोसिया पे, मतलब फिरोसिया स्ट्रीट जो है वहाँ पे साइड पे आपको ना एक लेन बंद मिलेगी, अगर वहाँ से आपका गुजरना होता है तो वहाँ पे वो आपको लेन कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी आप लोग भी बता दिया करें कि जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, कोई काम शाम हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ सकती है, तो उसके हवाले से अपडेट कर दिया करें। अपडेट करने के लिए भी हमारे वही नंबर हैं जो कि आपको पता ही है, 4434377 पे आप कॉल कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप मैसेज कर सकते हैं 6662107 पे। अच्छा जी, तो आ जाते हैं मैसेज देखते हैं आपका। तौफीक ने मैसेज किया है हमें और तौफीक कहते हैं माविश खान अस्सलाम वालेकुम अलवकरा से। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल हैं आपके, और दुआ वगैरह आपने भेजी हुई है, थैंक यू तौफीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, मैंने आज आपसे सवाल किया कि अगर आज मतलब आपकी ज़िंदगी जो है वो कोई ड्रामा या फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता और क्यों, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है, तो आप कॉल कीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूँ, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ आरिफ अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बताएं दो दिन कैसे गुजरे आपके। इसके साथ ही जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सरदार का मैसेज है मेरे पास, ओके, सरदार फ्रॉम पाकिस्तान, ओके जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और शहजादा सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफएमएक्स के साथ, वेलकम टू द शो शहजादा सलीम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम। आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी पर अगर कोई फिल्म या फिर ड्रामा बने तो क्या होगा उसका टाइटल, ये ज़रूर बताइए, हमसे शेयर कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वेट कर रही हूँ मैं आपकी कॉल का, आपके मैसेजेस का, दोनों चीज़ों का। और इसके साथ ही न्यूज़ वगैरह मैंने आपसे शेयर करनी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आपसे करती हूँ, मैं पहले आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। अगर कॉल आ जाती है फ़ौरन से तो फिर तो अच्छी बात है, वरना फिर हम म्यूज़िक की तरफ बढ़ेंगे और फिर मैं आपके लिए न्यूज़ वगैरह प्रिपेयर करके, क्योंकि अभी मैंने निकाली नहीं है ना, तो फिर वो निकाल के और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो कॉल आ गई है, कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मैं हाजिर हूँ, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आपके? जबरदस्त, क्या बात है,
1: 107
0: सब की तरफ से आपको वालेकुम सलाम। और बताएं भाई तौफीक भाई, क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में?
1: अभी बेटे को उतारा हॉस्पिटल में।
0: अच्छा अच्छा,
1: और क्या वो ट्रेनिंग है ना उसका की, वो बन चुकी है ना,
0: माशाल्लाह ग्रेट।
1: गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा हूँ, पेट्रोल डाल रहा हूँ, चलो फूल करूँगा, बड़े अच्छा आपको फूल करूँ, फूल का इंतजार कर रही हो।
0: अच्छा किया तौफीक भाई। अच्छा ये बताएं भाई, आपकी जिंदगी के ऊपर कोई फिल्म और ड्रामा बनता, पहले ही बताएं, फिल्में वगैरह देखते रहे, ड्रामे फिल्में देखते हैं कि नहीं?
1: पहले बहुत देखता था, अभी कभी कभी,
0: अभी कभी
1: तो बहुत देखता था।
0: कौन सी फिल्म देख के ऐसा लगता था कि बस ये फिल्म तो मेरे ऊपर ही बनी है?
1: मैं तो शोले फिल्म बहुत देखा,
0: शोले फिल्म
1: धर्मेंद्र और अमिताभ का।
0: उसे कौन सा कैरेक्टर लगता था अपनी तरह?
1: तो अभी फिल्म ये बना चाहता हूँ, अल्लाह मुसलमानों पे रहम कर, बस ये फिल्म का नाम है, मुसलमान आजकल बहुत तकलीफ है ना, सब मुसलमान मुल्क है।
0: बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल सही, आमीन आपकी बात पे, बिल्कुल सही, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन हमें अपने हाल पे पहले खुद रहम करना होगा, उसके बाद अल्लाह रहम करेगा हम पे।
1: बिल्कुल, हम मुसलमान खुद बहुत कमजोर हो चुके हैं ना।
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: और चलो ठीक है,
0: और चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू तौफीक भाई, अल्लाह हाफिज़। रोही जी तो हमारे साथ तौफीक भाई, और इन्होंने कहा कि पहले देखता था, मतलब बहुत सारे लोग वो आ रहे हैं जो कि पहले देखते थे, अब वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ से। अच्छा फिल्म का नाम भी लिया तो शोले, अब मैं उनसे पूछने वाली थी कि इसमें आप कौन सा कैरेक्टर अपने आप को समझते हैं, कहीं गब्बर सिंह तो नहीं समझते ना, बाकी सब खैर है। खैर जी, आप कॉल कर सकते हैं हमें 4434377 पे, और साथ साथ मैसेज भी कर सकते हैं, जल्दी से कॉल कीजिए ताकि मैं आपकी कॉल शामिल करूँ, फिर अगर आप आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम हाँ आ गए, आ गए, ये हुई ना बात जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, हम आ गए, हम हैं आपके साथ।
0: क्या हाल है शहजादा सलीम आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने बहुत लेट ऑन किया रेडियो
0: है, क्यों
2: के बाद थोड़ा यही उठा, फिर उधर ऑफिस में जाना था तो थोड़ा सा सेम यहाँ, बाकी मैं आने के बाद फिर गाड़ी में सुन ही रहा था तो फिर मैं बोला अभी थोड़ा फारिक हो गया तो अभी कॉल लगाते, तो आपने खुद ही दावत दे दी कि जल्दी से कॉल लगाओ तो ताकि मैं जल्दी से उठा लूँ वरना फिर मैं तरफ बढ़ूँ जाने के
0: आपको। कौन सी फिल्म लगती है अपने ऊपर?
2: मेरे को जहाँ तक इंस्पायर की है और जहाँ तक मतलब एकदम इमोशनल हर तरीके से एक मतलब उत्मंद और एक है ना रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले से ही बहुत छोटी उम्र से, तो ऐसा ही है कि नाम मुझे ना नाम संजय दत्त की
0: नाम ओके, वो चिट्ठी चिट्ठी वाली
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई
0: सही से ना
2: तो वही हाँ, तो वो गाने वो फिल्म तो इतनी बड़ी है लेकिन वो परदेसी के लिए पंकज उदास का वो गाने ने ना पूरी दास्तान ने ना बता दी और उसमें से काफी काफी काफी हकीकत है, उसमें काफी हकीकत है।
0: अच्छा मैंने नाम देखी नहीं है इसलिए मैं समझ नहीं सकती, मैंने देखी नहीं है लेकिन मुझे याद है मतलब बहुत छोटी हुआ करती थी उस वक्त में पप्पा लोग बड़े उससे ना ऐसी क्योंकि वो भी कुवैत में थे तो इमोशनल होके सुन रहे होते थे, ये मुझे पता है गाना बड़ा मशहूर हुआ था ट्रेंडिंग पे था उस वक्त।
2: हाँ हाँ हाँ देखे देखे वो, और वो गाना भी आप लगा के आप खुद सुने वो गाना, तो वो गाने की हकीकत है ना जो परदेसी के लिए ना जाहिर करती है छिट्टी आई छिट्टी आई है, तो मतलब इस तरह की है मतलब हर पहलू हर मतलब हर शोबे के हर बंदे अपने अपने मतलब जिस हिसाब से जिसका स्किल है उस हिसाब से लोग यहाँ थे और किन के साथ मतलब कुछ अलग हो गया उसमें जो उनकी स्किल थी उससे कुछ डिफरेंट हट के हुआ, तो वो सारी चीजें है उस फिल्म में ना धोखा हुआ वगैरह वगैरह और भी सारी चीजें, तो इस तरह की बड़ी बहुत बहुत मतलब जबरदस्त फिल्म थे वो नाम देखते हाँ बहुत जबरदस्त फिल्म थे वो, और उनके जो भाई है ना कुमार गौरव भाई रहता संजय दत्त का उसमें और एक गाना है उसमें भी बहुत सबको ना यानी दोनों भाई दो एक ही जरा रहते ना जब जाने पहले अपना मिलते हैं ना तो उनसे भी एक गाना पिक्चराइज किया था कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ, ये सुना है मैंने गाना सही
2: से। बहुत मतलब इमोशनल गाने काफी मतलब अच्छे रिलेट वगैरह है ना जो एक पिक्चराइज फिल्म पर है ना आप देखेंगे फिल्म
0: मैं देखूंगी देखूंगी बिल्कुल।
2: और जो माँ का रोल जो नूतन ने भी किया ना तो माँ के दिल में इतनी मोहब्बत वो मतलब जाहिर होने नहीं देती है, संजय दत्त मतलब किस्म के रहते तो उनको डांटती ना ये जा रहा है दुबई जाके ये क्या करेगा इससे तो कुछ होने वाला नहीं है इसलिए ऐसे, लेकिन अब वो कल जा रहा है अब रात को उनके कमरे में जाके उसको अपना माथे पे प्यार करके ना चादर उसके आंख से ना डाल के यानी अफसोस रहता है ना इतने में माँ है ना तो एक रियलिटी दिखाया है कि माँ कितने भी गुस्सा करती है तो अब बेटा कल जा रहा है फिर वो जब जाने के टाइम पे विदाई भी लेता है ना तो फिर भी है ना उनको थोड़ा सा मतलब गुस्से में रहती है ना कि ये मतलब आवारा है कुछ करता नहीं है, तब भी बैग लेके जब मिलने जाता है ना अपनी माँ से वो भी एक बहुत अच्छा एक शॉट बहुत जबरदस्त शॉट है। तो
0: अच्छा वो मतलब इंडिया में रह के कुछ नहीं कर रहा होता उसने इंडिया से बाहर जाके करना होता है ये वाला सीन होता है। अच्छा
2: अच्छा तो जाता तो उनके साथ कुछ तीसरी चीज हो जाती है कुछ गलत इसमें ना उनके साथ जाता है तो उसमें फंस जाते हैं तो काफी हाँ उनके साथ ना तो वही फिर शो होता वहाँ फिर अमृता सिंह भी मिलती है वो भी एक बेचारी हालात की मारी भी आती है और उसके साथ भी कुछ मतलब इस तरह से होता है कि एक मतलब वो एक एजुकेट रहती है कोई जॉब के लिए आती है लेकिन उसके साथ कुछ अलग ही हो जाता है फिर तो बहुत सी हकीकतें ना होती है जो ऐसे कितने रैकेट्स है ऐसे कितने ट्रैवल्स है ना जो मतलब के भेजते हैं फीमेल मेल को है ना और फिर वहाँ जाके कुछ धोखा और कुछ अलग ही फील्ड में उनको यूटिलाइज करते हैं उनको कुछ फायदे इस तरह के ना तो काफी अच्छी फील्ड मतलब बहुत जबरदस्त है।
0: चलें, अगर बिल्कुल मौका मिलता है मैं ज़रूर देखूंगी। और इस मूवी से आप कर सकते हैं रिलेट, आपने पूरा रीज़न बता दिया उसका, ग्रेट, ज़बरदस्त शहजादा सलीम। और बताएं भाई, दो दिन कैसे गुजरे थे आपके?
2: हाँ, मैं तो जुमेरात नाइट के हम लोग जमात में थे तबलीग के ना, एक
0: अच्छा
2: दिन
0: माशाल्लाह, ग्रेट।
2: तो फिर हमें ना फ्राइडे सैटरडे जुमेरात नाइट में गए, तो जुमा को वहीं से तालीम हुई, मशहूरे हुई है, बयानात हुए, सारे कुछ हुए। फिर अच्छा, कुछ जिसे नहीं पता थी वजू के चार

0: फराज और गुसूल के तीन फराज, ये सारे कुछ नहीं बताते खाने का जब टाइम होता है तो फिर अमीर जो है ना खाने के बताते थे, खाने की दुआ बताओ, खाने के बाद की दुआ, और उसके बाद खाना किस तरह से खाना है। अभी एक प्लेट में मिलके खाते थे ना जो साथी रहते थे, अपनी तरफ से मतलब खाना है, किसी की तरफ से नहीं कि घसीट लो उसकी तरफ घोष जाते उसकी तरफ हाथ डाल के अपने पास ले लो, ऐसा नहीं करो ना। तो मतलब यानी सुन्नत पे बहुत मतलब ये दिया है, फोकस दिया है पूरा एक जमात के में ना उसमें, तो काफी चीजें क्योंकि बहुत जरूरी है ना दीन, मतलब दीन नहीं जिंदगी में तो बेवकूफी है, फिर क्या फायदा है ना जिंदगी में। सुबह उठो, शाम आओ, खाना खाओ, सो जाओ, तो कुछ काफी मतलब इसके लिए तो अल्लाह का एहसान है। तो इंशाल्लाह बैरूनी मुल्क भी जाती है यहाँ से कतर से ना जमाते ना, उसकी जो होते हैं जिस किसी ने 3 दिन लगाए, किसी ने 40 दिन लगाए, किसी दिन 4 महीने लगाए हुए, और सारे अपने कलमों से और सारे जो 6 सुन्नतें 6 जो उसूल है उसमें कर सकता हो, दावत दे सकता हो अच्छी तरह किसी भी मुल्क में ना, तो फिर उसका नाम उसमें ऐड होता है, तो जाती है तो यानी पूरे यूरोप जाती है, काफी जगह जाती है
1: यहाँ से। गुड, जबरदस्त, तो आपकी काफी अच्छी माशाल्लाह से एक्टिविटी रही और काफी कुछ आपने सीखा भी, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत।
0: और क्रिकेट ऐसा भी है ना, गर्मी है ना तो नहीं हो पाता है, नहीं खेल पाते ना इतना क्लाइमेट तो नहीं निकलते। अभी वही बात के लिए स्टार्ट होगा जैसा जैसा
1: माशाल्लाह, बहुत अच्छी एक्टिविटी आपने ढूंढ ली है शहज सलीम, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल बात होती है, ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो हमारे साथ थे भाई शहजाद सलीम और उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि नाम मूवी और वो क्यों परदेस और परदेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो कि होती हैं, तो वो उस मूवी से रिलेट कर सकते हैं। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर आपको पता ही है, मैं थोड़ी देर के बाद आके आपको फिर बताऊँगी, लेकिन अभी हम चलेंगे म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस,

0: जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान, और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ वापस आ गई हूँ और मेरे पास मौजूद हैं आपसे शेयर करने के लिए कुछ न्यूज. तो मैं आपको बता दी चलूँ कि दोहा में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर हेल्थ का 8th एडिशन 29-30 नवंबर को कतर के नेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कद होगा, और इस समिट का थीम होगा द न्यू हेल्थ स्पैन, यानी कि इंसान की सेहत और ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर और लंबा कैसे बनाया जाए. तो अहम बात यह है कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स के मुताबिक साइंस आज मैजिक जैसी तेज़ी से तरक्की कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि जो मेडिकल इनोवेशन लैब्स में बनती हैं वो आम पेशेंट्स तक नहीं पहुंचती. यानी दुनिया के डेवलप मुल्कों में एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ तक वो ट्रीटमेंट्स लेट या फिर महंगी पहुँचाती हैं. तो ये यहाँ पर जो विश समिट होगी, यहाँ पर 5 इसके इम्पॉर्टेंट ट्रैक्स डिस्कस होंगे. इसमें होगा सबसे पहले ये कि लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी का रास्ता क्या हो, फिर इसके साथ ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और उनके एथिकल इश्यूज, इसके साथ महंगी ट्रीटमेंट्स को अफोर्डेबल बनाना, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिकल यूज़, और साथ में कंट्रीज़ के दरमियान हेल्थ कोऑपरेशन. तो ये होगा यहाँ पे, और मैंने आपको जैसे डेट्स बताई हैं कि आप ये यहाँ पे जो समिट होने वाली विश की वो नवंबर के महीने में होगी, उसको अनाउंस कर दिया गया है. तो ये है जी मेरे पास एक न्यूज़, और इसके साथ ही साथ आपको याद दिलाते चलें कि आपने हमें कॉल करनी है 4377 पे, और आपने बताना है कोई ड्रामा या फिल्म जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के लगा हो करीब. अभी तक 2 लोगों ने इस तरह का आंसर दिया है, और एक तो फैज़ान थे जिन्होंने परीजात कहा, फिर शहजादा सलीम ने कहा कि उनकी ज़िंदगी उन्हें बहुत हद तक लगती है फिल्म नाम की तरह. तो आप किस फिल्म, किस कहानी से, किस ड्रामे से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, आप ज़रूर कॉल कीजिए और हमें बताइए. ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपकी कॉल का. जी और इसके साथ ही मेरे पास है जी मैसेज, और ये है अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. मक्खी चीमा नाम है इनका. ओके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. इसके साथ ही जी मेरे पास है खलील बराजा साहब का भी मैसेज, मुझे नज़र आ रहा है कहाँ गया ये वाला. हाँ, खलील बराजा साहब कहते हैं कि माई लाइफ इज़ गो ऑन फुली स्ट्रगल एंड नाउ आई एम फ्री, टू मच बोरिंग और इन पास्ट आई हैव नो टाइम, बट नाउ आवर डेज आई एम फ्री. ओके जी, तो फ्री हैं तो फिर कॉल कीजिए ना खलील भाई, क्यों नहीं कर रहे आप कॉल कीजिए. कॉल करके हमें बताइए कि क्या सिलसिला है, और कौन सी मूवी, कौन सा ड्रामा कभी देखा था उससे लगता है कि आप जो है रिलेट कर सकेंगे अपने आप को. एक गाने की फरमाइश है, और रब को याद करियो एक फरियाद करियो. कौन सा गाना है? मैंने नहीं सुना है वाला. सरदार समी का मैसेज है, लेकिन ये कौन सा गाना है, कौन सा सिंगर है, क्या है टाइटल, ज़रा सही तरह से बताएं. होता है तो मैं ज़रूर चला दूंगी. अहमद कहते हैं टाइम मिले तो कॉल कर लीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है मावश मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है, और बिल्कुल जी टाइम मिल गया है तो मैं आपको कॉल मिला लेती हूँ. देखते हैं कि इस वक्त आपके पास टाइम है कि नहीं है, क्योंकि मैसेज आया हुआ

0: पहले का, तो हम देखते हैं, अहमद उठा लेते हैं तो अहमद से बात करते हैं और आपने बताना हमें वही है कि ड्रामा फिल्म. अच्छा देखो, जैसे ही अहमद को कॉल में लाना शुरू की ना तो और लोगों ने भी कॉल करना शुरू कर दी. चले दी, हम पहले ले लेते हैं ये कॉल जो कि आ रही है, अहमद को होल्ड कराते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: कैसे हैं? मैं रमीज बोल रहा हूँ.
0: जी रमीज बात कर रहे हैं.
1: जी
0: जबरदस्त, ग्रेट. अच्छा मैं रमीज नाम पे, मतलब मुझे अच्छा लगा कि रमीज नाम की कॉल आई है. आप क्यों हंसे?
1: टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं आज टाइम मिला
0: है थोड़ा मिला. ओके, कहाँ से ताल्लुक है रमीज आपका?
1: यूपी से.
0: यूपी से? अच्छा इंडिया से हैं आप. बेसिकली रमीज मेरे खाला के बेटे का नाम है और रमीज जो है ना बड़ा कम नाम सुनाई देता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा आपका नाम सुन के. जी जी.
1: और क्या, किस टॉपिक पे बात हो रही है? मैं तो काफी अभी तो आया हूं.
0: हां मैं बता देती हूँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपकी फिल्म, आपकी जिंदगी जो है ना कोई फिल्म या ड्रामा होती तो कौन सा होती, क्या टाइटल होता उसका?
1: दोस्ताना.
0: दोस्ताना. ये कौन सी वाली फिल्म है दोस्ताना?
1: ये फिल्म है अमिताभ बच्चन की है, बहुत ओल्ड मूवी है, काफी.
0: किसके साथ है? किसके साथ?
1: शत्रुघ्न सिन्हा के साथ.
0: अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा. अमिताभ बच्चन की मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगती है, याराना, जो अमजद खान थे जिसमें, है ना?
1: हाँ
0: वो देखी मैंने.
1: ये फिल्म हम दोस्त हैं हमारे,
0: हाँ दोस्त दुश्मन गुलिस्तान का गाना भी है ना. दोस्ताना हो तो, लेकिन क्यों?
1: बस इसको हम लोगों ने जब पिक्चर देखने गए थे उस समय हमारे दोस्त था और मैं, तो उस समय हम लोगों के पास पैसे नहीं थे. अच्छा. पिक्चर लगी थी तो पढ़ रहे थे हम लोग उस समय, तो ये उसी समय हम लोगों ने एक चोरी की थी. अच्छा. गुल्लक से पैसा निकाले थे हम लोगों ने. अच्छा. मूवी को देखने के लिए.
0: सही.
1: वो और आज का दिन, वो जब आज भी याद करते हैं हम लोग, जब बात करते हैं तो कुवैत में रहता है वो. जब कोई बात आता है तो इस बात को जरूर छेड़ते हैं हम लोग कि यार मार खाए थे हम लोग, पैसा चुराए थे घर में. इस मूवी को देखने के लिए.
0: ओके.
1: तो
0: किसने चुराए थे पैसे?
1: ये वो नसीम भी चुराया था और मैं भी चुराया था.
0: अच्छा.
1: और सिक्का ही तो निकलता था उसमें से, सिक्का निकाले थे.
0: अच्छा.
1: पांच सात रियाल वो निकाला, पांच रुपए निकाला था, सात आठ रुपए वो मैं भी इसे निकाला थे. बस दोनों आदमी स्कूल जा रहे थे, स्कूल नहीं गए और भाग गए उसी को पिक्चर देखने. तो मैं दो तीन रुपए की, तीन रुपए की, चार रुपए की टिकट थी.
0: हाँ सही सही, ठीक हो गया. तो दोस्ती के ऊपर याद आती है आपको ये फिल्म? दोस्ताना. सही सही. चले जी, गुड.
1: और नाजिया जी कब आ रही है?
0: नाजिया इंशाल्लाह 19 से ज्वाइन कर लेगी.
1: अच्छा अच्छा.
0: जी जी. तो बस इंशाल्लाह 30-30 हफ्ते हैं फिर नाजिया आपके साथ होगी.
1: अच्छा ये मैम जो इनाम ये सबका मिल रहा है, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया.
0: अच्छा कुछ लोगों को शायद देर से आ रहा है क्योंकि हमारे एक दो भाई और भी पूछ रहे हैं रोजाना, लेकिन ये कि आएगा अगर नाम आपका है ना तो वो हमें पता है कि हम सबके नाम देते हैं लिख के जब भी होता है और वो सबसे कांटेक्ट करते हैं.
1: अच्छा
0: हाँ इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह. बहुत अच्छा लगा रमीज आपसे बात करके, कॉल कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ है रमीज और इसके साथ ही देखते हैं कि हमारे साथ हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी अहमद क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं क्या चल रहा है?
2: बस ड्यूटी से आया, कॉल देख रहा था, बातचीत हो रहा था, सोचा एक मैसेज कर दे.
0: अच्छा किया आपने मैसेज कर दिया. बताएं दो दिन कैसे गुजरे आपके अहमद?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो पूरे साल की ही ड्यूटी है तो छुट्टी का कोई चांस नहीं है.
0: हाँ, भी नहीं मैं आपको दो दिन पूछूं, छुट्टी नहीं पूछी इसीलिए मैंने आपसे. कैसे गुजरे
2: दो दिन भाई? हर रोज की तरह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही गुजरे
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जी अहमद, तो आपके ऊपर कोई फिल्म या ड्रामा कौन सा होगा, किससे रिलेट कर सकते हैं खुद को?
2: नहीं वो तो ड्रामा लाइफ में इतना ज्यादा है कि एक से तो रिलेटेड नहीं कर सकता है.
0: हाँ, वो फिल्म?
2: लेकिन है फिल्म भी ऐसा कुछ अभी तक नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो अभी पाकिस्तानी सीरियल ड्रामा की बात कर रही थी ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ हर में से मिलता जुलता है। फर्स्ट में एक सीरीज देखे थे, ऐसा खैर ड्रामा से शुरू में तो देखते नहीं थे, नफरत था, मतलब अच्छा नहीं लगता था, वो सस्पेंस बन रहा है, फिर आप कल के लिए वेट करो कि हाँ आगे क्या होने वाला है ना, इस वजह से ड्रामा हम नहीं देखा करते। लेकिन अब घर पर टीवी नहीं था, दूसरे के टीवी पे देखने था मजबूरी में, देखते देखते अब पर जब यूट्यूब पे आए तो भी मेरा आदत यही था लॉन्ग वीडियो देखना, मतलब कोई मूवी है अच्छी लगी तो देख ले बस थोड़ा सा बात खत्म, ये ड्रामा से सुन होना। लेकिन फिर पाकिस्तानी ड्रामा पे नजर पड़ा उसके बाद जो आदत लगी है, जितना नया नया सीरीज आ रहा है सब आदमी देखते जा रहा है, रात में हो या दिन में हो जो भी हो टाइम हो।
0: सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको अभी तक?
2: फिलहाल अभी तो सबसे फर्स्ट में एक वो खुद क्या नाम था उनका, ये क्या नाम है अभी जो चल रहा है याद ही नहीं, क्या नाम था वो शेर खान ऐसा बोल के, वो क्या है बहुत फेमस एक्टर है उनका, शमशेर का ऐसा कुछ आया था जिसमें वो क्या जी मैं नाम ही नहीं याद है, तेरी खुदगर्दी ऐसा करके कुछ।
0: हाँ, हाँ, सही, सही, सही, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम सुना था मैंने, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो देखा आपने।
2: हाँ उनका पूरा सीरीज देगा, फिर उसके बाद ये परिजात है, या फिर उनके बाद बहुत सारा सीरीज उन्ही का है, फिरोज खान का भी, और दूसरा जो उसमें एक्टर है जब खुदगर्ज उनके भी दो तीन अभी तो फिलहाल उनके चल रहे ना, शायद आई और दूसरा एक और है,
0: यानी दानिश तैमूर के फैन है आप?
2: हाँ हाँ दानिश तैमूर जी, दानिश तैमूर के काफी है। फिर बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास का भी एक दूसरी जाए ना अभी हाल फिलहाल में, तो वो भी मतलब उनके भी एक्टिंग का अच्छी है, तो वो भी चल रहा है। फिर दो तीन एक्टर है, सबसे पहले एक सीरीज देखे तो वो उनका नाम भी याद नहीं है, लेकिन हानिया आमिर थी उनकी एक्टर, और भी मासूम सी थी, एक घर में होती ना फैमिली में बेचारी को कभी घर से नहीं निकलने देते, वो लास्ट में उसको कुछ पता ही नहीं है बाहर में बैंक अकाउंट क्या होते वगैरह वगैरह, तो देखे तो फिर ये रिलेटेड कर सकता था आदमी अपने फैमिली से, मतलब जो आजकल के नॉर्मल होता है ना कि हाँ ये चीज यहाँ पे हो रहा है कि आदमी इतना भी किसी को नहीं रखना चाहिए कि उसे दुनिया का कुछ मालूम नहीं, औरत हुई हमारे
0: कौन सा था कुछ कहानी बताएं इसकी?
2: पता नहीं मोहब्बत से थे, तो उसमें एक वो पहले अमेरिका में रहती हैं, फिर उसके बाबा कोई प्रॉब्लम होता है तो छोड़ देते हैं पाकिस्तान में।
0: अच्छा अच्छा।
2: फिर उसके बाद वो कजन से ही उनका शादी वगैरह बाद में बात चलता हो जाता है, और लेकिन उनकी जो बड़ी अम्मी होती है उन पर सख्ती करती रहती है बचपन से, तो उसको पता ही नहीं रहता घर की नौकरानी बनाकर।
0: अच्छा अच्छा, वो तो नहीं मेरे हम सफर जिसमें फिर बाद में वो लड़के शादी कर लेता है उन्हीं का बेटा है ना?
2: हाँ, जी, सही, सही, सही, ये जो कहानी है ना कुछ ड्रामे भी ये अपने मतलब से मिलता जुलता है, काफी अच्छा लगता है देखने में।
0: सही सही।
2: अगर आप खुद के लाइफ खुद में तो इतना स्ट्रगलिंग है जिंदगी में, हर सीरीज से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बस आपका शुक्रिया आपने फोन किया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कहा और आप सुन रहे हैं, तो जब भी कभी ऐसा हुआ करे तो आप हमें बता दिया करें, हम आपको जरूर कॉल कर लेंगे।
2: इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला सब जितने 107 के सब बेहतरीन कर रहे हैं, और सबसे बात करके आदमी को दिल खुश हो जाता है, नाजिया मैम हो या सफा मैम हो या कबीर भाई
0: जी जी।
2: क्या एक चीज हमको नहीं समझा, वेद भाई कहाँ गायब हो गए या कुछ उनका प्रमोशन हो गया है कि कहीं चले गए?
0: वो चले गए बेसिकली इंडिया।
2: अच्छा, इसलिए उनका शो कभी आना ही नहीं है ना?
0: जी जी नहीं आएगा, ऐसा ही है जी जी।
2: चलिए अल्लाह खैर करे, सबको सलामत रखे।
0: हाँ, बस उनके लिए भी दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए सब कुछ अच्छा करे। ठीक है
2: जी जी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए वो वाला गाना लगाऊंगी अभी जो आप जिस ड्रामे की बात कर रहे थे उसका ओएसटी लगाऊंगी थोड़ी देर में, सुनिएगा ठीक है? चले ओके, थैंक यू, अल्लाह
2: हाफिज़।
0: अच्छा नहीं चलाऊं? चले अच्छा अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे कॉल पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: आवाज आपकी ठीक है, थोड़ा सा लाउड बोल लीजिए तो और अच्छी हो जाएगी। कौन बात कर रहे हैं?
3: अरे भैया हम आपको पहचान रहे, हम नहीं बताएंगे कौन बात कर रहे हैं।
0: तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है।

0: ajunge să ai dat oază pe care unii mă rame când erau. E chestia păișanele.
1: रईस बात कर रहे हैं
0: जी।
1: अच्छा हाँ, आवाज में आपके वाकई गड़बड़ है क्योंकि मुझे बड़ी देर से समझ में आया आपके आपकी आवाज बेसिकली कम आ रही है। अच्छा, मेरा ख्याल इनको आइडिया है कहीं पे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे जो है ना आवाज इनको पहले से अंदाजा था कि नहीं चल पाएगा, नहीं हो सकेगी बात। चले रही, इस वक्त हम प्ले करने जा रहे हैं ये वाला ट्रैक। अभी शहजादा सलीम ने कहा कि जिस फिल्म का जिक्र कर रहे थे दोस्ताना का, उसका गाना बहुत अच्छा है, तो ये वाला गाना चला दें। मैम अगर हो सके तो बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं, तो ये वाला गाना मैं आपके लिए चला देती हूँ। इंजॉय कीजिए, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein. Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. Call karein 4488806 par ya email karein marketing@qmc.qa.
2: Absolute cinema.
3: Ye hai wo reaction jiske liye aap theater jana chahte hain. Par reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
3: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम। आपने कहा मैं क्या किया, मोबाइल से डिस्कनेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने उसको डिग्री पे डाला, इससे डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। फिर बीच में मेरा गाड़ी अनलोडिंग का टाइम हो गया, उसी टाइम उसने कॉल किया, आराम से फिर बात करते हैं।
3: चलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी आवाज उस वक्त वाकई समझ में नहीं आ रही थी। कैसे हैं रईस भाई? ठीक ठाक हैं आप?
4: बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आप लोगों की और हम इंतजार करते हैं कि आपका यार दो दिन कम से कम, हम कम से कम लगाते हैं, कभी कभी सैटरडे को भी हम लोग का ड्यूटी होता है तो यार उस दिन मिस करते हैं कि नहीं होते तो थोड़ा सा टाइम मतलब ये होता है,
3: मुश्किल से गुजरता है। सही सही सही सही। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंतजार कर रहे होते हैं और अच्छा लगता है आपको। जी रईस भाई, तो आज क्या सिलसिला है? नाश्ता वाश्ता हो गया, सब चीजें हो गई?
4: नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है, हमारा तो बस थोड़ा सा जड़ी बूटी वाला डाइटिंग रहता है।
3: बताया था आपने, जबरदस्त, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ख्याल रखना चाहिए शुरू से ताकि सब मामला ठीक रहे।
4: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फिट है, महरूस बता रहा हूँ मैं कि मेरे घुटने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था चलने में, थोड़ा वजन भी हाइट 6.5 से ऊपर ही हाइट, फिर मतलब और फिर वजन भी 90, 94, 93 के उस पे वेट रहता, तो थोड़ा सा जब हाइट के हिसाब से तकरीबन ठीक ठाक पता नहीं चलता ज्यादा, लेकिन फिर नमाज उमाज के टाइम में थोड़ा सा मसला बनता है जब उसमें बैठते हैं तशहुद में और वो सब में, तो और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ और ये सब जो खाना शुरू किया ना, जो आपने आपको मैंने बताया था मेथी कलौंजी ये सब भी हल्का हल्का okay, तो बहुत बहुत और हल्का एक्सरसाइज लाइटली करते हैं तो इससे बहुत बहुत रिलीफ मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज्यादातर अंग्रेजी दवाओं से बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ ये सब चीजें ना करके, बल्कि फल फ्रूट और सलाद ये सब हर दिन हमारे उसमें जरूर
3: अपने तौर पे ठीक कर लो कुछ ना कुछ अपने तौर पे हो जाएगा।
4: और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं जब तक यहाँ पे रहता हूँ तकरीबन नहीं जरूरत पड़ता है दवाओं का, मतलब ऐसा करके घर पे कभी गए तो मतलब थोड़ा सा मौसम के उससे मतलब ये हो के थोड़ा सा फीवर वीवर का हल्का फुल्का मसला बन जाता, नहीं तो बाकी अल्लाह के करम से
3: चलेंगे। जबरदस्त, अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं रईस भाई, कोई फिल्म या ड्रामा, ड्रामे देखते हैं पहले ये बताएं या फिल्में देखते हैं?
4: ड्रामे फिल्में बहुत देखते थे, इतना देखते थे कि मतलब आपको समझ लो कि वो 90 के जिस टाइम पे समझ लो अपना उम्र का टाइम था, उस टाइम बड़े आशिक थे ना ड्रामे देखने के, और वहां बैठते थे हम लोग दोस्त तो खाली बस उसी की कहानी बस करके, वहां पे ऐसा हुआ वहां पे ऐसा हुआ बस यही कहानी शुरू होता था।
3: अच्छा।
4: लेकिन वो टसल खत्म हो गया।
3: अच्छा, उसी जमाने का बताएं कि कोई ऐसी फिल्म आपने देखी हो जो कि आपको लगता हो आपकी जिंदगी के बड़े करीब है, आप अपनी जिंदगी को टाइटल देना चाहेंगे?
4: मैं नहीं मिसाल दूंगा क्योंकि बहुत सी मूवी पहले की जो मूवी होती थी मैं वैसे वो उसमें कुछ ना कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड होती थी कहानियां, और आजकल की जो मूवी होती है तो ये तो समझ लो कि आदमी को खाली बस जहन को खराब करना, ये अपने आप को मतलब ये करना, खास खुराफात और ये सब इधर उधर का होता है। खासकर मैं ये करूंगा, ज्यादा दाद दूंगा कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं मैंने कुछ देखे हैं तो उसमें गैर अखलाकी चीजें बहुत बहुत मतलब समझ लो कि नाम बराबर होती है और बहुत इंडिया के मूवी से बहुत बेहतर होता है, तो उसमें गैर अखलाकी बातें, हाँ कुछ पहनावे में अभी थोड़ा तब्दीली आया है मैं थोड़ा देखता हूँ, लेकिन बहुत बेहतर है फिर भी इंडिया के जो मतलब ये मूवीज हैं उनसे तो बहुत बेहतर है कि उनकी कहानियां तो कुछ होती हैं लेकिन गैर अखलाकी बातें, गैर अखलाकी मतलब पहनावे और आपस में फैमिली के उसमें गए उसमें बैठ के देखना, ये समझ लो कि ये पॉसिबल नहीं रहता है आजकल, नहीं देख सकते तो ये मैं और हर ड्रामे में तकरीबन हर ड्रामे से हर मूवी से कुछ ना कुछ तो अपने मतलब जो जिसकी कहानी और ये सब पहले के जो होते थे उसमें कुछ ना कुछ अपने उसको कुछ सीख मिलता था, अगर आदमी उसको हम नेगेटिविटी को ये करके पॉजिटिविटी बोले तो उसमें कुछ ना कुछ हमें सबक जरूर मिलता था, कहीं पे किसी ने धोखा दिया, किसी ने कोई अपना बहुत खास होता था लास्ट में वो भी हमारा दुश्मन बन जाता है और अपने लोगों के साथ अपने लोगों के साथ में हम वफा करते जाते हैं फिर वही लोग हमारे साथ में इतने बड़े मतलब व्यवसायी इतने बड़े धोखे दे जाते हैं। तो ये सब कहानियां अब ये एक एक मूवी से मैं नहीं एक मतलब ये कहूंगा।
3: अच्छा अच्छा
4: तो सारे उसमें तकरीबन सीखने को मिलते थे लेकिन अब आजकल के मूवी और ये सब में तो तकरीबन मैं इतना इग्नोर करता हूँ बस वही से थोड़ा मोड़ा। मैं ज्यादातर अभी एक मैं आपने जिसे मतलब डॉक्टर सुफियान का
3: जी जी जी जी
4: आपने कहा था ये मैं बहुत पसंद करता हूँ उनकी बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं।
3: हाँ।
4: और बाकी लोगों से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ।
3: हाँ।
4: लेकिन उनके बातों को और उनकी उर्दू भी माशाल्लाह है पठान लेकिन उनकी उर्दू भी बड़ी मुहज्जब तरीके से वो बोलते हैं।
3: हाँ।
4: और
3: हाँ।
4: उनको बोलने का अंदाज भी जो है मुझे बहुत पसंद है मतलब उनका जो बड़े बेहतरीन अंदाज में सामने वाले को मतलब सेटिस्फाई कर देते हैं और उसमें जो जितने भी मतलब ये रहते हैं अशकालात उसको मतलब तकरीबन वो वेरीफाई करके सामने वाले के जहन में डाल देते हैं कुरान की आयतों को ये करके। और मैं आपको ये और रेफर करूंगा कि आप ये क्या आता है प्रोग्राम इंडिया का i+TV।
3: अच्छा
4: आप उसको थोड़ा सा सुना करें सवालों जवाब का भी उसमें होता है और इख्तलाफ के हल कोई भी मतलब जिस हदीस में या कोई भी मतलब दीनी उसमें हमें कोई इस तरह बाकायदा लाइव वहाँ पे सेशन किया जाता है कि अगर किसी हदीस में किसी सहाबा के बारे में किसी उसके बारे में अगर आपको कोई अश्काल है बहुत से पाकिस्तानी के लोग भी उसको मतलब आते हैं सवाल लेके अपना और पेश करते हैं और बड़े बेहतरीन महजब तरीके से वो जवाब देते हैं कि मतलब हाँ ये देखो जहाँ पे बहुत से कहीं पे अरबी जो है ना हमारे आपके उसको जो उर्दू ट्रांसलेट हम लोग करते हैं अपनी जबान में वो असल में कहीं कहीं पे वो मतलब को उलट देता है समझ पाते हैं। लेकिन जो जो जो जो उस स्कूल में जो उस जामिया में पढ़े हुए लोग रहते हैं उनको उनके उनका पेश करने का अंदाज जो होता है वो बेहतरीन होता है। अब हम लोग मतलब कोई भी चीज को ऐसे मतलब पेश करते हैं कि जो हमारी अपनी जबान में बड़ा मतलब गैर माकूल मतलब वो लगता है लेकिन वो अरबी उसमें वो ऐसा नहीं रहता कुछ वो वहाँ का एक समझ लो रहन सहन और उस चाल चलन में वो उसको इस्तेमाल किया जाता है।
3: सही हो
4: तो बहुत से बातों को जो हम
3: मैं जरूर देखूंगी मैं जरूर देखूंगी
4: तो उसको थोड़ा सा ये करें तो ताकि फायदा होगा
3: इंशाल्लाह।
4: मतलब भाइयों को भी ये कहूंगा कि मतलब थोड़ा सा ये करें इंशाल्लाह फायदा होगा
3: जरूर। रईस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। एक कॉलर होल्ड पर उनकी तरफ चलते हैं ठीक है।
4: एक बात का मैं थोड़ा सा आपसे ये करूंगा
3: जी जी जी जी
4: एक मिनट कि आप जो ये गेम खिलाती है ना इसके थोड़ा सा दीनी को लेके उस पे सवाल करें तो हो सकता है मेरे ख्याल से मैं अपना ये कर रहा हूँ।
3: अच्छा बताइए क्या मेरा तो मामला ये है कि बहुत ये वाले शोज दीनी शोज करती हूँ ना अब वो अब मुझे थोड़ा सा एक हाँ जी जी जी मैं समझ गई हाँ लेकिन लोग बोलेंगे इनको इसके अलावा कुछ और नहीं आता इसलिए मैं थोड़ी सी जो ना कोशिश अलग की कर रही हूँ।
4: अल्लाह ताला आपको अजर देगा अजर भी देगा और लोगों को फायदा भी होगा महवेश मेरा ये कहने का मतलब है कि उससे कुछ फायदा भी होगा और गैर मतलब उससे जरूरी चीजों से मतलब बेहतर है कि उसमें कुछ लोगों को मालूमात में भी अगर हम नहीं हल कर पाए तो कोई दूसरा हमारा भाई अगर जहाँ पे वो जवाब देगा तो ठीक है तो दूसरे को मौका दें।
3: हाँ हाँ।
4: तो ऐसा नहीं कि उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है दूसरे को भी मौका दें दूसरे तीसरे को मौका दें।
3: चलो ठीक है मैं मालूम करती हूँ मुझे इजाजत लेना पड़ेगी क्योंकि खुद से तो डिसाइड नहीं कर सकती मैं तो मैं मालूम
4: करती
3: हूँ मतलब कोशिश करती हूँ। बहुत शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया रई जी। और उसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर है होल्ड पर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कैसे मैं भी साहब
3: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
1: अली हमजा बात कर रहा हूँ।
3: अली रजा कैसे हैं? ठीक ठाक है। अली हमजा ओके ओके सॉरी सॉरी अली हमजा कैसे हैं? ठीक ठाक है।
1: आप बताएं आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हो रहा है क्या चल रहा है?
1: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बस ड्राइविंग कर रहा हूँ।
3: हाँ सही अली हमजा ये बताएं भाई कोई ड्रामा कोई फिल्म जो अपनी जिंदगी से लगता हो कि रिलेटेबल है बहुत?
1: ड्रामा वगैरह तो खैर इतना कोई देखता नहीं हाँ लेकिन पाकिस्तान का ड्रामा था अहद वफा तो वो थोड़ा रिलेटेबल लगता था अपनी लाइफ से हमको।
3: अच्छा
1: इस तरह के है कि
3: दोस्त
1: हम दोस्तों वगैरह के सीन है इस तरह के तो वो बस देख के फील होता है कि ये जो है ना ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है।
3: हाँ सही सही तो अहद वफा सही हो गया ठीक हो गया सही।
1: अच्छा मैंने आपसे ना एक और बात भी करनी थी
3: जी
1: मैंने कॉल की थी ना हमारी बात चल रही थी कि मैं मतलब डॉक्टर हूँ तो अभी तो ये ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं मिला इसलिए। अभी कल फ्राइडे और सैटरडे था तो मॉर्निंग टाइम मतलब मैं निकला हूँ ड्राइव पे, तो रेलवे से बात फिर आपको ऑन करना होता है तो मॉर्निंग के टाइम मैंने देखा कि गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह ना उतर गए इस टाइम में जो है ना, अगर आप छुट्टी होती है मशीन पे वीकेंड पे तो कोशिश ये किया करें कि तलावत वगैरह जो है ना उस टाइम पे मॉर्निंग में चला दिया।
3: कितने बजे की बात करें?
1: ये तकरीबन है 5:30 के राउंड अबाउट ऑलमोस्ट।
3: सही सही, चलो ठीक है, मैं ये सजेशन दे दूंगी।
1: हाँ ये सजेशन काइंडली जरा ऐड कर दीजिएगा। मैं कल कह रहा था कि मैं कॉल करूंगा जब बच्चा वीक स्टार्ट होगा, मैं भी से ये बात जरूर करनी है, लाजमी पहले ये काम आपने करना है।
3: चलें ठीक है, मैं बिल्कुल इनको कह देती हूँ कि ये तजवीज आई है कि सुबह के वक्त में तलावत कुरान पाक या कुछ और इस तरह से होना चाहिए। वैसे होता था, अभी तक तो हमारा वो जो पल्स ऑफ कुरान था वो चलता था 5 बजे से, अभी मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है।
1: हाँ क्योंकि फ्राइडे को कल मैंने परसों देखा तकरीबन मैं निकला हूँ 5 बजे में ना ड्राइव पे निकला हूँ, तो मैंने ऑन किया सॉन्ग वगैरह चल गए, मैंने कहा फ्राइडे है बजाय तलावत वगैरह चलाने के तो ये जो है ना चल रहे हैं सॉन्ग चल रहे हैं।
3: सही सही लगा। अच्छा इस तरह की आप कोई सजेशन देना चाहते हैं ना तो हमारा जो इंस्टा या फिर फेसबुक का जो पेज है हमारा FM 107 का, वहाँ पे भी आप जाके सजेशन दे सकते हैं किसी भी पोस्ट वगैरह के नीचे FM 107 को टैग करके, तो इंशाल्लाह फिर वो जरूर देखेंगे।
1: जरूर इंशाल्लाह।
3: ठीक है चलें फिर, चलें ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। रई जी तो अली हमजा हमारे साथ थे और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ। एंजॉय कीजिए, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: राइट आप सुन रहे हैं एफएम 107 समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान और हमारे साथ एक कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू हम भी वो हैं जो कॉल ना मिले तो चैन नहीं लेते
1: मैं ये सोच रही थी कि भाई आज बात नहीं हुई आपसे अब कहाँ हैं सुबह में कॉल नहीं किया आपने क्या हाल चाल है
2: हुआ ये कि अल्लाह का बड़ा एहसान है वो अनफॉर्चुनेटली आज और कल मेरी ऑफ है
1: अच्छा अच्छा इसलिए देर हो गई आज
2: नहीं देर नहीं हुई देर नहीं हुई मतलब है कि माशाल्लाह आज इतने कॉलर्स फोन कर रहे हैं इतने कॉलर्स फोन के मतलब आप यकीन कीजिए कि गाड़ी में साइड पे लगा लगा के चांस नहीं मिल रहा तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इतने लोग कॉल कर रहे हैं और क्या रियली बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा
1: चले गुड जबरदस्त आप बताएं भाई फिल्म ड्रामा कोई ना कोई चीज तो आपने मुझे बतानी है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं
2: पहले तो दो फिल्में एक तो मैं खलनायक बनूंगा दूसरा मैं डॉन बनूंगा
1: अनोखी चॉइस है सही है
2: क्योंकि अगर मैं खलनायक बनूं तो वो उसको बोलेंगे बाबा बजाज चला ठीक है तो अगर अमिताभ बच्चन डॉन बनेंगे तो आपको बताइए फिर वो क्या मालूम हाँ है ऐसे तो इससे हटके अगर मैं जिंदगी की रियलिटी को देखूं तो मैं विश खुदा और मोहब्बत आजकल जो खैर ड्रामे और जो बॉलीवुड की मूवीज है माशाल्लाह बहुत सी ऐसी मूवीज है जो हार्ट टचिंग है इंसान उनको देख के रो पड़ता है रियलिटी पर मबनी है लेकिन ये जो ड्रामा मैंने देखा है खुदा और मोहब्बत इसमें बेसिकली क्या चीज दिखती है माशरे की अकासी है रिश्तों के साथ अकीदत है जिसके ऊपर मतलब इंसान को अमल करना चाहिए
1: कौन सा वाला है खुदा और मोहब्बत की जो इमरान अब्बास वाला आया था
2: हाँ हाँ बिल्कुल
1: अच्छा वो मैंने नहीं देखा मैं देखूंगी क्योंकि डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा होगा जब भी फिर दूसरा तीसरा भी आया है लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगे मैंने इमरान अब्बास वाला नहीं देखा देखूंगी मैं
2: बेसिकली हर ड्रामा देखिए ये डायरेक्टर जो मूवी या कोई क्रिएट करता है ड्रामा वो एक अकासी करता है जमाने की माहौल की दुनिया का लोगों का मतलब ये सच्चाई बयान करते हैं इसके अंदर एक सबक होता है इसके अंदर ठीक है लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो खूबसूरती मुझे पसंद आई है देखिए अल्लाह ताला का फरमान भी है जो रिश्ते हैं वो अपना है या गैर है उसके साथ अकीदत जो है ना वो इंसानियत वाली होनी चाहिए तो ये मुझे पसंद आई है उससे हटके जो दो मैंने आपको बता दिया कि खलनायक और डॉन
1: चलते
2: मैं जरा कम बात करता हूँ शॉर्ट बात मुझे आदत है बात मतलब मैं फिर भी रेडियो मैं स्टेज पे तो चलो मैं परफॉर्म कर लेता हूँ लेकिन मैं वैसे मतलब बहुत कम बोलता हूँ यहाँ पर और वैसे भी हमारे एक भाई ने कहा था कि 3 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं मैं तो भाई घड़ी में भी 3 मिनट नहीं देखता ढाई पौने तीन
1: हाँ नहीं नहीं आपको नहीं कहा था वो उन लोगों को कहा था बहुत जो तवील बात करते हैं
2: नहीं मैं समझ गया था चले बस जो भी जो कोई बात कर रहा है वो बड़ी मोहब्बतों से फोन करता है और देखिए जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.25 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने के लिए ठीक है अगर मेरी कॉल ना भी लगती मुझे फील होता है कि यार मैं कोशिश कर रहा था लेकिन अगर लगी है ना तो उसकी खुशी की इंतहा वो मैं ही जानता हूँ
1: यार मेरी कॉल ऐसे और मैं भी इसलिए मैं बंदे को मुकम्मल टाइम देती हूँ ताकि भाई इतनी कोशिश की है किसी ने तो डेफिनेटली हमें उससे अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए जो भी उनके दिल में बात है वो बात कर दें इसलिए फिर मैं रोक टोक नहीं करती
2: मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप जितना टाइम वो उनको दे रहे हैं कि मतलब बात करें उतनी देर में आदमी 2 हाफ फ्राई लेके ब्रेड के आराम से खा के आ सकता है खुश रहिए आबाद रहिए अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे
1: बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का आपको भी अल्लाह ताला हमेशा बहुत खुश रखे इंशाल्लाह ताला थैंक यू जी थैंक यू फॉर योर कॉल थैंक यू जी अल्लाह हाफिज जी तो हमारे साथ जावेद साहब थे और चले भाई देर से आए लेकिन आए जरूर मैं सोच रही थी भाई आज कहाँ रह गए लेकिन अच्छा हुआ कि कॉल हो गई अच्छा जी इसके साथ ही नसीम साहब का मैसेज है मबरूक न्यू मोबाइल एंड थियर जी जी बिल्कुल जी अब तो 2 दिन हो गए हैं और इसके साथ बताया थी। जसविंदर सिंह कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड प्रोग्राम जसविंदर सिंह काला दिल से देसी जी। जसविंदर सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, और ये नाम है इनका ए एस बंगश, आई थिंक इनका ये नाम है, और कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपना लाइफ तो सूर्यवंशी जैसी है। सूर्यवंशी कौन सी फिल्म है, वो वाली जो सलमान खान की थी, मैंने देखी थी मुझे याद है वो, अगर वही वाली है तो यह सूर्यवंश कुछ और है। खैर जी, सुपर डुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच शहजादा सलीम, और बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अस्मत आफरीदी हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी एंड वेलकम बैक, गुड टॉपिक। कोई फुर्सत, कोई फरासत जी का नाम ले शरपसंद वाले, रियल लाइफ में ये जो फरासत जी हैं वो कौन है? ओके, कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा इस बात को। और कहते हैं कि मैं अगर अपनी लाइफ को किसी एक ड्रामे के करेक्टर में डिस्क्राइब करूँ तो आई थिंक परवरिश में वली जहांगीर का करेक्टर ठीक रहेगा। हैं, अच्छा, और फ्यूचर में अगर कोई बनना चाहूँ तो डेफिनेटली, ये मैंने सवाल करना है आगे अस्मत आफरीदी, अभी नहीं, ये है आने वाले हफ्ते में है ये वाला सवाल, तो फिक्शनल कैरेक्टर जो है ना वो मैं पूछूंगी, तो उस वक्त आप अपना ये वाला जवाब दीजिएगा, अभी आपका जवाब नहीं पड़ रहे। लेकिन ये वली सिकंदर वाली, वली जहांगीर वाली बात कहाँ से आ गई भाई, मतलब कैसे हो गया, आपका आपकी लाइफ वली जहांगीर से कैसे मिलती है, ये मुझे ज़रूर बताएं कि क्या सीन है। ठीक है, इसके साथ ही जी मैं चलती हूँ यहाँ दूसरे मैसेज की तरफ, और ये अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम इमरान है और मेरे ऊपर कोई फिल्म है तो वो है बेटा। मूवी जैसे उसके घर वालों के हिसाब रहता है ना, वैसे ही मेरे साथ भी। ओए होए इमरान, अनिल कपूर माधुरी वाली, समझ गई मैं, समझ गई। और मैं आपका पुराना लिसनर हूँ 2014 से, जब आप गुड मॉर्निंग की तरह बोलती थी हमारी सुबह आपको सुन के होती थी। ओके इमरान, ठीक है, अच्छा, तो बेटा तो भाई मतलब बड़ी ही कोई ना, मतलब इमोशनल फिल्म है, इमोशनल, मुझे अभी भी सुन के मतलब आपकी बात से ना वो ही सारा का सारा एक याद आ गया। अच्छा जी, इसके साथ ही अली का मैसेज है मेरे पास, और अली ने कहा है कि कॉल मी प्लीज़, मुझे बात करनी है। अच्छा, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ अली, आपका नंबर मिलाते हैं, आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है इनको अपने बात करने लिए है। हाँ, अली हमजा थे ना ये, हाँ हाँ हाँ, इनसे तो बात हो गई है, अली हमजा से बात हो गई है। और इसके साथ ही साथ है कौन, ये है अस्सलाम वालेकुम, हाँ अच्छा मैं आपको जवाब दे देती हूँ इसका, और इसके साथ कॉल आ गई हमारे पास, तो कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
3: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी नसीम,
3: खैरियत से
1: हैं? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह,
3: अल्लाह का शुक्र।
1: जी जी, क्या कहेंगे नसीम, आपने कोई ड्रामा कोई फिल्म देखी है जिससे आपको लगता हो कि आपकी जिंदगी वैसी है?
3: मेरे पास एक वो है।
1: क्या है?
3: एक वो जो जिंदगी की तलाश में, हाँ वो है, एक और नसरुद्दीन साहब वाला है, ये जिंदगी तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, हैरान हूँ मैं।
1: हाँ, अच्छा, ये गाना बता रहे या वो फिल्म बता रहे?
3: वो फिल्म
1: फिल्म बता रहे। अच्छा, जिंदगी की तलाश में हम कहाँ से कहाँ आ गए, ऐसे कुछ करके गाना था ना, ऐसे ही था ना वो? कौन सी फिल्म है?
3: नाम से तलाश है।
1: ओके, सही, तो उससे मिलती है। अच्छा, क्यों, ये बताएं।
3: ऐसे ही उथल पुथल हो रहा है मेरी जिंदगी।
1: अच्छा, सही, जिंदगी में तलाश जा रही है आपके।
3: और दूसरे में जो मैं बोला है जिंदगी हैरान नहीं, नाराज नहीं, हैरान हूँ, बच्चों से रिलेटेड है।
1: बच्चे से रिलेटेड है,
3: बच्चे जो मेरे को यहाँ आने नहीं देते हैं और मैं जबरदस्ती आता हूँ।
1: हाँ, सही सही। अच्छा, वो उसका नाम साथी है, जिंदगी की तलाश में हम, सही, तो साथी में क्या होता है, मतलब वो इसी तरह से, मैंने क्योंकि फिल्म देखी नहीं है ना इसलिए मैं कहानी पूछना चाह रही हूँ आपसे।
3: जिंदगी में उसमें तो साथी में तो वो दोस्त वाला है सीन थोड़ा सा।
1: अच्छा अच्छा,
3: लेकिन वो जो मैं उससे सीखा वो है जिंदगी की तलाश, जो जिंदगी के मोड़ पे लो जिंदगी जीने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, उस चीज से मैं रिलेटेड नहीं हूँ।

0: अच्छी खासी थी, लेकिन ये कि फिर एक और नई आ गई है तो ये अच्छी बात है, हमें जरूरत थी बेसिकली मोबाइल फोन की, वो आ गया है। जी जी चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी और आपके बताने का भी, ठीक है, मुबारकबाद देने का भी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ नसीम थे और उसके साथ ही आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैसेजेस में पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद आपका फेसबुक आईडी आरजे महावेश, आरजे महावेश के नाम से आप सर्च कीजिएगा तो मैं आपको मिल जाऊँगी। और अस्सलाम वालेकुम, ये रईस का मैसेज था और गुड सॉन्ग भी कहते हैं, चैलेंज गुड, ज़बरदस्त। इसके साथ ही कॉलर और हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू,
0: खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? जुहेब खान,
1: जैद खान,
0: फिर से बोलिएगा,
1: जैद खान,
0: जैद खान, ओके ओके, जैद खान कैसे हैं? अरे अल्लाह,
1: JEEES,
0: अच्छा ठीक है, जो भी बात कर रहे, कैसे आप? ठीक है, इतना मुश्किल नाम क्यों रख लिया भाई, जो समझ में नहीं आ रहा हमें।
1: तीन चार वर्ड्स का नाम है, बिल्कुल सिंपल नाम है।
0: हाय हाय, मैंने तो नहीं सुना, ये जैस खान यही नाम है?
1: JEEES,
0: JEEES, अच्छा जैस, ओके ओके ओके, ठीक है, सही है। तो ये नाम किसने रखा था आपका?
1: ये नाम मेरे दोस्त ने रखा था बचपन में।
0: आपका असली नाम क्या है?
1: असली नाम जसीम खान।
0: ये ना देखें, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रही है, आप नाम वो वाला बता रहे हैं जो होता ही नहीं किसी का, दोस्त ने रख दिया था।
1: इसको कोई लेता नहीं है ना, वो सब बचपन से वही चल रहा है।
0: अच्छा, ये वाला चल रहा है, ओके ओके, सही सही, ठीक हो गया, चलें ठीक। और बताएं भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, कहाँ से हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, यूपी मुरादाबाद।
0: हाँ सही सही, गुड, जबरदस्त। और बताएं भाई, क्या दोस्त बहुत ही प्यारा था आपको?
1: जी
0: दोस्त बहुत ही प्यारा था कि उसका नाम लेके आज तक चल रहे हैं, फिर तो आपकी भी कोई दोस्ताना याराना टाइप मूवी होगी जो आप बताएंगे।
1: वैसे तो याराना टाइप का तो नहीं, मगर वैसे तो हमारा रिलेशन अलग ही मैटर था।
0: अच्छा अच्छा,
1: बचपन से दोस्ती है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं,
0: सही सही,
1: इंशाल्लाह आगे भी रहेगी।
0: अच्छा गुड, अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी जिंदगी पे कोई मूवी या ड्रामा बनता है तो उसका नाम क्या होगा और क्यों?
1: ड्रामा बना हुआ, मूवी तो बनी हुई है कि सूर्यवंशम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपने मैसेज किया था, वो क्यों?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो मैंने नहीं किया था।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैंने अभी बस कॉल किया था।
0: हाँ सही सही, तो सूर्यवंशम कौन सी फिल्म है, सलमान खान की है?
1: नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन,
0: अमिताभ बच्चन की है। अच्छा कौन सी वाली है, उसमें क्या होता है?
1: उसमें क्या होगा देखना आप, अच्छी मूवी है, बाप के लिए बेटा नकारा है, माँ के लिए दुलारा है, बीवी के लिए प्यारा है।
0: समझ रही हूँ, वो तो नहीं डबल कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का?
1: जी जी,
0: बाप बेटा दोनों दोनों, हाँ हाँ हाँ, समझ रही हूँ, सही, फिर वही अच्छा निकलता है बाद में, है ना?
1: हाँ वही अच्छा निकलता है, उसी से रिलेटेड अभी भी जिंदगी चली रही है।
0: आए हाय, ये वाला सीन है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो दूसरे वाले भाई, उन्होंने भी यही बोला था, मैं यही बोलूं कि वो जो मेरे जहन में मूवी आ रही है ना, वो तो कुछ अजीब सी है, उससे कैसे रिलेट कर सकते?
1: नहीं नहीं, वो सूर्यवंशी, वो जो है ना, वो सूर्यवंशी है सलमान खान की। हाँ, जो है, वो सूर्यवंशी है, ये, अच्छा, ये है सूर्यवंशम।
0: हाँ सही सही, उन्होंने शायद सूर्य वंश लिखा था ऐसे कुछ करके, सही हो गया। जब मैंने वो वाली फिल्म देखी थी ना, मुझे क्योंकि हॉरर अच्छा लगता है, तो वो वाली फिल्म हमने लगाई थी, तो अम्मी को भी हमने बिठा लिया था, थोड़ी देर तक उन्होंने देखा, उन्होंने फिर बाद में कहा इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो ये वो वाली कहानी है, तो वो मुझे वही हैरत हो रही थी, मैंने कहा इससे क्यों मिला रहे लोग। तो
1: सूर्यवंशम जो है ना, लोगों की यहाँ पे बहुत से रिलेटेड कहानी मिलेगी, जो लोग आएंगे बताएंगे, बहुत ज्यादा होंगे,
0: बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ, बेचारों के साथ ये होती है कहानी, और खासतौर पर वो लोग जो अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं ना, उनको लोग इसी तरह से ले रहे होते हैं।
1: एग्जैक्टली वही चीज है, होता है और हो रहा है। एक तो मैं हूँ, ना जाने और भाई कितने होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बट कोई नहीं, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब आसान करेगा इंशाल्लाह।
0: सही बात है, सही बात है, आखिर में सब अच्छा होता है,
1: जिंदगी बिल्कुल
0: है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल।
1: अपनी नियत साफ रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सबसे बड़ी बात है, अल्लाह सब बेहतर कर देता है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलें जी गुड, जबरदस्त। तो जसीम खान, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली दफा जब

0: अब आए तो मुझे अपना असली नाम ही बताइएगा, वरना बड़ी कंफ्यूज हो गई थी आपके नाम
1: से जो है ना, आपसे अभी तक बस जो है ना 2014 से लेकर अब तक 3-4 बार बात हुई होगी बस।
0: हाँ यही रीजन है, क्यों इतनी कम आपने मुझसे बात क्यों की है?
1: नहीं पहले क्या ना, जब फर्स्ट टाइम में 2014 में इतना लाइन जो है ना आपकी बहुत बिजी चलता था, इतना शो जो है ना आपका बस हाँ। एक ही टाइम चलता था मॉर्निंग में,
0: जी जी जी
1: मॉर्निंग में या आफ्टर
0: मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में ही चलता था उस वक्त, हाँ जो असल शो था।
1: हाँ जी हाँ, उस टाइम पे जो है ना कॉल इतनी लाइन बिजी रहती थी ना, क्योंकि परेशान हो जाते थे लगाते लगाते, मगर इतनी लाइन बिजी रहती थी
0: नहीं मिलता था। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल,
1: वाई चांस कभी लग जाता था तो हो जाती थी बात, वो एक दो बार हुई, उसके बाद में मैं चला गया, फिर अभी आया बीच में।
0: सही सही ऐसा सीन है,
1: आपका बहुत डेवलप हो गया आपका स्टेशन, क्योंकि अब तो बहुत सारे शो है,
0: वो इवनिंग में करने लगी थी ना, फिर वो भी मेरा ख्याल 2019 में कहीं शुरू हुआ था, 18 में इस तरह से। हाँ
1: जी
0: जी जी सही, नहीं
1: तो पहले वो उर्दू के जो है ना इस पर ट्रैफिक से रिलेटेड, कतर से रिलेटेड जो है ना बस यही शो चलते थे, उससे पहले तो इतना कॉल भी नहीं चलते थे।
0: सही सही बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें गुड, जबरदस्त, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप जब भी मौका मिला करें तो अब तो कॉल मिल जाएगी आपकी इजीली, तो जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है?
1: जी जी इंशाल्लाह
0: जरूर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके जसीम, थैंक यू जी, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: रई जी तो हमारे साथ थे जसीम, और इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि हो गया 8:41 हो गए, 8:41, तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं फॉर गेम तो आप गेम के लिए कॉल कर सकते हैं। आज मैंने यही सोचा है कि मैं आपको वही जो यूसुफ खान ने गेम बताया था वही, बल्कि हम पूरे हफ्ते वही वाला गेम रखेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी किसी ने कहा था ना कि आप एक ही थीम रखें, अब थीम तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि थीम क्या होती है, लेकिन ये कि हाँ हम एक ही गेम रोजाना खिलवा लेंगे, ठीक है? तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए, वैसे ही 42 हो गए अब, तो अगर करना चाहते हैं कॉल तो आप जरूर कॉल कीजिए, फिर उसके बाद हम गेम ऑन शुरू करते हैं और देख लेते हैं, अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर हम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलेंगे, फिर मुझे लग रहा है कि नाजिया आप लोगों को अच्छे से गेम खिलाई। खैर जी सलाम मही मैम, हैप्पी संडे मॉर्निंग, वेरी नाइस योर शो एंड नाइस टॉपिक मैम, आई एम बिजी, सुरजीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कि आप बिजी हैं लेकिन फिर भी आपने मैसेज किया। मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, और हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अच्छा हाँ, मैंने ना वीकेंड पे वो फिल्म देखी है, मुझे मेरी बहन ने सजेस्ट की थी, पहले तो मैंने कहा कि नहीं नहीं देखूंगी। अच्छा पता होता है क्या कहते हैं ना, हॉरर मूवीज मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन वो हॉरर देखने एक हमने ड्रामा देखा था कुछ अर्से पहले आया था ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, क्या नाम था उसका, बरक्स, ठीक है? उसके बाद बड़ा घर पे बड़ा हॉरर सीन हुआ था, सीरियसली मतलब जो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज जो ना कहीं पे रह जाती हैं, तो कुछ ऐसा वाला सीन हुआ था जो अनएक्सपेक्टेड था। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं था घर वर पे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही कोई मतलब ट्रॉना वाला सीन था वो, ठीक है हॉरर सीन था बकायदा। तो मैंने फिर उसके बाद डिसाइड किया था कि नहीं भाई अब कुछ हॉरर नहीं देखना है, घर पे नहीं देखना, घर पे मतलब नहीं होना चाहिए इस किस्म का कुछ भी मामला, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए तो फिर मतलब ना कोई इस तरह की चीज़ें हम खुद से क्यों इन्वाइट करें। वो बड़ा ही कुछ डिफरेंट ड्रामा है, अब मैं आप बोल भी रही हूँ बता भी रही हूँ, बड़े मज़े का था वैसे वो बरक्स ना, तो उसमें कुछ सीन ऐसा था कि वो ना डायलॉग एक कोई बोल रहे होते हैं वो उल्टा बोल रहे होते हैं, अब वो उल्टे का फिर बाद में हम लोगों ने सर्च वर्च किया तो पता चला कि भाई इन चीज़ों से ना चीज़ें वाकई अट्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ ऐसा था वो, उसकी वजह से कुछ वाकई मतलब इतना मतलब क्लियर वाला जो है ना वो मामला हुआ था कि मैं बताऊं आपको तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या सीन है। तो वो भाई हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि अब नहीं देखूंगी कुछ हॉरर। खैर मेरी बहन ने बड़ी तारीफें की कि ये देखिएगा क्या ज़बरदस्त है, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं देखूंगी, तो फिर उसने कहा नहीं वो वाला हॉरर नहीं है, उस तरह का हॉरर नहीं है, आपको वैसा वाला ना नहीं लगेगा, ये कुछ अलग है। तो फिर हम लोगों ने खैर इस फ्राइडे देखी थी, हाँ फ्राइडे देखी थी ली क्रॉनन्स, हाँ ली क्रॉनन्स द मम्मी, ये ली क्रॉनन्स एक डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के ही, उन्होंने मूवी बनाई है तो उन्हीं के नाम से, क्योंकि मम्मी तो बहुत सारी है ना, तो ये 2026 में ही आई है, हाँ अभी आई है, 2 महीने पहले ही आई है ये, तो वो हमने देखी है, वाकई मतलब क्या कमाल मूवी थी, ज़बरदस्त मूवी थी। तो अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहता है हॉरर, लेकिन उस तरह का हॉरर नहीं है ये जो बहुत ही ज़्यादा वाला हो, लेकिन ये मतलब अलग है, आइडिया बड़ा डिफरेंट था. मम्मी पहले बहुत सारी आ चुकी हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन मज़े की मूवी थी. तो आपको मज़ा आएगा अगर आप लोग देखना चाहें तो इस थर्सडे वर्सडे पे ना वो देख लीजिएगा. तो वीकेंड पे वो किया, उसके अलावा हम लोग थर्सडे सुबह से निकले हुए थे तो फिर हम लोग रात में नहीं निकले कहीं पे, और फ्राइडे वाले दिन भी तकरीबन घर पे रहे, थके हुए थे. तो ये वाला लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा. मतलब वही वाली जो मैं बात हमेशा कहती हूँ ना कि आप बाहर जाओ ना जाओ, असल चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा करो, दिमाग को रिलैक्स करो, तो वो जरूर हुआ हमारा सीन. और मैं आपका मैसेज कंप्लीट पढ़ती हूँ लेकिन पहले कॉलर आ गए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: जी कौन बात कर रहे
2: हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं आप कैसे हैं और कौन है? कौन है?
2: अब्बास
0: हैं. ओके ओके, मुझे लगा मैं बस हूँ, मैंने कहा ये क्या बस क्यों हो गई यहाँ पे.
2: बस पाकिस्तान में कराची में.
0: क्या हाल चाल है अब्बास? ठीक ठाक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: आपका कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है.
2: अल्लाह खुश रखे इंशाल्लाह. और क्या मौजू से बात कर रहा है आज?
0: तो अच्छा मौजू ही बता देती हूँ, गेम का तो वाकई अब टाइम नहीं रहा है. आज हम बात कर रहे थे कि आपने कोई फिल्म देखी हो, कोई ड्रामा देखा हो और उसको देख के सोचा हो कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है.
2: सही बात है, ऐसे ही होता है कभी कभी. सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बेस्ट ड्रामा जब देखने जाए तो पाकिस्तान का देखो, दूसरा जो ड्रामा भगवा.
0: हाँ वो तो है, वो बात तो बिल्कुल सही है. तो आपने कोई देखा ड्रामा ऐसा जिस कहीं पे थोड़ा बहुत कोई करेक्टर लगाओ ये तो मेरी तना है?
2: मैं देखा बहुत, देखा मैं कराची में बहुत ज्यादा देखा. ऐसा तो बहुत
0: तो नाम याद नहीं है आपको?
2: नहीं, नाम दश्त, मेरे को नाम याद है दश्त का.
0: दश्त बिल्कुल
2: बलूची कहानी पूरा ना
0: कहानी बेसिकली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि उस वक्त मैं काफी छोटी थी, लेकिन मुझे दश्त क्यों याद है? मुझे याद इसलिए क्योंकि उसमें नुमान एजाज मेरे ख्याल से नए नए आए थे ना, और मेरे जो मामू है मेरे मामू की नई नई शादी हुई थी और मेरे मामू ना बहुत हद तक नुमान एजाज जैसे दिखते हैं. तो उस वक्त सब लोग, उन दिनों सब लोग यही बोल रहे थे समी बिल्कुल देखो तुम, ये जो नया एक्टर आया तुम्हारी तरह. तो मुझे इस वजह से वो याद है कि वो ड्रामा आया था लेकिन कहानी मुझे नहीं पता.
2: उस 10 महीने सामने था ना मेरा, मैंने बहुत अच्छा है लेके लेके ये किया रहे.
0: हां हां सही सही.
2: 10 में समझो चाकर और बाबा वैसा ये पूरा वो बलूची स्टोरी था, ये
0: बलूची स्टोरी था. हां हां सही सही.
2: लेकिन बहुत अच्छा बना मालूम है. आप लास्ट सीन तुम देखा, यानी कुछ बलूची गाना भी हेड किया था थोड़ा.
0: हां सही सही. आप बलूची हैं भाई?
2: जी हाँ बलूची में पैरा
0: बलूची है. सही सही. गुड जबरदस्त सही सही.
2: कभी कभी तुम बलूची गाना पे करो ना, वाश मार ले रहे.
0: बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं भाई, अभी करते हैं आपके लिए, आपके लिए अभी हम प्ले करेंगे वाश मार ले.
2: मैं एक बार नाजिया को बोला, नाजिया क्या था एक बार.
0: अच्छा अच्छा चले बिल्कुल करेंगे हम आपके.
2: आशा मुजाहिद पहला तक किधर गया? वो पाकिस्तान का था ना?
0: वो इंडिया की थी. वो अब नहीं कर रही है शो. जी जी जी जी इंडिया की थी वो.
2: इधर ही मौजूद है. बहुत दिन से लोगों का कुछ भी नहीं.
0: हाँ हाँ वो अभी नहीं है. जी ऐसे ही.
2: आपका अच्छा गुजर रहा है इंशाल्लाह?
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. जी जी और मैं आपका गाना जरूर लगाती हूँ. ठीक है अब्बास भाई
2: इंशाल्लाह आपको मिलकर इंशाल्लाह बहुत खुशी हुई. अल्लाह सलाम है सुबह.
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह ताला कॉल करते रहिएगा. ठीक है बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी.
2: थैंक
0: यू थैंक यू. अल्लाह हाफिज. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज भाई. जी तो अब्बास भाई हमारे साथ और इनकी इनकी फरमाइश पे मैं लगाती हूँ गाना, लेकिन मुझे वश मल्ले पता नहीं मिल नहीं रहा है. मैं ऐसा करती हूँ कि कोई दूसरा गाना जो है ना वो लगा दूंगी मैं, जो मुझे मिल जाता है इजीली. اور ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ہم شامل کرتے ہیں ایک کوئی گانا, ٹھیک ہے, آخر میں لگا کے جاؤں گی. اچھا جی, تو میسج ہے میرے پاس اور یہ کہتے ہیں محمد شریف پتہ نہیں کون سی فلم یا ڈرامہ ہوگی جو میری لائف سے ریفلیکٹ کرتی ہوگی, پتہ نہیں. محمد یوسف اور کہتے ہیں کہ صبح اور شام میں اذکار ہوتے ہیں, شاید جناب علی حمزہ صاحب نے نہیں سنے ہوں گے, صبح کے اذکار پتہ نہیں کیا ٹائم پہ ہوتے ہیں, شام کے اذکار کبیر کے شو میں ہوتے ہیں. صبح کے جو ہے نا وہ میرے شو کے دوران ہی ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں آپ کا یہ 6:10 کے قریب اس طرح سے ہوتے ہیں. اور لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صبح 5-6 کا جو آور ہے نا اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ قرآن وغیرہ جو ہے نا تلاوت ہو, یہ ہے سلسلہ. اچھا آپ کو ہارر

फिल्म्स अच्छी लगती हैं मुझे भी, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्रीज और कॉमेडी फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ मतलब हॉरर का तो एक अलग ही मज़ा ही अलग है ना। हॉरर तो बंदा मतलब इतनी हम लोग देखते थे पहले, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा उस दिन के बाद ना थोड़ा सा डर बैठ गया। पहले हमने सोचा ये हुआ क्या अचानक, लेकिन फिर बाद में मतलब थोड़ा सा एक दिमाग में ये बात रह गई कि शायद वो लोग जो कहते हैं ना कि हॉरर कुछ देखो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो वाला सीन जो है ना वो फिर उसके बाद मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं देखेंगे। बोहे बारियाँ सुनना चाहते हैं और बलूची गाना, बोहे बारियाँ खादिम भाई सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं लगाती हूँ। बलूची गाना जो है ना मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देख रही हूँ कि कौन सा वाला चलाऊँ। चलें ये वाला लगा देते हैं। अब ये कैसा होगा मुझे पता नहीं है, वश मल्ले क्यों नहीं है इस पर मुझे हैरत हो रही है, और मैं बोहे बारियाँ इसके बाद लगा देती हूँ खादिम भाई। ठीक है चले दी, इसके साथ ही हो गया है मेरे जाने का वक्त और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल। अच्छा मैं आखिर में बस बात ही पूरी लाइफ ही फिल्म बनी पड़ी है, दूसरी फिल्म से क्या रिलेट करेंगे, वैसे मेरे प्राइस का कुछ होगा क्या? आपकी आप अपना नाम यही रख लें, फिल्म का नाम यही वाला रख लें आप, ठीक है? और नहीं यूजुअली लेडीज़ हॉरर नहीं देखती हैं ना, इसलिए पूछा। अच्छा मोहम्मद यूसुफ खान, हैरत की बात है। खैर हम लोग तो बड़ा बहुत पसंद करते हैं, मतलब हमारे घर में सभी को हॉरर पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग इन्जॉय भी करते हैं और देखते भी हैं, ये वाला सीन है। खैर जी इसके साथ ही भाई मुझे दीजिए इजाज़त, आप दोनों के जो बैक टू बैक गाने में लगा के जा रही हूँ इन्जॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है जिनमें रॉटवीलर्स डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं जो रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहम्मद मुंतारी के बारे में। मोहम्मद मुंतारी कतर की कौमी फुटबॉल टीम के मशहूर स्ट्राइकर हैं और उनका नाम कतरी फुटबॉल की तारीख में अहम मकाम रखता है। यहाँ दोस्तों मुंतारी एक्चुअली अगर कतर की फुटबॉल हिस्ट्री, इनफैक्ट वर्ल्ड कप की अगर

0: हिस्ट्री में अगर देखें तो ही बिकेम द फर्स्ट गोल स्कोरर इन अ वर्ल्ड कप मैच, और ये बात 2022 वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, और कतर में ही हुआ था 2022 का वर्ल्ड कप। मोहम्मद मुंतारी असल में घाना में पैदा हुए लेकिन बाद में कतर आए और यहीं बस गए और आगे जाकर नेशनल टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी ताकतवर जिस्माना सलाहियत, बेहतरीन हेडिंग और गोल स्कोरिंग की वजह से जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। मोहम्मद मुंतारी ने कतर के लिए एक अहम मुकाबलों में नुमाया किरदार अदा किया, और वो मैच जिसके बारे में मैं आप लोगों को शुरू में बताया, he became Qatar's only goal scorer in World Cup history। यहाँ दोस्तों सेनेगल के उस मैच में कतर ने एक गोल किया था और वो एक तारीखी गोल था। ये कतर का फीफा वर्ल्ड कप में पहला गोल था जिसकी वजह से उनका नाम यानी मोहम्मद मुंतारी का नाम हमेशा के लिए कतरी फुटबॉल की तारीख में दर्ज हो गया। उनकी मेहनत, लगन और प्रोफेशनल रवैया नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। क्लब फुटबॉल में भी मुंतारी ने कतर की मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ और पेनल्टी एरिया में मौजूदगी डिफेंडर्स के लिए मुश्किल पैदा करती है। मोहम्मद मुंतारी को कतर के सबसे अहम फुटबॉल सितारों में शुमार किया जाता है और उनकी खिदमत को फुटबॉल शायकीन हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट

0: को सिक्योरली स्टोर करें, छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए जो मुनासिब गिजाई प्लान के बारे में। डायबिटीज यानी शुगर खून में शुगर की ज्यादती का मरज है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की एक आम बीमारी है जिसमें जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। मगर अच्छी खबर ये है कि मतवाजन गिजा दोनों बीमारियों के असरात को कम करने में मदद दे सकती है। दिन का आगाज सेहतमंद नाश्ते से कीजिए और नाश्ते में दलिया, ब्राउन ब्रेड, अंडा, कम चिकनाई वाला दूध या दही शामिल कीजिए। ये गिजाएँ तवानाई फराहम करती हैं और शुगर को मतवाजन रखने में मदद देती हैं। रोज़ाना कलरफुल जो वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, ख़ास तौर पर पालक, ब्रोकली, बंद गोभी और खीरे जैसी सब्जियाँ। फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद और बेरीज बेहतर इंतखाब हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और सोजिश कम करने में मदद देते हैं। प्रोटीन ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिए, जैसे कि उसमें फिश है और बग़ैर चर्बी वाला गोश्त है। दालें, चने और लोबिया बेहतरीन प्रोटीन के ज़राए हैं। प्रोटीन जोड़ों और मसल्स की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सेहतमंद फैट्स इस्तेमाल करने ज़रूरी हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, अखरोट, बादाम और फ्लैक्स सीड के जो बीज हैं या अलसी के बीज जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें हमारी इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम करने में मदद देते हैं, जिससे जॉइंट्स के दर्द में आराम मिल सकता है। अब ये भी ज़रूरी है कि किन गिजाओं से हमें दूर रहना है। उसमें मीठे मशरूबात हैं, ज़्यादा चीनी वाली अशिया हैं, फास्ट फूड हैं और तली हुई गिजाएँ और प्रोसेस्ड स्नैक्स से हमें दूर रहना है। ये ना सिर्फ शुगर को बढ़ाते हैं बल्कि वज़न में इजाफे और फिर जोड़ों या जॉइंट्स की तकलीफ का सबब भी बन सकते हैं। ज़्यादा वज़न घुटनों और कोहलों के जो जोड़ हैं या जॉइंट्स हैं उन पर इजाफी दबाव डालता है, इसलिए बैलेंस डाइट और बाकायदा एक्सरसाइज वज़न कम करने और जॉइंट्स की सेहत बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी आप पीजिए। पानी जिस्म को हाइड्रेट रखता है और अमूमी सेहत को बेहतर बनाता है। लिसनर्स, डायबिटीज़ और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज अगर मतवाजन गिजा, मुनासिब वज़न और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तो अपनी सेहत और मायारे ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी गजाई ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर या माहिर गजाइत से मशवरा ज़रूर कीजिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे, रोशनी डालेंगे। तो आइए सामीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अरब मुस्लिम ग्रेट फिजिशियन और फिलोसोफर की, जिन्होंने कहा कि मेडिसिन इज द साइंस बाय विच वी लर्न द वेरियस स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ व्हेन नॉट इन हेल्थ द मीन बाय विच हेल्थ इज लाइकली टू बी लॉस्ट एंड व्हेन लॉस्ट इज लाइकली टू बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ। यानी इल्मे तिब वो इल्म है जिसके जरिए हम इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ हालात सीखते हैं। सेहत में जब सेहत नहीं होती तो वजहें जिनके जरिए सेहत खो सकती है, और जब सेहत खो जाए तो वो तरीके जिनसे सेहत दोबारा हासिल की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के साइंटिस्ट वर्ल्ड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इब्न सीना की, या जिनको वेस्ट में एविसीना भी कहा जाता है। दोस्तों बेशक इब्न सीना इस्लाम के एक अजीम तबीब हैं और तारीख के एक अजीम मुफक्कर और तिब्बी स्कॉलर भी हैं। इब्न सीना 980 में बुखारा के करीब सेंट्रल एशिया यानी उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और 1037 में ईरान में वफात पाई। वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब मुसलमान दुनिया भर में तब्दीली और गमो गुस्सा में मुब्तला थे। उन्होंने अपनी तिब की तालीम तकरीबन 13 साल की उम्र में शुरू की। वो एक अजीम तबीब बन गए और उनकी तिब्बी महारत ने उन्हें बुखारा के सुल्तान के पास पहुंचाया, जिसे उन्होंने एक संजीदा इन्फेक्शन का इलाज करके ठीक किया। इनाम के तौर पर उन्होंने सिर्फ ये दरियाफ्त किया कि उन्हें सुल्तान की लाइब्रेरी और उसके नायाब मैनुस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपनी तहकीकात का अमल जारी रख सकें। वो कई छोटी छोटी सल्तनतों के साथ जुड़े रहे लेकिन बार बार अपना ठिकाना बदलते रहे। एक मुस्तहकम और अच्छी तनख्वाह वाली पोजीशन की तलाश में मुख्तलिफ दौर में उन्होंने सियासी इदारी, दरबार के तबीब, सिपाही और कभी कभी नश्त और कायद भी काम किया। अपनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद उन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी, जिनमें से एक अल कानून फी अल तिब

0: यानी द कैनन ऑफ मेडिसिन थी, जो 12th सदी में लैटिन में तर्जुमा हुई और यूरोपियन तिब्बी मदारिस में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बन गई। ये किताब मुस्लिम दुनिया में भी 20वीं सदी तक मुशावरा की जाती रही। विलियम ऑसलर ने द कैनन ऑफ मेडिसिन को अब तक लिखी गई सबसे मशहूर तिब्बी किताब कहा और ये नोट किया कि ये किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा वक्त तक तिब्बी बाइबल रही। दोस्तों, वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच से हमें ये बताते हैं कि इब्न सीना बचपन में ही ज्यादा जहानत रखते थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने कुरान याद कर लिया था। 16 साल की उम्र तक उन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक और मेटाफिजिक्स में माहिर होकर इलाज और तिब की तालीम लेना शुरू कर दी थी। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना मशहूर कानून यानी कैनन लिखा, जो कई सदियों तक यूरोप और एशिया के मेडिकल स्कूल्स में एक अहम दलील समझा गया। उन्होंने कई पर्शियन हुक्मरानों के साथ तिब और मुशीर के तौर पर खिदमात की और उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह सफर किए। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते थे, लेकिन वो एक गहरी सोच वाले और सीरियस शख्स थे जो अपना ज्यादा वक्त लिखाई में गुजारते थे।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: आइए अब एक नजर डालते हैं द कैनन पर। इब्न सीना को मगरिब में एविसीना के नाम से जाना जाता है। उनकी किताब द कैनन ने अपने वक्त के तमाम तिब्बी इल्म का एक वाजी और मुनज्जम खुलासा दिया, जो पुराने और मुस्लिम मनबाज से लिया गया था। ये असल में अरबिक में लिखी गई थी और बाद में कई जबानों में तर्जुमा की गई, जैसे कि फारसी, लैटिन, चाइनीज, हेब्रू, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश। इल्म को इकट्ठा करने के अलावा इस किताब में लेखक के अपने असली कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। द कैनन ऑफ मेडिसिन ने यूरोप और इस्लामिक दुनिया में तिब के उसूल तय किए। ये इब्न सीना का सबसे मशहूर लिखा हुआ काम है। द बुक ऑफ हीलिंग के साथ इस किताब का ज्यादा हिस्सा यूनानी यानी ग्रीक मेडिसिन का बुनियादी हिस्सा बना, जो आज भी इंडिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में तालीम दी जाती है। जो तिब के उसूल द कैनन में 10 सदी पहले बयान किए गए थे, उन्हें आज भी UCLA और येल यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में तिब की तारीख के हिस्से के तौर पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों, एविसीना की अहम असली कंट्रीब्यूशन में ट्यूबरक्लोसिस के कंटीजियस होने का तसव्वुर, बीमारियों का अपनी और जमीन के जरिए फैलना और साइकोलॉजी और सेहत के दरमियान ताल्लुक शामिल है। इसके अलावा इस किताब में फार्माकोलॉजिकल तरीकों का वाज़े बयान किया गया और 760 दवाओं का जिक्र किया गया, जो अपने वक्त की सबसे मौतबर मैट्रिया मेडिका थी। उन्होंने कार्डियक ड्रग्स पर भी एक किताब लिखी, अल अदबियात अल कल्बिया, जो अंग्रेजी में एविसिनाज ट्रैक्ट ऑन कार्डियक ड्रग्स एंड एसेज ऑन अरबिक कार्डियोथेरेपी के नाम से तर्जुमा हुई। वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेनिनजाइटिस का वाज़े बयान किया और एनाटॉमी, गायनेकोलॉजी और बच्चों की सेहत पर अहम कंट्रीब्यूशंस दिए। आइए अब एविसिना को एक साइकेट्रिस्ट के रुख से देखते हैं। तो दोस्तों, एविसिना अपने मरीजों का इलाज करने के लिए अक्सर नफसियाती तरीकों का इस्तेमाल करते थे। एक कहानी है जब पर्शिया का एक माल नरिश्ट शहजादा, जो कि मेलनकोलिया गम और उदासी से मुतासिर था, खाना खाने से इनकार करता था और उसे ये ख्याल था कि वो एक गाय है। ये शहजादा गाय की तरह आवाज निकालते हुए खाना खाया करता था और ये कहता था कि मुझे मार दो ताकि मेरे गोश्त का अच्छा स्टू बनाया

जा सके और वो कुछ भी नहीं खाता था। इब्न सीना को इस मामले का पता चला और उन्होंने मरीज को एक पैगाम भेजा जिसमें कहा कि खुश हो जाओ क्योंकि कसाई तुम्हें ज़बह करने आ रहा है। और मरीज खुशी से झूम उठा। जब इब्न सीना ने शहजादे के पास जाकर चाकू उठाया तो उसने कहा, गाय कहाँ है ताकि मैं उसे मार दूं। मरीज ने फिर गाय की तरह आवाज निकाल करके अपनी जगह दिखाई। कसाई के हुक्म पर मरीज को जमीन पर डाल दिया गया था जैसे कि उसे ज़बह किया जाने वाला हो। जब इब्न सीना ने मरीज के पास जाकर उसे ज़बह करने का नाटक किया तो उसने कहा, गाय बहुत पतली है और ज़बह के लिए तैयार नहीं है, इसे अच्छी तरह से खिलाना होगा और जब ये सेहतमंद और मोटी हो जाएगी तब मैं इसे मार दूंगा। मरीज को फिर खाना दिया गया जो उसने शौक से खाया और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, अपने ख्याल से छुटकारा पाया और पूरी तरह से ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये था उनका एक रूप जो साइकेट्रिस्ट के तौर पर देखा गया और किस तरह से उन्होंने चालाकी से इस मरीज को शिफा पहुंचाई। जाहिर है हर शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है। आइए अब बात करते हैं एविसिना की कि उनका क्या मानना था पल्स के बारे में। तो उन्होंने कहा, एवरी बीट ऑफ द पल्स कंप्राइजेस टू मूवमेंट्स एंड टू पॉजेस, दस एक्सपेंशन पॉज कॉन्ट्रैक्शन पॉज। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एविसिना के पल्स के वाज़े बयानात मौजूद हैं। धमन की तहकीकात जो कि सबसे पुरानी और आसान तरीन और मालूमात से भरपूर तजुर्बा है, हर तरह के क्लिनिकल जायजे में एक अहम तरीका है। ये आम तौर पर पुरानी मिस्री तिब, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, गैरिको इस्लामिक और आयुर्वेदा मेडिसिन में एक अहम तशखीसी तरीका समझा जाता था। तिब के इतिहास में धमन का जायजा लेना कार्डियक डिसफंक्शन का जायजा लेने का एक अहम अनासिर था और धमन की हसीसत को वो पैगाम देने वाला जो कभी ना फेल हो कहा गया था। आज भी धमन का खुद भी मॉडर्न तिब में एक अहम तशखीसी निशान है। धमन को महसूस करना और उसकी तफसीर करना काफी महारत तलब है। धमन लेना गैरिको इस्लामिक मेडिसिन और मिडिल एजेस में एक महारती बेडसाइड टेक्निक माना जाता था। लव सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पल्स टेकिंग बहुत मुफीद साबित होता है और ये तारीखी इलाज में काफी अहमियत रखता है। लव सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जो मेडिसिन की तारीख में हिपोक्रेट्स के जमाने से मौजूद है। यूनानी तबीबों ने इश्क को एक बीमारी समझा था जो मौत तक ले जा सकती थी। तारीखी तौर पर हमने जज्बात और एहसासात को ऐसे सोचा है जैसे वो असल में दिल से उत्पन्न होते हैं। ये रिवायत हजारों साल पुरानी है और हमारी जुबान पर अदबी विरसे को गहरा असर दे चुकी है। लव सिकनेस के हवाले से वजाहत में 100 साल के दौरान काफी तब्दीली आई है, लेकिन आज भी ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के रूप में मौजूद हो सकती है। इसका तशखीस कर पाना एक अजीम तबीब की निशानी थी। मिस्री तबीबों के इल्मी रिवायात में पल्स को दिल का अकेला दरवाजा समझा जाता था और ये कहा जाता था कि दिल हर अंगोष्ट के जरिए अपना राज बयान करता है। इसलिए पल्स टेकिंग इसके डायग्नोसिस का मरकजी हिस्सा बना। एरासिस्ट्रेटस जो एक यूनानी तबीब था और जिसे साइकोलॉजीज का बाप कहा जाता है, ने 4th century BC में ये दरियाफ्त की थी कि एंटियोकस जो सेलेकस के बादशाह का बेटा था अपनी सास से इश्क में मुब्तला था और इसका पता उसने उसकी पल्स देख कर चलाया। एक कहानी ये भी है कि इब्न सीना ने एक सुल्तान की वाइफ का पल्स देख कर और कुछ

0: सवाल करके ये तशखीस की थी कि वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से इश्क में मुब्तला थी। आइए अब रोशनी डालते हैं इब्न सीना और गैलन पर। ये बात पूरी तरह से जानी जाती है कि अरब्स ने अंधेरों के दौरान, जब यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था, अपनी लिखाई में जिंदगी की इल्म और हिकमत को बरकरार रखा। ये इल्म और तालीम रेनेसेंस के दौरान लैटिन में दोबारा तर्जुमा हुई थी, जब मॉन्क स्कॉलर्स ने इसे वापस पढ़ने और समझने का काम किया, और तिब भी इससे मुस्तस्ना नहीं थी। इसलिए ये हैरत अंगेज नहीं है कि इब्न सीना के बयानात भी पल्स के हवाले से उस वक्त के ग्रीक स्कॉलर्स के बयानात से मिलते जुलते हैं, खास तौर पर गैलन के, जो सदियों तक तिब्बी सोच और अमल में राज गुजर हुए। गैलन के पल्स पर दिए गए बयानात लगभग 16 सदियों तक क्लिनिकल प्रैक्टिस में राज करते रहे। उनकी पल्स पर लिखी गई किताबें कुछ खो गई हैं, लेकिन 18 किताबें जो अब तक मौजूद हैं, वो असली समझी जाती हैं और उन्हें हकीकी माना जाता है। कई जर्नल आर्टिकल्स ने गैलन की पल्स के बयानात को दोबारा पेश किया है।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो दोस्तों, जो चीज उंगलियों से महसूस होती है उसे बयान करना जरूरी है, ताकि एक सिर्फ शऊरी हिस का मतलब समझ में आए। कदीम उलूम के स्कॉलर्स अक्सर पल्स के रिद्म को जानवरों के हरकत से कंपेयर करते थे, और इब्न सीना भी इसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि पहले जिक्र किया गया, वो इर्रेगुलर पल्स के रिद्म को गैजल की उड़ान से तुलना करते हैं, या पल्सेस गैजलांस, और ये बात पहले गैलन ने बकरे की कुद या पल्सिस कैप्रिजन्स के नाम से बयान की थी। ऐसे पल्स के मेटाफोर्स को पढ़ना काफी दिलचस्प है, लेकिन हमारे मॉडर्न इल्म के दौर में ये अब ज्यादा मददगार नहीं है। फिर भी मॉडर्न इल्म के कॉन्टेक्स्ट में अब भी इब्न सीना की पल्स के बयानात को अजीम और इंतहाई अजीब समझा जाता है। तो दोस्तों, इब्न सीना एक ऐसे दौर का प्रोडक्ट थे जब इस्लाम दुनिया में इल्म, सकाफती और सियासी तहलका मचा रहा था। उन्होंने अरबिक जबान में एक मुकम्मल फलसफा निजाम तैयार किया। इस्लामी तिब के अजीम उलमा में इब्न सीना मगरबी दुनिया में सबसे मशहूर हैं। उनकी बड़ी तिब की किताब अल कानून फी अल तिब 17वीं सदी तक अरब दुनिया और यूरोप में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी। वो एक फलसफी, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और शायर थे। गैलन की तरह उन्होंने अपने काम को एक बड़ा हिस्सा पल्स को दिया, और पल्स के इल्म में उनका योगदान बहुत अहम था। इब्न सीना ने पल्स के इल्मी हवाले से मुकम्मल तौर पर वजाहत दी, पल्स लेने का तरीका बताया, और मुख्तलिफ हालातों का पल्स पर असर दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड किया, जैसे कि माहौल, मरीज की जिस्मानी हालत और जज्बाती सूरतें, जैसे गुस्सा, खुशी, शादी, गम और खौफ। गैलन की तरह उन्होंने पल्स के 10 खसूसियात और 50 से ज्यादा पहचानने जाने वाले पल्सिस का वाजे किया। उन्होंने ऐसे पल्सिस का वाजे किया जो आज भी हमारे इल्मी जायजे में आर्ट्रियल और वेंटिकुलर एरिथमियाज के मसाइल के मुताबिक पाए जाते हैं। इब्न सीना के मुताबिक वाइटल पावर, रेजिस्टेंस और इलास्टिसिटी पल्स की कुव्वत, साइज और वॉल्यूम में बहुत अहम थी। उन्होंने रेजिस्टेंस और इलास्टिसिटी को फिजियोलॉजिकल तरीके से डिफाइन किया। दोस्तों, पल्स का एहसास करना आसान, तेजी से और सस्ता है, और अब भी एक बहुत फायदेमंद डायग्नोस्टिक टेक्निक है। इब्न सीना के वादे किए गए वजाहत और कॉन्सेप्ट्स आज भी हमारी मॉडर्न इल्म और इलेक्ट्रो साइकोलॉजी के बुनियादी उसूल हैं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं कि आज के डॉक्टर्स इब्न सीना के दौर में जो पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी तफसील से बयान करते हैं उनको एक बार में महसूस कर सकें। लेकिन फिर भी उनके जो दौर में बीमारी में पल्स के हवाले से मुशाहदात थे वो आज भी बिल्कुल वैलिड है। हालांकि कई मगरबी तारीख दान ये समझते हैं कि अरब सिर्फ यूनानी तहकीकात को इख्तियार करने वाले थे, मगर ये इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लामिक फलसफियान साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने अपनी पुरानी तहकीकात के मुताबिक अपनी नजरियात और हिकमत शामिल की। उन्होंने हिस्सा लिया और नए इल्म में अपनी ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस की, चाहे वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, एल्केमी, ऑप्टिक्स, फार्माकोलॉजी या तिब हो। इब्न सीना गैलन के मुताबिक थे, लेकिन उन्होंने काफी पहचाने और नई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। तारीखी दां ये मानते हैं कि वो अपने दौर के एक अजीम सोचने वाले और तिब के उल्मा में से एक थे। उन्हें अपने दौर का प्रिंस ऑफ फिजिशियंस कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में भी मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल

0: साइनिंग ऑफ, सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time Check. Time Check. Hello, hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio ki ghadi mein 11 baj ke sahi 2 minute.
3: Aap sun rahe hain Sun and Sound. RJ Sarwar Mirza ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
2: जी वेलकम अहलन व सहलन खुश आमदीद एंड स्वागतम लीजिए साहब, आ गया संडे और आ गया हूँ मैं। भाई नए हफ्ते की शुरुआत का दिन है ये और एनर्जी का दिन जो पूरे हफ्ते हमें फ्रेश मूड में रखना की तरीका जो है वो बताता है और साथ में चलने का सफर भी आसान करता है। तो साहब वीकेंड में जो भी धमाल हुआ है वो तो हुआ ही है, बट अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर और वापस अपनी रूटीन पे हमें आ जाना चाहिए, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये खुद से अगर हम वादा कर लें तो सफर जो है पूरे हफ्ते का आसान हो जाता है। तो दोस्तों अपना मूड जो है उसको जरा अपलिफ्ट कर लें और अपनी स्माइल को थोड़ा वाइड कर लें भाई, क्योंकि अब आ गया हूं मैं लेकर एंटरटेनमेंट, खूब सारी अपडेट्स और जाहिर बात है पॉजिटिविटी से भरा ये सफर मेरा और आपका दो घंटे का एक साथ रहने वाला है। पूरे एक बजे तक हम एक साथ रहने वाले हैं और प्रोग्राम में तो आपको पता ही है कि साहब ये एनर्जी का एक फ्यूल स्टेशन है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का जो सफर है वो आपके साथ अच्छा ही गुजरेगा हमेशा की तरह। क्या किया वीकेंड पे, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड, उम्मीद करता हूं कि अच्छा रहा होगा। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप सभी लोग, और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं कि बहुत आसान से दो तरीके हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ये कि आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं, मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 666-22-107-6-6-6-2-2-107। इस पर आप अपने वॉइस नोट भेज सकते हैं, अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं और मुझसे अपने एहसासात को शेयर कर सकते हैं। पूरे दो घंटे हम एक साथ हैं और वहीं कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 443-443-77-77। तो जनाब आज कुछ खास दिन हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर करके सेलिब्रेट करने में ज्यादा मजा आता है। कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, कोई और खास दिन है तो वो भी बता सकते हैं, और अगर खास दिन नहीं भी है तो भी इस दिन को खास बनाया जा सकता है। हर दिन खास हम खास है जब हम मैं और आप एक साथ हैं तो भैया दिन भी पूरे तरीके से खास है। बिल्कुल साहब यहाँ पर मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा जरूर जरूर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और वहीं अब जो दिन आ रहे हैं वो भाई गर्मी के आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, और गर्मी के हवाले से हम सब को बताइए कि करना क्या है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत में ही अगर वेदर का हाल चाल जान लें तो बेहतर ही होगा।
0: वेदर का हाल 107 दिनाल।
2: ओए होए होए होए होए, कल के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने यही सोचा होगा कि भाई अब गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मगर फिर भी आपको बता दूं कि साहब लिखत की बात कर रहा हूं मैं, अगर ब्लैक एंड वाइट में बात करें तो इस वक्त 38 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है। देखिए अब टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना, अब सिर्फ ह्यूमिडिटी जो है ना वो ऊपर जाएगी और उसकी वजह से जो फील्स लाइक है, जो हमें वेदर का एहसास होता है गर्म होने का, वो ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है। तो साहब फील्स लाइक इस वक्त 43 डिग्री पे है, जो कि मतलब उस हिसाब से तो कम है जो हालत अभी बीच में हो गई थी। जाहिर है अब इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आने हैं और कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो हमें QMD ने बताया ही है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया ही है। हवाओं की रफ्तार इस वक्त 11 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी में अब इजाफा होना है, तो इस वक्त 34% पे ह्यूमिडिटी मैं देख पा रहा हूँ, 34-35%। शाम रहते शायद ये और भी बढ़ जाए। आइए दूसरे हाथ पे जानते हैं कि क्या कहा है डिपार्टमेंट ने। तो साहब कदर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आज रात मतलब कल रात से और आज सुबह तक का जो सफर था मौसम वो काफी नमी भरा रहा और हल्का धुंधला भी रहा। जो लोग सुबह उठे और निकले और हाईवे वगैरह पे गए होंगे, बीच में तो एक दिन ऐसा था कि भैया बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोहरा है हाईवे पे, जो लोग गए थे वो मेरी बात से इत्तेफाक करे होंगे। तो साहब कुछ इलाकों में आज के हिसाब से बात करें तो बाद में कुछ धुंध रहने वाली है और जैसा कि मैंने बताया सुबह अगर किसी को कोहरा मिला होगा, कोहरा जैसा मिला होगा, एक्चुअली इट्स नॉट कोहरा, तो उन्होंने देखा ही होगा। हमारे साथ ये भी शेयर करिएगा अगर आपने सुबह कुछ इस तरीके का माहौल देखा। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए विजिबिलिटी पे असर पड़ता है, तो जो विजिबिलिटी है वो कम होती ही होती है। प्लस ये कि डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो साहिली और समंदरी इलाके हैं इन दोनों ही इलाकों में बाज़ जगहों पर विजिबिलिटी और भी कम हो सकती है। हवाएँ हल्की ही रहेंगी और समंदर भी पुरसकून रहेगा। तो अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह में मुबतला हैं, भाई छुट्टियां शुरू हो गई हैं, घर का माहौल बदल गया है, घर में से आवाजें आ रही हैं, चीख पुकार की, बच्चे जो है इस वक्त पूरे तरीके से तैयार हैं और मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। ये तो माशाल्लाह हमारे यहाँ, तो मैं तो माशाल्लाह लगाता हूँ, हमेशा से यही रहा है भाई कि घर पहचानने के लिए अगर कोई आता है तो यही कहा जाता है मोहल्ले में सबसे ज्यादा जिस घर में से आवाजें आ रही है वो साहब मिर्जा जी का है, वहां चले जाएंगे। तो इस वक्त तो सभी के का माहौल ऐसा हो रहा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे घर पे हैं, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वालदेन जो है इस वक्त पूरे तरीके से तैयार भी उनको घुमाने फिराने के लिए, और काफी लोग इस वक्त छुट्टी पी जा चुके हैं, आई नो दिस। और इसी को देखते हुए जब मैं अभी आ रहा था तो ऑफिस जब आ रहा था सुबह तो मैंने देखा ट्रैफिक में भी काफ़ी कमी है और वो इसी वजह से है क्योंकि अब बच्चों की स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं तो लोग अकॉर्डिंगली प्लान भी करते हैं, वालदेन जो हैं वो बच्चों की छुट्टियों के साथ ही अपनी छुट्टी भी प्लान करते हैं। तो यूजुअली ऐसे टाइम पे ट्रैफिक वगैरह और इन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है कतर के अंदर। तो साहब ड्राइवर्स और रोड इस्तेमाल करने वालों को मशवरा दिया गया है कि सुबह के औकात में एहतियात से सफ़र करें अभी आगे कमिंग डेज में भी, क्योंकि धुंध की वजह से नज़र जो है वो ज़ाहिर है, जैसे कि हमें महकमे ने बताया है कि वो मुतासर होती है, विजिबिलिटी जो है वो मुतासर होती है। तो साहब QMD ने यही कहा है कि कुछ इलाकों में धुंध और इसी तरीके के जो स्मॉग है या फॉग है जो भी कह लीजिए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है और बाज़ मकामात पर नज़र जो विजिबिलिटी के हवाले से मैंने बात करी वो भी कम होगी। तो इसलिए गाड़ी चलाना बहुत एहतियात से है, दूसरों का ख्याल भी रखना है, अपने साथ साथ सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखना है और इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि किसी को किसी बात की परेशानी ना हो। तो चलिए साहब अब बढ़ते हैं आगे और एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो क्या कहते हैं उससे पहले बता दूं कि आज का कुछ मौजू भी है जिसके हवाले से हल्का फुल्का मौजू जो हमारा रहता है उसके ऊपर भी बातचीत होगी और वो ये कि साहब सोचना समझना सबकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और दो तरीके के आदमी होते हैं दुनिया में, जो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के फैसला करते हैं, एक दूसरे जो मेरे जैसे होते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे किस तरीके के हैं। तो आप बस ये है आज अभी के टॉपिक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हम यही बात करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला करते हैं या बस फौरन डिशकियाँ कह के और अपनी कहानी जो है वो शुरू कर देते हैं। अपने मैसेजेस भेज सकते हैं आप हमें 666-22107 पे, 666-22107 पे, और हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पे। लीजिए साहब, क्या होगी इससे बेहतरीन शुरुआत, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग उदित नारायण की आवाज में। कॉलेज की लड़कियों FM 107 पे इस वक्त सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप, सरवर मिर्जा आपके साथ। जनाब कौन है आप, सोच समझ के ज्यादा फैसला करते हैं, बिना सोचे समझे आज तक के फैसले करते हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान भी हुआ है या फिर फायदा भी हुआ है या फिर उन बिना सोचे समझे फैसले करने की जो आपकी आदत है उसकी वजह से आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, तमाम चीजें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: जी साहब वेलकम बैक है और बिल्कुल सन एंड साउंड इस वक्त जारी और सारी है जहां पे सन तो अपने पूरे रुबाब में है और साउंड अब आप लोगों की गूंजने वाली है एफएम 107 पे। तो आइए बिना वक्त वेस्ट करे यहां पर पहले कॉलर जो है उनका इस्तकबाल कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
1: आदम भाई

0: اهلا وسهلا، كيف يا خادم بھائی اور مرحبا. كيف رہا ویکینڈ اور ابھی تک کا دن؟
1: الحمد للہ بہت اچھا، بہت
0: کیا بات ہے،
1: الحمد للہ
0: کیا بات ہے،
1: ہمیشہ
0: خوب زبردست الحمد للہ رب العالمین، خوب زبردست ڈشز بنی اور خوب گھومنا پھرنا بھی ہوا لگ رہا ہے.
1: ویکینڈ تو بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ، ایک پارٹی تھی اس میں گئے تھے اور ماشاءاللہ کھانے ہی کھانے تھے ماشاءاللہ.
0: ارے تو اکیلے خادم بھائی شنو ہے،
1: اکیلے میں نہیں تھا، اکیلے میں نہیں تھا، پارٹی تھی پارٹی.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے خوش رکھے. تو ابھی تک کا دن کیسا گزرا، کچھ خاص ہوا صبح سے ابھی تک ہفتے کے پہلے دن میں خادم بھائی؟
1: ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، کل سے بھی ڈیوٹی. کل ہمارے تو صرف فرائیڈے کو چھٹی رہتی ہے.
0: آل رائٹ.
1: اور الحمد للہ اچھا دن گزر رہا ہے الحمد للہ.
0: کیا بات ہے بھائی خادم بھائی، تو آج کے موضوع کے حوالے کیا کہنا ہے؟ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں یا بس
1: میں نے ریڈیو ابھی جسٹ ابھی آن کی، اس لیے کہ کلاس ٹائم تھا تو اس ٹائم تھوڑا ریڈیو آن نہیں.
0: تو یہی آج کا موضوع یہی ہے، اسی پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں ہم، کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں یا پھر فوراً فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور کیا یہ سوچ سمجھ کے یا پھر فوراً فیصلہ کرنے سے آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں؟
1: دراصل یہ کہ اپنے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا نا کہ کبھی کبھی جلدی میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن دوسروں کے لیے ہمیشہ میں نے اچھے سوچ کے بعد اور اچھا فیصلہ کیا ہوا ہے الحمدللہ.
0: واہ واہ واہ، تاکہ اپنے لیے جو بھی رسک ہے وہ اپنے لیے رکھا جائے، دوسروں کے لیے رسک نہ رکھا جائے.
1: اپنے لیے ہمیشہ رسک لیا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے کبھی رسک نہیں لیا اور نہ کبھی رسک لینے کا سوچا ہوا ہے. بس ہمیشہ ان کے لیے سوچ اور جو بھی اچھا ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے اچھا کروں.
0: چلیے تو بڑی اچھی بات ہے خادم بھائی. تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ جو اپنے لیے، چلیے دوسروں کو تو مشورہ دینا الحمدللہ آج کل بہت بڑی ہیلپ ہے، کہتے ہیں کہ پیسوں سے مدد اور مشورے سے مدد بہت بڑی چیز ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اچھے مشورے دینے کی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، مگر جو اپنے لیے فیصلے لیے زندگی میں، کبھی اس کے لیے کچھ ریگریٹ کرنا پڑا، کبھی اس کے لیے کچھ پچھتاوا ہوا، کبھی کوئی ایسی بات ہوئی، شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا؟
1: ایسے ہوا تھا کہ میں باہر سے آیا، یو اے ای سے، 2014 کی بات ہے. تو ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ کچھ شراکت کیا ایک کاروبار میں، تو پھر بعد میں اس پہ مجھے پچھتاوا، اتنا پچھتاوا ہوا کہ
0: یہ فیصلہ غلط،
1: نقصان نہیں ہوا تھا لیکن وہ جو میرے پیسے تھے وہ وہی بندہ یوز کر رہا تھا اور وہی استعمال، اور فائدہ زیادہ ان کے لیے ہو رہا تھا. تو بعد میں جب مجھے پتا چلا، میں نے ان کو یہی بولا کہ بھائی میں نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے. تو یہ تھا کہ نہ لکھتا تھا میں کچھ بھی نہیں، بس ایسے کیش دے دیا اور بس اس کے بعد بہرحال
0: کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، اور فیصلے جب اس طریقے کے لے لیے جاتے ہیں جو آگے جا کے پریشان کرتے ہیں، تو ان کا حل یہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے آئے بڑوں کو بھی اور سیکھتے سمجھتے آئے، کہ بھائی ان سے کنارہ کر لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. ظاہر ہے اس کے اندر نقصان بھی ہے، دوسری چیزیں پریشان کرنے والی بھی ہیں، بٹ جو اس میں اس رشتے کو ادا کرتے ہوئے کہنا چاہیے یا اس کمٹمنٹ کو ادا کرتے ہوئے جو فیصلہ لے لیا ہے، جو پریشانی ہوگی وہ اس سے کئی کم ہوگی، کہ اگر وقت پہ آپ اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر لیں. میں ایسا سمجھتا ہوں
1: سرور بھائی، اس میں زیادہ نقصان رشتے کا ہوا، پیسے کا نقصان نہیں ہوا، پیسہ اور وہ چیز، پیسہ بعد میں بھی مل سکتا ہے لیکن ایک بار
0: رشتہ ٹوٹ گیا،
1: بھروسہ یہ ٹوٹ جائے تو وہ پھر کبھی نہیں ملتا زندگی میں، وہ رشتہ پھر واپس نہیں آتا.
0: کانچ میں اور رشتوں میں درار آ جائے تو پھر بھائی وہ مٹائی نہیں مٹتی ہے.
1: جی جی جی بالکل، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ رشتہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ صرف اور صرف یہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، ان کی غلطی نہیں، اس لیے کہ میں نے بھروسہ کیا اور میں نے اپنے ساتھ ایک ثبوت کے طور پر کچھ رکھا نہیں. हाँ बहरहाल जिंदगी में ऐसे और दूसरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह
0: हमेशा सोच समझ के फैसला किया है।
1: कभी भी सोचे तो दूसरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सोचा हुआ कोशिश
0: यही ज्यादा जरूरी भी है ना खादिम भाई कि दूसरों को कम से कम जब मशवरा दें या फैसला उनकी जिंदगी के लिए कुछ भी करें तो ऐसा ना हो कुछ भी। इसमें बहुत सारी चीजें होती है बींग घर के अगर आप हैं या घर के छोटे हैं या जो भी आप किरदार अदा कर रहे हैं अपनी फैमिली में अपनी दोस्ती में अपने कलीग्स के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में जिसके साथ भी जो भी फैसला कर रहे हैं बहुत समझ सकते हैं।
1: यहाँ पे मैं आपका एक मिसाल दूंगा आप ही का दूंगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते हैं।
0: अरे अल्लाह
1: बहुत अच्छा सोचते भी हैं वो मुझे मालूम है वो बात मैं फिर बार बार नहीं बोलूंगा लेकिन माशाल्लाह
0: कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी लाइफ में कि भाई जाहिर बात है दूसरों के लिए जब भी कुछ फैसला करें तो उसमें अपने आप को भी रख के सोचना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है।
1: परसों आपका आप ही का जिक्र हो रहा था आप ही के बारे में बात हो रही थी और आपके लिए वो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए अल्लाह पाक वो आपके लिए कबूल फरमाए।
0: अल्लाह ताला खैर करे भाई जब भी हिचकियां आ रही थी मुझे जब भी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था मैं
1: बाकी तो आप समझ गए होंगे।
0: अरे भाई अल्लाह ताला
1: साद अहमद के बाबा ने आपकी तारीफ भी की और आपके लिए दुआ।
0: अरे नहीं भाई कोई उसमें तो कुछ हमारा ताउन ही नहीं था वो तो बस एक जिम्मेदारी वाली बात थी किसी की भी मदद नहीं, नहीं, भी कर देना अल्लाह ताला खैर करने वाले हैं सभी
1: वो
0: के लिए।
1: तो आपने भी अपना एक भतीजा समझ के एक छोटा बच्चा समझ के आपने किया माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अजर दे। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि आप ही की वजह से आपके वो करने के बाद मेरा सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पार
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे खादिम भाई और दुआओं में याद रखिए। और मैं बता दूं सभी लोगों को कि ऐसी कोई भी बात नहीं खादिम भाई जो इस वक्त अर्ज कर रहे हैं बस एक छोटी सी मदद क्योंकि हम अलीगढ़ से हैं तो इनके भतीजे जो हैं वो अलीगढ़ गए थे तो फिर भाई मैंने उनका थोड़ा बहुत सलाम दुआ करके ख्याल कर लिया था तो खादिम भाई बेचारे उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। मगर ऐसा कोई भी मसला नहीं है भाई एक दूसरे की मदद करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब एक दूसरे से ताल्लुक है तो मशवरा भी अच्छा देना चाहिए और मदद करने के लिए हाजिर रहना चाहिए
1: मदद के लिए हाजिर रहना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए अगर नहीं कर सकते तो भी कोशिश करने के बाद उनको खुद पता चलना चाहिए कि भाई इसने मेरे लिए कोशिश की और इसने यार
0: वाह दिस इज इंपॉर्टेंट
1: काम नहीं था।
0: देखिए फिर बात वही घूम के आ जाती है कि अगर कोशिश करी है या उनके लिए कुछ भी करने के लिए मतलब कोशिश ही करी है तो उन तक पहुंचाना भी जरूरी कि भाई मैंने कोशिश करी जैसे खादिम भाई ने बताया वरना फिर रिश्ते खराब होते हैं कि भाई हमारे लिए कोशिश भी नहीं करी बताइए कैसे हैं सोच भी नहीं रहे हमारे बारे में।
1: लेकिन अगर कोशिश के बावजूद एक काम नहीं हुआ तो वो जो दूसरे बंदे के लिए जिसके लिए आपने कोशिश को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसने मेरे लिए काम ही नहीं किया कुछ किए नहीं ऐसे ही बस मुझे। लेकिन ये नहीं बंदा अपने बस तक मैं कहता हूँ कि वो कोशिश कर सकता है
0: क्या
1: आगे नहीं कर सकता।
0: क्या बात है भाई
1: नसीब की बात है
0: बहुत अच्छे और बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई ज्वाइन करने के लिए हमें अल्लाह ताला खैर करे आपके साथ और खुश रखे
1: आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम देते हैं और हमारी बातें सुनते हैं ये फूटी फूटी बातें
0: अरे अरे
1: हमें बहुत खुशी होती है।
0: अरे सर थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तो भाई ये थे प्यारे प्यारे खादिम भाई और तो साहब क्या कहते हैं आप लोगों का क्या नजरिया है आज के मौजू के हवाले से सोच समझ के फैसले जो करे गए जिंदगी में वो ज्यादा बेहतर है या फौरन से करे गए फैसले। औरत के अंदर एक बड़ा दायरा है जैसे कि बताया कि मदद और परेशानियां और रिश्ते और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं तो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और मैसेज कर सकते हैं 6622107 पे। यहाँ पर कोई और हमारे साथ जुड़ गया है आइए जानते हैं कि कैसे हैं वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: हाय हाय हाय शेखो
2: भाई कॉलेज में नटकटी लड़कियां भी होती है क्या?
0: ये तो आपसे पूछने वाला था मैं
2: बड़ी तारीफ कर रहे थे कि नटकटी लड़कियां
0: गाने हैं गाने हैं शहजादा भाई गाने हैं जिसको जिस तरीके से लुभा जाए और जिसको जिस तरीके से पसंद आ जाए सवाल जवाब तो आ ही जाते हैं।
2: लेकिन वो जरा नटखटी है ना नटखटी वो
0: वाह वाह वाह भाई क्या शेर सुनाया आपने तो खादिम भाई अभी अभी गए बात करके हमसे, और आपने शायद सुना उनको या नहीं, मगर आज हम बात कर रहे हैं कि साहब सोच समझ के किए गए फैसले आप ज्यादा करते हैं या बिना सोचे समझे, और उनकी वजह से जो रिजल्ट निकल के आता है या परेशानियां या खुशी, तो क्या कहना है इसके बारे में शहजादा सलीम साहब आपका?
2: जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है, और मैं मतलब जो मेरा डिसीजन रहा है ना, टोटल लॉस, गाय गाय के बाजी के फैसले, हाँ, और बड़े काफी नुकसान दे साबित हुए। वजह क्या है पता है, कोई चीज मैंने नहीं किया और वो मेरे पे थोपा जा रहा है ना, वो जब टेस्ट तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, तो मैंने ऐसे सर्दिया में ना बहुत अच्छी अच्छी जॉब छोड़ी मैंने, बहुत अच्छी अच्छी जॉब, अभी तो मतलब एक तसव्वुर ही रह गया क्या, काश ऐसी कहीं मिल जाए तो।
0: अल्लाह ताला खैर करे भाई। देखिए यही आज बात हो रही है कि मौके तो अल्लाह सुभान व तआला देते ही रहते हैं और आगे भी आएंगे। अब बीच में जब कोई ऐसी चीज हो जाती है तो ऐसा लगता है कि भाई अब दरवाजे बंद हो गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो टेस्ट होता है। सलीम भाई
2: सही सही सही, तो वो जो फैसले थोड़ा सब्र वाले हैं और थोड़े संजीदगी और सोच समझ के लिया जाए ना और मशवरा करके लिया जाए तो वो बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन जो एक उससे ना एकदम से मतलब एक गलत है एकदम, मतलब जो उसका नेगेटिवेशन ले लेना एकदम से, उसका नेगेटिव सोचना एकदम उल्टा ही सोचना, क्या ऐसा कुछ रहता नहीं है सिचुएशन कंपनीज की मैनेजमेंट की, सारे की एक अपने अपने मैनेजमेंट अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, लेकिन हम इसको अपने मर्जी के हिसाब से अपनी दिमाग की मेंटालिटी अपनी थिंकिंग के हिसाब से उसको ओवरटेक करके निकलते हैं ना, तो बड़ा महंगा साबित होता है, और मैं फेस कर चुका हूँ।
0: अच्छा थैंक यू, ये तो प्रोफेशनल हवाले से आपने बता दिया, पर्सनल अगर बात करूं, अगर मैं जानना चाहूं तो कभी कुछ ऐसे और परेशानी हुई है रिश्तों में या ताल्लुकात में, मुश्किल हुई है इन फैसलों की वजह से एकदम से करे गए?
2: जी फैसले बता रहे हैं ऐसे जिंदगी के फैसले और भी ऐसे कई फैसले ना, किसी पे इंस्पायर करके यस कर दिया और तफ्तीश नहीं की और इंक्वायरी नहीं की, तफ्तीश नहीं की, डायरेक्ट से ना डिसीजन ले लिया एकदम से, टोटल लॉस।
0: अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो कैसा रहा साहब ये वीकेंड आपका और कैसा गुजरा पिछला हफ्ता?
2: ये वीकेंड में तो एक ही छुट्टी थी, तो जुमेरात की हम एक दिन की जमात में चले गए थे तबलीग की।
0: अच्छा,
2: तो अच्छा, वहाँ पे थे एक दिन थनैया नहीं थे लेकिन दूसरे थोड़ा हट के था, तो वहाँ पर काम किया रात भर और फिर दिन भर सारे कुछ अपना तालीम हुई और बयानात हुए, सारा कुछ हुआ।
0: क्या बात है, तो इसका मतलब बेहतरीन इस्तेमाल किया छुट्टी का माशाल्लाह, और बेहतरीन वक्त गुजारा है, और यही कह सकता हूँ मैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई, बहुत अच्छे बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। और कुछ कहना चाहते हैं जी?
2: गर्मी, हाँ गर्मी ऐसी है ना, तो क्रिकेट वगैरह तो इस वक्त बंद ही है,
0: खेलना भी नहीं चाहिए।
2: शाम को फिर भी है ना वक्त से दिल में आते यार, अभी तो गर्मी कम हो जाती है 5 बजे से, तो एक आध दिन तो हो सकती है।
0: अच्छा तो, अभी भी चलिए साहब, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खुश रखे, सेहतियाब रखे, यही दुआ है, और हमारे साथ जुड़ते और दुआओं में याद भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कॉल करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो जनाब बातचीत हो रही है आज सर एंड साउंड में मौजू के हवाले से कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा सोच समझ के फैसले किए हैं या फिर बिना सोचे समझे जो फैसले किए हैं उनमें कितना फ़र्क रहा है, और उन वजूहात से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां आई हैं, कुछ अगर इस तरीके से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 4434377, और वहीं मैसेज भी कर सकते हैं 6622107 पे। यहां पर कोई और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमजा भाई
3: कैसे हैं? सरसर भाई
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं और क्या हालचाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती जा रही है, आपको बंदा बंदा याद हो रहा है।
0: जहन काम करने लगा है मेरा।
3: जहन बहुत ज्यादा।
0: अच्छा चलिए, और साहब कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
3: आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो बड़े हमारे काम आती है और बड़ा मजा आता है।
0: ओहो,
3: और आज एक आपने वो जो आपका एक प्रोग्राम है साइंटिस्ट वर्ल्ड के नाम से,
0: ओ आप सुन रहे थे,
3: बैठ के बड़े गौर से सुन रहा था।
0: अच्छा,
3: हाँ जी, मैं आप आपके प्रोग्राम बड़े जना तवज्जो सुनता होता है, या जो जनाब तला अशरफ जमान साहब हैं,
0: अच्छा,
3: उनके प्रोग्राम बड़े तवज्जो सुनता होता।
0: अरे यार, आप किससे तो आप किन से मुझे जोड़े दे रहे हैं? आलिम फाजिल आदमी से, मैं तो एक बहुत ही अदना सा।
3: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं बड़े गौर से बैठ कर सुनता होता हूँ।
0: मोहब्बत है आपकी यार हमदा भाई, और कोशिश ये रहती है कि भाई कहीं ना कहीं
3: बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं।
0: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह।

0: आज एक बड़ी मजे की मैंने आपकी बात पकड़ी है भाई।
1: अच्छा
0: आपकी ने खैर इब्ने सीना की जो जिन्होंने इश्क को मर्ज बताया था। और मेरे ख्याल
1: भाई देखिए ये चीज तो अभी तक कह सकते हैं ये मर्ज में ही शामिल होगी ये जो परेशानी है या ये बीमारी है।
0: मैं एग्री कर रहा हूँ और इसका इलाज मेरे ख्याल से अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ।
1: और ये मौजू कहीं और जाता हुआ। Oh my God.
0: अल्लाह पाक बेहतरी करे उनके
1: आमीन आमीन
0: जो इस मर्द में मुबतला है।
1: अल्लाह ताला आसानियां करे
0: आमीन।
1: ऑलराइट हमजा तो क्या कहते हैं जिंदगी के फैसले जो हैं सोच समझ के किए हैं और करते आए हैं या फिर बस झट से फैसला लिया और आगे बढ़ गए।
0: मेरा नजरिया एक बहुत अलग तरीके का है कि मैं समझता हूँ कि डिपेंड ऑन कंडीशन है ठीक है। अगर आप किसी के हक में फैसला कर रहे हो ना या किसी के लिए आप किसी ने इल्जाम लगा रहे हो ऐसा कोई चीज है ठीक है उसमें आपको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि यार अगर आप किसी को पॉइंट आउट करते हो ठीक है उसको उसका रिएक्शन क्या हो सकता है ठीक है या उसके दिल पे क्या बीतेगी या उसने इस बात को लेकर कितना संजीदगी से लेना है बात को ठीक है। और अपने जो फैसले हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी आवाम या मैं खुद भी अगर बात करूँ तो ये है कि हम लोग फैसलों पर जना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते यानी कि साबित कदम नहीं रह सकते। जहाँ थोड़ी सी तंगी आई नहीं वहाँ हमारा फैसला चेंज हुआ नहीं।
1: ओके ओके ओके ओके
0: समझे यानी कि अगर एक फैसला कर लिया कि भाई मुझे ये काम करना है
1: स्टूडियो
0: तो यार उसको पीक तक लेकर जाने तक आपको वो काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस फैसले के लिए आप वही हो कि हाँ भाई जैसा पहले भाई ने बोला भाई टोटली लॉस।
1: वेल सेड
0: क्योंकि
1: well said.
0: इंसान है ना भाई बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आती हैं जिंदगी में ठीक है और कुछ जगहों पे इतना टूट जाता है कि यार बस अब नहीं दिल
1: अब नहीं हो रहा
0: अब दिल करता है कि यहाँ से दूर चले जाओ और बस
1: सही
0: छोड़ दूं ये सारी चीजें
1: सही।
0: लेकिन अल्लाह पाक कहता है कि मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ और जना जब भी मैं उनको अपने करीब होने का मौका भी देता हूँ।
1: क्या बात क्या बात है
0: तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ये काम करना चाहिए अगर फैसला कर लिया है तो उसको साबित कदम रहना चाहिए।
1: क्या बात है सही बिल्कुल सही
0: चाहे वो जैसे भी फैसला हो पहले तो कोशिश ये करें कि बेहतर वो हो के फैसला वो करेंगे जिसमें आप खुद भी ना परेशान हो चाहे अगला भी ना परेशान हो और जब फैसला हो गया है चाहे जैसा भी है तो कोशिश ये रखें कि साबित कदम रहें।
1: क्या बात है यार बिल्कुल क्योंकि उसको फिर कहना चाहिए कि मुकम्मल करना हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है जब भाई पहली बार फैसला कर लिया तो फिर इसको निभाओ भी यार ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहने यार हमजा भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाकई। और हमजा कैसे हैं कैसा गुजरा अभी तक का दिन और कहाँ हैं इस वक्त एग्जैक्टली?
0: अल नसर
1: हाँ क्या बात है क्या कह रही है गर्मी?
0: गर्मी तो भाई बस अब वो कहते ना आप तो आदत सी है मुझको अब समझ नहीं लगती गर्मी का इतना असर नहीं होता कि ठीक है यार
1: अल्लाह ताला
0: जस्ट नेचर है ठीक है समझ में आती है
1: अल्लाह ताला आसानी
0: और ये है कि मैं तो अपने काम पर हूँ
1: माशाल्लाह
0: और आपका प्रोग्राम साथ-साथ सुन रहे हैं।
1: थैंक यू
0: हम अपने तलावात मार के ऊपर आके खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच और अल्लाह ताला आपको खुश रखे ज़ुमान में रखे बहुत ही अच्छे हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं हमजा हमेशा जबकि इतने बुजुर्ग नहीं है जितनी अच्छी बातें करते हैं मैं सबको बता दूं।
0: वो भी अभी ऐसा लगता है बहुत सारे लड़के मिलते हैं ना भाई अक्सर ये होता है कि आप किसी से एज पूछे ना भाई क्या एज है और वो आपके एज से कम एज बता दे यार एक बार फील होती है यार मैं इतना बड़ा हो गया कि जल्दी जब कोई मिलता है जो आपके बराबर का लग रहा हो और वो आपसे ऊपर की एज बता दे एक अलग ही फीलिंग उभरती है भाई यार अभी तो बच्चे हैं हम।
1: सही बात है भाई चलिए साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई ये थे हमजा भाई हमारे साथ और अब बातचीत यही है कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में और बता सकते हैं कि भाई आपने अपने फैसले जो हैं सोच समझ के किए हैं और क्या उनकी वजह से कभी कोई परेशानी हुई है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक वापस आने के बाद बातचीत जारी रहेगी। FM 107 पे आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सन एंड साउंड सरवर मिर्जा आपके साथ FM 107 दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज

15 मिनट आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, आरजे सरवर मिर्जा के।

0: हाँ जी, वेलकम बैक अहलन व सहलन। भाई गर्मियां चल रही हैं, बीच पे लोग जा आ रहे हैं, बट बीच का माहौल जो है बड़ा अच्छा होता है। माहौल के साथ साथ सेहत भी अच्छी होती है। बीच पर चलना एक स्ट्रांग वर्कआउट भी होता है। सैंड पर जो मिट्टी होती है उस पर नंगे पैर चलने के बड़े फायदे भी बताए गए हैं, और इस पर वॉक करने से मसल्स जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट जो है उसको यूज़ करती हैं, और इससे कैलोरीज वगैरह बर्न भी ज़्यादा होती हैं, और तो फन के साथ फिटनेस भी इसके साथ साथ चलती रहती है। तो ये भी आजकल के टाइम में जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और हम रुख करते हैं बीच वगैरह का, तो भाई वहाँ पर ज़रा सा अगर हम टेल टूल लें तो हमारी काफ़ी चीज़ों के लिए बेहतर होगा। आइए साहब, इस वक्त मौजू के हवाले से कोई और भी हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका हाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
1: नदीम भाई ओके।
0: अहलन व सहलन भाई। नदीम भाई, क्या हालचाल है और कैसा रहा अभी तक का दिन?
1: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ तो जो दिन कट जाए वो अच्छे हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है ना वो 1 और 07 की जितनी भी टीम है, आप हो जो भी लोग हैं, उन लोगों को डेलीगेट करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो गाड़ियों में बैठे हुए ड्राइवर्स लोग, मुझ जैसे लोग, वो आप लोगों का प्रोग्राम सुन सुन के उनका आधे से ज्यादा टाइम तो इसी में कट जाता
0: है। अरे सर, ये तो मोहब्बत है आप लोगों की, बड़प्पन है आपका कि आप लोग हमें बर्दाश्त करते हैं। हम तो यही कहेंगे,
1: आप बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, आपको एंजॉय करते हैं लोग।
0: ये अपना अपना नज़रिया है, और खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नदीम भाई, आज का जो मौजू है वो फैसलों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं हम, तो जिंदगी कैसी गुजरी है अभी तक?
1: मैं उस पे बाद में आऊँगा। अच्छा, लेकिन अच्छा। पहले मैं आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक गाना सुना के कॉलेज की
0: अच्छा, नहीं मेरा नहीं था वो वो दिन नारायण का गाना था। तो बड़ा सवाल हो रहा है इस गाने
1: में। तो आपने सुनाया था, तो मैं ये सोच रहा था कि सरवर भाई को अपने वो पुराने यूनिवर्सिटी के दिन तो याद नहीं आ गए।
0: नहीं देखिए, गानों का सिलसिला जो होता है उसमें होता तो यही है भाई कि यादें और अपने आप से रिलेट आदमी कहीं ना कहीं कर लेता। हमारी बॉलीवुड की फिल्मों का यही रहता है मसला, हमेशा से रिलेट तो करते ही आए, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जहन में ख्याल हो
1: जाता है। मुझे लगता है कि आज सरोज भाई को अपने पुराने दिन याद आ गए।
0: कोशिश थी कि आप लोग को याद दिला दे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। तो नदीम भाई क्या कहते हैं फिर, फैसलों के हवाले से क्या कहना है?
1: के हवाले से जाहिर सी बातें, मैंने कई लोगों को सुना भी और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लगी मुझे, कि लोग कहते हैं कि सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, चाहे अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो। क्योंकि मैंने सरवर भाई आज उस जगह पर खड़ा हूँ मैं, कि मैंने जब सोच समझ के फैसले नहीं लिए तो बहुत बड़े नुकसान किए, बहुत बड़े नुकसान, इतने बड़े नुकसान किए कि मैंने जो यानी कि 23 ईयर जो गल्फ में काटे, मैं जहां से मैंने शुरू किया था आज मैं वहां खड़ा हूँ।
0: समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। और
1: इसमें इसमें इसमें ज्यादातर लोगों का, उन लोगों का हाथ रहता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आप यकीन करते हैं कि नहीं यार ये बंदा मेरे साथ ऐसा नहीं।
0: इसीलिए उस रिलेशन में रहते हुए, उस आदमी को मद्देनजर रखते हुए, उसको अपने जहन और सोच में रखते हुए हम फौरन फैसला करते हैं कि इसमें तो भरोसा है यार, ये तो अपना है, ये कहाँ जाएगा। ये एक चीज वाकई बहुत एक बारीक चीज़
1: है। आप यकीन मानिए कि मैं आज अपने आप को उस जगह सोचता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी मेरे ऊपर कोई फर्ज नहीं है। मैं इस बात से मैं बहुत सेटिस्फाइड
0: हूं। भाई देखिए, अल्लाह ताला फिर रहम तो अल्लाह ताला हम सब पे करते ही है ना, तो जाहिर बात है जब आपकी परेशानी आपके सामने आई तो वो आपका टेस्ट शुरू हो गया, और उस पे आप जब मुकम्मल उतरे तो फिर आगे तो आराम ही आराम है। अल्लाह ताला तो रहम ही करते हैं
1: जी। उसमें ये रहता है कि अगर जो आपके साथ गलत कर रहा है वो अपने लिए गलत कर रहा है, दूसरों के लिए नहीं कर रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से खा रही है, पी रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारी भी बातें जितने भी लोग सुनने वाले हैं मेरे में वो लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जो आपके साथ गलत करता है ना वो कभी सुकून से नहीं रह सकता है। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया वो आज सुकून में नहीं है, आप यकीन मानिए।
0: तो भाई कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि कहने को कुछ बाकी नहीं रह जाता नदीम भाई, और बस अल्लाह ताला ये शऊर दे और इतना हमारे जहन को अल्लाह ताला खुला रखे कि
1: ये दुनिया में अब तक जितनी भी मखलूकें आई हैं उसमें सबसे अच्छी मखलूक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि
0: वसल्लम की,
1: लेकिन उसमें भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किधर को जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने एक रुपया भी किसी का मारा है तो उसका भी हिसाब देना है आपको।
0: सही।
1: और मैंने ये देखा जिसके पास मेरे पैसे रह गए और उनसे मैंने मिन्नतें भी कही, सारी बात की, आप यकीन मानिए कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं तो यही कहूंगा, वो लोग दुनिया छोड़ के भी जा चुके हैं। और उन ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ कभी बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई, यानी कि वो लोग अल्लाह उनके लिए भी पैसे करे, मैं तो अपने दिल से यही करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल हूँ मैं कि अपने हाथ से चल रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, फैमिली को देख रहा हूँ। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसा ना करें कि लोगों के दिल से बदुआ निकले, या लोग हमारे लिए कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें कि वो हमें नागवार गुजरे।
0: बिल्कुल सही। और इन सारी बातों का लुबे लुबाब ये कि भाई सोच समझ के फैसला करें इंशाल्लाह ताला, ताकि आगे और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आराम जो है वो।
1: आपकी मुझे बात याद आ रही है सरोज भाई, छोटी सी बात करूंगा।
0: जी नदीम भाई,
1: एक साहब ने बोला कि यार एक आदमी के पास मेरे बहुत टाइम से पैसे थे, मैं जब भी जाता था वो कोई ना कोई बहाना कर देते थे, कभी कह देते थे बच्चे से कि कह दो कि बाबा नहीं है घर में, कभी कुछ कभी कुछ। बोले इत्तेफाक की बात, वो एक दिन मुझसे मिल गए, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सलाम दुआ करी, और उनसे मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये बताइए आप पैसे देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा ऐसा है वैसा है, जबकि पैसे थे उनके पास। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम नहीं करना, जिस दिन आपको इंतकाल हो उससे दो दिन पहले मुझे दे देना पैसे, क्योंकि तुम्हारे पैसे। तो बोलते ही कि उन्होंने फौरन ही दो घंटे के अंदर मुझसे कहा भाई ये मुझसे मेरे पैसे दे।
0: अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे भाई और अफ़ज़ोमान में रखे। नदीम भाई बहुत ही अच्छी बातें हमेशा की तरह, बहुत ही सोची समझी बातें, और ताकि दूसरों को हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ पैगाम पहुंचे। सही,
1: बहुत
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे सबके साथ।
1: अब आप समझ सकते हैं कि मैंने 20-22 साल में जो कमाया होगा कितना होगा।
0: सही, अल्लाह ताला
1: वो जो मैं वो आपको पोजीशन बता रहा हूँ जहाँ से इंसान स्टार्ट करता
0: है। सही, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और अच्छा पैगाम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नदीम भाई। अहलन व सहलन। तो भाई ये थे नदीम भाई हमारे साथ, और भाई आज है विशाल डाडलानी साहब का बर्थडे, तो उनके साथ आइए जुड़ते हैं और बैक टू बैक उनके कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं। काफी अच्छा म्यूजिक, अपनी आवाज भी देते हैं, उनकी आवाज में भी ये गाना आगे सुनेंगे हम लोग। फिलहाल एंजॉय कीजिए झूमे जो पठान। सरवर मिर्ज़ा आपके साथ दिल से देसी।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check।
2: लीजिए साहब बजे हम सब के 12:01।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: 12:02 हो चुके हैं और दिन अपनी टीका टीक गर्मी में आ चुका है और सूरज बाबू भी यही कह रहे हैं। आइए यहाँ पर कोई हमारे साथ बहुत देर से जुड़ा हुआ है, पहले उनसे कर लेते हैं बात। वालेकुम अस्सलाम। 12 बजते ही लारा। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमेश यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कैसे हैं रमेश भाई? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा भाई का।
3: बहुत अच्छा
2: माशाल्लाह, काफी चीजें मुकम्मल कर ली, पूरी कर ली, जो पेंडिंग थी, जो काम निपटाने थे, जो चीजें पूरी करनी थी,
3: इंशाल्लाह सब कुछ हो गया।
2: सब कुछ हो गया, चलिए साहब बड़ी अच्छी बात।
3: अगले वीकेंड की तैयारी।
2: ये बात भी सही है, ये होती है पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव बातें। भैया संडे आते ही अगले वीकेंड की तैयारी, क्या कहने यार। वाह भाई मजा आ गया, क्या कहने। तो रमेश बाबू जिंदगी के फैसलों के हवाले से बातचीत हो रही है आज, कुछ फैसले ऐसे जो सुकून दे गए या कुछ ऐसे जो परेशान कर गए, और क्या फौरन फैसला करने वालों में है या फिर सोच समझ के ही फैसले करते आए हैं?
3: नहीं सर, ये तो सही बात है, फौरन फैसला जो होता है वो तो बड़ा ही।
2: ये हल कौन चला रहा है आपके पीछे?
3: हल तो कोई नहीं चला रहा, बस
2: आवाज वही आ रही है, बैल की घंटी वाली आवाज आ रही है जो हल चलाते हुए आती है।
3: आवाज नहीं होगी।
2: अब सही है।
3: जी
2: ओके जी, आपकी बात काट दी मैंने, माजरत चाहता हूँ, फरमाइए।
3: ओ मैं जी सर, पहली बात तो अटेंडम फैसला कोई चीज करने के लिए करना ही नहीं चाहिए।
2: क्या मतलब काम ही नहीं कर रहा? मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं लेडी आ जाके मुझे कोई फैसला ही नहीं करना।
3: डिसीजन नहीं लेना चाहिए कोई जल्दबाजी में।
2: ये बात ओके चलिए,
3: कोई भी, क्योंकि वो काफी जल्दबाजी में बड़ा नुकसान भी हुआ है हमारा।
2: ये जल्दबाजी में नुकसान ही होते हैं यार। चलिए,
3: और सर उस ऐसे समय नुकसान हुआ ना, आई थिंक इस समय लगभग वो 100 गुना के बराबर होता है।
2: ओ हो, समझा रमेश भाई।
3: काफी मतलब मेन चीज, पहली बात तो बैकअप नहीं था कोई, और उस समय भाई कोई ये नहीं मतलब रास्ता दिखाने वाला था कि कैसे
2: आज मैंने दुखती रख पे हाथ रख दिया सबकी, मुझे लग रहा है मैं माजरत चाहता हूँ सभी लोगों से।
3: नहीं, ये जो आपने पूछा है ना, ये बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
2: हाँ बिल्कुल सर,
3: लेकिन हाँ यही है कि इसके माध्यम से जितने लोग भी सुनते हैं या कुछ भी, उनको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जरूर थोड़ा सोच समझ के कोई बात।
2: यार काफी बार ऐसे मकामात पे जिंदगी ले जाके खड़ा कर देती है जब टाइम ही नहीं होता और फैसला करना होता है। ये मैं जानना चाह रहा था कि इसमें रमेश भाई फिर आदमी क्या करे, फैसला ना करे तो मजबूरी है फैसला लेना उस टाइम पे, तो फिर रिस्क लेना ही लेना है।
3: रिस्क, हाँ वो तो अलग चीज हो गया, उसमें तो रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वो उस फैसले का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर इमरजेंसी है तो अब जैसे सपोज दैट ये समझ लीजिए कि सऊदी में मैं था सर, तो 10 दिन में ड्यूटी किया था, 10 दिन मतलब 2007 में जून में मैं 20 तारीख को पहुंचा
2: ओके,
3: और 10 दिन ड्यूटी किया, तो मुझे पथरी का पहले से ही था।

0: और अटेंडम मुझे ऑपरेशन करने के लिए वो बोला कि एकदम इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, 24 आवर से मेरी यूरिन जो है वो रुक गई थी 24 आवर से, लास्ट स्टेज पे थे।
1: ओ माय गॉड।
0: तो हमारे दोस्त एक थे जिनके पास गया था, उनसे डॉक्टर ने कहा कि आपको एक पेपर पे साइन करना होगा तब मैं अटेंडम ऑपरेशन करूंगा इनका।
1: ओ, हाँ, राइट, वो तो एक
0: उसने रिस्क लिया, उस वहाँ पे तुरंत रिस्क लिया और उसने तुरंत साइन किया, कहा कि कोई दिक्कत नहीं सर, आप ऑपरेशन करिए और जो भी होगा वो मैं मसूल हूँ, मतलब उसने अपने लिया। तो फिर मैं भी उसको मैं बोला कि कुछ भी होने से पहले अगर कुछ होता है तो आप बेफिक्र रहिएगा, डरिएगा नहीं
1: भाई। क्या बात है, ये देखिए ये हो रही है बात दोस्ती की और फैसला लेने की, यार तालियां यार आप लोगों के लिए, आपकी दोस्ती के लिए और भरोसे के लिए एक दूसरे के ऊपर। क्या बात, क्या बात
0: सर, एकदम। वो भी सर ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं हुआ, वो दिन मुझे आज भी याद है, जहाँ जहाँ पे पेशेंट रहते हैं ना वहीं पे कम से कम 2-3 डॉक्टर आए और कम से कम 10-15 लोग मुझे पकड़े। और ना सुन किया गया ना इंजेक्शन।
1: ओह माय गॉड, ओहो रमेश भाई, दिल के तार हिला दिया आपने।
0: मतलब यार इसको याद करता हूँ ना कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं मौत को बात दे करके आया हूँ।
1: भाई मैं सभी को बताऊं कि देखिए ये माशाल्लाह से इस तरीके से हम सभी लोग हैं, मगर रमेश बाबू इतने पॉजिटिव, इतने एनर्जेटिक और इतने कहना चाहिए आशावादी आदमी हैं। और देखिए कि किन किन सिलसिलों से आदमी जिंदगी में गुजरता है, बट यार हेड्स ऑफ टू यू यार रमेश भाई, हमेशा की तरह और भी ज्यादा मोहब्बत जो है बढ़ती हुई।
0: रियली सर वो 10 दिन हुआ था और उसके बाद मैं 3.5 साल में गुजारा सऊदी, एकदम बिंदास। और एक चीज सर, मैं अपने बच्चों को, वाइफ को 1 साल तक पता नहीं चलने दिया कि मेरे साथ क्या हुआ।
1: ओ माय गॉड यार रमेश भाई, बस करो यार, बस करो, वाटर कूलर देना पड़ जाएगा मुझे।
0: वास्तव में सर रियली बता रहा हूँ, ये पता चला
1: बड़प्पन है, ये बड़प्पन है, मैच्योरिटी है ये एक्चुअली।
0: जी ये जो हमारे दोस्त है ये गए 1 साल के बाद छुट्टी जब गए,
1: वाह,
0: तब
1: उन्होंने घर जाके आराम से
0: घर में
1: स्थिति को स्थिति को नियंत्रण करते हुए क्या बात है यार, क्या बात। नहीं एक्चुअली इससे देखिए आपकी फैमिली ने भी खैर नाराजगी तो हुई होगी, बट जो बच्चों को सीख मिली होगी ना कि अब्बा के अंदर कितना जब्त व तहम्मुल है, कितनी बर्दाश्त है, कितना सब्र है, ये चीज देख के कुछ एग्जाम्पल्स जो है ना माँ बाप ही बच्चों के लिए बन जाते हैं। बट यार क्या बात, एक अलग फेस दिखाया आज तो आपने।
0: बिल्कुल सर, आपने ये टॉपिक ही छेड़ दिया कि वो चीज मुझे याद आ गया।
1: छेड़ी छाड़ी तो मैं करता ही रहता हूँ।
0: तो ये चीज होता है सर अटेंडम फैसला लेना, वाह यहाँ पे मजबूरी,
1: वाह वा, ये मैं एक्चुअली प्रोग्राम अब इस पड़ाव पे आ गया कि मुझे लगता है कि मुकम्मल हो गया आज का जो मामला था और जवाब मिल गए सभी के। बहरहाल बड़ा ही जबरदस्त और बड़ी ही अच्छी बात है रमेश बाबू की हमेशा की तरह। तो चलिए भाई, तो हज़्म मामूल आ जाएं सवालों की जानिब।
0: थोड़ा शुरू कर ही देते हैं।
1: ओके ओके ओके ओके रमेश भाई ओके। चलिए साहब, चिड़िया उड़ती है या तैरती है?
0: उड़ती है सर।
1: मौसम आजकल का गर्म है या ठंडा है?
0: गर्म है सर, रूम में ठंडा है, बाहर
1: गर्म। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है एक्चुअली। साहब एक काली बिल्ली बिल्डिंग की 20वें फ्लोर से नीचे गिर रही है, नीचे खड़ी सफेद बिल्ली उसे देखकर क्या कहेगी?
0: काली बिल्ली,
1: जी एक काली बिल्ली 20वें माले के फ्लोर से नीचे गिर रही है और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो नीचे खड़ी जो सफेद बिल्ली है उसको देखकर क्या कहती है, क्या कहा?
0: बिल्ली ने क्या कहा? बिल्ली पहली बात 20वें फ्लोर पे जाएगी कैसे?
1: नहीं अरे चली जाती हैं बिल्लियां तो बहुत स्मार्ट हैं भाई, 20वें क्या कौन से फ्लोर पे चली जाती हैं, सीढ़ी के जरिए। ये बहुत सीरियस मामला है रमेश भाई, बड़ा सोच समझ के नहीं जवाब, आपको जवाब देना पड़ेगा।
0: आज आपने फिर फंसा दिया।
1: भाई देखिए उनके जानवरों के भी तो तासुरात होते हैं, एहसासात होते हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए उनके भी हवाले देखे और उनको भी सोचते हुए हमें कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये, और
0: वो परछाई देख के डर गई होगी, नहीं कूदी होगी।
1: मगर वो तो कूद गई।

0: आपने लाल बटन दबा दिया, नहीं दबाना था। ओह माय गॉड रमेश भाई, यार बहुत ही प्यारी शख्सियत आपकी और बड़ी प्यारी आपकी बातें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खैरियत से रखे, आपकी फैमिली को और आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, जब आप याद आ जाए तो बता जरूर देना इंशाल्लाह, वरना कल बताना, ठीक है?
1: ओके सर, जरूर बताएं।
0: शुक्रिया, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमेश यादव साहब ऑल द वे फ्रॉम पटना, बड़ी अच्छी बातें और सीख हमें देते हुए। और क्या ही बात है यार, जिंदगी इसी का तो नाम है, क्या बात है। मैसेजेस पे अभी तक नहीं आया हूँ, बड़ी ही मार पड़ने वाली है, बस ये वाली कॉल और उसके बाद मैसेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम, तशरीफ लाइए। कैसे हैं हमदा भाई, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आया तो मैं गेम खेलने के लिए।
0: हाँ हाँ, मुझे मालूम।
1: लेकिन जो रमेश भाई, रमेश भाई की बातें सुन के बड़ा ही
0: वाकई
1: फील हुआ कि
0: दिल के तार हिल गए, दिल के तार हिल गए, इसको कहते हैं ना, दिल के तार हिल गए।
1: हकीकत बात है, ये फैसले जो बर्बाद फैसले ऐसे मेडिकल फील्ड के अंदर वो इंसान को झंझोड़ के रख देते हैं। भाई की फीलिंग तो एक भाई की फीलिंग थी, लेकिन जो फीलिंग उस वक्त उस बंदे की हुई थी जो उनके दोस्त थे,
0: यार एग्जैक्टली
1: मैं वो समझ सकता हूँ भाई।
0: एग्जैक्टली आप सोचिए, वहाँ अपने आप को रखिए कि अल्लाह ना करे, आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा मामला हो जाता है। मैं पहले तो जवाब
1: बीती है, मैं जब भी बता रहा हूँ मैं समझ सकता हूँ,
0: क्योंकि जवाबदारी तो छोड़ो, किसको क्या जवाब, खुद इंसान जिंदगी कैसे गुजारेगा भाई साहब।
1: जिंदगी गुजारना एक अलग कहानी, क्योंकि जिस बंदे के साथ लगाव होता है, देखो आप हर किसी की हामी नहीं भरते, ठीक है, आप हामी उसकी भरते हो जिसके साथ आपको बहुत दिल से लगाव होता है, ठीक है। तो बात वही आती है कि भरोसे की बात होती है, ठीक है। और जिस वक्त आप हामी भरते हो ना, उस वक्त जो आपसे बीतते नहीं, यार उसने पल जिंदगी जो मेरे साथ बिताई है, ठीक है, वो आपके आंखों के सामने घूम रही होती है कि यार अल्लाह करे।
0: इसमें दो डिस्टर्बेंस है, दो डिस्टर्बेंस है, या जो भी कह सकते हैं, कि एक तो वो बंदा जो आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा अजीज है फिलहाल, जो आपके सामने है, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मेरी वजह से कुछ ऐसा गलत फैसला हो गया, तो दो दो चीजों का असर आप समझ रहे हैं, मतलब कितनी भारी लाइफ हो जाती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसे मौकों से, ऐसे चीजों से अल्लाह ताला बचा के रखे, यही दुआ है भाई सभी के लिए। All right then, हमजा।
1: और भाई मैंने सुना था कि बिल्ली ने क्या कहा।
0: अच्छा तो अच्छा,
1: मैंने देखा था।
0: अच्छा चलो, तो वही आ जाते हैं सीधे सीधे, क्या कहा बिल्ली ने
1: भाई? बहुत मुश्किल बात है अगर बता दूं तो।
0: हाँ नहीं नहीं बता दी, कोई ऐसा मसला नहीं।
1: भावुक नहीं होइएगा,
0: भावुक बिल्कुल नहीं होगा,
1: और फीलिंग्स पे काबू रखिएगा
0: बिल्कुल।
1: बिल्ली ने बड़े ही इमोशनल अंदाज में कहा था, म्याऊं।
0: ये सही जवाब, 2 करोड़। यार अब मुझे आज असल में जवाब ऐसा है कि जवाब तुमने जल्दी दे दिया और मुझे मार से बचा लिया, वरना मार बहुत पड़ती इस जवाब में। तो मैं सभी को बता दूं कि बिल्ली ने, हमजा ने सही जवाब दिया। बिल्ली क्या कहेगी यार, रमेश भाई तुम भी यार, बिल्ली यही तो कहेगी, म्याऊं। कुछ नहीं बचा था। ये मसला बहुत टेढ़ा हो चुका था, मगर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने कॉल गलत ले ली आपकी यार।
1: आपका शो और आपकी ये सवाल ना बड़ा मजा देते।
0: अरे सर थैंक यू सो मच,
1: मेरी कोशिश होती है कि ये इस तरह के अंदाज के जवाब को मैं कॉपी कर सकूं। मुझे आपका वो बच्चे वाला सवाल था कि 15वें फ्लोर तक जाना जब साथ हो सारे, और
0: अली अली
1: जो है 9वें फ्लोर तक, मैं उसको बड़ा सोचता रहा।
0: ऑल राइट हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हम बिजी भी हुए थोड़ा और जवाब भी दे गए सही भाई। यार क्या कहेगी बिल्ली, तो बेचारी मासूम है, यही कहेगी कि भाई मैं आऊं। बल्कि इसके अंदर देखिए एक और, देखिए जब जहन अच्छा हो ना तो कहीं भी रास्ता निकल आता है। बिल्ली ये भी तो कहेगी मैं यहाँ हूँ, तो उसको मिला के मियाऊं एंड मैं यहाँ हूँ। तो जनाब आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-7777, और वहीं आप अपने मैसेजेस भी हमें भेज सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं ऑन द नंबर 666-222-107। और अब आप लोगों के मैसेजेस। अरबाज खान।

अब हमारे साथ हैं सलमान खान के छोटे भाई मेरी तरफ से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी कॉल्स और मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से फोन मुसलसल इस्तेमाल में रहता है। मेरा ख्याल है कुछ और कहने वाले क्या, पहले पढ़ लूँ। मेरा ख्याल है कि शायद इसी ज्यादा इस्तेमाल की वजह से पहले वाला फोन भी खराब हो गया था। अरबाज भाई कहाँ हो, आओ तो सही, तीन कदम हो जाए इसी बात पे। तौफीक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, मोहम्मद तौफीक अलवाकरा से। यार आई नो अलवाकरा से तौफीक भाई, बट लॉन्ग टाइम आपसे बातचीत भी नहीं हुई और मैसेजेस तो आप भेजते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं मुझे पता है, तो कभी तशरीफ लाइए, कॉल पे भी बातचीत कीजिए हमारे साथ। एंड इधर हमारे साथ यूसुफ भाई जुड़ गए हैं, ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में आया था मैसेज, माय बैड कि मैं अब आफ्टरनून में पढ़ रहा हूँ। सरोर भाई कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड, संडे मॉर्निंग सबको विश कर रहे हैं। कैसा रहा मेरा वीकेंड? मेरा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई, यही आप के लिए भी सोचता हूँ मैं। अच्छा शायरी आ गई है यूसुफ भाई की, तो चलिए साहब मैं अर्ज कर देता हूँ। वो चेहरा साथ साथ रहा जो मिला नहीं, किसको तलाश करते रहे कुछ पता नहीं, शिद्दत की धूप तेज हवाओं के बावजूद मैं शाख से गिरा हूं, नजरों से गिरा नहीं। हाय हाय हाय हाय यूसुफ भाई, तारीकियों में और चमकती है दिल की धूप, सूरज तमाम रात यहाँ डूबता नहीं, किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लूटे, मैं चांद पर गया था मुझे कुछ पता नहीं। हाय हाय हाय क्या ही कहने भाई यूसुफ भाई, बड़ा ही शानदार मैसेज और बड़ी ही शानदार आपकी शायरी भी।

मुबारक कहते हैं, इसने अनकहे शब्दों का संसार है जिसे सिर्फ दिल ही समझता है, आपका दिन मंगल में है। ओए, ओए, ओए, ओए। एक तो मेरा भी टेस्ट और इतनी प्यारी प्यारी बातें हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में शुरू हो जाता आते ही हमेशा से, कि मजा ही कुछ और हो जाता है भाई प्रोग्राम का। इमरान खान हमारे साथ। ओह रियली इमरान भाई, दैट इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। जहां तक फैसले की बात है, कभी सोच कर लिया, कभी तुरंत सिचुएशन के हिसाब से, और कई बार बहुत सोच कर फैसला लिया फिर भी वो गलत साबित हुआ। ओ हो हो हो हो, हो। इमरान भाई सही फरमाया आपने भाई, होता है ना, ऐसा होता है बिल्कुल। इसके हवाले से भी चलिए एक जवाब मिला कि भाई बड़ा सोच समझ के फैसला लिया मगर फिर भी वो गलत ही निकला, और बिल्ली बोली कि मियाँ हूँ यानी मैं आऊँ। ओ हो, इसका एक पहलू और निकल आया भाई, क्या ही कहने साहब। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ते हैं आगे। बस अभी आ रहा हूँ साहब कॉल की जानेब, आप लोगों से बात करने। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। मुदस्सिर नहीं, मकसूद है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपका दिल बगैर किसी वजह के उदास रहने लगे तो समझ लें आपकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही है। ओहो अब्दुल्ला भाई सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया भाई, क्या बात है। ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या थी तुमको, बिल्ली ने कहा। आदम भाई ने तो यहां पर बाकायदा बिल्लियों का कन्वर्सेशन शुरू कर दिया भाई, क्या बात है साहब। ओके देन, तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक ब्रेक। आज जैसे कि मैंने बताया था कि विशाल डाडलानी क्या है बर्थडे।

साहब हरियाणवी तड़के के साथ इंजॉय कीजिए। बेबी को बेस पसंद है। विशाल डाडनानी खुद शलमली खोलगड़े और इशिता एंड बादशाह एक दूसरे का साथ देते हुए इंजॉय कीजिए। ट्रैक सन एंड साउंड पे सरवन मिर्जा आपके साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: Baby, को बेस पसंद है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: लता मंगेशकर और बहुत लोग इस गाने में मोहब्बत फिल्म का जबरदस्त सॉन्ग एंजॉय किया आपने।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: जी साहब वेलकम बैक हेलन पर सहलन बिल्कुल सन एंड साउंड पे इस वक्त सन तो अपनी रुबाब पे और साउंड आप लोगों की गूंज रही है। कुछ मैसेजेस और उसके बाद फौरन कॉल। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है लाल गोपाल गंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। आपके सारे प्रोग्राम अच्छे हैं लगता सारे प्रोग्राम अच्छे हैं लगते हैं सरवर भाई, काफी टाइम बाद मैसेज कर रहा हूँ यार, क्या बात है। अदनान इस वक्त हमारे साथ इंडिया से जुड़े हुए और हमें सुन रहे हैं, आई लव यू भाई यार, कमाल कर दिया यार, यही तो मोहब्बत है आप लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: भाई का यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत फोटो आया है, मतलब खादिम भाई का नहीं, उन्होंने नजारे का भेजा है। इस वक्त जो इस वक्त चील जो अंडा दे रही है इस मौसम में, हमारी अम्मा कहती थी, खादिम भाई ने वही मैसेज शेयर करा है। दिल खुश हो गया भाई कहते हैं। अच्छा साहब कौन है एचआर के, कैसे खुश हो गया ये तो बताइए, नाम क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाय अहलन व सहलन नसीम भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या बात है, तो क्या चल रहा है?
1: और
0: है
1: तेरे सोहबत का असर,
0: तेरी सोहबत, अच्छा शायरी से, अशायरी से, तेरी सोहबत का असर
1: ऐसा चढ़ा मुझ पे,
0: हा हा हा हा हा हा,
1: तेरे सोहबत का असर
0: ऐसा चढ़ा मुझ पे
1: कि लोग तेरा पता से पहले मेरा पता पूछ।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है साहब, क्या बात है, तेरी सोहबत का असर ऐसा चढ़ा मुझ पे कि लोग तेरे पते से पहले मेरा पता पूछते हैं। वाह वाह वाह, मैं भी कुछ ऐसे ही अब करने वाला हूं कि लोग मेरे पते से पहले आपका पता पूछे नसीम भाई। क्या क्या क्या ओके सो नसीम भाई फिलहाल तीन का दम खेलेंगे, रेडी हैं? देखते हैं, चलिए साहब तो शुरू करते हैं। ओके पहले दूसरे सवाल के लिए थोड़े से पन्ने पलट लूं, याद भी नहीं रहते अब तो। पानी का रंग क्या होता है?
1: जिस रंग में ढाल दीजिए पानी रंग जाएगा।
0: वाह अच्छा जवाब है यार नसीम भाई, नॉट बैड एट ऑल। ओके जमीन पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं?
1: जमीन पर तो सारी गाड़ी चलती, कोई एक फिक्स तो नहीं।
0: वेरी गुड, ऑल राइट, अच्छा जवाब है ये भी। तो जनाब आपकी वालिदा के एक लौते भाई की, एक लौती भाई बहन की सिर्फ एक औलाद है, बताएं उसका आपसे क्या रिश्ता है? मैं रिपीट करता हूं, आपकी वालिदा के एक लौते भाई की, एक लौती भाई बहन की सिर्फ एक औलाद है, बताएं उसका आपसे क्या रिश्ता है?
1: तो ये तो भाई भाई का रिश्ता हुआ ना,
0: भाई का रिश्ता हुआ,
1: भाई है तो भाई
0: एक ही। ओके चलिए भाई, आपका कहना यह है और इसका मैं जवाब अभी ओपन नहीं करना चाहता, मगर आपका जवाब भी रख लिया नसीम भाई मैंने, देखते हैं कि और लोग क्या जवाब देते हैं। सही है,
1: अच्छा
0: चलिए अच्छा है तो फिर अच्छा ही है। नसीम भाई जल्दी से ये भी बताइए कि सोच समझ के फैसले करते हैं लाइफ में या फौरन झट से एकदम?
1: थोड़ा तो समझते हैं,
0: थोड़ा तो समझते हैं। ओके और अगर मौका ही ना हो थोड़ा बहुत समझने का भी तो?
1: मौका मिल जाए तो, मौका तो मिले, थोड़ा दिमाग चलाने,
0: मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं नसीम, मौका मिलेगा तो बता देंगे। चलिए साहब ये भी अच्छी बात है बिल्कुल, तो ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ख्याल हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, शेयर बहुत अच्छा था आपका और शेयर करते रहा करिए, ऐसे ऐसे शेयर शेयर करते रहा करिए, ठीक है?
1: शुक्रिया।
0: ओके नसीम भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे नसीम भाई, बेहतरीन शायरी और

0: 377 आइए, यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे करते हैं बात। हेलो, सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: रहमतुल्लाह,
1: के मुनाशे दादा
0: तुम्हें। भालो, अच्छा मैंने अरबी और बंगाली मिला दी, अना भालो। मेरी तमिल और सिंगलम सब निकल गई थी।
1: एक तमिल एक मलयालम
0: दो। भाई यार क्या बात है साहब, क्या बात है, एंट्री हो तो ऐसी हो हमारे भाई जैसी। कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: माशाल्लाह। कैसा रहा वीकेंड आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अपने सब सेटलमेंट करते करते जितना, बल्कि ऑन ड्यूटी रखना उतना उतना भारी रहे उस दिन। अब सारे काम ये करके रखे रहते हैं, कपड़े से लेके सारी चीजें, अगर जुमे को कर लेंगे तो करते करते करते बस वो नमाज का टाइम हुआ, थोड़ा खाए पिए सोए, फिर घूमने के लिए थोड़ा निकलना ही पड़ता है एक दिन।
0: जरूरी है, मजबूरी है क्या करें। घूमने तो निकले गई आदमी।
1: हाँ, साग सब्जी नहीं लेके आओगे तो फिर पूरे हफ्ते के लिए वो भी थोड़ा सा, हर दिन तो मार्केट जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है।
0: क्या बात है यार,
1: होता है लेकिन भारी लगता है, और दिन भारी लगता है। उस दिन थोड़ा सा ऑफर भी होता है हल्का फुल्का।
0: नहीं मगर उस दिन वाकई जुमा छुट्टी, कोई भी छुट्टी वाले दिन हो वो इतना भारी लगता है, उसमें कोई भी काम करना हो पूरे हफ्ते सोचते हैं कि यार छुट्टी पे करेंगे, सोचते इसलिए हैं कि आसानी होगी छुट्टी वाले दिन, मगर छुट्टी वाला दिन इतना भारी हो जाता है हर काम के लिए भाई के बस उठाना जाए।
1: अरे बहुत बहुत बहुत बहुत सारे, मतलब कभी कभी तो बहुत बहुत से, मतलब ये होना यार, बल्कि ऑन ड्यूटी रहते हैं, ड्यूटी से आओ अपना ये किए अपना खत्म काम, और ये दूसरे दिन जो अपना ही काम सबमिट करते करते करते। हमारे मैम साहब ने कहा कि अरे भैया अकेले हो, अकेले हो। मैं बोला भैया चूल्हा जलाना ही पड़ता है, अरे भैया तुम बनाते हो दो चार आदमी का, हम बनाते भले, लेकिन कम से कम करना तो पड़ता है ना।
0: नहीं और यार दो चार आदमी तो हो ही जाते हैं भाई, वीकेंड आते आते दोस्त अहबाब कहीं ना कहीं या तो हम खुद होते हैं या हमारे यहाँ कोई होता है।
1: जो आप एक्टिविटी करती हो वही एक्टिविटी हमको करना पड़ता है भैया, कपड़े से छुट्टी तुमको मिले, सारी चीजें घर पे रहता है, कपड़ा आयरन करो धोके जो तुमको सारा रहता है, और फिर भी बोलते हो कि अरे वो तो एक आदमी के लिए क्या बड़ी बात है। मैं बोला हाँ ये बड़ी बात है,
0: यही बड़ी बात है जो आपने बताई। चलिए साहब आ जाते हैं अब 10-3 का दम की तरफ, मैं 10 का दम करने वाला था, 10 सवाल पूछ लेता। चलिए रेडी है?
1: जी जी, लास्ट में फंसा देते हो भैया।
0: नहीं नहीं नहीं फंसा, नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत आसान बहुत आसान। चाय पीते हैं या खाते हैं?
1: पीते हैं भैया, बंगाली अमर खाते हैं।
0: यही पकड़ लेता, अभी यही पकड़ लेता मैं, अच्छा हुआ बता दिया।
1: नेपाली भी हमारे खाते हैं,
0: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। हमारे बंगाली भाई, नेपाली भाई, कुछ लोग नेपाली भाई भी खाते हैं और बंगाली भाई भी खाते हैं। ओके चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं?
1: एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं भाई, किसी को एक्स्ट्रा भी हो सकता है लेकिन 5 नॉर्मल तो 5 उंगलियां होती हैं।
0: वेरी गुड। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप, नहीं चलो ये वाला सवाल नहीं पूछता, और आसान पूछ लेता हूँ। वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं? नहीं मगर ये वाला मैं पूछ चुका हूँ आपसे पहले, है ना?
1: शायद।
0: चलो अब और आसान की तरफ आते हैं। एक रुमाल के 4 कोने हैं, उसमें से 2 कोने कैंची से काट दिए तो कितने कोने बचे?
1: दो कोने कैंची से काट दिए। एक रुमाल के 4 कोने हैं,
0: 4 कोने हैं,
1: दो कोने कैंची से काट दिए
0: कितने बचे
1: भैया? 4 तो 4 के 4 ही बचेंगे, थोड़ा सा मतलब।
0: बिल्कुल गलत जवाब।
1: पता है कि आप मंतिक चल दोगे कुछ ना कुछ, मंतिक हमारे जो मंतिक पढ़ाया जाता था ना, वही मंतिक आप अपने लास्ट में फंसा दोगे मंतिक में। वो वो आप फंसाए थे जैसे महवस को, महवस भी आई बोली नौ साल वाला गधा जो है
0: अरे फिर मैं क्यों, क्यों याद दिला रहे हैं, क्यों मुझे महावेश साहिबा से पिटवाना चाह रहे हैं, एक बार खामोशी से निकल गया हूँ मैं उस गली से

0: ये बात गलत है भाई, कोई भी इंटरनेट का सहारा नहीं लेना है।
1: फाइनल आपने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं आज जब आप बता दिए थे तो मैं बोला यार अब जब आपने फाइनल कर दिया था 5 साल वाला तो मैं बोला यार लाओ आपसे एग्जीबिशन से लेता हूँ। तो उसने भी कहा यही मेहमत वाला जवाब है, 9 साल वाला इतने लोगों को बोला यार बोलते लास्ट में बोला मैं बोला भैया गधा तो गधा ही रहेगा, 5 साल जो कम उम्र का रहेगा। तो बोलता आप फिर मजाहिया ये कर रहे हैं, मैं बोला हाँ नहीं तो तुम्हारे गिल्ली डंडा खेलने आए हैं।
0: चैट जीपीटी वगैरह हमारे साथ मजाक कर रहे हैं।
1: अब बताओ भैया उनको मतलब हमारे
0: भाई को क्या बात है यार, क्या
1: भाई लपेट के। चलो भैया
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऑलराइट ख्वातीन हजरात, बच्चों बुजुर्गों दोस्तों, इस वक्त सन एंड साउंड पे 3 का दम जारी और सारी है और यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे, आइए इनसे बात करते। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जी, गुलजार भट्ट बात कर रहे
0: हैं। गुलजार भाई अहलन व सहलन, लॉन्ग टाइम, काफी दिन बाद तशरीफ लाए, कैसे हैं गुलजार भाई?
2: मेरा थोड़ा काम होता है इस टाइम से।
0: मैं समझ सकता हूँ, बस आप हमारे साथ जुड़े सुनते, अच्छा सुन पाते हैं, इतना टाइम मौका मिल जाता।
2: सुनता मैं गाड़ी में होते ना, सुनता जाते हैं रोड तक, मैं जाएगा सिटी सेंटर के पास, घर से भी निकला मैं, साइड में गाड़ी खड़ा कर दी थी।
0: क्या बात है, खैरियत से हैं और कैसा गुजर रहा है दिन आपका?
2: अल्लाह का कर्म है जी, बड़ा बेहतरीन जी,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो गुलजार भाई गेम खेलेंगे क्या
2: जी? बिल्कुल, बताएं आप थोड़ा सवाल कुछ।
0: चलिए ठीक है, मछली पानी में रहती है या हवा में?
2: पानी में।
0: एक साल में कितने महीने होते हैं?
2: 12।
0: आज अगर इतवार है तो कल क्या होगा?
2: कल तो किसने देखा है, कोई पता नहीं ना।
0: बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात गुलजार भाई, एक नंबर, बिल्कुल सही। मगर मैं फंसा सकता हूँ यहाँ पे, कल पीर होगा।
2: नहीं वो मैं बोला ना आपको, मैंने बोला
0: नहीं,
2: ना
0: आपने सही जवाब दिया, आपने सही जवाब दिया, आपने बिल्कुल बिल्कुल
2: कोने वाला मैं जवाब दे दूँ उसका।
0: अच्छा कोने वाला, नहीं नहीं मैं इसीलिए तो नहीं पूछा।
2: नहीं
0: तो वो नहीं, कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है, ऐसी बात नहीं गुलजार भाई। तो अभी मैं अभी मैं उसको पालना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। आपने सही जवाब दे दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह
2: वालेकुम
0: असलम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई किसी के लिए कुछ आसान, किसी के लिए कुछ मुश्किल, यही खूबसूरती है इस बात की। चलिए साहब तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्या कहते हैं, सांस ले लूं भैया। आहा, इस भरी दोपहरिया में बड़ा सूदिंग सा ये सॉन्ग, एंजॉय कीजिए। अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक साथ में,
3: क्यों ये तुझ पे मरता है,
0: पद्म भूषण अलका जी,
3: दिल क्यों थक थक करता है, क्यों ये तुझ,
0: क्या पद्मश्री मिला उनको, मिला है अभी कोई अवार्ड मिला है,
3: तुझको ही चाहे बार बार, हम तो दीवाने हुए यार,
0: दिल से देसी भाई।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। बिल्कुल सन एंड साउंड पे सरवर मिर्जा आपके साथ। और गलत बटन दबाया, यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि अब जाने का भी वक्त हो रहा है, तो उनसे पहले बात करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: नदीम भाई। नदीम भाई, यस यस यस यस। कैसे?
2: नमस्को चला गया था, ट्राइम के आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
1: ओके ओके ओके,
2: एंजॉय कर रहा था।
1: तो तीन का था
2: मैंने जी। तो मैं आज आपसे एक सिफारिश करना चाहता था कि एक गाना सुनने को बहुत दिल चाह रहा था। मैंने कहा शायद सरवर भाई से कहूंगा तो हो सकता है लगा दे।
1: क्या, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बताइए?
2: बिछड़े भी तो हम बस कल परसों।
1: ओ अच्छा, तो ये मूवी कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रही।
2: पाकिस्तान की एक वो थी कलाकार, उनका शायद गाना था लंबी जुदाई।
1: ओके ओके ओके, लंबी ओके जुदाई। मैं कोशिश करता हूं साहब के लगा जाऊं और आप इंजॉय करें। तो चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो साहब ये थे नदीम भाई हमारे साथ और सुनना चाहते हैं अपना मनपसंद गाना। तो कोशिश करता हूं भाई, आप पता नहीं कि मैं सही लगा पाऊंगा या नहीं, फिलहाल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, शायद कामयाबी तो हुई है। तो जनाब चलिए इसी के साथ अब आज के लिए मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं। आपसे थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे समर स्पोर्ट्स, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीन साहब के साथ, जहां पर आपको स्पोर्ट्स की दुनिया से सारी मालूमात हासिल होगी। फिलहाल सरवर मिर्जा को आज के लिए इजाज़त दीजिए। और इसी नोट के साथ छोड़ जा रहा हूँ कि भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। ये जो डेली की बातचीत है, वार्तालाप है, इससे बस यही सोच रहती है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अगर सीखने के लिए मिल जाए, समझने के लिए मिल जाए, और मुझे सीख और समझने के लिए मिल जाए, तो फिर कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हो ही रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और ये चलते चलते नदीम भाई ने रिक्वेस्ट कर दी, तो मैंने कहा कि चलिए साहब इस गाने के साथ छोड़ जाते हैं आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर स्पोर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। वक्त हो चला है 1:01 हमारी घड़ी जो है स्टूडियो की घड़ी, और यहां पर समर स्पोर्ट्स में बात होगी फुटबॉल वर्ल्ड कप की। एंड फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, समर में फुटबॉल ही फुटबॉल तो होती रहता है पूरे साल भर, लेकिन ये समर सीज़न में फुटबॉल वर्ल्ड कप बिल्कुल

छाया हुआ है। एंड दोस्तों बिफोर आई बिगिन दिस प्रोग्राम एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ूंगा सो दैट आप लोग इसमें बिजी हो जाएं और मेरे साथ जुड़े रहें और आपको एक सवाल पूछने और सवाल ये है कि मौजूदा वर्ल्ड कप में अफ्रीका से, जी हाँ दोस्तों अफ्रीका से कौन कौन सी टीमें पहली बार शिरकत कर रही हैं और आपको ये बताना है 666-22-107 पर और इस पर आप जुड़ सकते हैं विथ योर इनपुट्स एंड ओपिनियन ऑन स्पोर्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का जो है मेजर हाईलाइट। मेजर हाईलाइट्स में क्या है मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो ग्रुप स्टेज था ना वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि आज सुबह के जितने भी मैचेस थे कतर टाइम में जो सुबह के मैचेस थे वो ख़त्म हो गया है एंड इसी के साथ साथ ग्रुप स्टेजेस के मैचेस ख़त्म हैं और जो टोटल टीमें जो 32 टीमें जो नेक्स्ट राउंड के लिए पहुंच चुकी हैं वो अब नॉकआउट फेज है। ठीक है नॉकआउट का मरहला जो है आपको पता है जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो घर वापसी करता है एंड आज रात दोहा टाइम 10 बजे जो राउंड ऑफ 32 का जो स्टार्टिंग मैच है वो आज होने जा रहा है और मैच तो देखिए किसका है कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका का। अच्छा मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली मर्तबा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप की तारीख में किसी मेज़बान टीम को दूसरे कंट्री में खेलना पड़ रहा है और वो है कनाडा। कनाडा वन ऑफ द मेज़बान टीम और उनको खेलना है लॉस एंजलिस स्टेडियम में इंग्लैंड में जहाँ पर उनका सामना होगा साउथ अफ्रीका से। ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि मेज़बान टीम पहली मर्तबा हो रहा है कि कभी भी किसी मेज़बान टीम ने कभी दूसरे मुल्क में जाके मैच नहीं खेली है तो पहली मर्तबा होने जा रहा है। कनाडा वन ऑफ द जैसे मैंने बताया मेक्सिको अमेरिका और कनाडा ये तीनों ममालिक जो है इस बार का वर्ल्ड कप जो है दे आर होस्टिंग इट जॉइंटली दे आर होस्टिंग इट और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज कनाडा का जो मैच है वो होने जा रहा है इन यूएसए। सो दोस्तों ये एक फैक्ट है जो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा राउंड ऑफ 32 में मैचेस जो बहुत प्रेडिक्टेबल मैचेस हैं वो मैं समझता हूँ कि कुछ मैचेस ऐसे हो गए हैं कुछ पेयरिंग्स ऐसे हो गए हैं जो कि नहीं होना था एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैच जो है वो है नीदरलैंड्स मोरक्को परसों को है। ये एक क्लासिक मैच होने जा रहा है एंड आई बिलीव दैट मोरक्को के ऊपर काफ़ी लोगों ने अपना जो कहते हैं कि फेवरेटिज्म जो बात है मोरक्को के लिए है और कह रहे हैं लोग कि मोरक्को हो सकता है कि नीदरलैंड्स को अपसेट कर दे। हालांकि मोरक्को इज अ फिफ्थ नंबर पर है ऑन द वर्ल्ड रैंकिंग पर फीफा के रैंकिंग पर फिफ्थ नंबर पर है। सो मोरक्को देखा जाए दे आर नॉट रियली द सुपर पावर इन वर्ल्ड फुटबॉल। नीदरलैंड्स डेफिनेटली इज अ सुपर पावर। तीन मरतबा दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल 74, 78 एंड 2010। तो दोस्तों नीदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को ये एक मैच है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जरूर देखिएगा एंड ये परसों है। अब टाइम जो है सुबह 4 बजे यानी फजर की नमाज पढ़ते ही आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो तभी बैठिएगा टीवी के सामने। और एक और मैच के बारे में तो देखा जाए तो काफ़ी मैचेस इस तरह के इंटरेस्टिंग मैचेस होने जा रहे हैं और उसमें फ्रांस और स्वीडन ये है बुध को और एक मैच है अमेरिका बोस्निया हर्जेगोविना जो कि वीकेंड यानी जुमेरात को होने जा रहा है। ये भी कमाल का होगा बिकॉज बोस्निया हर्जेगोविना एक सरप्राइजिंग टीम है इस वर्ल्ड कप में और देखने वाली बात ये होगी कि क्या दे विल स्टॉप अमेरिका फ्रॉम क्रूजिंग इनटू द राउंड ऑफ 16। पोर्चुगल क्रोएशिया, जी हाँ दोस्तों पोर्चुगल क्रोएशिया कमाल के मैच है ये एंड वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इज गोइंग टू फिनिश। क्रोएशिया आपको पता है 2022 कतर वर्ल्ड कप में थर्ड पोजीशन हासिल की थी और क्रोएशिया इस मरतबा थोड़ा सा धीरे धीरे दे आर जस्ट प्राइमिंग लेकिन क्या पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोक लेगा या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को रोक पाएगा। ब्राजील वर्सेस जापान ये मैच कल है दोहा टाइम 8 बजे ब्राजील जापान। इनफैक्ट जापान फुटबॉल जो है ब्राजीलियन लेजेंड जीको से मुतासिर होने के बाद जापानीज फुटबॉल हैड रियली रियली गॉन दैट लेवल। इसके मैं आपको इसके पीछे एक रीज़न है बता देता हूँ। 1992 में जीको साहब जो हैं कतर में भी आए थे अलग्राफा स्पोर्ट्स क्लब को उन्होंने कोचिंग भी किया और इराक के कोच भी रह चुके हैं एंड इसके बाद कई यू नो कोचिंग असाइनमेंट्स उन्होंने ली भी हैं एंड इससे पहले जीको साहब बहुत बड़े प्लेयर थे ब्राज़ील के। तो 1992 में अपने जब यू नो एंड ऑफ हिज करियर वो जापान खेलने गए। इनफैक्ट जापान के फुटबॉल एसोसिएशन के लोग

उन्हें बुलाया भी था कि आइए आप हमारे जे लीग में खेलिए। जापानीज लीग वॉज नोन टू बी जे लीग एंड जे लीग में खेलिए। और जीको वहाँ बेसिकली जीको को एक गुरु यानी उस्ताद की तरह वो माने और उनसे पूछा गया कि जापानीज फुटबॉल को हम कैसे आगे ले जाएंगे। तो जीको का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम रहा है टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ जापानीज फुटबॉल। और बात यह है कि 1992 यानी 1992 और 1998 6 सालों के अंदर जापान प्लेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड कप। 6 सालों में जापानीज लोगों के बारे में मैं सुना हूँ और जापानीज लोगों के बारे में एक अच्छी बातें यह है कि वो सुनते हैं जिनसे जिनके पास नॉलेज है, वो सुनते हैं, वो अपने नॉलेज को जाहिर नहीं करते हैं या उनको ओवररन नहीं करते हैं, वो सुनने वालों में से हैं। और कहते हैं ना कि आप जिनसे सुनेंगे वो अगर नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा कोई है, कोई समझदार है, तजुर्बेकार है, उसको आप सुनिए। सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप अपना ही थोपिएगा। तो जापानीज पीपल के बारे में, जापानीज आवाम के बारे में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सुनते हैं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इल्म है। और यही बात हुई, देखिए जो मैजिक हुआ है 1998 यानी सन 1998 से लेकर 2026 तक, जापान इज़ द ओनली एशियन टीम हु हैज़ सक्सेसफुली प्लेड इन ऑल द वर्ल्ड कप। सारे वर्ल्ड कप्स में जापान की टीम मौजूद है, ना कि वर्ल्ड कप बाकी एशियन चैम्पियनशिप्स में भी, एशियन कप्स में भी जापानीज टीम हर तरह से दे आर ऑल ओवर। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक टू द जापान फुटबॉल टीम। लेकिन ब्राज़ील, लोग कहते हैं कि ब्राज़ील को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड ब्राज़ील सडनली दे फाउंड देयर फॉर्म अंडर देयर इटालियन कोच कार्लोस अंसेलोटी। या दोस्तों फर्स्ट टाइम एक फॉरेन कोच आकर ब्राज़ीलियन फुटबॉल में, यूरोपीय कोच हैं वो और इटालियन है, और कार्लोस अंसेलोटी वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल यूरोपियन कोचेस में से एक हैं। और उन्होंने ब्राज़ीलियन फुटबॉल की जो थोड़े से इसके जो आई वुड से जो यू नो जो गैप्स हैं, उस गैप को उन्होंने फिल किया है और सही तरह से इस टीम को लीड कर रहे हैं, आई मीन कोचिंग करवा रहे हैं। और उससे नतीजा देखिए कि गोल्स हो रहा है, विनीसियस जूनियर यू नो वो कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। जहां रियल मद्रिद के लिए वो खेलते हैं उसी अंदाज में ब्राज़ीलियन टीम के लिए वो खेल रहे हैं इन दिनों। एंड ब्राज़ील डेफिनेटली वन ऑफ द सुपर स्टार, क्या मतलब लेजेंडरी टीम ऑफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो दोस्तों ये तो रही है, आई मीन दिस इज़ द टॉक्स ऑफ द राउंड ऑफ 32। और भी मैचेज हैं राउंड ऑफ 32 के, मैं आपको बताऊँगा कि अफ्रीका से और एशिया से और कौन कौन सी टीमें दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। लेकिन आप बने रहिए, जुड़े रहिए एनएफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: जी वेलकम बैक। सरफिरा रुकेगा कहाँ, सरफिरा तो मैं नहीं कर सकता कपोवार्डे के बारे में। कपोवार्डे, जी हाँ कपोवार्डे वन ऑफ द ब्रिलियंट टीम्स दैट हैव कम फ्रॉम अफ्रीका। और देखिए ना पहली बार यू नो दे आर क्वालिफाइड एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। वोजीना को सुपरमैन कहें या कुछ भी कहें, मतलब ही इज लार्जर देन लाइफ पिक्चर राइट नाउ ऑफ कपोवार्डे। एंड कपोवार्डे के जो गोलकीपर हैं 40 साल, यू नो ही इज़ जस्ट टू मच। एंड और जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के जरिए सबको मुतासिर किया, इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर। फुटबॉल के जितने भी शायकीन हैं, फुटबॉल के जितने प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उस जनरेशन के लिए आई थिंक कपोवार्डे इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट एग्जाम्पल। ये दोस्तों अब बात हो रही है कि राउंड ऑफ 32 के में कौन कौन सी टीमें आगे बढ़ गई हैं, और उसमें से तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि अफ्रीका से 9 कंट्रीज जो हैं दे हैव क्वालिफाइड। और पहली मरतबा 10 में से 9 ममालिक जो हैं दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। इट्स अ ब्रिलियंट अचीवमेंट फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एंड दूसरी बात ही कि एशिया से ओनली 2 कंट्रीज यानी 2 ममालिक ऑस्ट्रेलिया से हैव क्वालिफाइड। एंड ये एक बात है कि जो आने वाले टाइम में एशियन फुटबॉल को थोड़ा सोचने में मजबूर करेगा कि क्या हो क्या रहा है एशियन फुटबॉल के साथ। हाँ कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जो हमें मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस हैं, जो इंसिडेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। देयर हैज़ बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर एशियन फुटबॉल टीम्स के एक इसमें कुछ डिसीजंस गए हैं, और ये बात की बात है ऑन द रेफरिंग इश्यूज, रेफरिंग कंट्रोवर्सीज जो हुए हैं, वी कैन टॉक मच लेटर ऑफ द रिकॉर्ड में। लेकिन एशियन टीमों के बारे में अगर ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ या बताऊँ, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट एशियन फुटबॉल की राइज हुई है। एंड एशियन फुटबॉल के जो अपस्केल परफॉर्मेंसेज हैं इस 2026 वर्ल्ड कप में वो काबिले तारीफ है। एंड दैट इज़ लेड बाय जापान। दोबारा बता दूँ, जापान इस फुटबॉल टीम एशिया नंबर 1 टीम है, और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पहले एशिया में दे वर नॉट देयर, एशियन कॉन्फेडरेशन में ये टीम थी नहीं पहले। 2006 से दे हैव जॉइंड एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी AFC को, तो चलिए मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया नाउ। और ऑस्ट्रेलियन टीम दे हैव ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। सो 2 एशियन टीमें और 9 अफ्रीकी टीमें जो हैं राउंड ऑफ 32 में जगह बना लिए हैं। एंड वी ऑल कैन सेलिब्रेट फॉर अफ्रीका एंड एशियन टीमें। अच्छा, अफ्रीकन टीमों में अल्जीरिया भी शामिल हैं, इजिप्ट भी शामिल हैं, और अरब ममालिक की बात करूं तो इजिप्ट और अल्जीरिया। एंड इजिप्ट की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है पहली मरतबा। देखिए आपको बता दूं कि इजिप्ट जो है फर्स्ट अफ्रीकी टीम जिन्होंने क्वालिफाई किया था फॉर द वर्ल्ड कप इन 1934 की बात है। लेकिन तब से लेके आज तक इजिप्ट की टीम के पास कोई विन वाली रिकॉर्ड नहीं थी। फाइनली 2026 टर्न्स आउट टू बी अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर देम, और पहली मरतबा दे वन अ मैच। एंड मोहम्मद सलाह को हमने देखा गोल करते हुए। सो एक बहुत बड़ी बात है जो एक्सपेक्टेशन जो मिस्र के लोगों के, जो अरब खित्ते के लोगों के दिलो दिमाग में था कि मिस्र इस बार कुछ कर पाएगा, कुछ कर लेगा। लेकिन हर मरतबा उनको थोड़ा सा नाखुश होना पड़ता था, थोड़ा सा मायूस होना पड़ता था कि भाई हमारी टीम यानी इजिप्ट की टीम कब कुछ करके दिखाएगी। फाइनली दे हैव रिजन अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस, एंड इजिप्ट टीम आर प्लेइंग इन द राउंड ऑफ 32। एंड उनका सामने होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का। और कैबो वर्दे की बात जो मैंने की, कैबो वर्दे विल प्ले दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना। कोई बात नहीं, दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना। और पिछले वर्ल्ड कप की बात करूं तो अर्जेंटीना हैज रियली मैच देयर परफॉर्मेंस दिस साल। होता है क्या कि नॉर्मली हम दिफाई चैंपियंस को देखते हैं कि पहली दफा जीतने के बाद, पहली दफा से मुराद यह कि उन्होंने अपने जो टाइटल जीता था 2022 में, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इस चैंपियन टीम नॉर्मली जो डिफेंडिंग चैंपियंस होते हैं उनके परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन इस मरतबा अर्जेंटीना सुपर शॉट्स, सुपर फ्लो जा रहे हैं टीम। और कल भी देखिए मैच में, अगर जॉर्डन के साथ मैच की बात करूँ, ऑब्वियसली इट वॉज अ डेफिनेटली नॉट अ वन वे ट्रैफिक, मतलब एक साइडेड वन साइडेड मैच तो नहीं था. यू नो जॉर्डन की टीम बाहर होने से पहले चली, उन्होंने एक कंसोलेशन गोल तो किया अगेंस्ट अर्जेंटीना. आई मीन वो कह तो सकते हैं जॉर्डन वापस जाके कि हमने जो डिफेंडिंग चैंपियन, जो वर्ल्ड चैंपियन है, अर्जेंटीना के खिलाफ हमने एक गोल किया था. एंड अर्जेंटीना के लिए अगेन लियोनेल मेसी, कमाल हो गया भाई. लियोनेल मेसी 80th मिनट में गोल करके नाउ ही इज ऑन द टॉप ऑफ द गोल स्कोरर्स लिस्ट. आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये बंदा ले ही जाएगा अपने फाइनल वर्ल्ड कप में. जबकि कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि 2000 यू नो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है 2030 वर्ल्ड कप, उसमें भी मेसी साहब कह रहे हैं कि मैं खेल लूंगा. ये बात की बात है. आई मीन देखनी पड़ेगी, आई मीन हाउ ही कैन प्ले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. बट फॉर द टाइम बीइंग लियोनेल मेसी इज ऑन द आई थिंक प्रोबेबली इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा कि यू नो इन इज पीक में नज़र आ रहे हैं. एंड 6 गोल के साथ साथ ही इज लीडिंग द शॉट, आई मीन लीडिंग द ऑल गोल स्कोरर्स लिस्ट में इन 2026 के वर्ल्ड कप. और उसके पीछे ही हैं किलियन एम्बापे, उनसे पीछे हैं उस्माने डेम्बेले. उस्माने डेम्बेले ने परसों फ्रांस के लिए एक हैट्रिक किया. एंड पहली मरतबा उस्माने डेम्बेले, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ये सब कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. यू नो किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं, वो भी 4 गोल, और उस्माने डेम्बेले 4 गोल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं दोनों फॉर्मर पीएसजी के खिलाड़ी हैं. और आज उस्माने डेम्बेले जो है ये करंट प्लेयर हैं इन पीएसजी. और बात ये है कि उस्माने डेम्बेले की जो हैट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये हैट्रिक एक तरह से एक यूनिक रिकॉर्ड सेट किया गया. और ये यूनिक रिकॉर्ड ये है कि 35 मिनट के अंदर अंदर द फास्टेस्ट हैट्रिक इन अ फीफा वर्ल्ड कप हुआ है. पिछले आई वुड से कि 6-7 एडिशंस पहले हुआ होता. एंड आज उस्माने डेम्बेले ने अगेंस्ट जो मैच हुआ था परसों, उस मैच के अगेंस्ट में आई मीन उस मैच के दौरान जिस तरह से फ्लो ऑफ गोल्स अगेंस्ट नॉर्वे उन्होंने किया, ऐसे काबिल तारीफ है. ऑल लेफ्ट फुटर्स, ऑल फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉक्स एंड 20 यार्ड के यू नो जो डिस्टेंस में उन्होंने जिस तरह के शॉट्स लिए वो देखने लायक है. वो बंदा कमाल का बंदा है. बहुत सालों से बार्सिलोना में खेलने के बाद फाइनली उस्माने डेम्बेले जो है पीएसजी में आकर दिखाया कि ही इज अ रियल टैलेंट. और आप मुझे देखिए और आप मेरा जो कारकर्दगी है वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. डेफिनेटली वी डिडंट यू नो इन इग्नोर उस्माने डेम्बेले. सो ओवरऑल दिस इज अ पिक्चर आई कैन शेयर विथ यू. और थोड़ा एक बार बता दूं कि आज रात राउंड ऑफ 32 नॉकआउट स्टेज फर्स्ट मैच जो है दैट इज गोइंग टू हैपन, कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका. दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द डे. अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, जो सवाल पूछा था कि इस बार 2026 वर्ल्ड कप में, मौजूदा वर्ल्ड कप में अफ्रीका से कौन कौन सी टीमें पहली बार शिरकत कर रही हैं. आपको ये बताना है 666-2107 पर. दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मौजूदा वर्ल्ड कप में अफ्रीका से कौन कौन सी टीमें पहली बार शिरकत कर रही हैं. ये आपको लिख के बताना है आपके नाम के साथ 666-2107 पर. दोस्तों ये इराक और माफ़ करना, ये मिस्र और जो मिस्र और ईरान का जो मुकाबला हुआ था 1-1 गोल पर ड्रॉ रहा. एंड इस मैच को काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी तादाद में यू नो लोगों ने तारीफ भी की, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस सो फार. ये और बात है, बड़ा ही अफसोस की बात है कि ईरान के अगेंस्ट ये ऑफसाइड रूल की वजह इस मैच को ड्रॉ रखना पड़ा. एंड ईरान इन द लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम उन्होंने गोल भी किया था. और आज भी एक कंट्रोवर्शियल इस बात को लोग मान रहे हैं.

कि ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि सबको लगा कि वो ऑफसाइड जिन खिलाड़ी ने गोल किया था वो ऑफसाइड में वो नहीं थे एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर टाइम बीइंग और आने वाले टाइम में मुस्तकबिल में भी हम इस बारे में बात करेंगे क्या ईरान वाज़ द डिजर्विंग विनर और नॉट विनर ये तो बात की बात है लेकिन डाउन द लाइन ऑफ द वर्ल्ड कप की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे डिसीजन जो हैं आज भी हम बात करते रहते हैं 1966 वर्ल्ड कप फाइनल में जहां पर इंग्लैंड की जीत हुई थी एंड अगेंस्ट जर्मनी आज भी लोग कहते हैं कि एक गोल ऑफ जो फर्स्ट वॉज नॉट अ गोल क्योंकि वो गेंद जो है गोल लाइन के ऊपर टप्पा खाते खाते खाते वो वहीं रुक गई थी बॉल लेकिन रेफरी ने फाइनल डिसीजन दे दिया था 1986 के वर्ल्ड कप में डियागो माराडोना का जो हैंड ऑफ गॉड गोल था वो भी कहते हैं कि हाथ से किया गया गोल है एंड एक्शन रिप्ले और टीवी रिप्ले से ये साफ साफ लगा कि दैट वाज नॉट अ गोल डेफिनेटली अगेंस्ट इंग्लैंड अगेंस्ट पीटर शिल्टन को बीट करते हुए हाई जंप लेते हुए डियागो माराडोना ने उनके सर के ऊपर से इस बॉल को एक चांटा लगाया था एंड आज भी लोग कहते हैं कि दैट वाज नॉट अ गोल लेकिन ये सब दब गया बिकॉज इसीलिए कि डियागो माराडोना उसी मैच में जो गोल किया था जो सेकेंड गोल डियागो माराडोना ने किया था दैट इज कंसिडर्ड टू बी पिछले 100 सालों की सबसे जबरदस्त गोल रहा है सो डियागो माराडोना स्टिल यू नो एज अ लेजेंड टुडे आज भी हम उनको याद करते हैं एंड आज भी एक बात होती रहती है कि क्या वो गोल था ट्यूनिशियन रेफरी ने कह दिया था कि ये गोल था लाइन्समैन ने कह दिया था ये गोल था चलिए गोल था देन 2002 में भी इस तरह के एक वाकया हुआ था इन फीफा वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप में साउथ कोरिया वर्सेस इटली के दरमियान एक मैच हुआ था आप लोगों को पता है एंड दैट मैच एक्चुअली इटली को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था नॉकआउट मैच था एंड साउथ कोरिया क्रिएटेड हिस्ट्री एंड उसमें रेड कार्ड्स मिले थे टोटी को यू नो फ्रांचेस्को टोटी वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर्स फ्रॉम द इटालियन फुटबॉल टीम उनको रेड कार्ड मिला इटली के अगेंस्ट में गोल को डिसअलाउ कर दिया गया था बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए थे उस टाइम में और आज लोग ये कह रहे हैं कि इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद इतने हिचकिचाहट क्यों है भाई अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है आपके पास वार है आपके पास एक टीम ऑफ रेफरीज हैं नॉट रेफरीज आई विल से मैच ऑफिशियल्स हैं रेफरीज तो एक मेन रेफरी होते ही हैं और साइड में आपके दो असिस्टेंट रेफरीज होते हैं प्लस गोल पोस्ट के पीछे भी रेफरीज होते हैं जो कि आपके पीछे के जो गोल लाइन जो कंट्रोवर्सीज उसको थोड़ा सा कम करने के लिए देन आपके पास वार है यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी या वीडियो असिस्टेंट रेफरी एक तरह से एक मेगा प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है उनके लिए क्योंकि जो भी छोटी छोटी चीजें हैं फाउल्स रेड कार्ड्स येलो कार्ड्स बॉल के ऑफसाइड थी और नहीं थे और ये सब चीजें तमाम चीजें क्या प्लेयर ने उस प्लेयर को फाउल किया था क्या उन्होंने धक्का मारा था या कोनी मारी और इस तरह की बातें होती है तो वार के जरिए ये डिसीजन लिया जाता है लेकिन प्यार लाल अब बात यह है कि ये विल गो डाउन इन टू द कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस ऑफ ईरान वर्सेस इजिप्ट का मैच और उसमें ईरान इस ड्रॉ से तीनों मुकम्मल आई मीन ये मैचेस मुकम्मल करने के बाद ग्रुप मैचेस ईरान के पास 3 पॉइंट एंड इस 3 पॉइंट वॉज नॉट इनफ फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32 तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप की बातें हुई और समर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप ही अभी इन दिनों काफ़ी यू नो ऑन द टॉप ऑफ इट अब देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कुछ मैसेजेस किए हैं एक बार देख लेते हैं एंड मोस्टली जो मैं देख रहा हूँ इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉल कि अफ्रीकन टीमों में से पहली मर्तबा किस टीम ने क्वालिफाई की है इस 2026 वर्ल्ड कप में जो मौजूदा वर्ल्ड कप है और आज जिसका नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 स्टार्ट होने जा रहा है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से तो डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन आप लोगों के हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दे पाए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इस टीम के बारे में मैंने जिक्र भी किया है अभी थोड़ी देर पहले कबो वारदे इस वाहिद अफ्रीकन मुल्क एक जजीरा नुमा मुल्क हैं और इस टीम ने एक तारीख रची है एंड दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के लिए एंड फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन राउंड यानी आउट से कि नॉकआउट स्टेज के लिए राउंड ऑफ 32 में यह और बात है कि उनका सामना होने जा रहा है अर्जेंटीना का सो एनीवे आप उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को अपने एंजॉय किया और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम के साथ आप लोग जुड़े और अगले इतवार को हम फिर हाजिर होंगे माफ़ करना अगले मंगल को हफ्ते में दो मरतबा ये प्रोग्राम को पेश करता हूँ तो इस कुछ दिलचस्प स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ खासतौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज के साथ जो कनाडा अमेरिका और मेक्सिको में मुनक़िद हो रहा है तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़, यानी इट्स टाइम फॉर,
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: So yes, my Desi audience, welcome back. कैसे हैं आप सब on FM 107? हाँ भाई, हफ्ते का पहला दिन, आई एम वेरी श्योर कि आज चकाचक होंगे, एनर्जी बिल्कुल फुल ऑन होगी, क्योंकि दो दिन की छुट्टी के बाद आप आ चुके हो यार। अब तो दोपहर हो गई है, सुबह सुबह का आलम होता है जब थोड़ा सा लगता है हाय, थोड़ा सा ड्राउजी हो रहे हैं, काश एक दिन छुट्टी और मिल जाती या थोड़ी देर और सोने मिल जाता। लेकिन अब ये टाइम है जब आँखें पूरी तरह से खुली होती हैं, लंच के लिए हम जा रहे होते हैं या घर के लिए निकल रहे होते हैं या ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एंड वी आर वेरी एक्टिव। एंड दिस इज द राइट टाइम कि आप मेरे साथ जुड़े हैं एस्केप रूम शो में, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड की सही एक्सरसाइज होती है। डोंट यू थिंक सो? वेल, आज की सिचुएशन क्या होने वाली है जनाब? आज मैंने सोचा कि कहीं आपको ऐसी जगह फंसाया जाए जहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी का एहसास हो, नेचर को आप एकदम क्लोजली महसूस कर सकें। हाँ, जितना आप हरियाली देख के खुश होएंगे उतना ही स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, बिकॉज ये हरियाली पहली चीज़ आपको सुकून देगी, दूसरी चीज़ आपको ट्रैप कर लेगी। तो ट्रैप होने से बचना है तो अपने दिमाग को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर लीजिए, चुस्त कर लीजिए। चाहे आपको करक एंजॉय करनी है, कॉफ़ी पीनी हो, जूस पीना हो, खाना खाना, जो भी करना है अभी करें, बिकॉज आपको मैं टाइम दे रही हूँ दो गानों के ब्रेक का। एंड आफ्टर दैट जब मैं वापस आऊँगी तो आज के एस्केप रूम की सिचुएशन आपके सामने होने वाली है। So are you ready guys? अगर रेडी है तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए 6622107 पर। 6622107 इज आवर नंबर अपने नाम के साथ। और अभी के लिए भाई देखो, ये रेट्रो गाना है लेकिन एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: Yes, and now welcome once again FM 107। सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तो एस्केप रूम की आज की सिचुएशन के लिए आप तैयार हैं? वेल, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जिन्होंने अभी हमें मैसेजेस किए गुड आफ्टरनून के, हेलो हाय के, सलाम के, और सब ने जो कहा है कि हम तैयार हैं, भाई आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। एंड अभी के लिए आपको क्या करना है, तसव्वुर करना है कि आप एक अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। देखिए, आज का जो मंज़र है ना, वो थोड़ा सा खौफनाक है। हाँ, क्योंकि पहली चीज़ तो आप जब अमेज़न के घने जंगलों से गुजर रहे हैं एंड आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो यू फीलिंग द ब्रीज, उफ क्या ताज़ी ताज़ी हवा तेज़ी से चल रही है, यू रियली इंजॉइंग, वाओ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अब आप ऐसे जंगल में हैं जहाँ सूरज की किरणों को भी ना ज़मीन तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मतलब इतना घना है। वहाँ पर आप क्यों हैं? क्योंकि आज आप एक मेडिसिनल प्लांट की खोज में वहाँ गए हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप रास्ता थोड़ा सा भटक गए हैं, क्योंकि आपके आसपास जो पेड़ पौधे थे, जो बेलें थीं, उन सब ने मिलकर आपके रास्ते को रोक दिया है। आपको समझ नहीं आ रहा है अब जाए तो जाए कहाँ। ये वक्त ऐसा है कि सूरज ढल रहा है और जंगल की जो डरावनी आवाज़ें हैं, हाँ डरावनी आवाज़ें, वो अब आना शुरू हो गई हैं और आपको डर भी लग रहा है।

कि कहीं आप इन डरावनी आवाजों के शिकार ना हो जाए। आपने अपनी हिम्मत को थोड़ा सा बटोरा हुआ है और आपने कहा चलो कोई बात नहीं, जंगल आज मुझे चैलेंज कर रहा है, इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। ठीक है, हालात थोड़े से नाजुक हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अब एकदम से आपकी नजर जमीन की तरफ गई तो जमीन भी दलदली है, मतलब ऐसी जमीन जहां आप धीरे धीरे धीरे धसते जा रहे हैं। आप चल रहे हैं, धस रहे हैं, चल रहे हैं, धस रहे हैं, मतलब दिक्कत बड़ी आ रही है आपको, किसी तरह आप मैनेज कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से जमीन ने आपको अपने अंदर नहीं लिया है, हाँ, लेकिन ये माहौल बना हुआ है। आपकी नजर यहां वहां कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई रिडल, कोई ना कोई पजल ढूंढ रही है कि कहीं से तो कुछ मिल जाए, हम यहां से बाहर निकले। एंड सडनली आपकी नजर गई एक बड़े पुराने से पेड़ पर, वहां आपका क्लू नंबर 1 लिखा है। आपने और गौर से देखा तो ये रहा, मेरे पास एक बेड तो है, मेरे पास एक बेड यानी बिस्तर तो है, मगर मैं कभी सोती नहीं हूं। मेरा एक मुंह है पर मैं कभी बोलती नहीं हूं। मैं हमेशा दौड़ती रहती हूं मगर मेरे पैर नहीं है, बताएं मैं कौन हूं। देखिए ये बहुत आसान पहेली है, आपको बताना चाहूंगी कि ये पहेली मैं कई बार आपसे पूछ चुकी हूं। हाँ, अब आप सोचें इससे बड़ी हिंट क्या हो सकती है। चलें फिर से दोहराती हूँ, मेरे पास एक बिस्तर है, एक बेड है, मगर मैं कभी सोती नहीं। मेरा एक मुंह है पर मैं कभी बोलती नहीं। मैं हमेशा दौड़ती रहती हूँ मगर मेरे पैर नहीं है, बताइए मैं क्या हूँ। सही जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 666-22107 पर, 666-22107। और इस वक्त आप अमेज़ॉन के जंगल में हैं और आप इमेजिन करें जब आप जंगलों में होते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिख सकती हैं, कौन सी वो चीज़ है जो जिंदगी देती है ना। इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकती मैं, कम ऑन थिंक अबाउट इट। तब तक मैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक में लेके जाती हूँ। एंड यू गोना लव दिस सॉन्ग, भाई आपकी एंट्री हुई है तो ये गाना तो लाजमी बनता है। एंजॉय इट, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. कहां चल के जा रहे हैं आप? वेल, आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है. आप अमेज़न के घने जंगलों के बीच हैं क्योंकि आप वहाँ पर एक मेडिसिनल प्लांट की खोज के लिए गए थे. बट समहाउ ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पर सूरज की रोशनी को भी पेड़ों तक पहुँचने के लिए, ज़मीन तक पहुँचने के लिए, एक्चुअली पेड़ों में भी जद्दोजहद चलती है, लड़ाई झगड़ा जिसे कहते हैं. हाँ, अब आप अंदर हैं, रोशनी थोड़ी कम है, सूरज ढलने का भी वक्त हो चुका है और जितने पेड़ पौधे हैं, बेले हैं, उन्होंने आपके रास्ते को रोक दिया. मतलब जहां से आपने एंट्री ली थी, अब वो रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा. परेशान तो आप हो चुके हैं, लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा संभाला हुआ है. अब क्योंकि सूरज ढल रहा है तो जंगलों में आवाजें भी आ रही हैं. अब इस जंगल की आवाज से आपको डर लग रहा है कि कहीं आप इन आवाजों का शिकार ना हो जाए. चले कोई नहीं, जहाँ हमारे पास हमारा दिमाग है वहाँ हम किसी भी चीज़ का शिकार नहीं होंगे. हम रास्ता ढूंढेंगे और बाहर निकलेंगे. अब दिक्कत ये भी है कि जो ज़मीन है वो धीरे धीरे दलदली भी हो रही है. मतलब आप चल रहे हैं, आपके पैर धंस रहे हैं, फिर चल रहे हैं, पैर धंस रहे हैं, तो आप बड़ी मुश्किलों से अलग अलग जगह पर पहुँचेंगे, एकदम हल्के हल्के पैरों को रखते हुए. अब आपकी नज़र पड़ी एक बड़े पुराने से पेड़ पर जिसमें लिखा था आपका क्लू नंबर 1. मेरे पास एक बिस्तर है, यानी बेड है, पर मैं सोती नहीं हूँ. मेरा एक मुंह है, पर मैं कभी बोलती नहीं हूँ. मैं हमेशा दौड़ती रहती हूँ, मगर मेरे पैर नहीं हैं. तो मैं क्या हूँ? कौन सी चीज है जो क्लू नंबर 1 का सही जवाब है? मुझे लगता है कि क्लू नंबर 1 बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारे लिसनर्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक मैं चाह रही हूं कि आप पहुंच जाए. बट चलिए, आपको मैं क्लू नंबर 1 का सही जवाब देती हूँ. इट इज रिवर, या यू कहें तो नदी. जोरदार तालियां बजा देते हैं स्पेशली हमारे उन लिसनर्स के लिए जिन्होंने जद्दोजहद करते हुए सही जवाब दे दिया है. आदिल, मोहम्मद अली, मोहम्मद यूसुफ खान, मिस्टर खान, फातिमा यूसुफ, मोहम्मद बशारत, क्या बात है.

0: सब ने अपने हिसाब से सही जवाब देने की कोशिश की है एंड दैट इज रियली रियली नाइस. लेकिन अभी आपकी अड़चने कम नहीं हुई हैं, ठीक है. अब आप पानी के किनारे पहुंच गए हैं. जैसे ही आपने जवाब दिया, नदी रिवर आपको नदी दिखाई दी. अब क्योंकि आप एकदम हल्के हल्के पैरों से चल रहे हैं तो समहाउ आप वहां तक पहुंच गए. लेकिन रास्ता अभी भी हमें ढूंढना है, वो धुंधला है हमारे लिए. हाँ, अब वहीं मिट्टी में आपको एक पुराना लोहे का औजार मिलता है और उस पर आपका क्लू नंबर 2 लिखा है. ठीक है, मैं एक छोटी सी सुई हूं जो हमेशा सच बोलती है. ठीक है, मैं एक छोटी सी सुई हूं जो हमेशा सच बोलती है. पूरी दुनिया घूम लो मगर मेरा चेहरा हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ रहता है. मैं क्या हूं? कम ऑन, थिंक गाइस. आप रास्ता ढूंढ रहे हैं और ये चीज उसी से रिलेटेड है. अब इससे आसान हिंट कोई दूसरा नहीं हो सकता. हाँ, हमें जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं. आई कैन सी कि हमारे लिसनर्स सही जवाब दे पा रहे हैं. फिर से मैं दोहराना चाहूंगी क्लू नंबर 2 कि मैं एक छोटी सी सुई हूं, ठीक है, जो हमेशा सच बोलती है. पूरी दुनिया घूम लो मगर मेरा चेहरा हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ रहता है. ये कोई चीज है जो आपको शायद सही रास्ते पर पहुंचा सकती है. सोचिए, जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 666-22-107 पर. 666-22-107 मैं इंतजार कर रही हूं कि आप इस क्लू नंबर 2 को जल्दी से पार करें और इस अमेज़न के घने जंगलों से बाहर निकलें. कम ऑन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. और अभी के लिए
1: तू मेरी खामोशी है.
0: एंजॉय करते हैं भूल भुलैया 3 का ये टाइटल ट्रैक. डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02। कम ऑन गाइस, मेक अ विश कि आज के एस्केप रूम के अमेज़न के जंगलों से आप बाहर निकल पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: सो माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं हर एक क्लोज को सॉल्व करने के लिए? तो आज की सिचुएशन बड़ी कमाल।

बल्कि आप हरियाली पसंद करते हैं और आज इस हरियाली में ही एक मेडिसिनल प्लांट को ढूंढने के लिए आप अमेज़न के घने जंगलों के बीच पहुंच गए। अब दिक्कत ये कि वहां पर सूरज भी ढलने वाला है और तरह तरह के जंगल की आवाज़ें भी आ रही हैं जो आपको डरा रही हैं। जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं वो भी दलदली हो रही है। पहला क्लू आपने सॉल्व किया जिसका जवाब था नदी, रिवर। दूसरा क्लू आपको मिला कि मैं एक छोटी सी सुई हूं जो हमेशा सच बोलती है। पूरी दुनिया घूम लो मगर मेरा चेहरा हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ रहता है। अब ये बड़ी सिंपल सी चीज थी, मैंने कहा आपको रास्ता अगर ढूंढना है तो इस चीज का नाम लेना जरूर है। आए चले देखें किन्होंने सही जवाब दिया है। यहाँ पर अली है, आदिल है, मोहम्मद है, क्या बात है, मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं, रमेश भी है, मोहम्मद बशारत भी है, मेरे ख्याल से आपका नाम मैं सही ले रही हूँ, मिस्टर खान भी है, और कौन जुड़ा हमारे साथ, फातिमा यूसुफ भी है। ठीक है ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा है हमें सही जवाब देने की, पर मुझे लग रहा है आज हमारे लिसनर्स थोड़े से ना कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई जिन्होंने सही जवाब दिया है अब उन्हें खुशी होने वाली है क्योंकि सही जवाब है कंपास। क्या बात है, ये वो कंपास है जो आपको रास्ता दिखाता है। हाँ जी, और जैसे ही आपने सही जवाब दिया रास्ता खुद ब खुद धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया। लेकिन अब जंगल में पूरा अंधेरा होने वाला है। एग्जिट हैच तक पहुंचने के लिए आपको आखिरी रुकावट को पार करना है। अब ये आखिरी रुकावट क्या है, फिर आपने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई कि भैया कहीं तो अब हमको आखिरी क्लू मिल जाए, क्योंकि अब हमें यानी रहना हफ्ते की शुरुआत है, मतलब कैसे हम कहीं फंस सकते हैं, कम ऑन। एंड देन फिर आपने यहां वहां देखना शुरू किया। एक बड़ा ही प्यारा सा फूल का पौधा है, ठीक है, छोटा सा, एकदम से नजर उस पर गई और वहां पर आपको मिला आपका क्लू नंबर 3। और क्लू नंबर 3 है, आसमान से आता हूं, ठीक है, सुनहरा दिखता हूं, मैं जंगल के पेड़ों को खाना बनाने में मदद करता हूं, जब मैं छिप जाता हूं तो रात हो जाती है, बताओ मैं क्या हूँ। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इजी आंसर, और ये आखिरी पड़ाव पार करने के लिए सबसे आसान क्लू है। ये क्लू नंबर जो 3 है, अब इसे जल्दी से सॉल्व करें, इस पहेली को सुलझाएं और इस लेवल को पार करके अमेज़न के जंगलों से बाहर निकलें, वरना आप वहीं इन पेड़ पौधों के बीच ही रह जाएंगे। बहुत मुश्किल होगा अगर आप नहीं निकल पाए तो। फिर से क्लू नंबर 3 आपके लिए दोहराऊंगी, आसमान से आता हूं, सुनहरा दिखता हूं, मैं जंगल के पेड़ों को खाना बनाने में मदद करता हूं, जब मैं छिप जाता हूं तो रात हो जाती है। कम ऑन गाइस, कौन सी वो चीज है जिसके छिपने से रात होती है? क्या इतना आसान सवाल इतना मुश्किल लग रहा है आपको? Come on, give me the answer. 666-22-107 is our number. 666-22-107. इस पर अपने नाम के साथ मुझे सही जवाब दीजिए and let's see कि इस आखिरी पहेली को कौन सुलझाता है। और अभी अपने दिमाग को थोड़ा आराम देते हुए कुछ म्यूजिक भी एंजॉय कीजिए। Stay tuned to FM 107, दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एंड सीरियसली आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। मतलब एक तो हमें बड़ी हरियाली का शौक है और आज की सिचुएशन में हम एक मेडिसिनल प्लांट की खोज में निकले और कहाँ पहुँचे, हरियाली के बीच, अमेजोन के घने घने घने जंगलों के बीच। सोचा था कि वो मेडिसिनल प्लांट ढूंढ कर हम आराम से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, एस्केप रूम से इतनी आसानी से एस्केप नहीं हुआ जा सकता। तो फिर क्या हुआ, आप गए बड़े प्यार से थे और वहाँ पर पेड़ पौधों ने बेलों ने आपके एक जो एंट्रेंस था उसको पूरी तरह से छुपा दिया। आप परेशान हो गए, भाई क्या करें, सूरज ढलने वाला है, जंगलों में आवाजें शुरू हो गई है, किसी शेर ने अगर हमें खा लिया तो क्या होगा, अरे बाप रे बाप, डर अभी भी लग रहा है, जमीन भी दलदली हो रही है। अगर हमने वक्त पे, सही वक्त पे अपने आप को यहाँ से आउट नहीं किया, बाहर नहीं निकले, तो या तो कोई जानवर हमें खा जाएगा या तो ये जमीन हमें निकल जाएगी। अब ये सोचकर परेशान तो हुए, लेकिन आपने क्लू नंबर 1 सॉल्व किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, रिवर, नदी, ये सही जवाब था, वो आपने दिया। क्लू नंबर 2 भी आपने सॉल्व कर लिया और सही जवाब था कंपस। और अब क्लू नंबर 3 पर आके गाड़ी रुकी है, ठीक है, अभी भी हमारे जो लिसनर्स हैं जवाब दे रहे हैं बट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो आपको हम फिर से क्लू नंबर 3 दोहराएंगे और अब आप ध्यान से सुने और सोचे कि ये कौन सी चीज है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। आसमान से आता हूँ सुनहरा दिखता हूँ, कौन सी चीज है गाइस जो आसमान से आती है और सुनहरी दिखती है, कम ऑन, लाइक थिंक अबाउट इट। मैं जंगल के पेड़ों को खाना बनाने में मदद करता हूँ, कौन सी वो चीज है, व्हाट्स दैट एनर्जी। जब मैं छिप जाता हूँ तो रात हो जाती है, देखो ये लास्ट लाइन में ना पूरा जवाब है, वो कौन सी चीज है जो छुप जाती है जब तो रात हो जाती है, बताएं जरा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। और मैं आपको एक हिंट दूं, ये सारी एनर्जी का स्रोत है, यानी कि इट्स अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। अब सोचो सोचो और बताओ। 666-22-107 इज आवर नंबर, 666-22-107, इस पर अपना नाम लिखकर सही जवाब भेज दो। यस, द लास्ट लेवल आपको पार करना है अगर आप अमेज़न के इस घने जंगलों से बाहर निकलना चाहते हैं। आसमान से आता हूँ सुनहरा दिखता हूँ, मैं जंगल के पेड़ों को खाना बनाने में मदद करता हूँ, मैं जब छुप जाता हूँ तो रात हो जाती है, बताओ बताओ बताओ मैं क्या हूँ। Come on guys, think about the answer or 666-22-107 पर अपना जवाब अपने नाम के साथ दीजिए। और फिलहाल थोड़ा सा म्यूजिक एंजॉय कीजिए, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी, स्टे ट्यून्ड।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। हवा के झोंके आज

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: हाँ जी, वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। हाय हाय हाय, इस गर्मी के मौसम में कहाँ आज अमिता ने एस्केप रूम में आपको फंसा दिया। हाँ, ऑलरेडी हमें लग रहा था कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, अब यहाँ पर दिमाग का टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। पर देखो, आज तो आप पहुंचे हुए थे एकदम डेंस ग्रीन अमेजोन जंगल में, जहां पर आप ढूंढ रहे थे एक मेडिसिनल प्लांट। भाई देखो, ये प्लांट तो आपको मिला नहीं, लेकिन आप परेशान हो गए क्योंकि जंगल ने आपको अब ऐसी जगह पे इनविटेशन दे दिया कि आपको निकलना नहीं है, बस आपको यहीं रहना है। अब ये मेडिसिनल प्लांट आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आपका लास्ट क्लू जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। देखिए, आपके पास 3 क्लूज थे। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था रिवर नदी। दूसरा क्लू आपने सॉल्व किया, दैट वाज कंपास। तीसरा क्लू आपके लिए, आसमान से आता हूँ, सुनहरा दिखता हूँ, मैं जंगल के पेड़ों को खाना बनाने में मदद करता हूँ, जब मैं छिप जाता हूँ तो रात हो जाती है, बताओ मैं क्या हूँ। कम ऑन, बहुत बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड लेट्स चेक द आंसर्स कि हमारे लिसनर्स ने हमें क्या लिख कर भेजा है। तो ज्यादातर लोग हमें लिख रहे हैं सन, सूरज, सनलाइट। ओके, देखिए, जिन्होंने भी ये कहा है ना, मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्लू नंबर 3 आप सबने सॉल्व कर लिया है, वाह क्या बात है। और जिन्होंने सही जवाब दिए, सबसे पहले आइए जरा जल्दी जल्दी उनके नाम ले लिए जाएं। सो मोहम्मद बशारत, फातिमा यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ खान, मिस्टर खान, रब्बानी, गुलाम रब्बानी साहब, मोहम्मद मुशीर, और कौन कौन है, और कौन कौन है, चलिए देखते हैं। अरफात, यस अरफात जी है हमारे साथ, ग्लैन डिसूजा और खादर अब्दुल हादी। वेरी गुड, आप सब ने सही जवाब दिया है। और लकी विनर तो लेकिन कोई एक ही होगा, और आज के जो लकी विनर है उनका नाम है मोहम्मद बशारत। भाई जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए, क्या बात है, मुबारकबाद है। कंग्रेचुलेशन जनाब, आपने बहुत ही अच्छा गेम खेला और सही जवाब दे के आप सीधा अब इस अमेजोन के जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और जब आप बाहर निकल रहे थे, तब आपको वो मेडिसिनल प्लांट भी रास्ते में दिखाई दे दिया, जिसकी खोज में आप अमेजोन के जंगल में फंस गए थे। तो बाहर निकल कर कैसा लग रहा है? भाई मैं सारे हमारे लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने वक्त निकाला, मैसेज किया हमको। सही जवाब हो गलत जवाब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप एस्केप रूम में हमारे साथ थे और हर कोई कोशिश कर रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकला जाए। सो थैंक यू सो मच। वेल, इसी के साथ आज तो देखो आपने हरियाली के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाया और कोशिश की कि बाहर निकले, लेकिन कल का जो एपिसोड होगा वो थोड़ा सा और खौफनाक हो सकता है, क्योंकि आपको कौन अपने बीच फंसाने वाला है? ये जंगल नहीं होगा, ये म्यूजियम नहीं होगा, ये कोई भूतिया घर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होंगे सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ। नाउ थिंक अबाउट इट, कल के एपिसोड में क्या होगा। तो कल का चैलेंज लेने के लिए दोपहर 1:30 बजे आप ए फॉर अमिता से मिल लीजिए एस्केप रूम में, ठीक है? और हाँ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें। FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढिए। और अभी क्या करना है, चिल मारना है, एंजॉय करना है अपना रेस्ट ऑफ द डे, और हिट हिट गाने एंजॉय करना है। एंड ऑन दिस नोट, एंजॉय करें इस गाने को, मुझे दीजिए

0: Assalamualaikum साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और ब्राइट और प्रैक्टिकल एपिसोड। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी चीज पर जो हर घर में होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, यानी के एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स का। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, जरा सोचिए, रात का वक्त है, आप घर में हैं, किचन की लाइट ऑन है, लिविंग रूम की लाइट भी ऑन है और कभी कभी बाथरूम की लाइट भी अननेसेसरीली ऑन रह जाती है। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो लगता है कि भाई इतना बिल कैसे आ गया, मैंने तो इतनी एनर्जी यूज नहीं की। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अप्लायंसेस ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन असल में लाइटिंग का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। भाई, आप थोड़ा सा रियलिटी चेक समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, देखिए, ट्रेडिशनल जो बल्ब्स होते हैं ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा हीट भी जनरेट करते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स होते हैं ना, जैसे एलईडी बल्ब्स, ये कम एनर्जी ज्यादा रोशनी देते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। भाई, मतलब सेम लाइट आउटपुट होता है लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। अब अगर इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में ये पूछा जाए तो भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करना, यानी के वो बल्ब्स यूज करें जो एलईडी वाले हों। मतलब आप अपने घर की लाइट को स्मार्टर और सस्टेनेबल बनाएं। अब बात करते हैं कि भाई एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज करने से सफा आखिर फायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। एलईडी बल्ब्स ट्रेडिशनल बल्ब्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली कम एनर्जी यूज करते हैं ना। दूसरा फायदा है कॉस्ट रिडक्शन का। देखें, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होने से मंथली बिल्स नोटिसिबली कम नजर आते हैं हमें, ना बिल हमें कम आएगा। तीसरा फायदा है लॉन्ग लाइफ स्पैन। देखें, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स ज्यादा देर तक चलते हैं इसीलिए रिप्लेसमेंट कम होती है। चौथा फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। सीधी सी बात है, कम एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है पावर जनरेशन पर कम लोड और कम इमिशंस। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो आप सोचिए कि आपके घर में 10 बल्ब्स हैं। अगर सब ट्रेडिशनल बल्ब्स हों तो हर वक्त का एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा ही होगा ना। लेकिन अगर वही 10 बल्ब्स एलईडी या एनर्जी एफिशिएंट हों तो सेम रोशनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का आप जो यूजेज है वो कह लें कि वो हाफ या उससे भी कम हो सकता है। देखिए, दोहा जैसे सिटी में हर घर, ऑफिस और मॉल में लाइटिंग का बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए यहाँ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग अडॉप्ट करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल सेटअप है जो ओवरऑल एनर्जी डिमांड को रिड्यूस करता है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं, ठीक है। टिप नंबर 1 ये है कि एलईडी बल्ब्स प्रेफर करें, हर पुराने बल्ब को ग्रेजुअली एलईडी से रिप्लेस करें। नंबर 2, रूम वाइज यूजेज कंट्रोल करें, सिर्फ जरूरत के मुताबिक लाइट्स ऑन करें, अननेसेसरी लाइट्स ऑफ रखें, नेचुरल लाइट यूज करें। साथियों, दिन के वक्त कर्टन्स ओपन रखें ताकि सनलाइट मैक्सिमम यूजेज में आए। नेक्स्ट ये कि मोशन सेंसर लाइट्स कंसिडर करें, स्पेशली कॉरिडोर्स और बाथरूम्स में ऑटोमेटिक लाइट्स हेल्पफुल होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर चेक करें, जहां जरूरत ना हो वहां लाइटिंग रिड्यूस करने की हैबिट डेवलप करें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव इसका देखा जाए तो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि ग्लोबल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर शिफ्ट कर रही हैं और इसको प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि लाइटिंग एनर्जी कंजम्पशन ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अच्छा, एक और बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक बल्ब चेंज करने से क्या ही कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हर घर, हर ऑफिस और हर बिल्डिंग एक छोटा चेंज करे ना तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी सेविंग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की तरफ चलते हैं। बिहेवियर चेंज एंगल की तरफ देखा जाए तो जब आप एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी डेली हैबिट्स को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ यूजर नहीं रहते बल्कि स्मार्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करें और अपनी लाइट को स्मार्ट बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि आज अपने घर में कम से कम एक बल्ब को एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब से रिप्लेस करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए मोटिवेट करें। साथियों, रोशनी सिर्फ घर को ब्राइट नहीं करती बल्कि हमारे डिसीजंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। जब हम एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ लाइट नहीं बदलते बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा सस्टेनेबल बना रहे होते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वक्त की कदर। वक्त इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। ये एक ऐसी नेमत है जो एक दफा गुजर जाए तो किसी भी तरह वापस नहीं आती। अक्सर लोग वक्त की अहमियत को तब समझते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर लम्हा कीमती है और हमें उसे बेकार चीजों में जाया नहीं करना चाहिए। कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने वक्त को प्लान करते हैं और हर लम्हे को बेहतरी के लिए यूज करते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा बहुत सारा वक्त ले लेती हैं। अगर हम थोड़ा सा होशमंदी से अपनी रूटीन सेट कर लें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। आज का अमल यह है कि अपने दिन का एक सिंपल प्लान बनाएं और कोशिश करें कि वक्त को बेहतरीन तरीके से यूज करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है विजन 2030। देखिए, विजन 2030 असल में ना एक लंबी प्लानिंग है जो कंट्रीज या दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ लेके जाने का कंट्रीज का एक प्लान है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो है क्या? इसका बेसिक आइडिया वो मैं आपको बताती हूँ। इसका बेसिक आइडिया ये है कि 2030 तक हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में तरक्की करें, जैसे इकोनॉमी है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है या सोसाइटी है। हर मुल्क अपनी जरूरत के हिसाब से विजन 2030 बनाता है, लेकिन सबका एम एक ही होता है, बेहतर और सस्टेनेबल जिंदगी। जी हाँ, कतर जैसे मुल्क के लिए विजन 2030 एक रोड मैप है जो फ्यूचर डेवलपमेंट को गाइड करता है। इसका फोकस होता है कि मुल्क जो है वो सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड ना रहे, बल्कि और दूसरी फील्ड्स जैसे एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, इन सारी फील्ड्स में भी ग्रो करे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो विजन 2030 के चार इम्पोर्टेंट पिलर्स भी हैं और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की तालीम और सेहत को बेहतर बनाए ताकि वो स्किल्ड और हेल्दी लाइफ जी सकें। वहीं अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो सोशल डेवलपमेंट का फोकस सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कल्चर को प्रमोट करना है और लोगों के दरमियान हार्मनी को पैदा करना है। वहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाना, जहां सिर्फ एक सोर्स इनकम ना हो बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज हो। इससे मुल्क फाइनेंशियली स्टेबल होता है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की भी बात करना बहुत जरूरी है और इसका एम है कि तरक्की के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो, नेचुरल रिसोर्सेज बचें। जी हाँ, ग्लोबल लेवल पर भी 2030 एजेंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक प्लान बनाया है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल

0: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDGs, इनमें 17 गोल्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिनमें एम रखा गया है गुर्बत यानी पावर्टी को खत्म करना, एजुकेशन को, इल्म को जो है वो उसके मयार को और ज्यादा जो है वो एनहांस करना, इम्प्रूव करना, और हर हाल में हर लिहाज में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो विजन 2030 एक प्लान है, वो प्लान नहीं जो आप वीकेंड्स पे बनाते हो, हाँ शायद उसी जैसा कुछ प्लान। जब हम प्लानिंग करते हैं तो कितना कुछ सोचते हैं, कितनी चीजें हम लिख रहे होते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक उसी तरह से कंट्रीज के लिए भी प्लान होते हैं। एक विजन है, एक गोल तैयार किया जाता है, और विजन 2030 वही प्लान है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान ब्रिज बनता है। इसका मकसद ये है कि आज की जनरेशन भी अच्छी लाइफ एंजॉय करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो सेफ रहे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि विजन 2030 सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो है वो प्लान नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल का भी रोल है। जब लोग एजुकेशन, एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स देते हैं तभी ये विजन सच होता है। बस मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूँ नासिया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल इन्वेस्ट कतर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ई कॉमर्स और स्टार्टअप की दुनिया के बारे में। वेल, देखा जाए तो कतर में डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ ई कॉमर्स के मैदान में भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से इमदादी इनिशिएटिव्स और इनोवेटिव पॉलिसीज पर भी काम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लोकल बाजार को और इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। पर देखा जाए तो कतर के नेशनल विजन 2030 के तहत इस मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने और डिजिटल इकोनॉमी को मजीद बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स और प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया है। चलिए, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन्हीं स्टार्टअप प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स और स्कीम्स पर। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर मोहम्मद शबीब, तो इन्हें वेलकम कहेंगे। और डेफिनेटली आज के इस एपिसोड में हम कतर की इकोनॉमी में किस तरह से स्टार्टअप्स जो हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। तो आपको पहले वेलकम कहेंगे। एंड
3: other part is about fintech. Okay. So when you're talking about fintech, highly regulated because it's about handling money. It's about handling, you know, there is a lot of companies that has come up now with buy now, pay later systems and all those things. These are regulated by Qatar Central Bank and can operate under multiple platforms.

0: FM 107 टाइम चेक। टाइम
1: चेक भाई, एक आइडिया है कि अगर आपको लंबी छुट्टी लेनी है इन गर्मियों में, तो कार से बाहर निकल जाओ और फिर कार में बैठ जाओ, चलती एसी में, चलती एसी से बाहर आओ फिर अंदर चले जाओ, तबीयत खराब होगी लंबी छुट्टी मिली जाएगी। हावी भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये वाला तोड़ निकाला है मतलब क्योंकि ये ज़रूरी है यार कि यार गर्मी में छुट्टी हो, ऐसा फील आना चाहिए कि आप अभी भी क्लास में हो, आप स्कूल में हो। है जब तक यार जून मई की छुट्टी ना हो, शाम को 4-5 बजे कहीं इंसान घूमने टहलने खेलने कूदने निकले ना, तो मज़ा नहीं आता यार। वो वाली चीज़ हो जाए तो बड़ा है। बाकी ऐसे लोग जो जिनकी फैमिली है वो तो छुट्टी ले ही लेते हैं, वो प्लानिंग ही ऐसी करते हैं कि पूरे साल रगड़ के काम कर लेंगे, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेंगे। लेकिन सर प्लीज़ मई जून जाने देना सर, हमको जाना है, ये 3 महीने में से 1 महीना मेरे को चाहिए घूमने फिरने के लिए। हावी भी टाइम फॉर द टाइम चेक। और जिनका वक्त अच्छा चल रहा है जिनका वक्त बुरा चल रहा है, दोनों टाइम तो चेक कर लो। 4:02 हमारे स्टूडियो घड़ी में, और आप सुन रहे हैं
2: द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: दिल से देसी। और आज द रिक्वेस्ट शो में क्या है खास, बहुत ही बेहतरीन गाने आज प्ले होंगे, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। और रीजन है 53 साल के एक जबरदस्त सिंगर, उनका बर्थडे आज के दिन 28 जून 1973 को जन्मे विशाल ददलानी, जो कि बॉलीवुड में बिल्कुल आग जो है अपने म्यूजिक से ला चुके हैं, अपने कॉम्पोजिशन से ला चुके हैं। और विशाल का जो काम है वो लाजवाब है। इंडियन सिंगर हैं ये, सॉन्ग राइटर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, और कभी कभी एक्टिंग भी जो है वो कर लिया करते हैं। विशाल शेखर की जो जोड़ी है वो भी लाजवाब रही है, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम विशाल ददलानी के गाने जो हैं वो प्ले करने वाले, क्योंकि आज की थीम इन्हीं पर बेस्ड है। इसका रीज़न यही है सिंपल सा कि आज इनका बर्थडे है, तो अपन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और बेहतरीन हिट गाने इन्होंने दिए हैं, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहा हो, रावण रहा हो, ओम शांति ओम रहा हो, दोस्ताना, फाइटर में भी एक दो गाने अच्छे थे, ऐसा कोई खास नहीं। लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस के गाने किसको नहीं याद होंगे, है भाई, टाइगर जिंदा है, तो एक से बढ़कर एक हिट मूवी के गाने और मूवी में हिट गाने दोनों इन्होंने दिए हैं। तो आज विशाल ददलानी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, FM 107 पे ये गाने प्ले किए जाएंगे। लेकिन अब कैच ये है कि भाई जिन्होंने आज ट्यून इन किया, जिनको पता नहीं है 4 से 5 टिकट शो क्या है, तो आज विशाल ददलानी के जो भी सॉन्ग आप मुझसे कहेंगे वो यहाँ पर प्ले किए जाएंगे। अब मैटर ये है कि भाई साहब कब से कब तक, तो हम नए ज़माने की रखते, 2010 के बाद से या 2015 के बाद से अगर आपको याद हो, वैसे ऑब्वियसली 2010 के बाद से ही इनके गाने ज़्यादा लोगों को पता हैं, जो भी गाने, जैसे कि अभी मैंने कितने मूवीज़ के नाम लिए, उनमें से आप कोई भी मूवी उठा लें, उनके गाने आप हमें बताएं विशाल ददलानी ने गाए हों, तो अपन यहाँ पर उसे प्ले कर देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है 666-22107 6-6-6-2-2-1-0-7। और मोबाइल का है,
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
1: आ गया, हाथ में आ गया है मोबाइल, हाथ में आ गया है, तो जल्दी से कुछ मैसेज देख लेते हैं। ये सुबह का मैसेज है, हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड, बहुत ही शांत सुकून से भरा हुआ मजेदार है। शाम का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फैमिली भाई, कुछ अच्छा सुनो सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, फैसल हेयर, फजील भाई लिख रहे होंगे, ये ऑटो करेक्ट हो गया होगा फैमिली वाला, या तो ये कह रहे हैं कि फैमिली भाई में कुछ अच्छा सुनाओ, फैमिली साथ में, ऐसा तो नहीं। बाकी आप रिक्वेस्ट करें, ये शो मेरे से ज़्यादा आप लोगों का है दोस्तों, है क्या बात कह दी मैंने, एकदम भारी बातें हो गई भाई ये तो अपन जो है विशाल ददलानी के जो भी गाने हैं यहाँ पर हमारे साथ तो हैं ही है। बाकी आपकी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सअप पे आनी चाहिए, व्हाट्सअप नंबर 666-22107 6-6-6-2-2-1-0-7। चलो तो बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, एक और ये मैसेज है, सलाम अलैकुम भाई, कैसा है मेरा भाईजान, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं आप बताएं। फिर ये है मैसेज सलाम का, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नाम क्या है, आशिक, आशिक मियां, नाम चेंज कर लिया गया, मिया लगा दिया इन्होंने बस। फिलहाल एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, भाई विशाद अदलानी का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दो, इनका नाम क्या है? राहिल। राहिल भाई क्या ये देखिए, ये जो इस तरह की रिक्वेस्ट है इसमें और मजा आ जाता है कि मेरे मर्जी के गाने प्ले होते ना फिर। चलो ठीक है, तो ये रही इनकी रिक्वेस्ट का पहला गाना, ये विशाल मिश्रा, विशाल अदलानी और विशाल मिश्रा और इरशाद ने गाया है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ये गाना 2024 में मूवी आई थी, गाने का नाम है वल्ला हबीबी।
3: Welcome to the world of DM and CM, Bade Mia, the Khiladi and CM, the Bagi, sampling now.
1: बाकी आप रिक्वेस्ट करिए अपने मर्जी के गाने, विशाल ददलानी के होने चाहिए। नंबर हमारा व्हाट्सएप का 666-22-107-6-6-6-2-2-1-7। दिल से दे इसे।

क्या बात है, ये होते ऐसे ऐसी रिक्वेस्ट मुझे बहुत पसंद आती है कि भाई कोई भी गाना प्ले कर दो तो मेरा तो दिल जो है वो खुश हो जाता है कि कोई भी गाना प्ले कर दो, उसमें मैं ये प्ले कर देता हूँ कि जो मेरा अपना मन कर रहा हूँ। फिलहाल दो और रिक्वेस्ट हैं, वो भी बड़े लाजवाब है। मुझे ये पूरा यकीन है कि जब भी रिक्वेस्ट की बात आएगी तो आप लोग ऐसे गाने रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल जो है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बेहतरीन गानों की रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब वो मेरे जहन में कहीं दूर दूर तक नहीं होता। मैं मालूम क्या सोचता हूँ कि आज अगर इनका बर्थडे है, जैसे विशाल के बारे में मैंने सोचा था कि ऐसे ऐसे गाने होंगे जो बड़े मज़ेदार होंगे, वरना अगर जैसे लोगों को नहीं पता हुआ तो मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन सोचो 2011 में एक मूवी आई डॉन 2, उसका गाना जरा दिल को थाम लो, ये गाना मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं किसी को रिकमेंड करूंगा। लेकिन आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि उधर से आपने हमें बता दिया कि यार ये वाला गाना प्ले कर दो। तो ये गाना भी अपन निकाल चुके हैं, और एक और गाना है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का हुकअप, और इसे यूसुफ ने रिक्वेस्ट किया है। वरना आमतौर पर तो मैंने सोचा था जो लोगों को रिकमेंड करूंगा उसमें, जैसे कि ये वाला वल्ला हबीबी, जैसे मैंने कहा ना कि तुमने अगर कह दिया कि अरे कोई भी गाना प्ले कर दो आप अपनी मर्जी का, तो मैं तो तैयार बैठा हूँ फिर तो मेरे पास तैयार है गाने। फिर एक और गाना था, मैंने सोचा था कि टाइगर जिंदा का है जो थीम, वो भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जवानी सॉन्ग है ना, वो भी स्वैग से स्वागत कौन भूल सकता है, वो गाना भी बड़ा लाजवाब है। तो मैंने सोचा था ये वाले रिकमेंड करूंगा लोगों को। बाकी अब ये दो गाने हमने निकाल लिए हैं, हुकअप सॉन्ग है किसका, हाँ यूसुफ भाई का था, और जरा दिल को थाम लो डॉन 2 मूवी का ट्रैक है। ये ट्रैक जो कहा है, ये कहा है राहिल, नहीं राहिल तो पहले वाले थे, कहोंगे नाम में एक मिनट भाई, मैं माजरत के साथ, ये लोग नाम लिखते नहीं है ना, मुझे प्रोफाइल पे चेक करना पड़ता है जाके, है ना, उजैर नाम है उनका। ओके, उजैर भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना अपन तैयार करके बैठ गए। फिर दिल हरफन मोला, ये कहा है फैसल साहब ने, दिल हरफन मोला मिल जाए बस, ये हरफन ऐसे नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, टाइम नहीं मिल लिया भाई। और थोड़ा डिटेलिंग में आओ, मूवी का नाम बताओ, वरना फिर टाइम लग जाता है। हरफन मोला, हरफन मोला, और कोई स्पेलिंग होती, एक तो ये भी नहीं समझ में आता ना स्पेलिंग, अपन सही लिख रहे कि नहीं लिख रहे। स्कूल में डिक्शन में हमेशा मैं फेल हो जाता था डिक्टिंगशन क्या कहते उसे, डिक्शन तो अलग चीज है, अरे इमला होता था ना हिंदी में, मुझे याद है दिल हरदन मौला, ये क्या लिख रहे हैं मेरा भाई, इतनी मेहनत, आमिर खान कितनी दफा ये कितने हसीनों पे डोला, आमिर खान कितनी दफा ये कितने हसीनों पर डोला, नहीं भाई मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे अगर लिखोगे तो जमाने लग जाएंगे। अहमद जोगी माही फ्रॉम द मूवी बचना ए हसीनो, बचना ए हसीनो, तो मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे ये मिल जाता तो बढ़िया। लेकिन बाकी दो गाने तो अपन प्ले कर देते हैं और हम पीछे से ये ढूंढते भी रहेंगे, ठीक है। तो हुकअप सॉन्ग सबसे पहले आ रहा है, और फिर उजैर भाई की रिक्वेस्ट पे जरा दिल को थाम लो FM 107 पे, एंजॉय करें इन दो गानों को दिल से देसी।

0: है विशाल साहब, दम तो है यार। सोचो इतने पुराने गाने में भी वो जान डाली हुई है। विशाल ददलानी और अनुषा मणि की आवाज में ये सॉन्ग सुना आपने FM 107 पे। हैप्पी बर्थडे विशाल भाई।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: विशाल भाई अगर होते ना इधर खतर में तो अपन बारबेक्यू की पार्टी ले लेते नहीं। विशाल भाई बाई एनी चांस अगर आप हैं, वैसे घूमना फिरना तो होता रहता होगा आपका दुबई कतर एक राउंड लगा जाते, और अगर आप सुन रहे हैं तो यार एक पार्टी तो बनती है यार। देखो आज आपका जन्मदिन है, बाकी बारबेक्यू में अपन महंगे वाले बारबेक्यू में जाते भी नहीं है। ऐसा बारबेक्यू जिसमें असल में टेस्ट हो, और बारबेक्यू से ज़्यादा हमस में अगर मज़ा है भाई तो वो वाले रेस्टोरेंट जाएंगे, बाकी तो हल्के वाले रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा बार हमस देते हैं। 4:22 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और बाकी आते हैं जल्दी से मैसेज की तरफ। दो गाने जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं, एक तो हरफन मौला है जो कहा था तो अपन वो तैयार करके बैठे लें, लेकिन एक और प्रॉब्लम है वो है अहमद ने करा था जोगी माही फ्रॉम द मूवी बचना है हसीनो, लेकिन ये विशाल ददलानी ने नहीं गाया तो माजरत के साथ कांट प्ले। अस्सलाम वालेकुम वजीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सैयद हुसैन का ये मैसेज है और एक कॉल है, अपन वो कॉल उठा ले रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
2: कबीर भाई कैसा है?
0: अरे यार तुम, अब मुझे लगा कि विशाल ने ही कॉल कर ली होगी। विशाल भाई कह रहे होंगे कि अरे आजा यार फजील भाई, जो आवाज से लगा मुझे थोड़ा, बाकी मैं फजील बात कर रहा हूँ, कबीर 5 बजे से मिलेंगे आपको।
2: अच्छा, हाँ तुम फजील हो। अच्छा तुमने अभी मुझे जो अभी जो पार्टी का बात आपने करा था तो वो आप फजील भाई हो?
0: आप विशाल का मैनेजर हो?
2: नहीं, मैं फजील भाई का फैन
0: हूँ। अरे कबीर भाई का फैन है, ये उल्टा बोल गए यार आप। दो बार उल्टा बोले, पहले कबीर को फजील समझ बैठे और फिर फैन की बात करा तो फजील बोल बैठे।
2: अच्छा नहीं, फैन फजील भाई को, लेकिन आप कबीर भाई हो ना?
0: अरे यार नहीं, फजील हूँ मैं।
2: अच्छा,
0: अरे यार मतलब डिफरेंस नहीं पता चलता, थोड़ा सा तो पता चलता होगा डिफरेंस।
2: चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी मजाक करते हैं, हम भी मजाक करते हैं ना फजील भाई।
0: ओहो अच्छा, गेम खेलना बाबू। भाई मजाक कर रही है बहुत, क्या खिलाड़ी
2: है। क्यों नहीं, आप लोग करते हैं तो हम भी करते हैं ना फजील भाई।
0: मैं हल्का ले रहा था भाई, तुम तो बहुत भारी निकले भाई।
2: नहीं, ये तो FM 7 की बरकत है ना आप लोगों की, ये तो आप लोगों ने हमसे सिखाया।
0: हम तो आपको,
2: आप लोगों ने,
0: हम आपको WWE का रेम स्टेडियो समझ रहे थे, आप खाली निकले बाबा। एकदम भारी, बहुत उम्दा खेल गए।
2: कैसे फजील भाई?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है भाई। आप सुनाए कैसे?
2: मेरे ख्याल में आप गाँव गई थी, घर गई थी, इसलिए आपसे थोड़ी देर बाद बात हो गई, तो आपका शो भी सुना था, मैंने कहा चलो कॉल करें थोड़ी बातचीत हो जाए।
0: सही है, नहीं बहुत अच्छा है, कॉल कर लिया करें। हालांकि मैं गांव वगैरह नहीं गया था, मैं शहर में ही था, लेकिन कुछ दिन की छुट्टी पे था। खैर आज जो है भाई हम विशाल के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के गाने हम आज प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो आई एम श्योर कि आप कोई विशाल ददलानी के गाने को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मैं वो प्ले कर दूं, और अगर आपके पास नहीं है उनके गाने तो मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूं।
2: कोई बात नहीं फजील भाई, आप मेरे लिए विशाल है ना, कोई बात नहीं।
0: अच्छा विशाल ही नाम है आपका?
2: नहीं, मेरा नाम दशरथ है फजील भाई।
0: तो फिर तो यार तुम खेल लो यार, अभी भी है। चलो तो मैं आपको गाने की एक लिस्ट देता हूँ, 2-3 गाने बताता हूँ, ठीक है?
2: अच्छा फजील भाई, सॉरी आई एम सॉरी, मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है, मैं ठीक ना वो बताओ ना, लेकिन मैं पहले से बता रहा, कोई बात नहीं, वो जो भी प्ले कर रहा है हमारे लिए मंजूर है, लेकिन आपसे थोड़ी बात करनी थी, तो दुआ सलाम करनी थी, बस वो इसे मैंने आप कॉल किया।
0: ओके मेरा भाई, आज तक किसी ने ऐसा पोपट नहीं बनाया जैसा आपने पोपट बनाया मेरा। बहुत शुक्रिया।
2: मतलब सुनते, लेकिन आपसे कबीर भाई से और खासकर सरोवर भाई से मजाक करते
0: हैं ना? नहीं बिल्कुल मजाक करा करिए, थोड़ा बुरा भी लग जाता लेकिन लगने दिया करिए।
2: अच्छा ठीक है, फिर नहीं कर रहे, फिर सीधा बोल दे हां सलाम अलैकुम फजील भाई कैसा है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बोलेगा मैं। थैंक यू,
2: चलो ठीक, बोल चुका,
0: अल्लाह हाफिज भाई। वाह भाई, मैं मुझे लगा कि अरे कॉल आ गई, हो सकता है विशाल भाई या मैनेजर उनका हो कि अरे वो फजील साहब आपको बुला रहे थे, विशाल भाई आप मुंबई आ रहे हैं। अब हमें खाना हमूस और बारबेक्यू यहाँ कतर का, वो मुंबई बुला रहे। तो मैं एकदम खुश हो गया था कि अरे आ गया है, आखिरी में 200 नंबर था, मैं समझा कि अरे थोड़ा कॉल आ गया। फजील भाई वो विशाल भाई वो डाइनिंग टेबल पे बैठे भाई, मैं भी पूछता अरे अभी से लंच के टाइम पे। बाकी अपन जो है बाकी मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं। खादिम साहब का मैसेज, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर ये मैसेज किस भाई का है, हबीबी अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल, द रेडियो वाज ऑन बट इट वाज ऑन अ डिफरेंट चैनल सो आई कुडंट हियर यू, आई वांटेड टू आस्क यू व्हाई यू हैवंट अराइव्ड येट, इट्स ऑलरेडी 4 o'clock। कोई बात नहीं अरबाज साहब, थोड़ा चेक कर लिया करो, और एक ही जगह ज़्यादा ज़्यादा स्क्रीन पर ना बटन दबाने से, उंगली दबाने से वो नुकसान होता है, वो फिर कार की वैल्यू चली जाती है। ठीक है, तो बस एक FM 107 लगा रहने दिया करो बस, तो FM 107 के अलावा इधर उधर नहीं। ठीक, बाकी ये देख लो फिर, मैं वही है कि वैल्यू कम हो जाती है कार की, स्क्रीन तो एकदम कर रही होनी चाहिए। और अगर आपका स्क्रीन वाला नहीं है, बटन वाला है, बटन का वो ऑफ लिखा होता है या फिर यू नो बटन चेंज वाला होता है, उसमें अगर वो दरारें पड़ गई या धब्बे पड़ गए या उंगली से कर करके आपने मिटा दिया नंबर 1 2 3 वाला, मामला ख़राब हो जाता है फिर। वो भी मैं पहले बता रहा हूँ, वैल्यू कम हो जाती है। बाकी मैसेज, ये सॉन्ग सुन के एक चीज़ याद आ गई, आज से 10 साल पहले एक गेम खेलता था, उसमें एक मोड था डॉन 2 का, इसलिए याद आ गया। अरे यार ये तो बात ही मत कहो मेरा भाई, क्या बात कह दी आपने। कई बार ऐसा होता है कि हमें गाने से कोई गेम या गेम से कोई गाना याद आ जाता है। मुझे याद है टेकन 3 चल रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस था टेकन 3 गेम, जिसमें पॉल और कौन कौन से तो खिलाड़ी रहते थे, हिया माची बहुत यूनिक चाइनीज़ या फिर कहीं और के तो वो फाइटर रहते थे, है ना, तो उनसे उनसे गेम खेला करते थे अपन। मेरा पॉल फेवरेट था उस वक्त, हिमेश के बड़े गाने थे, आप कहाँ सुरूँ, और वो नाक से गाता था भाई। और उस दौरान जहाँ पर वो गेम खेला जाता था, जिस जगह पे, वो सिर्फ हिमेश के गाने प्ले कर रहा था, और जब जब ये गाना प्ले होता है मुझे उस गेम के बारे में याद आ जाता है, उस गेम को मैं याद कर लेता हूँ। बाकी आपने नाम नहीं लिखा मेरा भाई, बाकी आपने आगे भी लिखा है कुछ भी प्ले कर दें हम तो इन्जॉय कर रहे हैं। सलाम भाई जी, वालेकुम अस्सलाम। प्रोफाइल पर लिखा है अबाउट मी, ओके। नसीम साहब का मैसेज है, मियाँ फज्जू कुर्सी का क्या हाल है कुर्सी ठीक है, मतलब किसी ने तो मेहनत करके ऊपर कर दी थी आज जो है, सीना, हाँ आज कमर पे है, आज आज जो है ये जो अपना टेबल है जिस पे कीबोर्ड रखा है वो कमर तक है, उस दिन गर्दन तक था, किसी ने सीट ऊपर कर दी, कुर्सी ऊपर कर दी है, और ये फ्लेक्सिबल चेयर एकदम चकाचक है, और लग रहा भाई इसकी लाइफ थोड़ी लंबी होगी मैं बता ये पुराने मोबाइल जैसा वेंटिलेटर पे नहीं जाएगी, आई एम रियली श्योर इसकी लाइफ चलेगी नसीम साहब, ये चलेगी, इसकी सेकेंड हैंड वैल्यू भी कर रही होगी आई होप। आगे बढ़ते हैं मैसेज की तरफ, और फजील जोगी, माही कंपोज्ड बाय विशाल ददलानी। नहीं, कंपोजिशन का तो ठीक है, लेकिन गाना अगर विशाल ने गाया हो अहमद तो ज़्यादा बेहतर है। सादिक का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी इन्होंने भी कबीर भाई लिखा है, सादिक साहब फिर बीच में हंस रहे हैं, आमा मेरा भाई। चलो सब मिलके ताली बजा दो, भाई ने जोक मारा है, ताली कैसे बजा, लेकिन सॉरी सादिक भाई, ये मसला ये है कि ताली तो बजा लेते लेकिन स्टेयरिंग जहां छूटी वहां जिंदगी की रस्सी जो है छूटी नहीं, तो हॉर्न बजा लो थोड़ा थोड़ा बाकी नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं मैसेज की तरफ, एहतशाम का मैसेज है, जानी न्यू चेयर्स को सर्वर भाई से दूर रखना सर्वर भाई आपको पता है चेयर पे बैठते ही नहीं है, क्योंकि चेयर बैठते तो चेयर साथ में उठती है उनके नहीं नहीं आप गलत समझे, नहीं नहीं आप समझे ही नहीं, आप गलत जगह समझे। अब मैं क्लियर करता हूँ, क्या है ना भाई के लोग बाद में ये ना कह रहे फजील भाई देखिए इस तरह का जो अच्छा नहीं, तो क्लियर करना पड़ता है, जब सर्वर भाई बैठते हैं तो चेयर थोड़ी दब जाती है, जब सर्वर भाई उठते हैं तो चेयर उठ जाती है। ठीक है, मैं वो वाले उठने की बात कर रहा हूँ, वो वाले नहीं कि फंस के उठ जाते, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो तुम लोगों का दिमाग है ना तुम लोगों का दिमाग मुझे या तुम्हें किसी दिन ले डूबेगा, मैं बता रहा हूँ चेयर मतलब जब वो बैठते हैं तो ऐसा इसमें स्प्रिंग लगी है ना भाई, ऐसा शॉक अब्जॉर्बर लगा हुआ है जैसे कार में होता है। मैं बहुत सी बातें आ रही हैं मुझे सर्वर भाई की बात करते हुए, तो उधर नहीं जाते हैं क्योंकि गाने भी तो प्ले करने हैं। बाकी ये मैसेज है एहतशाम भाई का, एहतशाम भाई हल्का हाथ रखा करें फिर ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई फलक इनका नाम है, वालेकुम अस्सलाम। नसीम ने कहा है कुर्सी नहीं खिलौना हो गया, कुर्सी यानी कुर्सी तो खिलौने की जैसे है भाई, ये कुर्सी वो कुर्सी है जो मैं पहली बार देख रही हूँ भाई, मतलब हैंडरेस्ट भी है, लेफ्ट राइट भी हो जा रहा है हैंडरेस्ट है, पीठ को भी अलग तरह से इन्जॉयमेंट दे रहा है कि अगर दाएं घूम रहे तो दाएं की तरफ चेयर घूमे जा रही है, हवा अलग से अभी बैठे या कुर्सी में ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लग रहा कहीं इनबिल्ट है एसी वेसी, एकदम नेक्स्ट लेवल। मुबशर मुबीन नाम है भाई, बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं। मैं इसी के लिए तो फेमस हूँ, कवर अच्छा कर लेता हूँ, बचाना मुझे खास आता है। सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, टुमारो मॉर्निंग आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। अरे ये किस बात पे कंप्लेन हो रहा है आपको? फिर मुझे लगता है दो तीन जगह से ब्लॉक करना पड़ेगा। मोबाइल से, कॉलिंग से, हर जगह से। किस बात से मकसूद साहब, क्या बात हो गई? बाकी ये मैसेज, एक और मैसेज सलाम का है, वालेकुम अस्सलाम हबीबी। बाकी जल्दी से गाना प्ले कर देते हैं, कहाँ गया वो हरफन मौला वाला भाई, किधर है? हाँ, तो ये फैसल भाई हैं जिन्होंने हरफन मौला कहा था और मैंने ढूंढ लिया है, जो कि विशाल ददलानी ने गाया है, तनिष बागची ने गाया है, ज़ारा खान ने और अमीन हाजी ने गाया है इस गाने को। फिर एक और बड़ा ही लाजवाब गाना था, रिक्वेस्ट था, कहाँ मैंने निकाल कर तो रखा है, कहाँ गया, बड़ी अजीब मूवी थी वो, मैंने मूवी तो ये, लेकिन गाने तो मुझे मिल गया है, जो है विशाल ददलानी और अनुष्का का डांस बसंती, मूवी मेरे को नहीं पता भाई ये डांस बसंती किस मूवी का है, तो मुझे पता नहीं है, बट ये आदिल भाई की रिक्वेस्ट पे चलिए डांस करते हैं एफएम 107 पे। बाकी आप भी विशाल ददलानी का गाया हुआ गाना हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। फैसल का हरफन मौला पहला गाना और फिर डांस बसंती आदिल का गाना, दिल से दे सही।

0: basanti.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ Only on FM 107. Dil se desi.
6: Dil se desi. Happy birthday, Vishal Dadlani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FM 107 pe Fazil ke saath hain. Aur jinhone aaj miss kar diya, unko bata dein ke Vishal Dadlani ka birthday tha aur unke hi gaaye hue gaane hum yahan par play kar rahe the. Aur dekhte dekhte 4:43 hamare studio ki ghadi mein aur waqt hai के जल्दी से आज गेम खेल लिया जाए पहचान कौन, क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो उन्हीं के गाने हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। तो सेट है, हाँ, क्योंकि उनका बर्थडे है तो उनके गाने अपन निकाल चुके हैं, उन्हीं के गाए हुए या उनके कंपोज किए हुए गाने यहाँ पर प्ले करेंगे। और गाने कैसे, आज मैंने सोचा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल निकालेंगे अपन, वो कोई ऐसा लिरिक्स बीच से नहीं प्ले करेंगे, म्यूजिक प्ले करूँगा और बहुत ही वेल नॉन म्यूजिक होगा वो, उसे सुनने के बाद आपको गेस करना है और गाने का नाम बताना है। क्योंकि मसला ये है कि विशाल के गाने ऐसे रहे हैं कि इतने ज़्यादा ट्रेंड में रहे, इतने ज़्यादा लोगों ने सुने हैं कि बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं बीच से कहीं से भी लिरिक्स प्ले कर दूं तो मैंने सोचा क्यों ना प्ले किया जाए, और प्ले ऐसा किया जाए कि म्यूज़िक मैं प्ले करता हूं लिरिक्स के बजाय और वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप सुने और बताएं गाने का नाम। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22107, वहाँ पर भी आप खेल सकते हैं, बाकी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 443-443-77। ये मैसेज है रिगार्डिंग सर्वर भाई एज सेड, अच्छा मेरी शिकायत सर्वर भाई से करेंगे। ये अच्छा किया आपने बता दिया, ये बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करता हूँ मोबाइल में, ये नया मोबाइल है, कुछ तो ऐसा जुगाड़ होता है कि आप मैसेज करेंगे उधर से आएगा भी लेकिन यहाँ आएगा नहीं, मैसेज आएगा लेकिन आएगा नहीं। बदला मेरे अंदर बहुत ही वो

जो होता ना इविल आदमी वो बैठा हुआ है नंदा, वो तो कहो चेहरे से दिखता नहीं है मेरे, वरना सींगे निकली होती। मकसूद साहब देखो यार आपस की बात है, काहे के लिए आप जो है सांस वाला काम कर रहे हैं, दो बहुएं खुश हैं। ये सांस बनने की क्या जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भाई ने मैसेज किया और फिर डिलीट कर दिया, मोहम्मद मुशीर इनका नाम है, मुशीर साहब को पता नहीं क्या लगा, भाई ने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी याद आ रहा हो तो बताएं। फजील आपके फैंस आपको अच्छी तरह समझ चुके हैं। यूसुफ खैर है, देखो मैं मुश्किल है, मैं नहीं मानता कि समझ चुके, कि मुझे मैं खुद नहीं समझ पाया भाई किस दिन मैं पलट जाऊंगा पता नहीं है। देखो मेरे घर पे भी यही होता है, जैसे अभी मकसूद भाई ने कहा ना कि मैं शिकायत करूंगा, तो उससे पहले इन्होंने कहा है कि टुमारो मॉर्निंग आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो ये इसमें देखो इस वाली बात में कोई इन्फॉर्मेशन और ऐड नहीं थी, बाद में इन्होंने कहा कि सर्वर भाई वाली शिकायत, ठीक है। मेरे घर में मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया कि वो वहां रखा है, वहां है। अब भाई मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है कि मुझे समझ नहीं आता क्या चीज है कहां रखा है। तो कल के दिन भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, तो घर में कोई तो सामान था कि अरे वो वहां से उठा दो। अब भाई देखो दोनों एकदम हमारे दिमाग में भी और बेगम के दिमाग में भी, दोनों के दिमाग में कंफ्यूजन थी कि मैंने इसको बोल दिया है, अब ये वही उठाएगा क्या कि जो मैंने कहा है, और मैं ये सोच रहा हूँ क्या मैं सच में वही उठाऊंगा जो इसने कहा है, क्योंकि इसमें कहीं मोर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो उठा तो दूंगा वहां से, लेकिन उसका वो और मेरा वो क्या सेम है, तो वो भी एक चीज है। तो वही है कि भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए तो मेरे लिए आसान हो जाता है। बाकी मेरे फैंस क्या हमें समझेंगे जब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, ना मेरी बेगम समझ पा रही, वो वहां से उठा दो, अब वो नहीं समझ पा रही कि मैं वही उठाऊंगा जो वो सोच रही कि नहीं सोच रही, है नहीं कन्फ्यूजन। ये तो अक्षय कुमार वाला हो गया जो दे दनादन में था। बाकी 4:46 है, अब गेम की तरफ बढ़ते हैं, और ये गेम ऐसा है कि भाई ये तीन जो सॉन्ग है मैं वो प्ले कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये म्यूजिक होगा विशाल ददलानी का गाया हुआ, या विशाल ददलानी के म्यूजिक का कंपोजिशन हुआ गाना, जो सबसे पहला गाना है वो, या कहें जो सबसे पहला म्यूजिक है इंस्ट्रूमेंटल वो रहा ये।

मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गाने आज भी आप सुन रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस गाना, हालांकि 2015 का ये गाना है, इतना ज्यादा फेमस है कि आप वीकेंड पे इसे बड़े ही चाव से सुनते हैं। गाने का नाम बताइए क्या है। चैलेंज, मुझे पता है कि आप इस चैलेंज को मुकम्मल करेंगे, आप इस चैलेंज को लेंगे और गाने का नाम शायद बता पाए। ये सिर्फ म्यूजिक है जो मैंने प्ले किया।

बताइए। व्हाट्सएप नंबर 6622107। और मुझे लग रहा है कि जीतता हुआ आदमी मैं ही हूँ इसमें। दो लोगों ने जवाब दिया, ऑल्दो इसमें एक भाई ने नाम क्या है, मुबीन साहब इनका नाम है, अब जाके इन्होंने हमारा नंबर यानी कि एफएम 107 का नंबर सेव किया है। ओम भो मुबीन भाई, क्या गदर फोटो लिया है, पहाड़ों पे गए हैं, जेब डाल के दाएं तरफ देखो ना, जेब में हाथ डाल के तो लगता है कि हाँ नहीं कोई तो है ये आदमी, और पीछे गाड़ी वाड़ी भी नहीं आ रही और रोड पे बीचों बीच खड़े हो जाओ, क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब है दो आपका। और फिर उसके बाद ए बी इनका नाम है, इन्होंने नहीं भाई गलत जवाब है ये। बाकी एक और सलाम है मोहम्मद गाजी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरा भाई। हुसैन साहब ने कुछ तो मैसेज किया है लेकिन वो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है, लिखा है द मैसेज टाइमर वाज अपडेटेड, न्यू मैसेज विल, अच्छा इन्होंने कुछ सेटिंग करी है ठीक है। ऊपर लिखा भी है इन्होंने जवाब, चिकनी चमेली नहीं मेरा भाई, क्या मैं जीत रहा हूँ इसमें। फिर अहमद ने सही जवाब बताया है और ये कॉपीड है, आई एम श्योर ये कॉपीड है कहीं से, सेम एज मून। नहीं हिशाम साहब, ये इतना अंग्रेजी गाना मैं यहाँ पर प्ले नहीं करूँगा, गलत जवाब है, यूसुफ भाई का सही जवाब है। तो हमें एक दो तीसरा तो कॉपीड है, मैं कह सकता हूँ तीन जवाब मिले हैं। तो अहमद ने सही जवाब दिया है, अगर कॉपीड नहीं है तो वेल डन। मुबीन ने सही जवाब दिया और यूसुफ ने सही जवाब दिया। एक बार म्यूजिक फिर से सुनिए और सही जवाब क्या है मैं बताता हूँ।

0: चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, ये गाना वो था। वेल, कोई बात नहीं, जिन्होंने खेला बहुत ही उम्दा, अभी आपके पास दो चांस और है। अगर आपने सही जवाब दिया, मान जाऊंगा भाई, अगर आपने सही जवाब दिया मैं समझ जाऊंगा दिमाग तेज है, बादाम मेरी तरफ से। जिनको पता है उनको पता है। ये रहा दूसरा म्यूजिक आपके लिए, 666-22-107 पे मैसेज कर सकते हैं आप। बताइए, ये वाला तो आसान है। मैं 99.99 जैसे जम्स मर जाते हैं ना एक साबुन का इस्तेमाल करने से, वैसे 99.99 जिनको दशमलव नहीं पता उसको पॉइंट कहते हैं, तो लोगों को पता होगा ये गाने का नाम। हुसैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद यूसुफ ने सही जवाब दिया, इमरान भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा, तीन लोग तो आ गए हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। और कोई है क्या, और कोई मुमीन ने भी सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा, क्या बात है। फिर ये मैडी बोले तो अहमद ने भी सही जवाब दिया, वेल प्लेड। ये जवाब जो है बिल्कुल सही है, आप सबके एक भी जवाब गलत नहीं है, और गाने का नाम है
1: बेबी को बेस पसंद है,
0: बेबी को बेस पसंद है। और इसी के साथ एक और भाई ने पहचान लिया है, इनका नाम क्या है, उसकी आंखें इंग्लिश बोले, महफूज रॉबिन ने, क्या बात है, महफूज भाई ने भी पहचान लिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। बाकी अब तीसरे गाने पर हम बढ़ रहे हैं, और तीसरा गाना कहें या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कहें वो है ये।

शमम। हाँ जी बताओ, नंबर 6662217। वेल अगर आज मुबीन भाई टाइपिंग को कर रहे हैं तो पहली बार अगर ऐसा, हाँ अरे यार ये तो हो गया अभी, ये शो जो है तकरीबन एक महीना हो गया, एक महीने में पहली बार ऐसा है कि 3 के 3 जवाब किसी शख्स ने सही दिए हैं। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे मुबीन है जिन्होंने तीनों जवाब सही दिए हैं। 4 शनिवार, बेबी को बेस पसंद है और ये 3रे नंबर का गाना। फिर दूसरे नंबर पे हैं यूसुफ भाई, जून के तो यही हीरो रहेंगे मेरे ख्याल से, अगर कल और परसों कोई गलती हो जाए लोगों से तो अलग बात है। यूसुफ ने कहा फिल्म गाने हैं इसका, लेकिन गाने का नाम नहीं बताया है, मूवी का नाम बता दिया बट गाने का नाम नहीं बताया, आई एम सॉरी, आप दूसरे नंबर पे नहीं रहेंगे। अहमद, आई एम श्योर कि अहमद, अगर 4 शनिवार इन्होंने कॉपी नहीं किया है कहीं से तो दूसरे नंबर पे हैं, बिल्कुल सही बताया अहमद ने भी। संतोष नेपाल से हैं, इन्होंने सही जवाब बताया, क्या बात है संतोष भाई। ये बाकी दो वाले नहीं समझ में आए थे, नहीं पता थे, रियाज भाई ने डॉट लिखकर भेज दिया, दशमलव लिखकर भेज दिया हे शोना, नहीं भाई इमरान साहब ये गलत जवाब है। और हुसैन भाई ने कहा है बिल्कुल सही जवाब, दिल में बजी, अच्छा ठीक है आगे की लाइन है। कमकम खान ने बिल्कुल सही बताया है और आगे ये मैसेज है, गुंडे फिल्म का गाना है, महफूज रॉबिन, नाम बताइए, गुंडे फिल्म का गाना है तो नाम बताइए। बट यूसुफ भाई ने फाइनली बता दिया है, तो 3 लोग हो गए हैं। इमरान भी ने गाने का नाम भी बता दिया, बहुत ही उम्दा। सो द करेक्ट आंसर इज और सॉन्ग इज दिस। ये गाना यार बहुत ही लाजवाब लगता है, बस कोई कह दे मुझसे कि फजील भाई गाना प्ले कर दो विशाल ददलानी के बर्थडे पे, तो मैं तो तैयार बैठा हूँ भाई, बहुत ही उम्दा। एक और मैसेज है, सेम एज मून पहले लिखा था फिर 4 शनिवार लिखा हिशाम साहब ने, हिशाम भाई देर कर दी आते आते। बाकी 3रा गाना भी आपने सही पहचाना ना, तूने मारी एंट्री, ये गाना है तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, के नीति मोहन विशाल और बप्पी लहरी ने इस गाने को गाया है। तो अब वक्त है कि बाकी जो गाना है 4 शनिवार ये विशाल ददलानी ने अकेले गाया है, बेबी को बेस पसंद है, इसमें अच्छे खासे सिंगर हैं जैसे कि विशाल हैं, शलमली खोलगड़े हैं, इशिता और बादशाह भी हैं। उसके अलावा तूने मारी एंट्री ये गुंडे मूवी का ट्रैक, कई लोगों ने बिल्कुल सही कहा, के नीति मोहन विशाल और बप्पी लहरी का गाना, बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया आप लोगों ने। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि 3 के 3

इन गाने लोगों ने, कई लोगों ने सही जवाब दिए और सही पहचाने हैं। बाकी ये मैसेज है, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। भाई क्या बात कर रहे हैं, बॉम्बे से इमरान भाई? मुझे लगा आप जो, मतलब जिस तरह से आपकी टाइपिंग है तो मुझे लगा आप शायद बांग्लादेश के हैं, क्योंकि हे शोना को आपने हो शोना लिखा है तो मेरे को ऐसा लगा। और तूने मारी इंट्री को, आपने मारी सही से लिखा नहीं है, मर्री समथिंग लिखा, तो मुझे लगा कि आप शायद। बाकी है प्ले कर दो फज्जू। बस देखो नसीम भाई ने कह दिया तो अब जो गाना प्ले होगा आखिरी जाते जाते वो नसीम भाई की रिक्वेस्ट पे, देखा मेरे मर्जी का गाना लेकिन नसीम भाई की रिक्वेस्ट पे प्ले होगा तूने मारी एंट्री। फिर ये मैसेज है, माय फैमिली इज गोइंग बैक टू होम कंट्री, दे आर सैड, प्लीज मोटिवेट देम, बिलाल मुगल। यार अगर जिंदगी में सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो यही है कि मैं मोटिवेट नहीं कर पाता भाई, मैं खुद सैड हो जाता हूँ यार। आपने वो आदमी देखा है कि वो आदमी तो नहीं ऐसे कम होते हैं लेकिन जो दूसरे को रोता हुआ देखे खुद रो दे भाई, मैं वो आदमी यार। मेरे खुद आ जाते हैं यार आंसू, मुझे समझ नहीं आता। मैं किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाऊं, और ऐसा भी है कि कई बार मैं और एयरपोर्ट अपने फैमिली को लेने जाता हूं, ठीक है, जैसे मेरी कुछ दिन पहले मेरी अम्मी आई थी तो मैं उनको लेने गया, लेकिन कोई था जो वहां छोड़ने गया था वो रोने लगे, उनको देख के मैं रोने लगा। मेरी अम्मी को लग रहा था कि मैं उनको लेने के लिए गया इसलिए मैं खुशी से रो रहा हूं, फिर वो भी रोने लगी। भाई मोटिवेट का तो पता नहीं, मैं उल्टा डीमोटिवेट हो जाता हूं। प्लीज बिलाल भाई अपनी फैमिली को कहो कि सब अच्छा है। मेरे को मालूम है मोटिवेट में मैं क्या कहता हूँ, अरे मैं तो आ ही रहा हूँ 2 महीने बाद, अभी मेरी अम्मी गई हैं 24 तारीख को, मैंने क्या कहा उनसे, अरे 2-3 महीने बाद तो आ ही रहे हैं ये मेरा मोटिवेशन है यार। भाई सबसे बुरा मेरा यही है। अब बाकी अगर इन बातों से मोटिवेट हो गए तो ठीक है, मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है। देखिए जिंदगी इसी का नाम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मोटिवेट करने की, ठीक है। बिलाल भाई उनसे सिंपल ये बात कहनी है कि असल मोहब्बत तभी है जब थोड़ी दूरियां हैं और थोड़ी करीबी भी है ना, तो ये खट्टा मीठा ना तभी अच्छा लगता है। हर वक्त आप मिर्चा नहीं खा सकते, जैसे हर वक्त आप मीठा नहीं खा सकते, वक्त वक्त पे चीज़ ज़रूरी है, वक्त वक्त पे चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही है भाई। देखो मेरे को इतना ही आता था, मैं यही बोल पाया भाई। बाकी लोगों का मैसेज देख लेते हैं। दानिश आज़ाद फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, विशाल ददलानी का सॉन्ग कुर्बान हुआ प्ले कर दें। कुर्बान हुआ भाई, अब लेट हो गया है, मैं ऑलरेडी नसीम भाई को कह चुका हूँ, अब बात उनकी काट नहीं सकता यार। बाकी कल आपका पक्का गाना प्ले करूँगा। बेबो को बेस पसंद है, फजील भाई को हम उस पसंद है, मुदस्सिर बंगाश पहचान गया। ड्राइव करते वक्त टाइप किया क्या भाई? अच्छा कोई बात नहीं, मुझे इमरान भाई मेरी भी गलती हो सकती है, सॉरी। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे बेहतरीन से गानों के साथ, नए थीम के साथ। अब मुलाकात कल FM 107 पे, फिलहाल मेरी मर्जी आई मीन नसीम भाई की मर्जी पे। आहा, ओहो, गुंडे मूवी का ट्रैक, KK नीति विशाल और बप्पी लहरी की आवाज में, हिंदी वर्जन, दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: अरे ये इतनी इतनी भीड़ भीड़ क्यों है? कोई आर जाने वाला है क्या? अच्छा शो है छोटे, आइयो रेडियो लगा कोई आने वाला है। आइयो लोग तो कह रहे हैं ठीक ठाक बोलता है।

लट गाट गए और बताओ क्या चल रहा है भाई, बढ़िया वीकेंड पे क्या किया, मौज आ गई। मैं भाई मैसेजेस पे सबसे पहले नजर रहती है, उस पर जाऊंगा मैं, लेकिन लेकिन मुझे पता इंतजार कल सुबह का है। कल सुबह भाई जितने भी हमारी लड़कों की कम्युनिटी है ना इनके जिंदगी में भूचाल आने वाला, भूचाल। कल आवारापन 2 का टीजर आ रहा है भाई, मैं अभी अभी दोबारा 3-4 मरतबा देख चुका हूँ, हालांकि सेकंड्स का ट्रेलर है वो, ट्रेलर भी नहीं है सॉरी, टीजर का भी बच्चा है वो, इतनी बार बार देखा है मैंने वो, मैं बताऊँ गूज बम्स आ रहे हैं भाई। कल सुबह सुबह मेरे ख्याल में 11 बजे रिलीज़ हो रहा है इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। कल सुबह आवारापन 2 का भाई टीज़र आ रहा, मैं ओहो, मेरे अंदर वो 2007 में जब मैं बच्चा था तो वो बचपना वापस जाग गया है। मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है, मैंने कहा सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, जिसको नहीं बता सारे के सारे मिलियन पार पहुंचा देना भाई टीजर को। मोहम्मद यूसुफ खान साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, रहा वीकेंड कह रहा है, आई नो बिस्तर में गुजरा होगा या फिर गेमिंग, भाई गेमिंग बढ़िया दबा के गेमिंग करी आपके भाई ने, WWE खेला आपके भाई ने, ओए होए मजा आ गया भाई। एक और मैसेज आया है, ये भाई लिखते हैं हर बार की तरह बेस्ट एंट्री, थैंक यू सो मच मेरे भाई, सलाम कबीर भाई, क्या हाल है, वालेकुम सलाम, वीकेंड कैसा रहा और चर्चा क्या है, क्या है क्या नहीं, 26 गुजर गया है, मैं समझा नहीं मुबीन भाई, मैं कुछ समझा नहीं। हुसैन साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम बारूद भाई, क्या हाल चाल है, आ जाओ नाश्ता करो, ये कैसा बड़ा सूखा सा सैंडविच लग रहा है मेरे भाई। सुल्तान अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह। और मैसेज है राज शाहिद साहब का, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, तो ये कुछ मैसेजेस आए मेरे पास। हाँ तो फिर वही एक भाई और नहीं कि हमारे बहुत सारी यादें हैं भाई, ऐसे गाने ना, ऐसे गाने मैं बता रहा हूँ, ऐसे गाने होंगे ना मैं बताऊं, आवारा पंटू मैं तो टॉप 10 करता ही हूँ, दूसरा शो टॉप 10 में बता रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आधे गाने आवारा पंटू के भरे होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बार, पूरी पूरी उम्मीद है। तो कल ट्रेलर आएगा, सॉरी टीजर आएगा, तो कल इसके बारे में और खुल के बात होगी, लेकिन

0: भाई साहब हुसैन साहब ने मैसेज किया है भाई धूप में क्या आ रहे हैं ये जो आपने मुझे सैंडविच का फोटो भेजा भाई इतने ब्लैंड लग रहे हैं ना ऐसा मैं वीकेंड पे दिखता हूँ भाई इतना ब्लैंड बिना मसाले वाला ऐसी लग रहा है सैंडविच बिल्कुल मेरी शक्ल से मिल रहा है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम भाई का नाम व्हाट्सएप पे है अब लिटरली ये भी लिखा है मैंने लिखा भाई नाम क्या है आपका नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम नसीम साहब चाय सूत रहे हैं। एक मैसेज फलक साहब का वालेकुम अस्सलाम एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम महफूज रॉबिन भाई एक और मैसेज है कबीर साहब वालेकुम अस्सलाम एक और मैसेज जुबैर बलूच साहब का अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई क्या हाल है भाई का वेट करना पड़ता है जुबैर बलूच भाई बहुत सारा प्यार भाई को क्या। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम बेस्ट विशेस फॉर यू इस्लाम अहमद साहब वो भी चाय पी रहे हैं आप भी चाय पी लो मैं अभी जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले आपके भाई ने चाय का खाली किया है। अमन भाई वालेकुम अस्सलाम गुड इवनिंग और हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम तो ये सारे सलाम मैंने दे दिए हैं अब ज़रा शो को भी तो शुरू करना है तो कुछ देर में शुरू करेंगे। आज की कहानी इज़ वेरी शॉकिंग टू इट्स कोर छोटी कहानी है लेकिन भाई बस मत पूछो मैं इस कहानी को भी मैं इग्नोर करता आया था मैंने कहा नहीं छोड़ो जब कुछ नहीं होगा तो सुनाऊंगा पर अभी बहुत कुछ है तब भी मेरा मन है कि ये कहानी पहले मैं सुना दूं। सरताज साहब वालेकुम अस्सलाम मैं बढ़िया भाई एक मैसेज आया नेम ऑफ द डिश ज़ियाफ़ा विद ब्रेड इसका नाम तो बहुत ही रॉयल है भाई फील नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम अमर यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम कायरी मौलाना कबीर साहब अरवाज़ भाई थैंक यू सो मच भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलेंगे आपको बताइए शाम के अधिकार उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। एक भाई ने मुझे अवारापन का टीज़र भेजा भाई यही देखा मैंने टीज़र अभी जस्ट अभी वापस देख के आया हूँ 102वीं बार देख के आया हूँ मज़ा आ गया भाई। एक मैसेज है बोला खर्चा क्या है 26 डेट गुजर गई है खर्चा किया है क्या मैं एक सेकंड में क्या कुछ मिस कर रहा हूँ किस चीज़ का खर्चा पहले इनका जवाब दे दूँ मैं या आप गेमर नहीं हो अच्छा नवंबर अरे बाबा वो तो 26 तारीख थोड़ी है वो 26 नहीं है मेरे ख्याल में 19 तारीख है ना भाई 26 तारीख नहीं है हाँ वो प्री ऑर्डर कर रखा भाई आपके भाई ने तो बहुत दुख के साथ अल्टीमेट एडिशन ऑर्डर किया है अल्टीमेट एडिशन $100 वाला भाई घर वालों से छुपके गया जिस दिन उनको बिल पर्चा दिख गया ना कि $100 किधर गए एक गेम पे उड़ाए गए हैं बस उसी बात का डर है भाई मैं डेली कांपता हुआ घर से निकलता हूँ कि कोई पूछ ना ले कि अरे सुनो ये इतना डर लगता है मुझे बस पता ना लगे किसी को ये आप क्यों मेरे राज की बात है ठीक है डरा दिया आपने फालतू में याद दिला के मिलते हैं भाई दुआएं कीजिएगा किसी को ना पता लगे 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मुलाकात होगी डरा दिया भाई ने
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: मतलब छोटी कहानी बड़ा धमाका, समझ रहे हो? सो 666-22-107 पे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप लाइव सुनने वाले हैं तो. एंड इसी के साथ साथ आज का सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ये सवाल जो है अक्सर मुझसे पूछा जाता है और मैंने कई जगह पढ़ा भी है इस बारे में, तो मैं जानना चाहता हूं एक साइकोलॉजी पे बेस्ड, इस पे जुड़ी हुई एक कहानी भी है जो मैं कुछ दिनों में आपको सुनाऊंगा. मेरा सवाल ये है, अपने आप को कितना ढीठ मानते हैं आप? क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ लोग उम्र के साथ साथ ज्यादा ढीठ हो जाते हैं, कुछ लोग जो है उम्र के साथ साथ उनका ढीठपना चला जाता है, स्टबर्ननेस जिन्हें कहते हैं ना, वो चली जाती है, पर कुछ लोगों का ढीठपना जो होता है वो बढ़ता चला जाता है. तो अगर आप अपने आप को ढीठ के स्केल पर मेजर करें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, आप कितना ढीठ मानते हैं खुद को? आप हैं मतलब अड़े रहते हैं किन चीज़ों पे? स्टबर्ननेस है क्या? अरे जाने दो, छोड़ो यार, दिख ही जाएगी. कितने ढीठ हैं आप? अच्छा, बहन ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम बहना, असलम बहन क्या हाल है आपके? एक और मैसेज हुसैन भाई का, उन्होंने वॉइस नोट भेजा था, अभी मैं सुनता हूँ. या तो ये, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जो उम्र के साथ साथ थोड़े ज़्यादा ढीठ होते चले जाते हैं, इन अ गुड वे इन अ बैड वे बोथ. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ढीठपना चला जाता है, वो मतलब बचपन से काफ़ी चिड़चिड़े और ज़िद्दी और ढीठ रहे होंगे, लेकिन बड़े होते होते वो सब कुछ एकदम गायब हो जाता है. तो आप किस साइड हैं, पहली बात तो ये जानना जरूरी है. एंड देन यू लेट मी नो के ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 क्या हाल है आपका भाई साहब, कितने ढीठ हैं आप? एक मैसेज, सॉरी कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: क्या बात है, आज मुझे लग रहा है काफी हवाएं चल रही, काफी लहरते हुए आपने सलाम का जवाब दिया, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है, बात ही कुछ ऐसी है.
0: क्या बात ऐसी है मेरे भाई, क्या हो गया?
1: कि तेरे संगत का असर ऐसा चढ़ा मुझ पे,
0: ऐसा चढ़ा मुझ पे
1: तेरे संगत का असर चढ़ा मुझ पे, लोग तेरे पता से पहले मेरा पता पूछते.
0: अरे रे रे रे रे, क्या पता है आपका फिर? मुझे मेरा तो पता है, आपका क्या है?
1: अरे 974.
0: क्या बात है. तो आज ये अलग अंदाज बयां कैसे है, क्या हुआ है आज? आज बहुत बढ़िया दिन गया माशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है. हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अच्छा, बहुत बढ़िया.
1: ढीठ पे बात आई है, अभी अभी मैं देखा तो गाड़ी के जो एंट्रेंस होता है ना,
0: क्या होता है गाड़ी का
1: उस साइड में एंट्री गेट,
0: हाँ ठीक है,
1: जाने के लिए,
0: हाँ ठीक है ठीक है.
1: अब कट रहे तो आपको गाड़ी मोड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, वहाँ एक बाइक खड़ी है.
0: अच्छा,
1: तो उनको बोला गया, बोला मैं कि भाई बाइक ऐसे मत रखो, मोड़ने में गाड़ी लग सकती है अंदर जाने के लिए.
0: हाँ,
1: वो क्या बोला मालूम है, गाड़ी यहाँ लाने की जगह नहीं है, कार उधर रखो, ये बाइक के लिए जगह है.
0: अच्छा ठीक है.
1: गेट के ऊपर, इसको बोलते हैं ढीठ.
0: अच्छा, तो ये आप नहीं, आप ना बताओ ना, आप कितने ढीठ हो?
1: मैं वहाँ ढीठ हूँ जहाँ मेरी गलती नहीं, मुझे लगता है कि नहीं मेरी गलती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा.
0: तो ये तो चलो गलती और गलत और सही के मामले हो गया, वैसे जिंदगी में इन जनरली कितने ढीठ हो, क्या चीजों के लिए ढीठ हो, मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ
1: नहीं
0: है?
1: नहीं, नहीं,
0: ऐसा कुछ नहीं,
1: ऐसा नहीं.
0: अच्छा अच्छा ठीक है यार, काफी सुधरे. आप पहले थे क्या, पहले थे क्या ढीठ, या अभी बड़े होते होते सब चला गया, गायब हो गया?
1: पहले तो थे, पहले तो सब चीज में आगे थे, मुझे चाहिए तो चाहिए.
0: ये मैंने अभी एक मैसेज आया कि सुबह सुबह आपने सेम शायरी सरवर भाई को भी चेपी थी. हैं, सुबह सुबह सेम शायरी आपने सरवर भाई को भी चेपी थी?
1: उनका थोड़ा सा बदला हुआ था.
0: अरे सब जगह पटाने का चल रहा है सीन. बहुत डीटो, बहुत डीटो. अब समझ में आ रहा है मेरे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं समझ गया. मुझे लग रहा है कि आज दिन बहुत ही लहराता हुआ जा रहा है आपका, और दुआ करता हूँ कि ऐसे दिन बढ़िया जाए. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
1: शुक्रिया.
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मजे करिए आज के पूरे दिन, और अगले आरजे को भी, अगला तो कोई आरजे अभी आएगा नहीं, पर सुना देना कि ये शायरी कल सुबह भी सुना देना, ठीक है? चलो ठीक है भाई, ख्याल रखो अपना. तो एक और कॉल ले लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
0: जी. मेरा भाई बहुत दूर से आ रही है आवाज.
2: जी जी, दूर से नहीं आ रही, स्लो बोलते
0: हैं. अच्छा, बहुत स्लो बोलते हो. अच्छा बता दो, स्लो आवाज में बता दो, आपकी आपकी ढीठनेस का लेवल क्या है, कितना ढीठ हो भाई आप?
2: पहले नहीं था तो बहुत हो गया.
0: आप बहुत हो गए. अच्छा, सबूत दो, अदालत सबूत मांगती है मेरे भाई. हाल ही फिलहाल में कब ढीठ रहे हो, क्या किया?

0: काम बोल दिया, मैं मेरा मन नहीं किया, तुम मर जाओगे तो भी नहीं करूँगा।
1: अरे रे रे रे रे, मतलब काम दिया तो अगर मन नहीं है तो मर भी जाओगे तब भी नहीं करूंगा। अच्छा ऐसा,
0: आंसू तक नहीं टपकेगा ऐसा
1: तो बहुत आगे की चीज है यार। बहुत शादी वादी हो गई?
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो शादी के बाद तो आदमी थोड़ा कम ढीट हो जाता है ना, धरती पे आ जाता है। आपके साथ क्या सीन है?
0: शादी के बाद ही तो ढीट
1: हुए हैं। अरे भाई साहब कमाल है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ऐसा क्यों है? है?
0: है?
1: भाभी जी से इंस्पिरेशन ली है आपने कि क्या मतलब, कैसे शादी के बाद कैसे डेट हो गया यार? शर्माओ नहीं बता दूं,
0: मानता ही नहीं तो कोई क्या करे, अपने आप को भी डेट बनाना पड़ता है ना।
1: अरे रे रे रे रे, क्या बात है, आज तो साउथ के हीरो लग रहे हो मेरे भाई, एकदम बढ़िया पॉज के साथ डायलॉग मार रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं,
0: नहीं अपना भी कोई वैल्यू है कि नहीं?
1: हाँ रखो रखो, अपनी वैल्यू रखो भाई, क्यों नहीं रखनी चाहिए, अपनी बात रखो। वेरी नाइस, आप पहले बंदे जिसने बोला कि शादी के बाद उसका ढीटनेस बढ़ गई है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए। और बताइए कैसा जा रहा है दिन?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर गया आपका।
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब शानदार, अब जाएगा मेरा दिन तो अभी एक तरीके से शुरू हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए, थैंक यू। है वीकेशन? कौन सा वीकेशन? अच्छा वीकेंड, वीकेंड बढ़िया गया भाई, एकदम शानदार।
0: अच्छा भाई आप गेम करते हैं ना, हम भी भाई गेमिंग वाले हम भी हैं।
1: तो गेमिंग आप किस पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, कंसोल पे करते हैं, मोबाइल? मोबाइल पे करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बढ़िया भाई, गेमिंग कम्युनिटी बढ़नी चाहिए,
0: गेमिंग सबसे बढ़िया,
1: बढ़िया भाई एकदम, आदमी खो जाता है,
0: कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती।
1: हाँ ये हुई बात,
0: तो गेम लेके कान में लेट गई। हाँ जाए
1: भाई। बहुत बढ़िया सबूत दिया आपने ढीट होने का, वाह मेरे शेर, वाह वाह वाह वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है बस इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो सब पता चलेगा, इससे ज्यादा मत इंक्रीज करना अपना गेमिंग आवर्स। लेकिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अभी अगली कॉल की तरफ बढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, तो फिर आपसे बात होगी। ठीक है ओके मेरे भाई, तो भाई के बाद जो है अगली कॉल की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं पारुस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम बढ़िया, आप सुनाइए क्या
2: हाल है भाई के? बस बढ़िया भाई, कट रही है भाई, आज एक टॉपिक ही है भाई, कोई नाराजगी वगैरह है भाई?
1: नहीं नहीं नाराजगी नहीं है मेरे भाई, आज एक्चुअली पता मेरे घर से ये वाकया शुरू हुआ, तो मेरे घर वालों ने बड़ा बहुत ढीठ है भाई तू, मगर अच्छा तो मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, मैं मुझे तो लगता नहीं मैं पहले ढीठ था, अभी थोड़ा सा कम ढीठ हूँ। आपके साथ
2: लोगों से पूछ रहे हो, बेचारे लोग बता देंगे मैं इतना ढीठ हुआ करता था, उसके बाद उनकी बीवी बोलेगी आओ तुम घर पे।
1: अरे अभी अभी एक भाई बोल के कह रहे मैं तो शादी के बाद ढीठ हुआ हूँ, सबूत देंगे।
2: अभी मैं वही सुन रहा था, मैं बोला चलो अच्छी बात है कोई तो है।
1: तो आपके साथ क्या सीन है मेरे भाई, कितने स्टबर्न हैं आप, क्या सीन
2: था कबीर भाई? ऐसा है कि मैं भी पहले बहुत हिट हुआ करता था,
1: अच्छा
2: बहुत ज्यादा, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी।
1: अच्छा
2: जी।
1: अच्छा मुकाबला लेके आ गए आपका?
2: हाँ उसके बाद मुझे हिट शब्द मेरे दिल दिमाग से ही निकल गया भाई।
1: अरे रे रे रे रे, तो मतलब
2: जो बोलती है मान लेता हूँ, हाँ बेबी तुम ही सही हो।
1: तो कभी जिद करी है इनिशियली, कभी जिद करने की कोशिश की हो, इतनी हिम्मत आई हो आपके अंदर के थोड़ा?
2: एक बार आई थी, मैं समझा रहा था कि इधर नहीं इधर रखो, इधर नहीं इधर रखो, खराब हो जाएगा, लेकिन भाई उसका भी क्रेडिट मेरे को ही गया, और मैं ही फिर बाद में बातें मुझे ही सुननी पड़ी।
1: आती है
2: नहीं बताया।
1: आती है हाले दिल पे हंसी।
2: उसके बाद से मैं फिर बोला कि नहीं अब मैं ठंडी बन के रहूं तो ज्यादा बेटर है,
1: यही बेहतर है,
2: नहीं है भाई
1: ये आपके लिए बेहतर है मेरे भाई, इससे मेडिकल का खर्चा बचता है मेरे भाई। हाँ ये बजा के चलिए। और ये जो आप खाने के लिए पहुंचे हैं, ये क्या है ये जो आपने नाम बताया?
2: मेरे मतलब एक अरबिक टोस्ट है ना, तो उसने ही ऑर्डर करी है डिश, ये एक अरबिक डिश है, टोस्ट में ना कुछ पेस्ट लगा हुआ है बस, वही उसका नाम इतना रॉयल है लेकिन खाने में वही है भाई, इससे अच्छा तो चीनी लगा के दे दे।
1: मुझे भी चीनी का परांठा याद दिला दिया भाई।

0: अरे भाई नाम इतना रॉयल, चलो कुछ होगा मैं सोचा, लेकिन भाई साहब वो ब्रेड में एक पेस्ट लगा हुआ है बस।
1: हाँ ये भाई मैं बता रहा हूँ बिजनेस के आइडियाज हैं, आप इसे दूसरी तरीके से देखिए मेरे भाई, ये दूसरे तरीके से देखिए।
0: मैं उसको ऐसे ऐसा स्पाइसी बारबेक्यू खिलाऊंगा उसके धुएं निकलेंगे धुएं।
1: मिशन पे निकलो मेरे भाई, अब आपकी बारी है। खिला डालो
0: बिल्कुल भाई।
1: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ख्याल रखिए मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई के बाद एक जरा और कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: अरे क्या बात है नदीम भाई, कैसे मेरा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक नंबर एक नंबर। बताइए नदीम भाई, क्या लेवल है आपका, कितने ढीठ हैं आप?
2: तो ना एक कहानी याद आ गई, वो जो भाई अभी बात कर रहे थे।
1: हाँ
2: तो वो सबका ही हाल है।
1: अच्छा,
2: तो बात ये है कि भाई देखो, एक घर के अंदर जब जा रहे होते हैं तो लाइट चली गई होती है,
1: ठीक है,
2: घर लॉक होता है और हस्बैंड वाइफ ताला खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं,
1: ठीक है।
2: तो वाइफ हस्बैंड को बोलती है मोबाइल से टॉर्च दो,
1: हाँ,
2: मैं खोलती हूँ,
1: ठीक है।
2: अब वो ट्राई कर रही है नहीं खुल रहा है लॉक, दो बार तीन बार चार बार पांच बार लॉक खुला नहीं।
1: हाँ।
2: तो हस्बैंड ने पीछे से बोलता मैं ट्राई करूँ।
1: हाँ।
2: तो बोलती है लो कर लो।
1: हाँ।
2: अब वो टॉर्च उसको देता है और हस्बैंड पहली बार में लॉक खोल देता है,
1: ठीक है।
2: वाइफ पीछे से टपली मार के बोलती है देखा टॉर्च पकड़ना भी नहीं आता तुमको।
1: ये सत्य घटनाओं पे आधारित की लग रहा है मुझे, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स।
2: तो हाँ, वो सब शादी के पहले ही होता है, डेट पना रिद्धि पना, बाद में सब निकल जाता है।
1: क्या सामने वाला कहेगा आओगे औकात में? हाँ कबूल है कबूल है। अरे यार नदीम भाई, वैसे मुझे लगता नहीं जनरली भी आप कभी ढीठ रहे होंगे, आपकी पर्सनालिटी को देख, पहले कभी ऐसा थे मतलब शादी से पहले या लॉन्ग बैक इन योर डेज?
2: रिद्धि इन द सेंस ऐसा था कि मतलब अगर कुछ चाहिए या कुछ करना है तो फिर करना है।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है,
2: वो वाला हिसाब था कि भाई
1: पॉजिटिव
2: है तो फिर करना है मतलब। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट्स में फिर अगर कोई आ गया उतरने तो फिर ऐसा है कि बस जीतना है, फिर सही हो या गलत तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: ये भी एक जमाना था।
2: हाँ
1: ठीक है। और प्री ऑर्डर हो गया नदीम भाई?
2: नहीं किया मैंने एक्चुअली, मैं सोच रहा हूँ फिजिकल ज्यादा बेटर है, इस वजह से मैं।
1: भाई फिजिकल नहीं है, सीडी नहीं आने वाली।
2: हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा कि शायद दिसंबर में लॉन्च करे।
1: अच्छा, ओके ओके,
2: लेट्स होप, क्योंकि मैं या तो फिर अब मैं आजकल थोड़ा पीसी पे शिफ्ट हुआ हूँ ना, फिर मैं उस पे ले लूँ और फिर पीसी पे भी लेना पड़े, डबल हो
1: जाएगा। लॉन्च हो आपका, वेट करना।
2: हाँ, तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ।
1: ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई।
2: फाइव चल रहा है।
1: हाँ चलाओ दौड़ाओ, मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे मेरे पास जल्दी आएगा तो इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और नदीम भाई के बाद जो है अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाह बरकातुहू।
3: जनाब खैरियत से?
1: अरे भाई बढ़िया चल रहा भाई, क्या हाल है? अरे बस बेटे, ऐसी ख्याल रखो है, बड़ी फिक्र होती है जैसे बेटे आपकी।
3: अरे अच्छा, आपको तो याद करना पड़ेगा ना।
1: मेरे को तो बेटे बहुत
3: अच्छा एक बात बताओ, ये आज अपना वाला टॉपिक आपने पब्लिक के ऊपर क्यों छोड़ दिया?
1: बेटे मैं भी एक जमाने में बहुत डेट हुआ करता था।
3: तो वही तो, ये इतना लेट क्यों याद आया तुम्हें? चाचा
1: याददाश्त भी थे इस उम्र में, कहाँ काम करती
3: है याददाश्त। हाँ, कहीं वो याददाश्त भी इस अलमारी में सेफ में कहीं रख के भूल गए होंगे चाचा।
1: बेटे मैं लठ निकाल लूंगा, मेरे को जवाब चाहिए, ठीक है? तो क्या जवाब है आपका, कितने ढीठ हैं आप?
3: बेंदा भाई साहब।
1: ऐसा क्या कर लिया आपने, कोई रिसेंट वादाना सबूत मांगते हैं मिलो, बताइए।
3: रिसेंटली अभी बताऊं भाई साहब, जुम्मे की बात है ना, जुम्मे का सीन सुना दूं। एक फाउंटेन है हमारे घर में, ठीक है, फाउंटेन को कम से कम खराब हुए 3 महीने हो गए।
1: हाँ।
3: हम ये सोच रहे हैं कि आज बताएंगे कल बताएंगे आज बताएंगे कल बताएंगे, फाइनली मैडम कॉल आ गया जुम्मे के दिन।
1: फिर
3: जाती भी फाउंटेन क्यों नहीं चल रहा? मन का उसका वो मोटर खराब है। कब से खराब है? मन का हो तो काफी टाइम गया, मगर मैं सोच रहा था कि कब बताऊं आज तुमने फाइनली फोन कर लिया तो बता दिया दुबे के फाउंटेन।

0: इसमें ढीठपना और बेशर्मी दोनों शामिल है माशाल्लाह, बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है।
1: भाई तीन कम से कम 3 महीने से ज्यादा हो गए, बस यही मैं सोचता हूँ आज बताऊंगा कल बताऊंगा आज बताऊंगा कल बताऊंगा।
0: मैडम को ऐसे बोलते हैं ना प्रैंक, मैडम वो देखिए कैमरे की तरफ देख के हाई कर दीजिए, ये हमारा एक प्रैंक शो चल रहा है। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: हाँ। अब मैडम बोल रही है कब को चेंज करेगा, मैंने कहा अभी 2-4 दिन में चेंज कर देंगे, अब पता नहीं कितने दिन हो
0: जाएंगे। जल्दी करा लो ठीक है, एक और महीना बर्दाश्त होता नहीं है यहाँ पे ठीक है। हाँ
1: यार 2 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए, अब देखो आगे और कितने दिन एक्स्ट्रा जाए।
0: मैं दुआ करूंगा भाई मैं दुआ करूंगा जरूर, ईशा में भी और क्या सीधा फजर में उठते के साथ ही आपके लिए, कि आपको होश आए ठीक है
1: भाई। ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, शादी के बाद आया भाई, शादी से पहले बड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, शादी के बाद में ढीठ बनाया था।
0: ये उल्टी क्यों बह रही है नदी, ये कैसे हुआ यार, तो ये क्या बात है उल्टा। अच्छा ठीक है, ये भी मैं साइंस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लोगों के साथ, उल्टा होता है।
1: ये भी जो है ना, ये भी नजरे करम किसी की जिब होती है, हर किसी पे नहीं होती।
0: वाह वाह, शेर का मतला है ये पता है आपको, मजाक मजाक में शेर का मतला दे दिया आपने। वाह शाबाश जयस भाई, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू भाई, सो प्राउड ऑफ यू,
1: थैंक यू भाई।
0: ठीक है भाई, ठीक है, तो फिर अभी कहानी सुनिएगा, बहुत बढ़िया कहानी है, मजा आएगा आपको ठीक है। चलो ख्याल रखो,
1: ओके ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद मैं जो हूँ एक जरा कॉल कर लूँ, क्योंकि भाई ने बहुत देर से बोल रखा है, उनको मैंने कॉल की नहीं है, तो लेट मी डायल द नंबर, और फिर हमारे एक और भाई हैं अमन भाई, उनको भी करनी है कॉल। तो सब तो पहले एक वैसे भाई मुझे भी सिखा दो थोड़े से, हैं अस्सलाम
2: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कबीर भाई कैसे हैं भाई?
0: बढ़िया साबिर भाई, दोनों एक साथ बात की जा रहे थे अभी हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे साबिर भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुना? बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
0: जी जी जी जी जी, मैंने अभी आपका मैसेज भी देखा, मैंने कहा सबसे पहले अभी कॉल कर लें साबिर भाई को। तो भाई
2: नहीं यार भाई, मैं जी जी,
0: आप कितने ढीठ हैं साबिर भाई, आप मतलब हैं थोड़ा सा है?
2: भाई मैं जनरली बताऊं तो भाई शादी से पहले तो मैं बहुत ढीठ था भाई।
0: अच्छा, बहुत ढीठ थे पहले, ओके।
2: जी जी भाई, क्योंकि बस शादी के बाद मेरे जो बच्चे हो गए, फिर उसके बाद सारे ढीठ पाना जो है ना भाई चला गया, क्योंकि भाई शादी से पहले इस कदर ढीठ थे कि मतलब कतई जहर भाई
0: कतई जहर हो रहे थे, अब जो है जहर बाहर निकल रहा है, ना डंक बचाया ना जहर बचाया।
2: जी भाई, बस मैं एक छोटा सा मतलब वाकया ही पेश करते हूँ इससे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई, क्योंकि स्टोरी का भी टाइम हो रहा।
0: बताओ बताओ।
2: तो भाई शादी के पहले ना मतलब जब उम्र छोटी थी, तो उस टाइम पे हम लोग मेरे बड़े भाई की शादी में गए हुए थे।
0: अच्छा।
2: तो वहाँ भाई आइसक्रीम भाई, ये गर्मी की टाइम था, तो वहाँ आइसक्रीम का जान ही रहे सीजन है अपने तरफ। मैं वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ भाई।
0: अच्छा, अच्छा।
2: तो सिवान जिले से, मेरा जिला सिवान है।
0: अच्छा।
2: तो वहाँ के बंदे कतई बहुत जहर है भाई, कतई ठीक है, आप पता कर लो भाई एकदम से। आप सिवान जिला जो है ना बहुत ठीक है। तो भाई मैं बस तो वहाँ गया, तो मैंने आइसक्रीम देखा, तो मेरी सिस्टर दी, तो मैंने मेरी सिस्टर से बोला सिस्टर मेरे को दिला दो, वो बोले नहीं मैं नहीं दिलाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं, ये होंगे भाई। कहते ही मैंने ना, मैं जीत पड़ गया, और वहाँ पे एक वो पत्थर, मतलब पत्थर लाइक वो मिट्टी का पत्थर था, मतलब होता है ना वो हमारे तरफ जो खेत वगैरह में, भाई ने मैंने उठा के उनको मार दिया भाई, फिर उन्होंने मेरे को आइसक्रीम दिला दिया भाई।
0: ये अरे ये तो ये किस्सा उनको बाद में पता लगा है, नहीं पता लगा है? ही नोस अबाउट इट।
2: जी जी
0: पता था,
2: जी भाई मैंने उनको, हाँ फिर मैंने सिस्टर को बोला, तो बोली कि ऐसा करते हैं आप बताओ, यहाँ दूसरी जगह आए हुए शादी में, पर अब जा नहीं रहे बचपन में बंदा, और मतलब उस टाइम पे मेरे पापा देखे भाई, हकीकत था कि मेरे अबू, खैर अल्लाह उनको जन्नत दे, वो नहीं है अभी। तो भाई ये था ना, बस एक बार बोलने से पहले मेरे पापा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हाजिर हो जाता था भाई, समझ गए। बट उस टाइम पे सिस्टर ने मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड वगैरह दिखाया, तो उसमें भी हमें भी बस थोड़ा सा ये हो गया भाई।
0: आपके,
2: तो फिर
0: आपके जिले के लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, काम के लोग लग रहे हैं।
2: नहीं रही भाई, फिर मैंने मेरी सिस्टर को मैंने सॉरी बोला कि इंशाल्लाह मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आज मेरी अम्मी भी नहीं है, उनको भी अल्लाह जन्नत दे। तो मेरी सिस्टर मेरी बिल्कुल मेरी सेकंड मदर है भाई, हर चीज का ख्याल रखती है।
0: अल्लाह ताला जी भाई, मेरे भाई अल्लाह ताला
2: जी भाई, बहुत शुक्रिया भाई आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया भाई। मैं भी इस बात पे मेरे

0: सोचा कि मैं भी शेयर कर दूं भाई।
1: भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा।
0: ओके भाई, बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम। और भाई के बाद एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।

0: तो पहले कैसा था मालूम है, पहले हाँ ये करना है ठीक है, हर काम के लिए रेडी था, लेकिन अब ऐसा हो गया ना, अभी परसों की बात बता रहा हूँ।
1: अच्छा
0: तो ऐसी बात निकली तो मैंने उसको बोला कि मतलब जैसे अभी कोई बोले ना कि उसके अमल उसके साथ उसके अमल, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं बोला तू बोलती तो है लेकिन कभी अमल भी कर लिया था।
1: अच्छा फिर आपको
0: मतलब मैंने क्या मैंने क्या की, मैं बोला कि तेरी जो जबान है कम से कम किसी को बोलती तो सोच समझ के, सामने वाला जैसा बोलेगा जवाब तो ऐसे देना पड़ेगा ना। अरे मैं बोला यार यही तो मैं समझा रहा हूँ, हाँ मैं ही तो खराब हूँ, मैं ही तो ज्यादा बोलती हूँ, मैं शुरू हो गए क्या कर सकते।
1: अरे कमाल भाई तो क्यों छेड़ा आपने?
0: छेड़ने की बात नहीं है भाई, अभी किसी को कुछ बोल दो तो भाई ऐसी बात बोलो कि सामने वाले को बर्दाश्त भी हो जाएगा।
1: भाई ये रिस्क आप ही ले सकते हैं, आप ही ले सकते हैं कमाल भाई। अरे बाप रे,
0: अभी बीच में एक बॉम्बे का ये क्या लड़का, वो शायद आपने देखा टिकटॉक पे उससे आता है, उसने क्या किया कि भी खाना खाने बैठा तो टीवी की चालू किया तो टीवी की लाइट चली गई, और रिमोट अपनी वाइफ की तरफ करके रिमोट दबा दिया, उसने बोलना शुरू किया खाना खा रहा है।
1: अरे भाई बहुत बढ़िया, क्या क्या हो रहा है जमाने में, देखा। अब ये मैंने सवाल इसलिए पूछा था, मेरे भी आंखें खुल रही हैं ये सब सुन सुन के। ये मैं ट्राई करूंगा, ये अच्छा है, हालांकि लाइट नहीं जाती आज की तारीख में, लेकिन ये अच्छा है।
0: खामोश हो जाओ भाई।
1: ठीक है, ठीक है साहब। कमाल भाई पहाड़ वाले बाबा, ठीक है बाबा।
0: पहाड़ पे रहता कसाई वाला, पहाड़ पे ही
1: है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल भाई कहानी के लिए तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम कहानी की तरफ बढ़े।
0: भाई आपका दो दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आए कहानी सुनाए।
1: बस भाई, बस भाई शुरू कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है।
0: ओके
1: मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और अभी टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं जल्दी से मैसेज पढ़ देता हूँ। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि हीट पनाव कैसे इवेल्यूएट करें, कैसे मतलब आप जिद्दी कितने हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए जिद्द करते हैं आप, नहीं रखते इस बात पे। और कहते हैं मेरा हीट पना तो पता नहीं, ये सामने वाला ही बता सकता है। हाँ मैं पहले बहुत बातें करता था, अभी थोड़ा खामोश हो गया। नहीं बातें करना और उसमें बहुत फ़र्क है। मज़रुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज क्या है सर, अगर सभी फ्यूचर में मुझे मेरी बीवी ने ज़बान लड़ाई तो वही दिन आखिरी दिन होगा मेरा घर में, पक्का हो सकता है ये एक मैसेज। मस्त टॉपिक। उस्मान अहमद साहब, हुसैन भाई लिखते हैं, बारोद भाई क्या कमाल भाई और नसीम भाई भाई भाई है क्या, इन दोनों की आवाज़ मुझे भी यही पूछना चाहिए था, अच्छा सवाल है। और शायद फराज भाई कह रहे हैं इस काइंड ऑफ पहले मैं खुश था फिर मेरी शादी हो गई। फरद भाई कह रहे हैं कबीर भाई ये प्यार क्यों होता है, इनको ज़रा बताओ ज़रा फरद भाई को। फरद भाई दो तीन आ रहे हैं आपके पास बताने के लिए प्यार क्यों होता है, अखबार भी लेके आ रहे हूँ। एक मैसेज जो मेरा थी रन साहब का, वालेकुम अस्सलाम मैं बढ़िया मेरे भाई, एक वॉइस नोट है वो मैं कुछ देर में सुनूंगा। एक मैं ज़रा भाई एक कॉल, मैं सॉरी मैं कॉल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लास्ट कॉल मुझे करनी है, भाई को मैंने बहुत देर से पेंडिंग में रखा हुआ है और लाइन से कॉल कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ द लास्ट कॉल, देन मैं सीधा कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम अमन भाई।
2: अबीर भाई बाप रे, दो दिन बाद इतने लंबे बीते।
1: भाई मैं बस क्या बताऊं, खींचे ही जा रहा है टाइम, बताइए।
2: जी सब ठीक ठाक है जी, आप सुनाइए।
1: बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। और क्या क्या कितनी हिम्मत है आपने?
2: आपके आपके क्वेश्चन पे आते हैं
1: जी, बताइए।
2: ढीठ ढीठ दो तरह का हूँ मैं, एक तो किसी के साथ मेरी जिद अड़ जाए तो मैं बड़ा ढीठ हूँ कि जब तक उसको मैं रोता ना देख लूं जैसे उसने मुझे रुलाया है,
1: जे मेरी, जे मेरी अड़गी गरारी था फिर मैं रुकता नहीं।
2: अगर मेरी गरारी अड़ जाए तो जैसा भी आदमी हो तो उसको किसी ना किसी इनडायरेक्टली तरीके से परेशान करना है, ये वाला ढीठ पना है मेरे में।
1: आपका मिडल नेम बिच्छू तो नहीं है? अरे क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और दूसरा ढीठपन मैं मतलब ऐसा शुरू से लेजी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ अपने मम्मी का, मम्मी ने मेरे से हर तरह के काम करवाए, मतलब घर के बर्तन मंजवाए, झाड़ू पोछा लगवाया, सब कुछ करवाया, मैं ढीठ नहीं हूँ इस मामले में।
1: अच्छा, काफी काफी क्या कहते हैं उसे, ओबीडियंट किस्म के बंदे हैं आप इन जनरल कहा जाए तो, पर वैसे ढीठ हैं आप।
2: मैं तो माँ का लाडला हूँ जी।
1: अच्छा माँ का लाडला तो हूँ लेकिन फिर मैं नानी भी याद दिला देता हूँ अगर वक्त आए तो, ऐसा कहना चाह रहे हैं।
2: ये तो है। और उन्होंने सब कुछ सिखाया, कुकिंग भी सिखाई उन्होंने मम्मी ने मुझे,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: तो पापा हमारे दुबई में थे, 37 years उन्होंने काम किया। और जी और तब भी फिर उनके साथ हाथ बटाता था, मैं बड़ा बेटा था।
1: अच्छा ओके,
2: तो ढीठपन में ऐसा ही ढीठपन हूँ मैं कि मुझे अगर किसी ने कुछ कह दिया, मुझे पिन हो गया तो उसको मैं दो पिन मारूंगा बाद में, चाहे साल बाद मारूं चाहे दो साल बाद, ये वाला ढीठपन बहुत बुरा है मेरे में। हमारे एक ऑनर थे उधर इंडिया में, मैंने मेरा अभी लाइफ जो मेरा वर्किंग टाइम है 18 इयर्स हो गया है, लेकिन

0: सिर्फ एक साल इंडिया में काम किया।
1: अच्छा।
0: उसने मुझे ना परेशान किया बहुत ज्यादा, यानी किसी वजह से हमें आपस में लड़ाई हो गई, बस हो गया। मैं दुबई में चला गया, 2-3 साल हुए, कोई आदमी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लुधियाना में यार एक आदमी था, कहता चलो उसको तंग करते हैं। उसको बहुत फोन कर करके और ईमेल कर करके और उसके फेसबुक पेज पे जाके भी परेशान किया।
1: भाई डायरी में लिखो कभी इस आदमी से पंगा नहीं लेना है, सबके सब अपनी डायरी में लिख लो। ठीक है भाई जी, बहुत बढ़िया, डर गए हम और काफी नहीं है, कॉलर पकड़ोगे
0: ये वाला डिफेंस ज्यादा बुरा हाल है।
1: ठीक है सर, ठीक है, आज से आप सर के बात होगी।
0: आज की स्टोरी क्या है फिर?
1: बस अरे बस शुरू कर रहा हूँ उसमें, सुन लो अभी।
0: कोई स्टोरी का कुछ समरी कुछ नहीं है?
1: ना जी कोई समरी समरी नहीं, अब सीधा कहानी। ठीक है भाई,
0: वेट कर रहा हूँ,
1: डन मेरा भाई, शुरू करता
0: हूँ। हैव अ नाइस डे,
1: यू टू मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अमन भाई की बात अब सीधा शुरू कर रहा हूँ मैं कहानी की तरफ, एक प्रोमो चलाता हूँ उसके बाद सीधा कहानी। डिस्क्लेमर बाद में दे दूंगा, बस एक एक प्रोमो, बस एक आधा प्रोमो उसके बाद। अगर आप लाइव सुन रहे हैं तो बताएगा मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल बाय मर्सी ऑफ विल ऑफ अल्लाह। कबीर भाई मिसिंग योर वॉइस ओवर पास्ट टू डेज, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार मेरे भाई। ओके सो माजरत के साथ और कॉल्स नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि कहानी का वक्त है। आई एम मूविंग ऑन टू द स्टोरी।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: हाँ जी, तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द स्टोरी। आप भी जरा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, बट स्टे विद मी थ्रू आउट द स्टोरी। ओके प्लीज़ स्टे विद मी, ये बड़ा ज़रूरी है। ओके तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड काफ़ी काफ़ी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। सो इस कहानी को इमेजिनेशन में जब आप ले जाएंगे तो उसी एयर में ले जाएगा। ओके लेट्स बिगिन। तो मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं कई 100 साल पीछे जाने वाला हूं। ठीक है, ये बिल्कुल यूं समझिए कि इसको मैंने ड्रिल करके पूरा का पूरा हथौड़ी छेनी लेके खोद खोद के इस कहानी को मैंने रिसर्च किया है। सो ये बहुत ही मॉन्यूमेंटल स्टोरी है, सो उसको उसी एरा में ले जा रहा हूं, तो उसी एरा के हिसाब से सुनिएगा। सो ये जो साल था ये था 1557, एयर 1557, सो 450 साल पीछे, उससे थोड़ा सा ज्यादा। ओके अगस्त का महीना था और इस वक्त फ्रांस में रहने वाला बंदा अपने 30s में था, इसका नाम था मार्टिन ग्रेरो। मार्टिन जो था वो इस वक्त अगस्त के इस महीने में एक दिन एक मेकशिफ्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में था और लेटा हुआ था, बहुत दर्द में था। ये हॉस्पिटल जो मेकशिफ्ट बनाया गया था मिलिट्री हॉस्पिटल, ये था सेंट क्वेंटिन फ्रांस में। वो काफी दर्द में था, बुरी हालत थी वो, इसलिए क्योंकि कुछ हफ्ते पहले, इनफैक्ट हफ्ते भर से दो दिन ऊपर, वो एक बैटल में था। बाकायदा एक वॉर लड़ी गई थी फ्रेंच आर्मी और स्पेनिश आर्मी के बीच में, और ये जो वॉर थी, जो बैटल था, ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। और इसी जंग के दौरान जो हमले हुए, उस हमले में मार्टिन की टांग पर गोलियां लगी और इस वजह से ही लॉस्ट हिज वन लेग, अपनी टांग गवा बैठा। वो जब इस हॉस्पिटल में था, मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो लेटा हुआ था और बहुत ज्यादा दर्द में था। ये दर्द फिजिकल पेन तो था ही, लेकिन मेंटल पेन भी था। एक चीज की उसे खुशी थी कि वो खुशकिस्मत था कि वो बच निकला, वरना कोई चांस नहीं था उसका। कई सारे उसके साथी जो थे, जो कॉमरेड्स थे, वो इस वॉर में, इस बैटल में मारे गए थे, मगर वो बच के फिर भी बाहर निकल आया था। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने जब उसे भर्ती किया गया तो कह दिया था कि ये बचेगा नहीं, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। एंड आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज 1500s आई एम टॉकिंग अबाउट। उस वक्त चीजें इतनी एडवांस नहीं थी कि आप कह सके हाँ ये तो तुरंत बच जाएगा। सो डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि हम इसे बचा भी सकते हैं या नहीं, मगर एक मिरेकल हुआ, यानी ही सर्वाइव्ड, वो बच गया।

मगर वो जब बच गया और ये खबर पूरी पुख्ता हो गई, तब तक उसके जो बाकी कॉमरेड्स थे, जो बाकी उसके मेंबर्स थे आर्मी के, वो सारे के सारे जो जख्मी थे, चोटिल थे, जो ड्यूटी पे थे, वो सब के सब इस बैटल के बाद छुट्टी पे जा चुके थे। सो नोबडी नोस कि वो ठीक भी हो गया है। और ये बंदा मिलिट्री हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ था। ही वॉज वेरी लोनली, बहुत बहुत अकेलापन। सब के सब जो उसके साथी थे वो अपने अपने घर, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने अलग अलग ड्यूटीज पे जा चुके थे, भेजे जा चुके थे, और ये अभी भी यहीं था। ही वॉज इन डिप्रेशन, सिवियर डीप डिप्रेशन, एंड ऑल बाय हिमसेल्फ, क्योंकि कोई भी नहीं है बात करने वाला। सिर्फ जो आर्मी डॉक्टर्स थे वो बस अपनी शिफ्ट के हिसाब से आते जाते और इससे बात करते। तो जब आदमी अकेला होता है, स्पेशली वो टाइम जब हाथों में फ़ोन नहीं था, कोई वाईफाई नहीं था, कहीं और दिमाग को घुमाने का वक्त ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो अपने ही थॉट्स में खोया रहता था। और ये जो थॉट्स थे, जो उसके ख्यालात थे, वो इतने ज़्यादा डार्क होते गए कि वो डिप्रेशन में और भी गहराई में उतरता गया। मार्टिन दरअसल बहुत ही सादा आदमी था। मार्टिन का जन्म हुआ था फ्रांस के एक बहुत ही रूरल छोटे से विलेज में, जिसका नाम था आर्टिगा। और बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी करा दी गई थी। उसकी शादी इससे हुई थी, उनका नाम था बर्ट्रेंड, और दोनों की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी हुआ और दोनों एक दूसरे से काफ़ी काफ़ी प्यार करते थे। मगर फिर एक बहुत बड़ा टर्न मार्टिन की ज़िंदगी में आया। मार्टिन ने एक दिन एक बहुत बड़ी गलती करी। गलती ये करी कि उसने अपने ही बाप के घर से, बिकॉज अलग रहने लग जाते हैं लोग, तो अपने ही बाप के घर से उसने गेहूं चुराया था। गेहूं, ओके। एंड जब गेहूं चुरा लिया तो उसे पता लग गया था कि बाकियों को पता लग गया है किसने चुराया है। एंड नाउ वक्त है इस कहानी को आप 1500s की नजर से सोचें। तो साल 1500, इन 1500s लोग इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते थे। शायद आज कोई अगर गेहूं चुराएगा, आटा चुराएगा, तो शायद इतना बड़ा क्राइम नहीं होगा, क्राइम तो तब भी होगा, मगर तब बैक इन द डे इन 1500s ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस भी था। और सोसाइटी में, क्योंकि सबके पास बतेरा टाइम था, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज मानी जाती थी। मतलब ये ऐसी चीज है कि शर्म के मारे लोग कहते हैं कि डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, अगर तुमने एक दाना भी चुराया है तो। तो दिस वाज अ वेरी ह्यूज मिस्टेक बाय मार्टिन। और मार्टिन को जब यह एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया। फैसला ये लिया कि उसने अपने घर वालों को ही पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। सबको, अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ के भाग गया। वो जब भाग गया था तो उसके कुछ वक्त बाद ही उसे लगा कि मैं ज्यादा तो नहीं डर रहा, मैं वापस चला जाता हूं, सॉरी बोल दूंगा, सजा भी सह लूंगा। पर उसके अंदर का जो डर था, वो जो सुसाइडल प्रेशर था, वो इतना इतना ज्यादा बिल्डअप हो रहा था कि उसने फैसले किया कि नहीं, मैं वापस जाने की हिम्मत नहीं रखता। फिर क्योंकि ये वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल था फ्रांस के लिए, तो उसने सोचा कि चलो मैं आर्मी में चला जाता हूं। एंड उसे मौका मिला आर्मी में सर्व करने का। ये जब आर्मी में सर्व कर रहा था तो कुछ टाइम बाद ये वॉर छिड़ चुकी थी स्पेनिश आर्मी के साथ, और वक्त बहुत तेजी से जा रहा था। उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि पीछे वो अपनी बीवी, बर्ट्रेंड, अपना बेटा, सब कुछ पीछे छोड़ चुका है। इट वॉज ऑल गॉन, फिनिश्ड। एंड दिस इज 1500s, तो कोई आदमी भाग गया तो उसे आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। देयर इज जीरो टू, मतलब बिल्कुल 0.1 टेक्नोलॉजी, परसेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर नन, लाइक देयर इज नो वे कि आप पता कर सकें कौन कहां गया है। और अभी जब ये इस आर्मी हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, तो उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि यार अब तो मेरी एक टांग भी नहीं बची, अब तो मेरी हालत और बुरी है, क्या मेरी वाइफ मुझे याद करती होगी। और वो अपने आप को ही कोस रहा था लगातार। जिससे भी बात करता वो यही कहता कि यार मैं कितना बुरा आदमी हूँ। डॉक्टर्स जो उसे जानते भी नहीं थे, उनको पास बिठा के बोलता था, डॉक्टर मैं कितना बुरा आदमी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं किस मुंह से वापस जाऊं, मेरी बीवी सोचती होगी कितना कितना कमजोर था मैं, मेरा बेटा वो तो मुझे चोर समझता होगा। और उसका सबसे बड़ा डर था कि जब वो डिस्चार्ज होगा तो आखिर जाएगा कहां, अब तो वो आर्मी में सर्व करने के भी लायक नहीं है। और इस वजह से उसकी बीमारी बढ़ती चली गई।

मगर एक नाम उसको याद था, इनफैक्ट दो नाम उसे याद थे, इनमें से एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसका जो साथ में फेलो आर्मी मैन था, कॉमरेड था साथ में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, उसके लिए बहुत ही खास दोस्त था, जिसका नाम था आर्नो। आर्नो और एक और बंदा था जिसका नाम था मिशेल, ये दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड थे। पर दोनों को ही नहीं पता लगा कि उनका दोस्त मिलिट्री हॉस्पिटल में बच चुका है। उनके हिसाब से तो वो बचने के लायक नहीं है, वो मर ही जाएगा। और वो दोनों के दोनों अलग अलग ड्यूटीज पे चले गए। अगेन दिस इज 1500s, तो उन्हें पता नहीं है, कोई व्हाट्सएप करके नहीं बता सकता कि अरे वो तो ठीक है। सो दे डिड नॉट नो एंड दे मूव्ड ऑन। और सोच रहा था कि यार कि वो एक ही बंदा था, वो मेरा फेलो सोल्जर, ये दोनों अगर मेरे साथ होते, मैं उनसे बात करता, क्योंकि दोनों के दोनों साउथ ऑफ फ्रांस से थे और आर्नो तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता भी था, तो काफ़ी सिमिलैरिटी थी। और ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बट नाउ देयर वाज नो वन। रिकवर होते होते होते होते होते होते दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। आलम यह हुआ कि मार्टिन को शिफ्ट कर दिया गया इन हॉस्पिस केयर, बेसिकली वो केयर जहां पे उन लोगों को शिफ्ट किया जाता है जो अपने आखिरी पल जी रहे हैं या बहुत ही क्रिटिकल इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जो ख़त्म ही करेगी, जान ही लेके मानेगी। तो उनका जो आखिरी लम्हे होते हैं, आखिरी कुछ महीने साल जो भी हैं, वो कंफर्टेबली गुजर सकें, इसलिए हॉस्पिस केयर बनाए जाते हैं। और उसी में भेज दिया गया मार्टिन को भी। मगर मार्टिन को जब हॉस्पिस केयर में भेजा गया तो उल्टा हुआ। मार्टिन वहां जाके ही गॉट बेटर, इनफैक्ट उसकी हालत बेहतर होती गई। और फिर 3 साल बाद, साल 1560 सितंबर का महीना था, और इस वक्त 9 सितंबर को वो हॉस्पिस केयर के सामने वाले एक बेंच पे बैठा हुआ था। ये जगह काफी काफी ग्रीनरी थी, हर जगह ग्रीनरी थी, और काफी आइसोलेटेड एरिया में ये हॉस्पिस केयर बनाया गया था। तो वो भी बैठा हुआ था बेंच पर, अकेला था, सामने सूरज को देख रहा था, जो बिल्कुल बिल्कुल माइल्ड सी गर्मी नहीं थी, गुनगुनी टाइप की वैसी वाली धूप थी, एंड ही वाज फीलिंग रियली रियली नाइस। वो अपने घर से, आर्टिगस से, अपने मेन गांव से ज्यादा दूर नहीं था, मगर उसके जहन में वो उस चीज से कोसों दूर आ चुका था। अब जो उसका टांग, उसकी टांग जो अपनी खो दी थी, एक लेग खो दिया था, वहां पर उसे एक वुडन लकड़ी का एक प्रोस्थेटिक लेग भी लगा के दिया था। और फिर एक खबर आई, उसके पास एक बंदा दौड़ता आया, बोला कि सर आपका डिस्चार्ज पेपर तैयार किया जा रहा है, यू आर रेडी टू गो। अब वो डरने लगा। अमूमन जब कोई हॉस्पिटल से निकलने वाला होता है तो खुशी होती है, चलो फाइनली डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी ठीक है। बट उसके दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि मुझे फाइनली अपनी रियलिटी का सामना करना है, मैं कहां जाऊं। और अपने माइंड में ये पूरी तरह से बना चुका था कि उसके बीवी और बच्चे कोई भी उसको अब चाहेगा नहीं, वो कंप्लीटली कन्विंस था इस बात को लेके। भले वो फिजिकली अभी ठीक था, मगर मेंटली ही वाज डिस्ट्रॉयड। अब जब वो हॉस्पिस केयर की तरफ उठ के इस बेंच से जा ही रहा था, एक बहुत ही अजीब इत्तफाक हुआ। जाते हुए, क्योंकि बहुत ही स्लो वॉक करता हुआ, बहुत चीजें सोचता हुआ जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी दूर से चला आ रहा है और वो शायद उसी की तरफ आ रहा है। तो उसने उसकी तरफ देखा, पहले तो नोटिस किया कि ये, इसको पहले कभी देखा नहीं, ये कौन है, बिकॉज ये आइसोलेटेड एरिया है, तो कोई भी आता था तो पता लग जाता था कि ये बाहर का ही बंदा है। तो उसे एक अनजान आदमी आता हुआ नजर आया और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही वो करीब आया, उसने मार्टिन से पूछा, एक सेकेंड, आप ही का नाम मार्टिन है ना, आपका नाम मार्टिन है? तो मार्टिन बड़ा हैरान था, उसने बोला, यस मेरा ही नाम मार्टिन है। बोला, अरे मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं यार, आपको ही ढूंढते ढूंढते यहां पे पहुंचा हूं मैं, चलिए जल्दी से मेरे साथ, आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, वो चाहती है आप उनके साथ रहें, क्या कर रहे हैं आप यहां पे? मार्टिन ने जब ये सुना कि फैमिली ढूंढ रही है, मुझे ढूंढ रही है, ही वाज रियली रियली शॉक्ड। उसने बोला कि क्या मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, तो तुम कौन हो? बोला, मैं समझाऊंगा यार, तुम मेरे साथ चलो, कितना ढूंढा है तुम्हें, पूरे फ्रांस में चक्कर लगवा दिए तुमने।

मार्टिन बड़ा शॉक था कि यार चलो ठीक है चल देता हूं। तो वो बड़े ही नर्वस से कपकपाते हुए जेस्चर के साथ अंदर गया, जो भी उसका छोटा मोटा सामान था वो उठाया और पूरे रास्ते चुप रहा, क्योंकि वो इतना नर्वस हो चुका था, उसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि बस छाती के बाहर आ जाएगा। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ही कुड नॉट स्पीक, बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट और वो चुपचाप इस आदमी के साथ गया। और रास्ते में इसने एक मरतबा बस पूछा कि हम जा कहां रहे हैं। उसने बोला हमें कोर्ट हाउस जाना है। ठीक है मार्टिन, कोर्ट हाउस? बोला हाँ, मैं वहां जाके सब कुछ बता दूंगा। और कुछ दिनों के बाद 12 सितंबर मार्टिन एक वैगन से उतरा, साइड में इसके कोर्ट हाउस था यानी कि अदालत थी, उसके सामने उतरा। ये अभी भी 65 किलोमीटर अपने मेन गांव आर्टिगा से थोड़ा सा दूर था। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा और मैं कोर्ट में क्या कर रहा हूं। उसने गहरी गहरी सांसें भरी और फिर अंदर गया। अंदर जैसे ही वो कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, जितने भी लोग थे उसके, वो सारे के सारे जाने बचाने चेहरे लग रहे थे, और सबने जब उसकी तरफ देखा तो सबकी एक यूनैनिमसली एक साथ आवाज आई हो, और फिर सबके सब कुसर पुसर कुसर पुसर कुसर पुसर कर रहे थे। एंड वो सबको देख रहा था कि ये क्या क्या हुआ क्या। मार्टिन को एहसास हुआ कि वो एक ट्रायल का हिस्सा है, उसे लिटरली अदालत लाया गया है, एक ट्रायल चल रहा है, और उसे फिर वहां पे बैठा दिया गया। उसने सबको पहचानने की कोशिश करी जिन जिनको वो पहचान पा रहा था, जो उसके गांव के लोग थे। उसे अपने कुछ दोस्त नजर आए जो उसकी तरफ घूर रहे थे, बड़े हैरत में थे। उसके अंकल पेयर्स नजर आए, उसकी बहनें नजर आईं, और फिर उसने देखा अपनी वाइफ को बट नॉट को, और फिर उसके पास एक बच्चा भी था, वो शायद उसका बेटा था या नहीं उसके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ही वाज कंफ्यूज्ड। सब उसे देख के इक्वली शॉक्ड और स्टंड थे। जब लोगों ने उसे सामने से देखा तो किसी की भी उफ तक नहीं निकल पा रही थी, दे वाज सो शॉक। और लोगों की नजर सिर्फ मार्टिन पे नहीं, मार्टिन की टांग पर भी गई, जो अब लकड़ी की प्रोस्थेटिक लेग्स लगे हुए थे। इससे पहले मार्टिन कुछ कह पाता, अदालत में सुनवाई शुरू हुई और मार्टिन को अभी तक नहीं बताया गया था कि वहां पे वो क्यों मौजूद है, और ये ट्रायल का ही हिस्सा था। फिर जब ट्रायल का पहला बयान चला और मार्टिन को पता लगा कि वो यहां पर क्यों आया है, ये जानकर उससे इतना गुस्सा आया कि बस वो अपने होंठों को लिटरली दांतों के बीच में पीस रहा था, गुस्से से आग बबूला हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो दरअसल हुआ क्या हुआ, ये कि मार्टिन दरअसल गलत था अपने टाउन के बारे में। उसे इतने सालों से, इतने वक्त से लग रहा था कि उसका टाउन, उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा था। टाउन वाले उसको तलाश रहे थे, उसे ढूंढना चाह रहे थे, उसकी वाइफ स्पेशली। पर बीच में एक बहुत बड़ा खेल इनकी जिंदगी के साथ एक बंदे ने खेला, और वो था आर्नो, यानी मार्टिन का दोस्त। आर्नो जो था वो मार्टिन की तरह लिटरली दिखता था, उसका खूनी भाई तो नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, मगर वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। और जब उसे अंदाजा हुआ कि मिलिट्री हॉस्पिटल में अब मार्टिन नहीं बचेगा, और आर्नो खुद अपने घर से भागा हुआ एक कौन आर्टिस्ट था, क्योंकि वो अपने गांव में चोरी चकारी के चक्कर में बदनाम था, तो उसने ये फैसला किया कि वो आर्नो मार्टिन के गांव जाएगा, और वहां जाके उसने लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो वापस आ गया है। एंड सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये मार्टिन ही है। इनफैक्ट एक बंदा था बस जिसे शक था कि ये मार्टिन नहीं, ये कोई और है, और वो बंदे था अंकल मार्टिन का, और इसी बंदे ने यह केस उस पर डाला कि यह कौन आर्टिस्ट है, यह झूठ बोल रहा है। और फिर अदालत को इस केस को आगे बढ़ाना पड़ा, और फिर जब एक सर्च जारी की गई तो अंकल के बेटों ने ढूंढ के कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, लोगों से पता करके मार्टिन को ढूंढ निकाला।
आर्नो ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड मार्टिन की पूरी जिंदगी चोरी कर ली, उसकी एक एक चीज। द सैडेस्ट पार्ट वॉज आर्नो को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो उसकी बीवी को, मार्टिन की बीवी को भी धोखा दे रहा था। मार्टिन की बीवी भी नहीं पहचान पाई, विच वॉज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इन द होल स्टोरी, एंड उसे लगा कि मार्टिन है। और ये ट्रायल जब शुरू होके खत्म हुआ, एवरीबडी इज इन शॉक। लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे। आर्नो वॉज फेक, आर्नो को सजा सुनाई गई, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, और उसे हैंग किया गया गांव वालों के सामने, मार्टिन के घर के ठीक सामने। बर्ट्रेंड जो कि बीवी थी मार्टिन की, उसने बहुत बार माफी मांगी मार्टिन से, लेकिन मार्टिन ने उसे कभी माफ नहीं किया। मार्टिन लिव्ड ऑन, मार्टिन इनफैक्ट उस टाइम का, उस जगह का, जो आज की पोजीशन में कलेक्टर होते हैं, तो कलेक्टर भी बना उस जगह का, एंड ही बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। एंड उसकी ये पर्सनालिटी उसके हक में भी गई, मगर पर्सनली स्पीकिंग उसका ये किस्सा उसे पूरी तरह से तोड़ चुका था। बट ही लिव्ड फार ऑफ, ही लिव्ड अ प्रीटी गुड लाइफ, एंड इन द मिड 90s नेचुरल डेथ से उस दुनिया से चला गया, मगर अकेला ही गया। लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम कि उसे अपनी बीवी को माफ़ कर देना चाहिए था, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से अपना गांव, अपना घर छोड़ के गया था, मगर लॉट ऑफ पीपल सेड यू नो व्हाट, गलती उसकी बीवी की भी है कि उसे पहचान नहीं पाई। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग स्टोरीज दैट आई हैव कम अक्रॉस, और ये अब आपके हवाले है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ भाई, तो 6:10 हो चुके हैं, मैं कॉल जरा ले लेता हूँ। कौन कॉल कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
2: जी। मेरा भाई, आपका नाम?
3: कबीर भाई, खलील पराठा बात कर रहा हूँ।
2: खलील भाई, भाई खलील, क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
2: जी। भाई खलील, बताइए, कहानी सुनी आपने?
3: यार कहानी रह गई, उसके लिए ही रिक्वेस्ट के लिए फोन किया।
2: अरे तो मैसेज कर देते मेरा भाई, मैसेज कर दो खलील भाई। ठीक है
3: मैं भी कर देता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं। बस आज थोड़ा काम पड़ गया, लेट हो गया।
2: अरे कोई बात नहीं, काम जरूरी है खलील भाई, कोई मसला नहीं है, आप मैसेज कर दो। ठीक है,
3: चले, जज़ाकअल्लाह,
2: बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम
3: वालेकुम,
2: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो भाई खलील जो हैं वो काम पे थे, ड्यूटी की वजह से मिस हो गई। ब्यूटीफुल कहानी, कोई दिक्कत ना भाई, आप मैसेज कर दिया करो, मन्ने बेरा, काम जरूरी है। बाकी एक गाने के बाद आपके सारे मैसेज लूंगा, बट आपने अगर कहानी सुनी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज भाई मेरे लिए तो बहुत बढ़िया कहानी थी। एक ज़रा कॉल और ले लेते हैं, उसके बाद गाना। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम अशमतुल्लाह कबीर भाई।
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाइए, क्या हाल है?
4: बस बढ़िया है, कहानी सुन के। कबीर भाई, मेरे को तो लगता है कि भाई गलती तो यार मार्टिन ने की है।
2: हाँ बिल्कुल की है, मैं भी ये मानता
4: हूँ। वो एक तो चला गया और वो आया नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ भाई।
4: ये मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे तो ये सीख मिली कि मैं मार्टिन नहीं बनना चाहूंगा।
2: बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल
4: नहीं। और मैं अंजुन जैसा दोस्त भी नहीं रखूंगा।
2: दुनिया से अलग थलग रहा, पहाड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं भाई, दुनिया हमारे लिए नहीं है। सोचिए,
4: वो तो उसके अंकल को शक था इस वजह से, नहीं तो लोग तो उसको ढूंढते ही, क्योंकि फैमिली किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अगर आप शाम तक घर नहीं आओगे तो लोग ढूंढने लगते कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया।
2: हाँ वही ना। और ये जो है ना कि जैसे अभी बहन है हमारी, तबस्सुम, पूछ रही है बतेरा टाइम। हाँ बतेरा टाइम था उस टाइम पे ना, बहुत सारा टाइम था, मतलब दे हैड फ्री टाइम, कुछ फोन वोन तो था नहीं। और 1500 के टाइम से सोचोगे तो फिर आपको ये कहानी ज्यादा समझ में आएगी, बिकॉज उस टाइम पे लोगों का जहन अलग तरीके से फंक्शन करता था।
4: सही बात है, उसको घर आना चाहिए था, अगर वो आता तो ऐसा खैर नहीं होता। मुझे लेकिन लगता है कि ओबियसली मार्टिन इसमें गलत है।
2: मैं भी भाई मानता हूं,
4: गलती नहीं, क्योंकि वो एक बैग अब कोई भी आ जाएगा 2-4 दिन के बाद तो लोग उसको गले मिलाते हैं, मिलते हैं कि हाँ वापस आ गया। उतना नहीं देखता है आदमी वहाँ पे।
2: करेक्ट करेक्ट भाई, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ इस चीज में। आई कम्प्लीटली अग्री मेरे भाई।
4: लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त था।
2: थैंक यू भाई।
4: बीच में जो वो ट्विस्ट लगा ना कि जैसे वो मर नहीं रहा था ना, तो आप बोले थे कि वो मरा नहीं बच गया। हाँ। तो मुझे लगा वो घर जा रहा है, अब बीवी बच्चों को देख के अटैक आ जाएगा उसको।
2: मेरे खाने में लोग क्या क्या सोचते, ठीक है।
4: लेकिन वहाँ कुछ और था, वहाँ पे भी मेरे लिए ट्विस्ट ही हो गया।
2: चलो अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी कि चलो आपने जो सोचा उसको उल्टा हुआ। ये कहानी का सबसे बड़ा फ्लेवर होता है इसी।
4: मैं वो गेस कर रहा था, मुझे लग रहा है अब यहाँ पे नहीं मरा तो जरूर लगता कि बीवी और बच्चों को
2: मरेगा तो जरूर
4: है, ये बच्चा किसका है।
2: अरे रे रे रे रे रे, आपने ज्यादा ट्रेजेडी।

0: ली थी ना मैंने, कम ट्रेजेडी करी मुझे ऐसा लग रहा।
1: नहीं मुझे लगने लगा बीच में ना कि अब लगता है यहाँ पे कॉमेडी हो जाएगी, मतलब अब वो वहाँ पे जाके मर जाएगा।
0: अरे यार
1: लेकिन बहुत मजा आया कबीर भाई वहाँ पे।
0: थैंक यू सो मच कबीर भाई, बहुत बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद एक मैसेज है, तो बस मैंने मैसेज किया, बाकी मैसेज में एक गाने का सुनता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ, सॉरी। लिखते हैं, इतनी सिमिलरिटी कोई नहीं पहचान पाया, इट्स सो वियर्ड एक्साइटिंग नरेशन। और कबीर भाई, आई डोंट गेट द फ्रेज भतेरा भतेरा टाइम बहन, मतलब फ्री टाइम। थैंक यू सो मच, कह रही बहुत हंसी आई। चलो अच्छी बात है, एक गाने के बाद मिलते हैं, फिर बहुत सारे मैसेज और भी हैं। कॉकटेल टू से

0: हाँ जी, तो जितने मैसेज कहानी पे आए हैं मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। एक मैसेज मेरे पास आया है सिद्दीकी साहब को, लिखते हैं गुड स्टोरी सिमिलर स्टोरी टू बॉलीवुड मूवी अफलातून। मैंने नहीं देखी भाई। अच्छा, ऐसे था क्या उसमें? ओके। एक मैसेज है, अजीब धोखा किया उसने वाकई में समझ भाई, साथ भाई। एक मैसेज है जो मैं तेरे रैन साहब का, कहते हैं बहुत ही सुपर हिट कहानी थी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार आपको भी। एक जरा मैं कॉल भी उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: हाँ जी बताओ।
1: मैंने वो आगे वो जो बात सुनी थी वो जो पहले घंटे, लेकिन कॉल नहीं हो सकती थी। लेकिन तो मैं कहानी बताता हूँ कभी क्या हुआ था। तो मैं पाकिस्तान में था बहुत टाइम से, यानी 3-4 साल जैसे पुरानी वाली बात है। आगे बातों से वो भी मेरे दिमाग में आ गई थी। तो हम यानी अपने सोसाइटी में जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे वहाँ कहते ना कि कौन सा एड्रेस, ठीक है। तो हम एड्रेस बोले जा रहे 2-3 दफा, ठीक है। वो कह रहे हैं ये क्या, वो उसमें कोई और सोचा, जैसे फॉर

0: एग्जांपल हमारा एज 32 ठीक है, एग्जांपल ऐसे समझ रहे 132 यानी हम दो तीन दफा बोला, फिर बाद में उसको पता चला अच्छा जी 832 अच्छा अच्छा अच्छा. मैंने कहा ये इतना यानी इसका कान ठीक नहीं है, यानी दो तीन दफा बोल के भी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या है.
1: पर ये तुमने मुझे किस्सा क्यों सुनाया, मतलब
0: क्योंकि एंड में ना बड़ी फनी चीज होती है. एंड में ना मैं पापा कहते हैं उसको कान ठीक करो अपने.
1: नहीं बात तो ढीठ पने पे हो रही थी. चलो ठीक है, तुमने किस्सा सुनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद. और अभी जरा मैं कहानी वाले मैसेज ले रहा हूँ तो तुमसे मैं कुछ देर बात करता हूँ, ठीक है?
0: ओके ओके
1: ओके थैंक यू यार. ये है मैंने मैं कंफ्यूजन में अभी आ गया हूँ, कॉल उठा लेता हूँ मैं. मेरे सर पे टपली मारना कोई, एक कॉल उठा लो. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, मैं दुख समझ सकता हूँ
1: भाई साहब. सुबह सुबह सुबह तो नहीं क्या हुआ क्या अभी?
2: किधर चले गए हम लोग, जाने वाले थे दोहा, पहुंच गए अलखोर.
1: अच्छा मुझे लगा मैं बठिंडा आ गया. हाँ बताइए भाई साहब.
2: जी बहुत अच्छी स्टोरी थी.
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
2: किडनी टचिंग स्टोरी थी
1: ना, मजेदार है ये तो.
2: हार्ट टचिंग स्टोरी थी लेकिन अच्छी थी. उसमें वही मैं वही बोलूंगा कि मार्टिन की ही गलती थी.
1: हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी यही मानता हूँ.
2: पहली बात जब फैमिली आ गई तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है बिना बताए कहीं भी जाने का. अगर हमारी जगह पे हमारी वाइफ ऐसा करेगी तो हम तो या तो खुद मर जाएंगे या उसको मार दें.
1: अरे रे रे रे रे रे.
2: मतलब ये है, मतलब नहीं मारेंगे, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि उससे अलग हो जाएंगे. और दूसरी बार जब उसको मालूम पड़ा कि उसका जो हम शक्ल है उसके साथ रहा है तो वो नाराज होकर निकल गया. उसका जिम्मेदार भी वही था ना.
1: बिल्कुल जिम्मेदार. मैं तो पूरी तरह से भाई मार्टिन को ही इसका जिम्मेदार मानता हूँ, पूरी तरह से. मार्टिन इज द वायरस
2: जी,
1: है ना. तो ये चीज है. तो और बठिंडा में कैसा हो रहा है मौसम, बताइए. बठिंडा
2: मेरे से 200 किलोमीटर दूर है. जलंधर की बात कीजिए मेरे से.
1: ठीक है जलंधर की बात कर लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ गया.
2: जलंधर जल के अंदर कभी कभी आ जाता है जब बारिश होती है.
1: कोई गल नहीं भाजी, मैं अभी चंडीगढ़ में ही हूँ अभी कुछ देर पहले.
2: वैसे मैं होशियारपुर से हूँ.
1: होशियारपुर से आप, माशाल्लाह काफी होशियार है.
2: माता चिंतपुर्णी मालूम है आपको?
1: कौन सी जगह?
2: माता चिंतपुर्णी.
1: ये सुना सर मैंने इस तरफ. धर्मशाला पता है? धर्मशाला पता है.
2: नैना देवी जहाँ पे माता के मंदिर है वहाँ पे पहाड़ों में हिमाचल में.
1: अच्छा आप बड़ी ही वाइब्रेंट जगह पे रहते हैं आप तो.
2: हाँ जी, लेकिन मैं जब भी वेकेशन जाता हूँ मैं गोल्डन टेंपल और एक वहाँ पे मुराद शाह जी की जगह है, मुराद शाह. हाँ वो वहाँ पे मैं जरूर जाता हूँ.
1: चंडीगढ़ जाना होता है आपको?
2: चंडीगढ़ में बहुत बार जाता हूँ, हर बार जाता हूँ. मेरे फ्रेंड हैं बहुत उधर, सब क्लास.
1: मेरी बर्थ प्लेस है भाई. कभी आप गलती से उधर जाएं और हम भी उधर जाएं तो मिलते हैं भी चंडीगढ़ में, रोला पाएंगे.
2: मुझे प्लीज बताइए
1: डन हो गया.
2: लेकिन मैं 1 अगस्त को जा रहा हूँ. 30 को तो आपका बर्थडे है.
1: थैंक यू. मैं गिफ्ट लेके आना है, नो रिटर्न.
2: जी ठीक है, ओके
1: ठीक है.
2: मुझे मैसेज कीजिए क्या क्या चाहिए आपको.
1: नहीं भाई कुछ चाहिए, मोहब्बत आपकी. थैंक यू सो मच मेरे भाई.
2: थैंक यू कभी भाई, वंडरफुल स्टोरी.
1: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच. ओके भाई. तो अमन भाई के बाद एक मैसेज आया है अब्दुल अमजद साहब का. वालेकुम अस्सलाम. एक मैसेज किया है भाई, आपकी रोग को खुश करने का इंतजाम. अरे भाई श्रद्धा कपूर की स्माइल, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई. बेस्ट अकाउंट है मैं बताऊं सोशल मीडिया, श्रद्धा कपूर का. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वाव थी स्टोरी. आपकी आवाज़ और बैकग्राउंड म्यूजिक ने स्टोरी में जान डाल दी, सुपर थी. इतनी ओल्ड टाइम में घर वालों को इतना पक्का ट्रस्ट, वेरी नेचुरल एरा. और लगता है रेडियो का वॉइस लो हो रही है क्योंकि लाइक सिग्नल से टेक्निकल इश्यूज लग रहे हैं. आप किधर पहुंचे हुए हैं? एक मैसेज है, किधर गया मैसेज? अस्सलाम वालेकुम भाई, दुनिया मतलब ये है दोस्ती के नाम पर कलंक. ये इमरान भाई कह रहे हैं. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, दोस्तों का नाम ले लो. अली राहुल, राहुल पतला, अली मच्छर, जुनेद मोटू, रिजवान सूखड़ा. ये दोस्तों के नाम है? आपका नाम आपने छुपा रखा है. अपना नाम छुपा रखा है, बाकी नाम मुझे दे कह रहे हैं. अली मच्छर, राहुल पतला, जुनेद मोटू, रिजवान सूखड़ा, ये सारे कोई ये मेंबर्स के नाम है कुछ? एक और मैसेज है, कबीर साहब व्हाट नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली स्टोरी विल बी टोल्ड बाय यू. वल साहब भी मैंने कहानी सुना दी है, अमूमन मैं 4:30 या 4:40 तक सुनाता हूँ. एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: ہاں جی بھائی، کیا حال ہے؟

0: और
1: अरे
0: भाई
1: भाई
0: अभी तक शौक में हूँ यार भाई, इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं
1: सोचिए,
0: अभी तक
1: पांच सौ
0: तो
1: साल
0: जगह
1: पहले
0: खाली बैंक के फ्रॉड और इसके फ्रॉड ये सुन रहे थे, अभी इतने बड़े बड़े
1: यहाँ
0: फ्रॉड हो गए।
1: यहाँ जिंदगी की ही पॉकेट मार ली उसने, समझ रहे हैं आप?
0: अजीब
1: इतनी लंबी बताइए।
0: फोन आया था, अजीब फोन आया था, बोले
1: क्या
0: QID में आपके अकाउंट से आपने पैसा कब निकाला है, आपके ATM कार्ड किसी ने यूज किया? मैं बोला मेरा अकाउंट है ही नहीं। बोले आपको रीडो भी नहीं है? मैं बोला वो भी नहीं है।
1: तो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अच्छा फिर
0: कंपनी ने आपको नहीं दी? मैं बोला
1: हाँ
0: कंपनी, मैं लेबर का काम करता हूँ इधर घर के हाउस डालो में।
1: हाँ
0: ओ फोन काट दी।
1: ओके। तो नहीं देखिए, ये स्कैम इतना बड़ा स्कैम 500 साल पहले के करीब हुआ है, और ऐसी चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ, उस वक्त के हिसाब से जब भी मैंने कहा कि कहानी को उस वक्त के हिसाब से ही देखना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छी लगी वो कहानी।
0: हाँ नहीं बहुत जबरदस्ती कबीर भाई,
1: थैंक
0: लेकिन
1: यू
0: एक
1: सो
0: चीज तो
1: मच।
0: समझ में आया कि फ्रॉड आज से नहीं हो रहा है भाई,
1: हाँ पहले से चला आ रहा है।
0: कई सदियों से चला आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी वाली कहानी में ऑलमोस्ट तैयार है। आज मैं आपको तकरीबन 8:30-9 बजे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, तो ज़रा बात कर लीजिएगा, ठीक है?
0: चलेगा कबीर भाई
1: डन डन डन, ठीक है कमाल भाई, अपना ख्याल रखिए मेरी जान।
0: एनी टाइम आपके लिए फ्री हूँ।
1: बिल्कुल मेरा भाई, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच भाई।
0: ओके भाई
1: ओके
0: अल्लाह
1: भाई, अल्लाह
0: हाफिज।
1: हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब भाई के बाद एक मैसेज आया है भट्टी साहब का, नहीं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? नाइस स्टोरी मिशन की तरह सर, 4:30 नहीं 5:30 पर। ओह मैंने 4:30 बोल दिया क्या? 5:30, 5:30, 5:30। अब भाई वो बात करते करते इधर को तो निकल जाता उस्मान भट्टी साहब, थैंक यू थैंक यू। एक मैसेज है कबीर चोला वाला, ए एक मैसेज है, एक कॉल भी ले लेता हूँ, बहुत देर से कॉल एक मिस हो रही है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर, आपने हमें याद किया और हमारी कॉल करने का आपने
1: भाई
0: पैगाम
1: भाई
0: दिया कि बड़ी
1: माजरत
0: मेहरबानी है आपकी भाई।
1: माजरत माजरत, बिल्कुल आयन लगा के, बिल्कुल मेरे भाई आयन लगा के माजरत। बताइए
2: आप
1: कैसे।
2: यकीन करो, मैं ऑर्डर दिया, मैं बिल्डिंग के ऊपर ऑर्डर दिया, मैं नीचे बैठा वाला अभी कॉल करके ही जाऊंगा
1: अरे
2: वापस,
1: मेरा भाई मैं माजरत
2: इससे
1: चाहता हूँ
2: पहले
1: मेरे
2: नहीं
1: भाई,
2: जाने का।
1: मैं अभी,
0: कैसे?
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई। और कैसा चल रहा है काम, सब बढ़िया?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का लाख
1: अल्हम्दुलिल्लाह
2: शुक्र है। और
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: माजरत, मैं आज सिर्फ कहानी के स्टार्ट पर आ सका, उससे पहले का आपको टॉपिक नहीं सुना,
1: कोई बात नहीं, मैं
2: लेकिन ये कि कहानी
1: बता दूं, मैं
2: में बड़ा मजा आया।
1: कहानी सुन के मजा आया।
2: आप पहले आप टॉपिक बताएं, फिर आपको कहानी के
1: टॉपिक
2: मेरे
1: ये था
2: पीछे
1: भाई, मैं कह
2: सुनाते
1: रहा था
2: हैं।
1: कि लोग ना क्या होता है, पहले बचपन में कभी ढीठ हुआ करते थे, बाद में उनका जो ढीठपना होता है वो चला जाता है। आपके साथ क्या सीन है? आप उम्र के साथ ढीठ हुए हैं या फिर घट गया है आपका ये ढीठ होना, क्या सीन रहा है?
2: नहीं यार, डेट डेट का तो नहीं है कि डेट तो नहीं रहे, ठीक है। मैं बहुत ही समझ ले कि वो कहते हैं ना कि एहसास वाला बंदा हूँ कि यार अगले के साथ अगर ऐसा हुआ या किसी के साथ भी, इनफैक्टली यहाँ पे अक्सर रोड पे चल रहे हो ना तो वो परिंदे अक्सर या बिल्ली अक्सर मरी होती है, तो मुझे उनको उनको देख के आंसू आ रहे होते हैं कि यार क्या लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते कि वो पहुंच जाना गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। तो मैं तो इस तरह का बंदा हूँ।
1: अच्छा ठीक
2: हाँ
1: है,
2: ये है कि जिद्दी हूँ अपने मामले में,
1: हाँ
2: कि
1: जिद्दी
2: हाँ
1: है
2: बस
1: ना
2: एक
1: अपने
2: चीज पे अड़
1: मामले में,
2: गया तो अड़ गया,
1: हाँ वेरी
2: अपने
1: गुड।
2: मामले में जिद्दी हूँ कि एक चीज पे अड़ गया तो अड़ गया, नहीं यार अब ये करना ही करना है, चाहे नुकसान है चाहे फायदा, करना है लाजम, बस
1: हाँ यही यही जानना
2: वो ये
1: चाहता हूँ।
2: कहानी
1: और
2: है।
1: कहानी कैसी लगी आपको?
2: कहानी भाई अलग ही ट्विस्ट था आज की कहानी में, ठीक
1: किसने नहीं
2: है
1: सोचा होगा ये वाला ट्विस्ट, मैं जानता हूँ किसी ने नहीं सोचा होगा।
2: लेकिन इसमें दो तीन चीजें सीखने को मिली है। एक तो इनफैक्टली जिन जिनके साथ आप चलते हो, चाहे वो आपकी फैमिलीज हैं चाहे वो आपका कोई भी है, ठीक है, अगर आप उनसे दूर होते हो, यानी कि इसके लड़ कर भी दूर होते हो ना, तो
1: हाँ
2: मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी को छोड़ रहे हो ना या किसी से अलविदा कह रहे हो तो उसको बताओ, वजह बता के उसको जो ना छोड़ना चाहिए कि हाँ यार मैं तुझसे इस बात में नाराज हूँ, ठीक है आज से तेरी मेरी खत्म, ठीक है। इनफैक्टली मैं खुद भी अगर किसी से नाराज हुआ ना, ठीक है, चाहे वो पुराने गुजरे हुए दोस्त हैं या कोई भी है, तो उनको मुंह बताया भाई मुझे तेरी ये बात बुरी लगी है, ठीक है, और इस बात के ऊपर मैं तेरे से आगे कोई रिश्ता
1: भागते नहीं है
2: नहीं
1: ना,
2: रखना चाहता।
1: भागने से क्या होता है ना, आदमी को एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ और बोलने पड़ जाते हैं, ये बड़ा मैटर करता है ये
2: यार
1: मामला।
2: 100 झूठ और उसके उसके अलावा लोग फायदा उठाते हैं,
1: हाँ राइट।
2: दूसरा तीसरा बंदा जो होगा ना वो आपका फायदा लाजमी उठाएगा,
1: तो आपको,
2: उसका उसका उसका दोस्त था
1: हाँ
2: वो, उसने फायदा उठाया। अगर आपकी जिंदगी में कोई और होगा जो आप पे नजर रखा हुआ होगा, इनफैक्टली लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते
1: तो
2: हैं, वो
1: आपको
2: फायदा वो
1: एंड क्या लग
2: उठाएंगे।
1: रहा था, आपको एंड क्या लग रहा था कहानी का, आपने कुछ माइंड में बनाया था कि ऐसा कुछ एंड होगा इसका?
2: यार जिस वक्त आपने बताया ना कि वो अदालत पे खड़ा हुआ और गुस्सा गुस्सा हुआ, ठीक
1: हाँ
2: है, मुझे तो पहले एक लगा कि उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली तो इस वजह से वो गुस्सा हुआ, ठीक
1: हाँ
2: है, फिर जब आपने कहानी का ट्विस्ट बताया और जब उसको छोड़ना बताया तो मुझे एक बार फील हुआ यार इसको एक बार छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में हुआ कि यार अब वो अपनी गलतियां को कैसे फेस करेगा, तो इसलिए उसने बोला कि नहीं अब जो है उसको भी खत्म करते हैं।
1: हाँ, हाँ,
2: वो इसलिए शायद उसने छोड़ दिया कि नहीं यार मैं अपनी गलतियां भी कैसे फेस करूंगा जो मैंने इतना टाइम बिताया है, ठीक है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा किसी के सामने। तो शायद उसने इस बिहाफ पे
1: मेबी
2: अपनी फैमिली भी छोड़ दी, इल्जाम उनका डाल के अपने आप को भी साफ कर लिया।
1: आदमी रहा वैसे का वैसा ही, ठीक है,
2: रहा वैसे का वैसे ही,
1: ठीक है।
2: तो बाकियों से भी यही है कि कहानी से सीखा करें, मजा आना एक अलग कहानी है कि हाँ ठीक है आपको जना स्टोरी सुनकर मजा आता है, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन जो सबक बीच में मिले जाते हैं तो वो अगर आप नोटिस रखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बहुत सही से एक्सप्लेन किया आपने,
2: और आपकी कहानियों से बाकी सीखने को मिलता है भाई।
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत मोहब्बत आपको मेरे भाई, इसी तरह से खुश रहिए, सुनते रहिए बस,
2: अल्लाह पाक खुश रखे।
1: और अरबाज भाई कह रहे हैं कि वो समझ गए थे जब मैंने बताया था कि उसकी तरह दिखता था, तो वो समझ गए कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। ओके, तो इसी के साथ ये विवेक भाई कह रहे हैं कि दो कहानियां 26-27 को तो छुट्टी थी भाई, विवेक भाई छुट्टी थी मेरे भाई, छुट्टी में था मैं, कोई कहानी नहीं थी, तो आपने कोई कहानी टेक्निकली मिस नहीं करी है। बाकी कुछ देर में आपसे मुलाकात होगी, अभी बीच में अजान का भी वक्त है तो भी मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, इंशाल्लाह अजान के बाद बाकी कॉलों पे ध्यान दिया जाएगा। एक और मैसेज आया भाई ने, मुझे एनिमेटेड इमरान हाशमी भेजे, हाँ भाई कल रिलीज हो रहा भाई आवारा पंटू का ट्रेलर नहीं सॉरी कल भी टीजर ही आ रहा है, मगर आई होप सो, क्योंकि अभी टीजर में वो मिथुन का म्यूजिक है और वो जो आवाज़ आई है आखिर के अंदर, मज़ा आ गया भाई। मैं तो टॉप 10 करने के लिए बड़ा ही बेताब हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो एल्बम पूरे आवारापन 2 की आएगी वो आग ला देगी भाई, टॉप 10 के मुझे लग रहा है टॉप 5 गाने आवारापन के ही होने वाले हैं, आई होप सो दैट हैपेंस। बट फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगा, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, कुछ भी कहना चाहें खामा खा भी बात करनी चाहिए, है, दिस इज़ दुहा वाला कबीर सेइंग, जाना नहीं, स्टे

हाँ जी शाबाशी तो आपने दी है कहानी पे, उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, भरपेट शुक्रिया। कुछ मैसेजेस पढ़ देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, स्टोरी सेंड कर दे नुमान भाई, अभी कुछ देर में करता हूँ। दिक्कत नहीं लो भाई, एक मैसेज है, कहानी सुन के मजा आता है जैसे आप सुनाते हो बारोद भाई, लगता है कि एक अजरसी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा हूँ, सुन के एंजॉय करूँ यार, कसम से भाई ऐसी करा करो कसम से। एक मेरे पास बड़ा ही कमाल का मैसेज आया है, ये भाई ने पता नहीं मुझे शायद सोशल मीडिया पे देख लिया ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं छुपा रहा था और उन्होंने देख लिया। भाई कह रहे हैं, भाई अगर आप जो हैं सिल्वर बाल करा लेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, आप एकदम प्रोफेसर वाले लुक में कहानी सुनाएं सोशल मीडिया पे। पर इसके लिए सिल्वर बाल क्यों करवाना चाहते हो मेरे, ये बताओ मुझे, ये कहाँ से तुम्हें ख्याल आया कि मुझे जो है सिल्वर टोन करा लेनी चाहिए बालों पे। सेकंड में इमेजिन कर लूँ अपने आप को आंखें बंद करके, पता नहीं मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये आपने कैसे सोचा? ये ताहिर भाई ने मैसेज किया, ताहिर भाई ये कुछ अलग ही सोच लेके आए आप पता नहीं मैं इस आईडी के लिए थैंक यू कहूँ कि ना कहूँ, पता नहीं, पर शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा एक मैसेज है कबीर भाई, मुझे ऐसा लगता था कि स्टोरी सुनते सुनते जब वो कोर्ट गया और अपने लिप्स को दांतों से प्रेस किया तो लगा कि इस केस से भाग रहा था, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ। लेकिन बिलियनियर सलाम इसके अंकल को जिसने इसकी परवाह करी और अंकल ने बच्चों का बच्चों ने साथ दिया मामलों को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक अंकल इज द रियल हीरो ऑफ द स्टोरी। ऑफकोर्स काफ़ी अंडररेटेड बात कही है आपने, काफ़ी अंडररेटेड बात कही है आपने। एक्चुअली में अंकल जो हैं मार्टिन के, वो असल हीरो हैं इस पूरी पूरी कहानी के। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़ी सज़ा उसकी बीवी को, क्या चोरी हो गई क्या? हाँ बहुत बड़ी सज़ा मिली कमालुद्दीन शेख साहब। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, बढ़िया भाई सब बढ़िया चल रहा है, बजवा भाई आप सुनाइए क्या हाल है। एक और भाई ने मैसेज किया है, भाई कह रहा है कहानी भेज देना, भाई भेज देंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात को नहीं भाई। एक जमी मैसेज किया है फरद भाई ने, कह रहा है जमीर पर कॉल कर रहा है अब वो भी कदर हाँ मुझे पता है ऐसी बहुत कमाल की कॉल्स आती हैं स्कैम करने वालों की, अब क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा ही हाईफाई हो चुकी है। अच्छा आज कुछ दिन है जो मार्क्ड किए गए, इनके बारे में बता दूँ, आज है लॉजिस्टिक्स डे, जो लोग लॉजिस्टिक्स में हैं उनको मेरा सलाम, बहुत मेहनत का काम है भाई, बहुत मेहनत का काम है। और आज है हैप्पी हार्ट हग्स डे, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस मगर है। और आज है वो दिन जो मैं चाहता हूं कि मैं भी कभी सेलिब्रेट करूं, पता नहीं रिटायरमेंट कब आएगी कैसे आएगी, अल्लाह करे अच्छे से आए, जब आएगी

आप लोगों में से कितने लोगों को इंतजार है या पहली आवारापन देखी है? हैव यू सीन फर्स्ट वाली आवारापन? भाई अगर नहीं देखिए तो मैं बता रहा हूँ आपसे, बहस कर बैठूंगा। एक मैसेज, ब्राउन मुंडे सुनने का दिल जा रहा है, पॉसिबल टू प्ले फॉर मी फॉर माय सन हमजा। ओके हाँ तो बताइए ज़रा, आवारापन देखिए आपने, पहली वाली देखिए नहीं देखिए? क्योंकि कल मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ खींच लेने वाली मूवी आने वाली वो कल ही है, मैं बताऊँ आपको, सीरियसली बता रहा हूँ। 19 साल बाद पर्दे पर आवारापन देखने का मौका, ये कुछ होगा भाई, कल कुछ तो होके रहेगा। 666-22-107 नंबर है, आप पहले तो ये बताएं। एंड ऑल्सो लेट मी नो, क्योंकि आज मैं डिस्कशन कर रहा था ऑफिस में भी, कि सबसे बढ़िया एंट्री कौन सी मूवी में किस हीरो की आपको लगी है। मैं शुरू करता हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एंट्री किसी मूवी में अगर हुई है तो वो शाहरुख खान की डॉन 2 की एंट्री है शायद, या डॉन की एंट्री है, डॉन की एंट्री शायद नहीं, डॉन 2 की एंट्री है, जब वो बोट पे आ रहे होते हैं। मैं वो मूवी मैंने थिएटर में देखी थी, मैं बता सकता हूँ आपको, ये आंखों देखी बात है, लोग भाई साहब पागल हो गए थे वो देख के, जिस तरीके से एंट्री करी थी, कराई गई थी शाहरुख खान की उस मूवी में, क्या एंट्री थी भाई। सो ये दो सवाल हैं, पहली बात तो ये बता दीजिए कि आपने आवारापन पहली वाली देखी है कि नहीं देखी है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107 जरूर जरूर बताएं। कुछ देर में आपसे मुलाकात हो रही, जाना आप रहे हैं नहीं, बेस्ट जगह पर हो यार, कहाँ जाओ एपी टिलों गुरिंदर गिल मैगा जी ब्राउन मंडे 6:43 ब्राउन मंडे गुड इवनिंग, क्या हाल है।

ਛੇ ਛਿਆਲੀ ਓਨ ਦ ਕਲੋਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਏ ਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। मुझे मैसेज आया तब उसमें बहन का वो लिखती हैं कि कबीर भाई अब इतने ऑब्सेस्ड हैं वारापन को लेकर, टीजर देखते ही मुझे आपकी याद आई क्योंकि आप कितने महीने पहले बोल रहे थे वारापन टू का, है ना। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। उसकी वजह ये है बहन कि अवारापन जब पहली वाली रिलीज़ हुई थी 2007 में, इनफैक्ट कल ही रिलीज़ हुई थी और कल ही अवारापन टू का टीज़र आ रहा है, सो टेक्निकली 19 साल बाद। तो मैं सिंगल थिएटर में गया था दिल्ली के, पुरानी दिल्ली में थिएटर था और मैं बच्चा था, तो वहाँ पे मीट एंड ग्रीट था इमरान हाशमी के साथ। बहुत लोगों को नहीं पता था वो क्योंकि उस जमाने में इतना कुछ ज़्यादा वायरलिटी नहीं होती थी चीज़ों की, बट मैं एक वाइट टी शर्ट लेके पहुँचा था वहाँ पे एंड आई स्टिल हैव द ऑटोग्राफ ऑफ इमरान हाशमी उस टी शर्ट के पीछे। और फिर जब मैं कुछ सालों बाद आरजे बना तो मैंने उन्हें वही टी शर्ट दी थी। सो आरापन से यादें बहुत हैं। मैं अभी के अभी पूरी की पूरी मूवी लिख के दे सकता हूँ, डायलॉग बाय डायलॉग, एक से बिल्कुल शुरुआत से। समझ नहीं आप ऑब्सेशन का लेवल। और लिखती है वाओ ग्रेट, मुझे भी पसंद है वारापन जन्नत भी। थैंक यू सो मच बहन। एक और मैसेज है, हमारे एरिया में घूम रहे हैं भाई भाई ने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्राउन मुंडे चलाने के लिए, ये सॉन्ग सुनता हूँ तो बहुत मजा आता है एंड आई इमेजिन दैट यू आर द हीरो। अरे भाई थैंक यू सो मच, ये तो दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। लिखते हैं अल्लाह आपको बहुत सक्सेसफुल करे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल हराम एंड इविल आइज़। भाई दैट इज सो स्वीट ऑफ यू, दैट इज़ सो सो सो सो स्वीट ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी अपने ज़ुबान में रखे, हमेशा खुश रखे मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको। एक मैसेज है मकसूद भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई वेलकम बैक। भाई शो ख़त्म होने पे आया आप मुझे वेलकम बैक कर वेलकम बैक तो मुझे आपको कहना चाहिए मकसूद भाई, वेलकम बैक, इस एरिया में आपका स्वागत है। अच्छा मैं कह रहा था कौन सी मूवीज़ में एंट्री हीरो की बहुत बढ़िया लगी है आपको। एक भाई ने मैसेज किया, अहमद भाई ने, वो कह रहे हैं जो भाई आपको कह रहे हैं कि बाल सिल्वर करा लें, शायद वो चाहते हैं कि आप आइंस्टाइन वाले लुक में कहानी सुनाएं। अरे यार क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं लोग। और वो मुझे मैसेज कर भी रहे, कह रहे हाँ मैं चाहता हूँ कि आप जो है बालों को सिल्वर करा लें, वाइट भी नहीं, ऐश कलर भी नहीं। कह रहे ना जी मैं कह रहा हूँ सिल्वर कराएं आप बालों को और आप कहानी सुनाएं सोशल मीडिया पे। ये जो आपने इमेजिन किया है मुझे बताइए इसकी जड़ क्या है, क्या सोच किया आपने, बोला होगा मैं जानना चाहता हूँ। एक मैसेज है भाई आप हमारे फेवरेट आर्जेंट कतर में, भाई हुसैन भाई आज जाते जाते सब इमोशनल क्यों कर रहे हैं मेरे को, ये देखो हुसैन भाई बहुत बहुत प्यार भाई आपको, थैंक यू सो मच, रियली रियली रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार। लो आपको उड़ता हुआ दिल भेज रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ बढ़िया एकदम लाल भी नहीं पिंक दिल भेजा मैंने आपको। एक मैसेज कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सेंड द स्टोरी। ऑफकोर्स आरिफ भाई मैं जरूर भेजूंगा भाई कुछ देर में, टेंशन नको। अच्छा तो एक मैसेज है भाई ने लिखा है, भाई मस्त एंट्री थी सलमान भाई की मूवी किक में। सलमान भाई वालेकुम सलाम, सलमान भाई का मैसेज भी आ गया। हाँ मैं बताऊँ जो किक में एंट्री थी सलमान खान की, आई थिंक वो रिक्शे पे होते हैं ना उस टाइम पे, और वो एकदम से गाना चलना शुरू होता है, गाने की कुछ लाइनें आती हैं और सलमान खान की एंट्री होती है। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेबुलस एंट्रीज ऑफ एनी हीरो। और आई थिंक एक शाहरुख खान का मैंने करा दिया डॉन की जो एंट्री थी उनकी, और कौन से हीरो की एंट्री बहुत बढ़िया रही है, यश की भी एंट्री बढ़िया रही है जो उनकी आई थी केजी, तो उसमें भी KG3 आई थिंक किसी एक मूवी में उनकी एंट्री बहुत जबरदस्त थी। मैसेज इट इज इट पॉसिबल ब्रो टू गेट लास्ट मंडे स्टोरी। आरिफ भाई अगर मुझे मिल गई मेरे भाई तो मैं जरूर भेज दूंगा आपको, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव इट। अगर मेरे फोन में अभी होगी तो ताज़ा तरीन तो आपको मिल जाएगी, बाकी आज वाली तो आपको इंशाल्लाह जरूर जरूर मिल जाएगी। ठीक है ऑन दैट नोट वक्त देखा तो इजाजत लेने का वक्त आ गया है आपसे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और जैसे कि अभी बहन ने कहा कि बड़े ऑब्सेस्ड हैं वारापन से बहुत ज़्यादा, कल सुबह सुबह ट्रेलर टीजर ड्रॉप हो रहा है वारापन टू का, आई एम सुपर एक्साइटेड, कल इसके बारे में बात तो जरूर करूंगा मैं। बट फॉर नाउ आपसे लेनी है मुझे इजाजत, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, 5 बजे मिलेंगे एक अलग कहानी के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मा सलामा।

पामाली करार दिया है। वजारत खारजा ने आज जारी करदा अपने एक बयान में इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते को ऐसे बिला जवाज हमलों के असरात से महफूज रखना बहुत ज़रूरी है और इस बात की ज़रूरत है कि मुकालमे सफारतकारी के ट्रैक्स और शिद्दत में कमी लाने की कोशिशों को जारी रखा जाए और मुफाहमत याददाश्त के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त को बुनियाद बनाकर उस पर तामीरी काम किया जाए ताकि इलाकाई और बैन अलाक़वामी सतह पर अमन इस्तेहकाम को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। वज़ारत खारजा ने क़तर की जानिब से बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और उन तमाम इकदामात के लिए भरपूर मदद और हिमायत का इरादा किया जो वह अपनी ख़ुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार कर रहे हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने बोह रेंजर एंजरहाइम कंपनी के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद ऐसे मुश्तरक मंसूबों पर अमल दरामद करना है जो तिब्बी क्लिनिकल तहकीक को फ़रूग दें, सेहत की देखभाल के शोबे में जिद्दत को आगे बढ़ाएँ, अफरादी सलाहियतों को मुस्तहकम करें और रियासत कतर में मरीजों के सेहत के नतज को बेहतर बनाएँ। इस मुफाहमती याददाश्त पर किए गए दस्तखत मुतअद्दद स्ट्रेटेजिक शोबों में उन मुश्तरका तआवुन के आज़म की अक्कासी करते हैं जिनमें हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट की इस्तेदाद में इजाफ़ा, तहकीकी महारतों की तरक्की और ऐसे मंसूबों की तहकीक शामिल है जो कतर के शोबे सेहत की मुसलसल तरक्की और सलाहियत साजी में मुआविन होंगे। यह मुशरक तआवुन क्लिनिकल ट्रायल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और तहकीकी सलाहियतों को मजबूत बनाकर कतर की तरफ मजीद बैन अलाक़वामी क्लिनिकल तजर्बात को मुतवज्जह करने, आलमी सतह पर तहकीक के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने और कतर के महक्किकीन को तिब्बी जिद्दत और साइंसी दरियाफ्तों में ज़्यादा मुअस्सर किरदार अदा करने के मौक़े फराहम करेगा। इस शराकतदारी के ज़रिए हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के महक्किकीन को नई अद्वियात, मेडिकल टेक्नोलॉजी और तहकीकी पेशरफ्त से ज़्यादा आगाही हासिल होगी जिससे मुस्तकबिल की जिद्दत के शोबों की निशानदही में मदद मिलेगी। यह मुश्तरक तआवुन हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में हेल्थ टेक्नोलॉजी के जायजे को भी फ़रोग देगा जिसमें सलाहियत साजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की भी शामिल है। इस सेहत की देखभाल करने वाले इदारे नए तिब्बी इलाज व आलात, जदीद अद्वियात और डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के तिब्बी, माशी, इंसानी और समाजी असरात का बेहतर अंदाज में जायज़ा ले सकेंगे। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के कायम मकाम असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर अली अलजनाही ने कहा कि यह मुश्तरक तआवुन कतर में क्लिनिकल तहकीक के निज़ाम को मजबूत बनाने और इदारे के आलमी मेयार की सेहत की खिदमात फराहम करने के विज़न को तकवीत देने की जानिब एक अहम कदम है जो जिद्दत, शवाहिद पर मबनी तिब्बी अमल, अकदार पर मबनी सेहत की खिदमात और बैन अलाक़वामी तआवुन पर मबनी है। बोह रेंजर एंजरहाइम के भारत, मशरिक़ वस्ता, तुर्की और अफ्रीका के इलाकाई जनरल मैनेजर ड्रेक ओलेरी ने कहा कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के साथ ये तआवुन जदीद तहकीकी सलाहियतों को फ़रोग देने, साइंसी इम्कानात को बरवे कर लाने और कतर में सेहत के शोबे की मुसलसल तरक्की की मुश्तरक वाबस्तगी का मज़हर है। वाज़ह रहे कि मज़कूरा कंपनी एक आलमी दवासाज़ कंपनी है जो इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जदीद अदविया व इलाज तैयार करती है। कंपनी इस वक्त 130 से ज़ायद आलमी मंडियों में अपनी खिदमात फराहम कर रही है। खलीज के अरब ममालिक की तआवुन कौंसिल ने कुवैत और बहरीन पर ईरान की तरफ से किए गए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम मोहम्मद अलबदेवी ने आज अपने जारी करदा बयान में कहा है कि बहरीन और कुवैत की सरजमीन पर किए गए ये हमले उनके शहरियों और मुकीम अफराद के अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये हमले बैन अलाक़वामी क़ानून और अक़वामी मुत्तहिदा के चार्टर की वाज़ह खिलाफ़ वर्जी हैं और ये खिलाफ़ वर्जी एक ऐसे वक्त में की गई है जब खित्ते और दुनिया में अमन सलामती के क़याम और बहरान के हल के लिए इलाकाई बैन अलाक़वामी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि इन हमलों का तसलसल बहाली अमन की उन तमाम कोशिशों को कमज़ोर कर

0: देखिए भाई साहब, टेक की दुनिया और ये है एकदम टक टकाटक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर F107 पे, एंड वेलकम टू टेक इनोवेशन, द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी सेकंड। मैं कब तक कितना पीछे भागूं, ये जान लेता हूं तो वो छूट जाता है, वो जान लेता हूं तो कुछ और छूट जाता है। बट मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपके काम आएंगी, वो चीजें जो एक्चुअली में इस हफ्ते, अगले हफ्ते या फिर महीने भर तक आप यूज कर सकते हैं और उसमें चेंजेस आते भी रहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज टेक इनोवेशन में मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं जो AI से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, अपने चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड दे नीड समथिंग फ्रॉम द AI वर्ल्ड। तो आई विल ट्राई टू गिव देम समथिंग। तो आज AI से जुड़ी हुई कुछ एप्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। फिर आएंगे गैजेट्स जो बड़े प्यारे हैं, बाय द वे बड़े क्यूट गैजेट्स हैं आज मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो खबरें जो बड़ी जरूरी हैं इन टेक न्यूज़। तो शुरू करेंगे सबसे पहले AI टूल से इन एप्स दिस वीक।
1: ट्रेंडिंग एप्स,
0: तो नंबर वन ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंडमाइज करके बता रहा हूं, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट इज कंसेंसस डॉट ऐप, ध्यान से सुनिएगा, CONSENSUS consensus.ap या फिर ऐप लिख दीजिएगा, वैसे consensus.app लिखिएगा, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये क्या करता है, ये AI बड़ा कमाल का है, ये रिसर्च बेस्ड आंसर्स देता है। मान लीजिए आपने कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसका आपको सब्जेक्ट मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके पास एटलीस्ट एक हेडर है, आपको पता है टॉपिक क्या है, उसको ब्रॉडर वे में एक रिसर्च की तरह आप जानना चाहते हैं, उसकी नॉलेज के बारे में एक एक चीज, मतलब उसकी नॉलेज के बारे में क्या, उसकी नॉलेज जानना चाहते हैं, तो एक एक डिटेल आपको मिलेगी, वट एवर द सब्जेक्ट इज, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, एक पूरे रिसर्च बेस्ड आंसर आपको ये AI देता है। नॉट ओनली दैट, इट कंपाइल्स इट फॉर यू, ताकि आपको एक कंपाइलेशन मिल सके, आप उसको अपने हिसाब से देख सकें, पढ़ सकें। आप इसकी लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है। एंड इट नॉट ओनली गिव्स यू अ रिसर्च बेस्ड आंसर, बट इट ऑल्सो गिव्स यू क्लैरिटी, मतलब वो सेंटेंसेस जो फॉर्मल नहीं होते, समझ रहे हैं आप, एक आसान अंग्रेजी या आसान भाषा में जो भी आप इसको लैंग्वेज देंगे, इट इज जस्ट अमेजिंग, एंड आई वॉज ब्लोन अवे। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ के आया हूँ, तो मुझे से लगता है कि अगर किसी बच्चे के काम आ जाए, ये कोई टीनेजर हो जो प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिस वन इज कॉल्ड consensus.app, CONSENSUS.app, तो ये किसी की मदद कर सकें आप, किसी स्टूडेंट की, तो उसको ये बताइएगा, बहुत

बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाली. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो AI है बहुत कमाल का, मेरा फेवरेट है ये, मेरे भी काम आता है. नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन ये मेरे भी काम आता है. इसका नाम है not.com, पर ये NOT वाला नॉट नहीं है, KNOT वाला नॉट नहीं है. इसकी सही स्पेलिंग है KNOWT, KNOWT.com. ये क्या करता है, जो नोट्स होंगे कॉलेज के, स्कूल के, उन नोट्स को ये स्टडी गाइड्स की तरह या फ्लैश कार्ड्स की तरह तैयार कर देता है, विच इज अमेजिंग. मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कहानियां तैयार करता हूँ आपको सुनाने के लिए नैरेटिव फॉर्म में, कोई केस स्टडी में करता हूँ, कोई केस मुझे मिला, मैं उसको जब नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ तो इसकी मदद लेता हूँ. ये मुझे नोट्स बना के देता है, मुझे पूरा स्ट्रक्चर देता है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फ्लैश कार्ड्स देता है. अगर मुझे उस कहानी में से कुछ सवाल निकालने पूछने के लिए, आई कैन ऑल्सो डू दैट. तो आप सोचिए, जब ये कहानी के लिए इतना कर सकता है, तो जो आपके एक्चुअली में चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई आपने नोट्स तैयार किए हैं, उनको ये किस कदर प्रेजेंटेशन देगा, कितनी बेहतरीन देगा. सो ट्राई दिस वन आउट, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही कमाल का है. KNOWT.com, not.com. ये क्या करता है, इट बेसिकली टर्न्स योर नोट्स इनटू स्टडी गाइड्स प्रॉपर, और साथ में फ्लैश कार्ड्स भी, क्या आपको अपने हिसाब से अगर सवाल जवाब पूछने हैं या एक क्वेश्चनेयर टाइप का तैयार करना है, तो ये बहुत बहुत काम की चीज है. प्लीज प्लीज ये उन तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. फ्लैश कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड ये सबको पता होना चाहिए जो भी अभी स्कूल में है, कॉलेज में. सो वैसे तो बच्चे बहुत ज्यादा तेज है, मैं कौन होता हूँ उन्हें बताने वाला, बट स्टिल इफ समबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट, ये उनके लिए था जनरली स्पीकिंग. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगली जो AI टूल है उसका नाम है, अगले AI टूल का scispace.com. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, SCISPACE. बेसिकली scispace लिखना है, साईफाई लिखते हैं ना वैसे ही साई लिखना है, SCI और space.com. ये बहुत कमाल का है. नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट AIs, क्योंकि ये जो काम करता है वो बाकी AI उतना अच्छा नहीं कर पाते. देर आर AIs इन द मार्केट जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट दिस वन इज रियली ग्रेट. तो ये करता है scispace, ये अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मान लीजिए बहुत जत्था पड़ा है आपके पास प्रोजेक्ट का, उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर लेमैन लैंग्वेज में, एक आम इंसान की भाषा में आपके सामने रख देगा. बोलेगा हेलो जी, तो अगर कुछ नहीं समझ में आए, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है किसी चीज में, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स या टीनेजर्स, मगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, कोई बहुत ही भारी भरकम कोई सब्जेक्ट मिल गया आपको, एंड यू वांट टू गेट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये आपके बहुत बहुत काम आएगा. आई हैव यूज्ड इट एंड आई फाउंड इट अमेजिंग. तो ट्राई दिस आउट, scispace.com, बहुत बहुत काम आएगा. एंड इसको क्लब कर लीजिएगा इन तीनों AI टूल्स को NotGPT के साथ. NotGPT आपके प्रोजेक्ट में मदद करेगा. मान लीजिए आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके यूट्यूब से भी निकालते हैं प्रोजेक्ट्स. कई चीजें होती हैं जो उन्हें यूट्यूब से मिल जाती हैं, उन प्रोजेक्ट्स का उन्हें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है. ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली जो कैप्शन होते हैं वो हर वीडियो पे नहीं आते हैं, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट एक साथ मिल जाती है. वीडियो आपने NotGPT पे डाला और उसको पूरा समराइज किया, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक इट. सो तीनों के तीनों AI यू कैन क्लब इट विद NotGPT, एंड आपका टूल तैयार है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. आई होप दिस इज हेल्पफुल. कोई भी मदद चाहिए उससे जुड़ी हुई, तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, या फिर आप मुझे ढूंढ लीजिएगा दोहा वाला कबीर के नाम से, एंड पूछ लीजिएगा वापस, कोई मसला नहीं. ओके, अब बढ़ते हैं जरा कमाल के गैजेट्स की तरफ. आ जाओ जी. Gadgets. तो गैजेट नंबर वन, भाई ये गैजेट मुझे कोई गिफ्ट दे दी या मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, मेरे जितने भी गेमिंग भाई बहन है उनके लिए भाई बढ़िया करके, इस गैजेट का नाम है CRKD. हाँ, ये एक्चुअली में ऐसे ही है, CRKD एटम कंट्रोलर्स, ATOM. सो CRKD एटम कंट्रोलर्स. ये कंट्रोलर्स बहुत छोटे कीचें जुड़ी हुई इनसे भाई, इतने छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि आपके हाथ इसको होल्ड ना कर सके दोनों हाथों से, मतलब इतने भी छोटे नहीं, लाइक अ गुड साइज ऑफ कंट्रोलर्स. एंड ये आपके मोबाइल से ब्लूटूथ, वाईफाई, USB तीनों से कनेक्ट हो जाते हैं. सो इफ यू आर प्लेइंग ऑन मोबाइल फोन्स, ये भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है. ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं, एंड बड़ी फैंसी गिफ्ट है फॉर अ गेमर. तो अगर आपके घर में कोई गेमर है उसको भाई ये दे दीजिए आप, छुट्टी है, मतलब आप इतना इंप्रेस कर देंगे सामने वाले को, बोलो अरे भाई
यही तो चाहिए था और उसे पता भी नहीं है चाहिए था. ये ऐसा गिफ्ट है, इट कैन बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर गेमर्स. चेक दिस वन आउट, और काफी बजट फ्रेंडली.

प्रोडक्ट है ये, मैं नाम दोहरा देता हूँ, CRKD एटम कंट्रोलर्स, स्पेस देखिए ATOM कंट्रोलर्स, ट्राई दिस वन आउट, अगेन बजट में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और अगर आपको कोई कोई दोस्त है, कोई खास है जो इंडिया जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है एंड कमिंग बैक, तो उसके हाथों मंगवा लीजिएगा और भी ज्यादा सस्ता मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अगला जो जो गैजेट है, दिस वन इज स्पेशली फॉर दोस्त जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए है। और अगर आप फैंसी गैजेट्स में हैं मेरी तरह, पसंद है आपको वो गैजेट जो बजट में आते हैं, इट इज कॉल्ड ब्राइट डाउन E26 बल्ब है जी। अब बल्ब क्यों बता रहा है भाई, कंटेंट की कमी हो गई क्या? नहीं, ये अलग किस्म का बल्ब है भाई, इसका नाम है ब्राइट डाउन E26। ये जो बल्ब है ये रिचार्जेबल है, ठीक है, ये जो है आपके साथ, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसके साथ आपको टाइमर मिलता है, इसके साथ 3 कलर टेम्परेचर्स हैं और प्लस 9 RGB कलर्स हैं, 4 का पैक अलग से आता है भाई। और क्या, मैं अगर इसको बेचने वाला होता ना, मैं अभी भाई साहब बाहर ठेला लगा लेता, 1 घंटे के अंदर सारे बल्ब बेच देता, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इसका। तो इसकी पिच मैंने यही तैयार करी है, आपको बता रहा हूँ, ऐसा बल्ब आपने देखा नहीं होगा। मैं इसका पैक लेने की सोच रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जब इंडिया जाऊंगा तो मैं तो उसका पैक लेके आ रहा हूँ, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, ब्राइट डाउन E26 रिचार्जेबल लाइट बल्ब, देखिएगा बहुत अच्छा है, लिटरली काम आ सकता है आपके। और अगर घर में आपको ऐसी कोई गैजेट लगाना है जो थोड़ा सा स्मार्ट होम गैजेट लगे, तो दिस वन इज फॉर यू, और ये भी बहुत अच्छे बजट में है, सो ट्राई दिस वन आउट, ये भी अमेजोन में अवेलेबल है एंड बाकी जगहों पे इजीली मिल जाएगा, इवन इट इज अवेलेबल इन कतर इन सम क्या कहते हैं उसे, गैजेट की जो दुकानें होती है वहां पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, अगला है जी वो प्रोडक्ट जो बड़ा काम का है, जो मैंने अभी तक नहीं लिया है। लोग बोलते कैसे जिंदा हो तुम बिना पावर बैंक के, चलिए मैं तो इतना बाहर निकलता नहीं हूँ, पर आप निकलते होंगे, और हो सकता है कि आपकी जॉब मार्केटिंग की हो, सेल्स की हो, एंड यू नीड पावर बैंक, यू नीड टू चार्ज योर फोन एवरी नाउ एंड देन, और आपके पास पावर बैंक होगा। मगर मेरी तरफ से भी है पावर बैंक के बारे में, सुनिए, इसका नाम है एंकर मैग गो पावर बैंक, ANKER। इसकी खास बात, सबसे पहली खास बात, 10,000 mAh बैटरी है, ठीक है, ये पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है, इसके ऊपर डिस्प्ले भी है जो डिस्प्ले करता है कितनी बैटरी बची, कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है, एंड इसी के साथ ये फोल्डेबल भी है, और इसके साथ ये USB-C केबल भी आती है। एक मसला है इसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के लिए है, सो ये बस मद्देनजर रखिएगा, बाकी बहुत बढ़िया चीज है, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली हैंडी एंड एक्सट्रीमली लाइट टू यूज, एंकर मैग गो पावर बैंक, ट्राई कीजिएगा। ये गैजेट कतर में अवेलेबल है, आई हैव सीन इट समवेयर, बाकी अमेजोन पे, इफ यू नो समबडी यू कैन ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, तो ये आप मंगा लीजिएगा। और इसकी खास बात ये कि 10,000 जो एमएएच बैटरी, वो जल्दी चार्ज भी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती, एंड ज्यादा भारी भरकम नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि जेब में आपने ईंट रख रखी है, वो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। सो ये थे गैजेट्स दिस वीक, नाउ मूविंग ऑन खबरों की तरफ जो बड़ी कमाल की है। ओके, सो खबर नंबर 1 जो आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने भी फैसला किया है कि वो कुछ नया करने वाले हैं। मैं कब से सुन रहा हूँ ये, लेकिन गूगल ने किया है। गूगल का अगर आपने इनफ्रेम यूज किया है तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गूगल ने रिसेंटली रफली $75 million का इन्वेस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप करी है एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ जिसका नाम है A24। अगर आप हॉरर थ्रिलर्स देखते हैं तो A24 बहुत बड़ा स्टूडियो है, और उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करी है एक डीप माइंड रिसर्च के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ताकि मिलकर स्टूडियो A24 और गूगल एक डील पे आए, एक मुकाम पे पहुंचे जहां पे AI मूवीज बनाई जा सके। तो इससे होगा ये कि डील जो है दोनों के बीच में मूवीज की रहेगी, लेकिन डील का मतलब ये नहीं है कि गूगल को A24 के कॉन्टेंट लाइब्रेरी या डेटा का हिस्सा मिलेगा, नहीं, वो नहीं मिलेगा, मगर A24 कैन लिटरली हेल्प गूगल टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर या एक किस्म का इकोसिस्टम जहां से AI मूवीज बन सके। दैट्स अ ह्यूज न्यूज एक्चुअली में। अगली खबर है एप्पल की। एप्पल की तरफ से एक और बात सामने आई है, मुझे तो भाई डर लगता है जब भी एप्पल का प्रोडक्ट आता है, साफ सीधी बात बोलूं। इन्होंने प्लान किया है कि ये स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करें बहुत जल्दी। एप्पल इस पे काम कर रहा था काफी टाइम से, और वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन चाहते हैं मेटा रेबैन से, जो कि मुझे लगता है दे आर द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। अगर

0: लिटरली सोच रहे हैं कोई ग्लासेस लेने के, स्मार्ट ग्लासेस, तो मेटा रेबैन का कोई मुकाबला है ही नहीं. हालांकि गूगल और सैमसंग ग्लासेस भी आ चुके हैं, पर अभी रिलीज डेट नहीं आई है. ऑलरेडी उनके जो पेटेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं. मगर ओरिजिनली आइडिया बनाने का जो प्लान है गूगल का, उन्होंने कह दिया है बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं. आई नो बहुत ज़्यादा रेट होने वाला है इसका, भाई ने कोई समझा हुआ है. अभी जो है वो क्या वो लॉन्च किया था इन्होंने अपना VR हेडसेट. प्लीज एप्पल बिहेव. And last but not the least, खबर है सीधा GTA 6 की for the gamers.
1: Game and entertainment.
0: GTA 6 वालों ने 25 जून को कह दिया है कि कह दिया था, जब सुन रहे होंगे तो 25 जून क्रॉस हो चुकी होगी शायद, या नहीं हुई होगी. बट 25 जून प्री ऑर्डर्स आर ऑन. लोग कह रहे हैं 150 GB का है, कोई कह रहा है 300 GB का है, पता लग जाएगा बाद में. लेकिन कवर आर्ट GTA 6 का आ चुका है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं. मेन दो प्रोटैगनिस्ट नजर आ रहे हैं, एक फीमेल नजर आ रही हैं जो कि कवर आर्ट में कुछ है. आई थिंक सम मिस्टीरियस कैरेक्टर टू प्ले विद और टू नॉट टू प्ले विद, डोंट नो. एक एलिगेटर नजर आ रहा है एंड सिटी, द वाइस सिटी इज देयर. सो आई कैन नॉट वेट एनी फर्दर. प्लीज रॉकस्टार वालों और मत सरकाना, November 19th इज द डेट GTA 6 की लॉन्च होने की. एंड ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर. एंड इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा टेक इनोवेशन से. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मासलाम.
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट. हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
5: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है. हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं. आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं. कीप क्रॉसिंग क्लियर. ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें. इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है. ट्रैम वे लुक बोथ वेज. ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है. क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है. ट्रैम ओनली लेन. ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं. ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं. शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स. ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें. कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर. ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें. अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वक्त की कदर। वक्त इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। ये एक ऐसी नेमत है जो एक दफा गुजर जाए तो किसी भी तरह वापस नहीं आती। अक्सर लोग वक्त की अहमियत को तब समझते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर लम्हा कीमती है और हमें उसे बेकार चीजों में जाया नहीं करना चाहिए। कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने वक्त को प्लान करते हैं और हर लम्हे को बेहतरी के लिए यूज करते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा बहुत सारा वक्त ले लेती हैं। अगर हम थोड़ा सा होशमंदी से अपनी रूटीन सेट कर लें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। आज का अमल यह है कि अपने दिन का एक सिंपल प्लान बनाएं और कोशिश करें कि वक्त को बेहतरीन तरीके से यूज करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: हाथ पकड़ने और हाथ थामने में बहुत फर्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी मजबूत हो, वो वक्ती होती है, जबकि थामने वाले हाथ सारी जिंदगी साथ देते हैं। मुखलिस लोग अगर रूठ जाएं, तो उन्हें मनाने में देर नहीं करनी चाहिए, और बुरे लोग छोड़ जाएं, तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मुखलिस लोगों का रूठना वक्ती तौर पर होता है, और बुरे लोग सिर्फ एक गलती की देर है, वो भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। याद रखिए कि इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, वो हमेशा सदा नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये नेमत के तौर पर भी आती हैं, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द जो रिश्तों नाम की मखलूक रहती है उसे आजमा सके।
1: पैगाम ऑन FM 107।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और ब्राइट और प्रैक्टिकल एपिसोड। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी चीज पर जो हर घर में होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स का। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं साथियों। जरा सोचिए, रात का वक्त है, आप घर में हैं, किचन की लाइट ऑन है, लिविंग रूम की लाइट भी ऑन है और कभी कभी बाथरूम की लाइट भी अननेसेसरीली ऑन रह जाती है। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो लगता है कि भाई इतना बिल कैसे आ गया, मैंने तो इतनी एनर्जी यूज नहीं की। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अप्लायंसेस ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन असल में लाइटिंग का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है भाई। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक समझने की कोशिश करते हैं साथियों। देखें, ट्रेडिशनल जो बल्ब्स होते हैं ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा हीट भी जनरेट करते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स होते हैं ना, जैसे एलईडी बल्ब्स, ये कम एनर्जी ज्यादा रोशनी देते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं भाई। मतलब सेम लाइट आउटपुट होता है लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। अब अगर इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में ये पूछा जाए तो भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करना, यानी के वो बल्ब्स यूज करें जो एलईडी वाले हों। मतलब आप अपने घर की लाइट को स्मार्टर और सस्टेनेबल बनाएं। अब बात करते हैं कि भाई एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज करने से सफा आखिर फायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। एलईडी बल्ब्स ट्रेडिशनल बल्ब्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली कम एनर्जी यूज करते हैं ना। दूसरा फायदा है कॉस्ट रिडक्शन का। देखें, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होने से मंथली बिल्स नोटिसिबली कम नजर आते हैं हमें, बिल हमें कम आएगा। तीसरा फायदा है लॉन्ग लाइफ स्पैन। देखिए, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स ज्यादा देर तक चलते हैं इसीलिए रिप्लेसमेंट कम होती है। चौथा फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। सीधी सी बात है, कम एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है पावर जनरेशन पर कम लोड और कम इमिशंस। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो आप सोचिए कि आपके घर में 10 बल्ब्स हैं। अगर सब ट्रेडिशनल बल्ब्स हों तो हर वक्त का एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा ही होगा ना। लेकिन अगर वही बल्ब, वही 10 बल्ब्स एलईडी या एनर्जी एफिशिएंट हों तो सेम रोशनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का आप जो यूजेज है वो कह लें कि वो हाफ या उससे भी कम हो सकता है। देखिए, दोहा जैसी सिटी में हर घर, ऑफिस और मॉल में लाइटिंग का बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए यहाँ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग अडॉप्ट करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल सेटअप है जो ओवरऑल एनर्जी डिमांड को रिड्यूस करता है। अच्छा, आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं, ठीक है। टिप नंबर 1 ये है कि एलईडी बल्ब्स प्रेफर करें, हर पुराने बल्ब को ग्रेजुअली एलईडी से रिप्लेस करें। नंबर 2, रूम वाइज यूजेज कंट्रोल करें, सिर्फ जरूरत के मुताबिक लाइट्स ऑन करें, अननेसेसरी लाइट्स ऑफ रखें। नेचुरल लाइट यूज करें साथियों, दिन के वक्त कर्टन्स ओपन रखें ताकि सनलाइट मैक्सिमम यूजेज में आए। नेक्स्ट ये कि मोशन सेंसर लाइट्स कंसिडर करें, स्पेशली कॉरिडोर्स और बाथरूम्स में ऑटोमेटिक लाइट्स हेल्पफुल होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर चेक करें, जहां जरूरत ना हो वहां लाइटिंग रिड्यूस करने की हैबिट डेवलप करें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव इसका देखा जाए तो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि ग्लोबल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर शिफ्ट कर रही हैं और इसको प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि लाइटिंग एनर्जी कंजम्पशन ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अच्छा, एक और बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक बल्ब चेंज करने से क्या ही कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हर घर, हर ऑफिस और हर बिल्डिंग एक छोटा चेंज करे ना तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी सेविंग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की तरफ चलते हैं। बिहेवियर चेंज एंगल की तरफ देखा जाए तो जब आप एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी डेली हैबिट्स को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ यूजर नहीं रहते बल्कि स्मार्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करें और अपनी लाइट को स्मार्ट बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि आज अपने घर में कम से कम एक बल्ब को एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब से रिप्लेस करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए मोटिवेट करें। साथियों, रोशनी सिर्फ घर को ब्राइट नहीं करती बल्कि हमारे डिसीजंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। जब हम एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करते हैं ना, तो हम सिर्फ लाइट नहीं बदलते बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा सस्टेनेबल बना रहे होते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: Maximum music, maximum fun
0: on FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहम्मद मुंतारी के बारे में। मोहम्मद मुंतारी कतर की कौमी फुटबॉल टीम के मशहूर स्ट्राइकर हैं और उनका नाम कतरी फुटबॉल की तारीख में अहम मकाम रखता है। यहाँ दोस्तों मुंतारी एक्चुअली अगर कतर की फुटबॉल हिस्ट्री, इनफैक्ट वर्ल्ड कप की अगर हिस्ट्री में अगर देखें तो ही बिकेम द फर्स्ट गोल स्कोरर इन अ वर्ल्ड कप मैच। और ये बात 2022 वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा और कतर में ही हुआ था 2022 का वर्ल्ड कप। मोहम्मद मुंतारी असल में घाना में पैदा हुए लेकिन बाद में कतर आए और यहीं बस गए और आगे जाकर नेशनल टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी ताकतवर जिस्माना सलाहियत, बेहतरीन हेडिंग और गोल स्कोरिंग की वजह से जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। मोहम्मद मुंतारी ने कतर के लिए एक अहम मुकाबलों में नुमाया किरदार अदा किया और वो मैच जिसके बारे में मैं आप लोगों को शुरू में बताया, ही बिकेम कतर्स ओनली गोल स्कोरर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। यहाँ दोस्तों सेनेगल के उस मैच में कतर ने एक गोल किया था और वो एक तारीखी गोल था। ये कतर का फीफा वर्ल्ड कप में पहला गोल था जिसकी वजह से उनका नाम यानी मोहम्मद मुंतारी का नाम हमेशा के लिए कतरी फुटबॉल की तारीख में दर्ज हो गया। उनकी मेहनत, लगन और प्रोफेशनल रवैया नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। क्लब फुटबॉल में भी मुंतारी ने कतर की मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ और पेनल्टी एरिया में मौजूदगी डिफेंडर्स के लिए मुश्किल पैदा करती है। मोहम्मद मुंतारी को कतर के सबसे अहम फुटबॉल सितारों में शुमार किया जाता है और उनकी खिदमत को फुटबॉल शायकीन हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
1: One step to 2030.
2: आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है विजन 2030. देखिए, विजन 2030 असल में ना एक लंबी प्लानिंग है जो कंट्रीज या दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ लेके जाने का कंट्रीज का एक प्लान है. इसका जो बेसिक आइडिया है वो है क्या? इसका बेसिक आइडिया वो मैं आपको बताती हूँ. इसका बेसिक आइडिया ये है कि 2030 तक हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में तरक्की करें, जैसे इकोनॉमी,

0: है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है या सोसाइटी है, हर मुल्क अपनी जरूरत के हिसाब से विजन 2030 बनाता है, लेकिन सबका एम एक ही होता है, बेहतर और सस्टेनेबल जिंदगी। जी हाँ, कतर जैसे मुल्क के लिए विजन 2030 एक रोड मैप है जो फ्यूचर डेवलपमेंट को गाइड करता है। इसका फोकस होता है कि मुल्क जो है वो सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड ना रहे, बल्कि और दूसरी फील्ड्स जैसे एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, इन सारी फील्ड्स में भी ग्रो करे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो विजन 2030 के चार इम्पोर्टेंट पिलर्स भी हैं, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की तालीम और सेहत को बेहतर बनाए ताकि वो स्किल्ड और हेल्दी लाइफ जी सके। वहीं अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो सोशल डेवलपमेंट का फोकस सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कल्चर को प्रमोट करना है और लोगों के दरमियान हार्मनी को पैदा करना है। वहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाना, जहां सिर्फ एक सोर्स इनकम ना हो बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज हो। इससे मुल्क फाइनेंशियली स्टेबल होता है। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की भी बात करना बहुत जरूरी है, और इसका एम है कि तरक्की के साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो, नेचुरल रिसोर्सेज बचें। जी हाँ, ग्लोबल लेवल पर भी 2030 एजेंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक प्लान बनाया है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDGs। इनमें 17 गोल्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिनमें एम रखा गया है गुर्बत यानी पावर्टी को खत्म करना, एजुकेशन को, इल्म को जो है वो उसके मयार को और ज्यादा जो है वो एनहांस करना, इम्प्रूव करना, और हर हाल में, हर लिहाज में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो विजन 2030 एक प्लान है। वो प्लान नहीं जो आप वीकेंड्स पे बनाते हो, हाँ शायद उसी जैसा कुछ प्लान। जब हम प्लानिंग करते हैं तो कितना कुछ सोचते हैं, कितनी चीजें हम लिख रहे होते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक उसी तरह से कंट्रीज के लिए भी प्लान होते हैं। एक विजन है, एक गोल तैयार किया जाता है, और विजन 2030 वही प्लान है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान ब्रिज बनता है। इसका मकसद ये है कि आज की जनरेशन भी अच्छी लाइफ एंजॉय करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो सेफ रहे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि विजन 2030 सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो है वो प्लान नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल का भी रोल है। जब लोग एजुकेशन, एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स देते हैं, तभी ये विजन सच होता है। बस मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: बात की, वो जा रहा है कोई शबम गुजार की, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने ले

0: विद आरजे कबीर, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकेंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। इस्लाम हमें दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचने और खैर के पहलू को देखने की तालीम देता है, क्योंकि बदगुमानी दिलों में नफरत पैदा करती है जबकि हुस्न ज़न मोहब्बत और सुकून लाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और तजस्सुस न करो, एक दूसरे की टोह में न लगे रहो, आपस में नफरत न रखो और भाई भाई बन जाओ। दोस्तों, बदगुमानी दिलों को कड़वा कर देती है। शैतान का फंदा है जो मामूली ख्याल को बड़ा करके नफरत में बदल देता है। इसी तरह तजस्सुस और तहस्सुस दूसरों की कमजोरियों की टोह लगाना जो दिलों में दूरी और दुश्मनी बढ़ाता है। और अखुवत यही असल सुन्नत है कि हम एक दूसरे के ऐब ढूंढने के बजाय मोहब्बत के रिश्ते मजबूत करें। जैसा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने कहा, शैतान इंसान को धोखा देता है कि तुम्हारी बदगुमानी तुम्हारी फितानत और चालाकी है, हालांकि उसकी चाल है जो दिलों को अंधेरा कर देती है। तो समीन, ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हुस्न ज़न और नेक गुमानी के हवाले से। आइए हम भी अपने दिलों को बदगुमानी, तजस्सुस और नफरत से पाक करें और सुन्नत नबवी की हिदायत के मुताबिक खुशगुमानी के नूर से मुनव्वर करें। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुल जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
4: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए जो मुनासिब गिजाई प्लान के बारे में। डायबिटीज यानी शुगर खून में शुगर की ज्यादती का मरज है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की एक आम बीमारी है जिसमें जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। मगर अच्छी खबर ये है कि मतवाजन गिजा दोनों बीमारियों के असरात को कम करने में मदद दे सकती है। दिन का आगाज सेहत भर नाश्ते से कीजिए और नाश्ते में दलिया, ब्राउन ब्रेड, अंडा, कम चिकनाई वाला दूध या दही शामिल कीजिए। ये गिजाएँ तवानाई फराहम करती हैं और शुगर को मतवाजन रखने में मदद देती हैं। रोज़ाना कलरफुल जो वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, ख़ास तौर पर पालक, ब्रोकली, बंद गोभी और खीरे जैसी सब्जियाँ। फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद और बेरीज बेहतर इंतखाब हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और सोजिश कम करने में मदद देते हैं। प्रोटीन ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिए, जैसे कि उसमें फिश है और बग़ैर चर्बी वाला गोश्त है। दालें, चने और लोबिया बेहतरीन प्रोटीन के ज़राए हैं। प्रोटीन जोड़ों और मसल्स की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सेहतमंद फैट्स इस्तेमाल करने ज़रूरी हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, अखरोट, बादाम और फ्लैक्स सीड के जो बीज हैं या अलसी के बीज जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें हमारी इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम करने में मदद देते हैं, जिससे जॉइंट्स के दर्द में आराम मिल सकता है। अब ये भी ज़रूरी है कि किन गिजाओं से हमें दूर रहना है। उसमें मीठे मशरूबात हैं, ज़्यादा चीनी वाली अशिया हैं, फास्ट फूड हैं और तली हुई गिजाएँ और प्रोसेस्ड स्नैक्स से हमें दूर रहना है। ये ना सिर्फ शुगर को बढ़ाते हैं बल्कि वज़न में इजाफे और फिर जोड़ों या जॉइंट्स की तकलीफ का सबब भी बन सकते हैं। ज़्यादा वज़न घुटनों और कोहलों के जो जोड़ हैं या जॉइंट्स हैं उन पर इजाफी दबाव डालता है, इसलिए बैलेंस डाइट और बाकायदा एक्सरसाइज वज़न कम करने और जॉइंट्स की सेहत बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी आप पीजिए। पानी जिस्म को हाइड्रेट रखता है और अमूमी सेहत को बेहतर बनाता है। लिसनर्स, डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज अगर मतवाजन गिजा, मुनासिब वजन और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तो अपनी सेहत और मायारे ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी गजाई ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर या माहिर गजाइत से मशवरा ज़रूर कीजिए।
0: Maximum music, maximum fun
1: on FM 107. Dil se desi.

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आप थोड़ा देखते हैं कि एथलेटिक्स में किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं और ये रिकॉर्ड होल्डर है कौन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरमान दुप्लांटिस। अरमान दुप्लांटिस पोल वॉल्ट।

वर्ल्ड चैंपियन। पोल वॉल्ट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पहले मैं जब छोटा था स्कूल के टाइम में, सर्गे बुबका वो पोल वॉल्ट के मास्टर थे। सर्गे बुबका पोल वॉल्ट मतलब एक पोल लेके एक लंबी लाठी समझ लीजिए, उसको आप पकड़ के दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं और एक बैरियर के सामने आप उसको मतलब छलांग मारते हैं और उस बैरियर को क्रॉस करते हैं। दैट इज़ पोल वॉल्ट। देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल लग जाता है लोगों को बैठ के टीवी के सामने कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ईजी है, सब कोई कर लेंगे, लेकिन नो नो इट्स नॉट दैट ईजी। सो अरमान डुप्लांटिस मुझे लगता है कि सर्गे बुबका से भी कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड, कुछ ज़्यादा ही यू नो आई वुड से मारूफ, बिल्कुल हाँ। और पोल वॉल्ट की तारीख में अगर सबसे अजीम खिलाड़ियों में अगर मैं बोलूँ कि अगर डुप्लांटिस का नाम मैं यहाँ पे शामिल करूँ तो मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। 10 नवंबर 1999 को अमरीका के लुसियाना शहर में पैदा हुए और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ एक साल में वो प्रोफेशनल बने। लेकिन डुप्लांटिस ने अमेरिका के बजाय स्वीडन को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया, अपनी अम्मी के हेरिटेज को अपनाया और स्वीडिश जुबान सीखी और पूरी यूरोप में उनको शोहरत मिली। डुप्लांटिस के कई रिकॉर्ड्स हैं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वो अपना रिकॉर्ड बनाता है, खुद तोड़ता है, अपना रिकॉर्ड बनाता है, खुद तोड़ता है। ये उनका एक सिलसिला था और हाल ही में उस सिलसिले को तोड़ा गया। लेकिन जो मुसलसल रिकॉर्ड बना रहा है, तोड़ रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है, तोड़ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ना, कोई नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना ही बना रहा है, अपना तोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो बात है इस खिलाड़ी में, इस प्लेयर में। और इस साल डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर की जंप के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 2020 से लेकर अब तक 12 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कैन यू बीट दिस, कैन यू इमेजिन, आप तो तसव्वुर कर सकते हैं क्या? तो है ना इंटरेस्टिंग, डुप्लांटिस खुद अपने आप से कम्पीट करते हैं। कहते हैं कि जो बड़े लेवल के जो एथलीट्स होते हैं उनका ये हमेशा फिलोसॉफी रहा है कि वो अपने आप से कम्पीट करें तो बेटर फील करते, आई मीन बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और कुछ हद तक यहाँ पे ये बात सही भी है। गोल्फर्स के लिए कहा जाता है कि गोल्फर्स दे प्ले विद देमसेल्व्स, गोल्फर का कोई ओपोनेंट नहीं होता, वो अपने आप से खेलता है। तो स्वीडन के लिए कम्पीट करते हुए डुप्लांटिस दो दफ़ा ओलंपिक चैंपियन 2020-2024, दो दफ़ा वर्ल्ड आउटडोर चैंपियन 2022-2023 और तीन मरतबा 2022-2024 और 2025 में वर्ल्ड इंडोर चैंपियन रह चुके हैं। उनके नाम 3 यूरोपियन टाइटल्स और 4 डायमंड लीग टाइटल्स हैं और उनका डोमिनेशन इस बात का सबूत है कि वो 30 से ज़्यादा 6.10 मीटर से ऊंची जंप लगा चुके हैं। एक एथलीट खानदान में पले बड़े डुप्लांटिस, जिसको मोंडो भी कहा जाता है, डुप्लांटिस के वालिद ग्रेग खुद एक फॉर्मर पोल वॉल्टर हैं जबकि उनकी वालदा हिलेना एक्स हेप्टाथलीट थी। अच्छा, बचपन से ही उन्हें अपने वालदैन ने ट्रेनिंग दी और यही होता है कि जब आपके घर में ही आपके अगर पेरेंट्स अगर आपके एथलीट्स हों तो वो एक आपके लिए एक बोनस है, एक एडवांटेज है, बिकॉज यू गेट दैट फॉर्मल ट्रेनिंग, यू नो बड़े ही कम एज में आपको वो ट्रेनिंग हासिल हो जाती है। सिर्फ 3 साल की उम्र में डुप्लांटिस ने वॉल्टिंग शुरू कर दी थी और सिर्फ 7 साल की उम्र में उनके नाम एज ग्रुप वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्ड्स आ गए थे। अच्छा, उनके भाई बहन आंद्रियास, एंटोइन और जोआना भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। एंटोइन ने बेसबॉल में नाम कमाया जबकि जोआना ने पोल वॉल्टिंग में महारत रखती हैं और उनकी पर्सनालिटी, कैरिश्मा और लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस ने उन्हें ग्लोबल एथलेटिक्स का एक सुपरस्टार, एक हीरो बना दिया है। तो सवाल यह है कि डुप्लांटिस और कितना ऊंचा उड़ सकता है? दुनिया की नज़रें उन पर हैं दोस्तों और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि डुप्लांटिस को हराना थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी लगता है मुझे। कभी कभार लगता है कि कुछ एथलीट्स दे आर बॉर्न टू डोमिनेट, दे आर बॉर्न टू यू नो दे आर बॉर्न टू डोमिनेट, नॉट ओनली जस्ट डोमिनेट बल्कि वो बताना चाहते हैं कि ये जो एथलेटिक्स या ये जो फुटबॉल, ये जो क्रिकेट है, ये जो अपना जो गेम है वो मेरा है, दैट इज़ माई टेरिटोरी और यहाँ पर कोई भी ओपोनेंट्स मैं रखना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और हाल ही में जैसे मैंने शुरू में बताया कि डुप्लांटिस पहली मरतबा किसी

पोल वॉल्ड इवेंट में आर्मांडो डुप्लांटिस को हार का सामना करना पड़ा। पिछले हफ्ते स्टॉकहोम में मुनाकिदा वांडा डायमंड लीग जो कि स्टॉकहोम डुप्लांटिस के ही शहर हैं, और डुप्लांटिस के शहर में मोंडो डुप्लांटिस को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुर्तिश मार्शाल ने मोंडो को हराया और मोंडो डुप्लांटिस का ये फर्स्ट डिफीट इन ऑलमोस्ट 3 years इन द पोल वॉल्ट। अच्छा, डुप्लांटिस के बारे में आपसे ये बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड दे चुका हूँ कि मल्टीपल वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 6.28 मीटर अपने ही घर पर स्टॉकहोम में पिछले साल किया था और उसी मार्क को थोड़ा बढ़ाकर 6.31 मीटर तक पहुंचाया था। लेकिन इस वक्त, इस टाइम, पिछले हफ्ते जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, जिस चैंपियनशिप में उनको हार का सामना करना पड़ा, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 5.80 मीटर और मार्शल जो ऑस्ट्रेलिया के मार्शल है उन्होंने इस टाइटल को जीता 5.09 मीटर। तो देखिए, अब मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा अगर देखो तो थोड़ा डाउनफॉल लग रहा है डुप्लांटिस का। कभी कभार हो जाता है कि एक ज़माने पहले टाइगर वुड्स बोर हो गए थे और यू नो टाइगर वुड्स खेलते खेलते अपने आप ही खेल रहे जीत रहे तो बोर हो गए थे। हो सकता है कि डुप्लांटिस के साथ कुछ ऐसा भी हो रहा हो, ही इज़ गेटिंग बोर्ड बिकॉज कोई ओपोनेंट, कोई चैलेंजर्स उनको नज़र ही नहीं आ रहा हो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये मार्शल ने अगर उसको हराया है तो हो सकता है कि देर इज़ अ चेंज इन पैटर्न, देर इज़ अ चेंज इन सिनेरियो। हो सकता है आने वाले टाइम में भी डुप्लांटिस को कोई और भी हरा दे। लेकिन बात वही है कि एथलेटिक्स की दुनिया में कुछ एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस से खेल की तारीख बदल देते हैं और पोल वॉल्ट के इवेंट में स्वीडन के सुपरस्टार अरमान मोंडो डुप्लांटिस भी उन्हीं अजीम एथलीट्स में से एक हैं। और अहमियत यह है कि उनकी जो टैलेंट है, आई वुड से कि वो इम्पोर्टेंस देते हैं उनके टैलेंट को, और कंसिस्टेंसी की बदौलत पोल वॉल्ट को नए मकाम तक पहुंचाया और कई मरतबा अपनी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। आज भी डुप्लांटिस ये सोचते हैं कि उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो टूटे, कोई तोड़ दे, लेकिन वो खुद ही तोड़ते हैं अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि डुप्लांटिस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो अक्सर कॉम्पिटिशन जीतने के बाद बार को और ज़्यादा ऊंचा कर देते हैं ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोशिश कर सकें, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने कई मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नए माइलस्टोन्स कायम किए। ये बहुत कम एथलीट्स के साथ होता है कि वो दूसरों के रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि अपने ही रिकॉर्ड्स को चैलेंज करते हैं। इट इज़ समथिंग इन बॉन्ड, उसे खुशी मिलती है। दूसरे को रिकॉर्ड तोड़ना एक टारगेट रखते हैं कि मैं पहले का रिकॉर्ड तोड़ूंगा या रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ूंगा या मेसी का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। कोई ऐसे खिलाड़ी है या फुटबॉलर है जो कि कहता है कि मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊं और अपने आप को अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दूं, तो वो बहुत एक्सेप्शन है। लेकिन डुप्लांटिस इज एन एक्सेप्शनल फिगर, एन एक्सेप्शनल एथलीट इन मॉडर्न एथलेटिक्स। पोल वॉल्ट एथलेटिक्स का एक बहुत मुश्किल इवेंट माना जाता है और एथलीट को एक लंबी पोल के जरिए हवा में बुलंद उछाल लगानी होती है और बार के ऊपर से गुजरना होता है, और इस इवेंट में स्पीड, ताकत, बैलेंस और टेक्निक सब की ज़रूरत होती है। डुप्लांटिस ने इन तमाम सलाहियतों को एक बेहतरीन अंदाज में मिलाकर इस इवेंट पर हुक्मरानी कायम की। उनकी जंप्स देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो ग्रेविटी के कवानीन को चैलेंज कर रहे हों, और इसी वजह से दुनिया भर के एथलेटिक्स फैंस उनकी परफॉर्मेंसेस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हर कंपटीशन में लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या मोंडो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे जैसे पिछले हफ्ते हुआ था। लेकिन थोड़ा मायूस होना पड़ा उनके फैंस को, उनके जितने भी यू नो फॉलोअर्स हैं उनको थोड़ा सा मायूसी से गुजरना पड़ा। ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी डुप्लांटिस ने गोल्ड मेडल्स जीतकर अपनी बढ़तरी साबित की। उन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स में प्रेशर के नीचे भी शानदार परफॉर्मेंसेस दी। ये किसी भी चैंपियन की सबसे बड़ी पहचान होती है, यू नो, हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन, हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट एथलीट। डुप्लांटिस इज वन ऑफ देम। मोंडो डुप्लांटिस का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इंसानी सलाहियत की मिसाल है। उन्होंने दिखाया है कि मेहनत, डेडिकेशन और खुद पर यकीन के जरिए नामुमकिन नजर आने वाले हदव भी हासिल किए जा सकते हैं। एथलेटिक्स की तारीख में उनका नाम पोल वॉल्ट के अजीम तरीन एथलीट्स में शुमार किया जाता है।

0: आज भी जब डुप्लांटिस रनअवे पर दौड़ते हैं और पोल के जरिए हवा में बुलंद होते हैं तो दुनिया भर के फैंस सांस रोककर देखते हैं। हर नई जंप के साथ ये उम्मीद होती है कि शायद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। इसीलिए मोंडो डुप्लांटिस को मॉडर्न एथलेटिक्स का एक सच्चा सुपरस्टार और पोल वॉल्ड का बेताज बादशाह कहा जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात कर रहे हैं या कर चुके हैं आवर फर्स्ट सेगमेंट ऑन मोंडो डुप्लांटिस द बेताज बादशाह ऑफ पोल वॉल्ड और उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ मुख्तलिफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में। तो लेट्स पिक ऑन फुटबॉल। यह दोस्तों फुटबॉल की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। रोनाल्डो अभी बिजी है वर्ल्ड कप में और पोर्चुगल के लिए खेल रहे हैं सिक्स वर्ल्ड कप एंड दिस विल बी ऑब्वियसली हिज लास्ट वर्ल्ड कप 41 ईयर ओल्ड। लेकिन रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। एज पर मत जाइएगा। उन्होंने पोर्चुगल की नुमाइंदगी करते हुए 130 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स करके दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया। ये कारनामा इसलिए भी खास है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ मुसलसल गोल्स करना बहुत मुश्किल होता है। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप, यूरोपियन चैंपियनशिप और क्वालिफायर्स में भी गोल्स की बरसात की। उनका ये रिकॉर्ड फुटबॉल की तारीख के सबसे यादगार और काबिल तारीफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। Now let's move on to cricket और क्रिकेट की तारीख का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड मुतैया मुरलीधरन के नाम है। श्रीलंका के इस लेजेंडरी स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट्स हासिल की हैं, जो आज तक किसी भी बॉलर के लिए सबसे ज्यादा है। मुरलीधरन ने अपनी जादुई स्पिन बॉलिंग से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला और लगभग दो दिहाइयों तक क्रिकेट पर डोमिनेट की। उन्होंने अपना 800 विकेट अपने आखिरी टेस्ट मैच में हासिल किया था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना फ्यूचर में किसी भी बॉलर के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। टेनिस में मार्टिना नवरातिलोवा के बारे में आज हम बात करेंगे। टेनिस की दुनिया का एक शानदार नाम और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मार्टिना नवरातिलोवा। मार्टिना ने अपने करियर में 167 सिंगल्स टाइटल्स जीते और जो कि टेनिस की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। उनकी कंसिस्टेंसी, फिटनेस और विनिंग मेंटालिटी ने उन्हें कई सालों तक दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रखा। ये बात है मिड 70s और अर्ली 80s की बात है। क्रिस एवर्ट लॉयड वर्सेस मार्टिना नवरातिलोवा। वुमेन सिंगल्स कहीं पर भी देखने को मिल जाए आपको तो ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होते थे। तो मार्टिना नवरातिलोवा एक लेजेंड है, वीमेंस टेनिस के लिए एक आइडल है और उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अलावा छोटे और बड़े इवेंट्स में भी गैर मामूली कामयाबी हासिल की। आज भी कोई टेनिस प्लेयर उनके 167 सिंगल टाइटल्स के रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच सका और इसीलिए मार्टिना नवरातिलोवा का यह रिकॉर्ड टेनिस की तारीख के सबसे अजीम रिकॉर्ड में से एक माना जाता है। पिछले दफा हमने स्विमिंग में मार्क स्पिट्स के बारे में बात किया था। 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन 1 सिंगल ओलंपिक गेम्स। आज मैं बात करूंगा माइकल फेल्प्स के बारे में। लेजेंड, स्विमिंग की तारीख का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। अमेरिकन स्विमर हैं और वो जब स्विम करते थे तो लोगों को लगता था कि ही वाज डोमिनेटिंग जस्ट लाइक व्हाट डुप्लांटिस डिड, डोमिनेटिंग द स्विमिंग पूल। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक गेम्स में मजमूई तौर पर 23 गोल्ड मेडल्स जीतकर दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया। 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स मार्क स्मिथ ने उस जमाने में लिया था 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स में। लेकिन उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स की बात जब बात करो, मॉडर्न मींस दैट वाज आल्सो मॉडर्न, मतलब मोर यू नो फंडामेंटल्स चेंज हुए थे स्विमिंग में और वहीं पर माइकल फेल्प्स ने 23 गोल्ड मेडल्स जीतकर सबको चौंका दिया। ये रिकॉर्ड सिर्फ स्विमिंग की नहीं बल्कि तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स में किसी भी एथलीट के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड है। तो ये याद रखिएगा, माइकल फेल्प्स। तब आप कहेंगे कि माइकल फेल्प्स, यस स्विमर, 23 गोल्ड मेडल्स। कोई भी एथलीट ने ओलंपिक गेम्स में इतने ज्यादा गोल्ड मेडल्स नहीं जीता है, और ये रिकॉर्ड सिर्फ स्विमिंग नहीं बल्कि तमाम ओलंपिक स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स का एक रिकॉर्ड है। फेल्प्स ने 2004 से 2016 तक ओलंपिक पूल्स पर हुक्मरानी की और फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और मेडली इवेंट्स में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। दुनिया भर के स्विमर्स उनके इस कारनामे को एक मिसाल मानते हैं, और आज भी उनका 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड कायम है, अनब्रोकन। मूविंग ऑन टू बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड लेब्रन जेम्स के नाम है। लेब्रन जेम्स NBA की तारीख में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए जब उन्होंने करीम अब्दुल जब्बार का कई दिहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपने करियर में 40,000 से ज्यादा पॉइंट स्कोर करके बास्केटबॉल की दुनिया में नया बाब खोला, यानी दरवाजा खोल दिया। और ये कारनामा इसलिए भी खास है क्योंकि NBA में इतनी देर तक मुसलसल हाई लेवल पर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेब्रॉन जेम्स का ये स्कोरिंग रिकॉर्ड बास्केटबॉल की तारीख के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में शुमार होता है। अब बात करते हैं और चलते हैं रेसिंग ट्रैक पर, जहां आज बात होगी ल्यू हैमिल्टन के बारे में। जी हां दोस्तों, मोटर स्पोर्ट्स की तारीख का एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड ल्यू हैमिल्टन के नाम है। ल्यू हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 में 105 ग्रैंड प्री रेसेस जीतकर सबसे ज्यादा रेस विंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपनी गैर मामूली स्पीड, कंसिस्टेंसी और रेस क्राफ्ट की बदौलत माइकल शूमाकर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैमिल्टन ने मर्सिडीज को कई यादगार सीजन में रिप्रेजेंट किया और फॉर्मूला 1 की तारीख के कामयाब तरीन ड्राइवर्स में शामिल हो गए। दुनिया भर के मोटर स्पोर्ट्स फैंस उनके इस कारनामे को बहुत अहमियत देते हैं। उनका 105 विक्ट्रीज का रिकॉर्ड फॉर्मूला 1 की तारीख का एक अजीम माइलस्टोन माना जाता है। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है कैमल रेसिंग। कतर में बैठे हुए हैं और कैमल रेसिंग के बारे में ना बात हो तो यह बात कुछ हजम नहीं होती। तो दोस्तों, कैमल स्पोर्ट्स की दुनिया का एक दिलचस्प वर्ल्ड रिकॉर्ड कतर के मशहूर कैमल रेसिंग फेस्टिवल से मुतालिक है। 2024 में कतर के आशाहनिया रेस ट्रैक पर एक ही इवेंट में 15,000 से ज्यादा रेसिंग कैमल्स की शिरकत ने कैमल रेसिंग की दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया। कैमल रेसिंग अरब कल्चर का अहम हिस्सा है दोस्तों, और गल्फ ममालिक में इस खेल को बहुत शौक से देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। इस रिकॉर्ड ने कैमल स्पोर्ट्स की मकबूलियत को दुनिया भर में उजागर किया। आज अशानिया को कैमल रेसिंग का मरकज माना जाता है, जहां हर साल हजारों ऊंटे और उनके मालिकान मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। कैमल रेसिंग के बाद एथलेटिक्स का एक रिकॉर्ड है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, और एथलेटिक्स की तारीख का एक लाजवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक एथलीट जर्मिला क्राटोचिवोलिलुपा के नाम है। उन्होंने 1983 में 800 मीटर रेस सिर्फ 1:53.28 में मुकम्मल की थी। हैरत की बात यह है कि 40 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कोई भी एथलीट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। दुनिया के बेहतरीन रनर्स ने कई दफा कोशिश की, लेकिन जर्मिला का ये रिकॉर्ड अब भी कायम है। एथलेटिक्स की दुनिया में इसे सबसे मुश्किल और मजबूत रिकॉर्ड्स में शुमार किया जाता है, और ये आज भी फैंस और एक्सपर्ट्स को मुतासिर करता है। नाउ मूविंग ऑन टू कतर एंगल, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम एक मशहूर स्टेडियम एंड यही है स्पोर्ट्स सिटी में, एंड नज़दीक है, आप देख सकते हैं। जब भी आप उस तरफ मॉल के तरफ जाते हैं तो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम आपके दाएं तरफ या बाएं तरफ खड़ा हुआ दिखता है कि यार दिस इज़ अ मेजर मैसिव स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कहने, एक स्पोर्टिंग आइकन कहने, एक वेन्यू जिसे हर कोई यू नो रिलेट कर सकता है विद कतरी स्पोर्ट्स, विद कतर्स लीगेसी। यहाँ दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने कई ऐसे इवेंट्स होस्ट किए हैं, और ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि एथलेटिक्स, वर्ल्ड कप के कई मैचेस हुए, 2022 वर्ल्ड कप के कई मैचेस हुए, उसके साथ साथ आउट से कि अंडर 17 वर्ल्ड कप जो फीफा का वर्ल्ड कप था उसका फाइनल भी पिछले साल यहाँ पे हुआ था। और इस तरह से देखा जाए तो एक लेगेसी, एक हिस्टोरिक वेन्यू है फॉर कतर. रेस्ट ऑफ द वेन्यूज जो है वो थोड़ा बहुत यू नो बाद में बनाया गया था. और आज अगर एक कैलकुलेशन करें, एक एनालाइज करें, द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेडियम, तो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम ज़रूर उसमें शामिल होता है. खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ने एथलेटिक्स की तारीख में एक यादगार वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जब 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान दलीला मोहम्मद ने विमेंस 400 मीटर हर्डल्स में 52:16 का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. और दोहा के इस मशहूर स्टेडियम में हुई इस रेस ने दुनिया भर के एथलेटिक्स फैंस को हैरान कर दिया. दलीला ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड बेहतर बनाया और साबित किया कि वो अपने दौर की बेहतरीन हर्डलर हैं. ये हर्डल्स की बात हो रही है दोस्तों. 400 मीटर हर्डल्स देखने में बहुत अच्छा लगता है, वन ऑफ माय फेवरेट इवेंट्स, जहाँ पे यू नो व्हेन द एथलीट्स जब दौड़ के आते हैं तो उनके सामने ये हर्डल्स होते हैं और उसमें जब स्ट्रेच करते हैं, जंप लगाते हैं, देखने लायक होता है. एंड इट्स अमेजिंग फिटनेस, कंसिस्टेंसी एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस. खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में बनने वाला ये रिकॉर्ड, जस्ट नॉट रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, कतर की स्पोर्टिंग तारीख का भी अहम हिस्सा है और आज तक याद किया जाता है. तो दोस्तों, दलीला मोहम्मद है कौन, थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम बता दें तो हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा सा सही बैठता है. दलीला मोहम्मद के बारे में आप लोगों को जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है. और दलीला मोहम्मद एक्चुअली अगर देखा जाए तो अमेरिका के हैं और दलीला मोहम्मद अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड लेजेंड हैं. वो जो 400 मीटर हर्डल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 400 मीटर हर्डल्स में उन्होंने यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में. 2016 रियो ओलंपिक चैंपियन, 2020 टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट. एंड सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड फास्टेस्ट वुमेन ऑफ ऑल टाइम इन द इवेंट और पर्सनल बेस्ट 51.58 सेकेंड. तो दलीला मोहम्मद एक टैलेंटेड, एक आउट से 36 ईयर ओल्ड है और आज भी वो यंगस्टर्स को चैलेंज करते हैं कि आइए मुझे चैलेंज कीजिए एंड देन आई विल शो यू हु एम आई. जैसे मैंने बताया, गोल्ड इन द 400 मीटर हर्डल्स 2020 टोक्यो ओलंपिक्स और उसमें सिल्वर और एक साथ एक 4x400 मीटर रिले में गोल्ड इन द टोक्यो ओलंपिक्स. और वर्ल्ड फाइनल्स तो कई हैं, 2013 का मॉस्को वर्ल्ड फाइनल्स में 400 मीटर हर्डल्स में सिल्वर हैं, 2017 में लंदन में 400 मीटर हर्डल्स में 2 सिल्वर, 2019 जैसे मैंने अभी जिक्र किया 4x400 मीटर रिले में गोल्ड, और 2022 यूजीन में मुनाकिदा वर्ल्ड एथलेटिक्स में 400 मीटर हर्डल्स में एक ब्रॉन्ज है. तो इसी तरह देखा जाए कि दलीला मोहम्मद जो है ना सिर्फ हर्डल्स बल्कि स्प्रिंट्स में भी, हाई जंप में भी उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही स्ट्रांग हैं जितने कि उनके अपने पेट इवेंट जो है वो हर्डल्स में. तो दोस्तों, आज हमने जो रिकॉर्ड्स के बारे में, जिन रिकॉर्ड्स के बारे में हमने जिक्र किया, हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चों को ये थोड़ा सा ये मुतासिर करें, थोड़ा सा यू नो एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं हम, एनलाइटमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड से ही छोटे बच्चे जो हैं थोड़ा सा वो होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं कि वाई नॉट वी ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे हम भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर लें, चाहे स्कूल रिकॉर्ड से शुरू कर लें, स्कूल गेम से शुरू कर लीजिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बाद में, बट यू नो दोस गिव्स देम मोटिवेशन, दोस गिव्स देम यू नो काइंड ऑफ स्पार्क इन देयर लाइफ, इन देयर यू नो इन देयर माइंड. वो पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं और स्पोर्ट्स में अगर आपने कहीं मेडल लेके आते हैं तो दैट गिव्स देम अ सर्टेन बूस्ट टू देयर कॉन्फिडेंस. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ एंड स्पोर्ट्स को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्पोर्ट्स, हर तरह के स्पोर्ट्स को अपनाइए, हर तरह के स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चों को धकेल दीजिए, मैंने पुश कर दीजिए, मेक देम प्ले बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, फुटबॉल, इवन चेस, घर बैठ के अगर हैं तो इंडोर चेस में भी आप उन लोगों को बिजी कर दीजिए. देखिए, स्पोर्ट्स ओपन्स द माइंड, स्पोर्ट्स से आपका दिमाग खुलता है, स्पोर्ट्स से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं. स्पोर्ट्स लेजेंड्स को पढ़िए एंड यू वुड नो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पर. तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह डुप्लांटिस ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. दोस्तों ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी कराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे सामिन कराम, इसका तज़किरा पहले भी एक हलके में हो चुका है। आज हम उसी मौजू को एक नए जाविये से देखने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या हमें किसी खालिक की ज़रूरत है या क्या ये कायनात खुद ही अपनी वजह बन सकती है। तो ये सदियों से

क्योंकि जो चीज़ पैदा होती है उसका एक आगाज होता है और जिसका आगाज होता है वो मोहताज होती है और जो मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह ताला के बारे में कुरान वाज़ह ऐलान करता है कि वो न किसी से पैदा हुआ और न उसकी कोई नस्ल है, वो अजली भी है और अबदी भी, वो अव्वल भी है और आखिर भी, वो हर चीज़ से पहले भी था और हर चीज़ के बाद भी रहेगा। सबने कराम मुफस्सरीन किराम ने लम यलिद वलम यूलद की बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। इमाम सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कामिल गनी और बेनियाज होने का तकाजा है कि वो न किसी का मोहताज हो और न कोई उसका मोहताजी के माने में वारिस या जानशीन हो। इमाम बगवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसका कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई शरीक हयात नहीं। समय कराम यहाँ एक और नहायत अहम नुक्ता है और वो ये कि बाज़ लोग ये पूछते हैं कि आखिर अल्लाह कहाँ से आया, यानी कब से। लेकिन ये सवाल दरअसल उसी वक्त पैदा होता है जब हम अल्लाह ताला को मखलूक के पैमाने पर नापने लगते हैं, माज़ अल्लाह। और फिल हकीकत ये सवाल तो बनता ही नहीं, चूँकि हम इंसान हैं, हम वक्त के अंदर रहते हैं, हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारी हर चीज़ का एक आगाज़ और इख्तिताम होता है। लिहाजा हम लाशोरी तौर पर यह समझने लगते हैं कि हर चीज़ के साथ यही उसूल होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला वो खालिक है, वो मखलूक की तरह तो नहीं, वो वक्त का खालिक है, वो जमानो मकान का खालिक है, वो इस निज़ाम से बाहर है जिसे उसने खुद पैदा किया है। जिस हस्ती ने वक्त को पैदा किया हो उसके बारे में ये पूछना कि वो कब पैदा हुई खुद एक गलत सवाल है, क्योंकि कब का ताल्लुक ही वक्त से है और वक्त तो खुद अल्लाह की मखलूक है। इसीलिए कुरान बार बार अल्लाह ताला की अजलियत और अबदियत बयान करता है। वल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है, यानी इससे पहले कोई नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं। यही वजह है कि जब मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अपने रब का नसब बयान कीजिए, तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई। वो अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया कि मेरा मामला मखलूकात जैसा नहीं है। सामने किराम कुरान का जवाब वाज़ह है कि अल्लाह वही खालिक है, वही अव्वल है, वही समद है, वही बेनियाज है और इसीलिए वो किसी खालिक का मोहताज नहीं। यही तौहीद का बुनियादी पैगाम है और यही सूरह इखलास की रूह है। अल्लाह ताला हमें अपनी मारिफत नसीब फरमाए, हमें सही अकीदा और सही फहम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामने किराम अब आगे बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आ रहा है प्रोग्राम के इस हलके का। वो ये कि हम मजहबी जो लोग होते हैं जब किसी चीज़ की वजाहत नहीं कर पाते तो फौरन कह देते हैं कि ये अल्लाह ने किया है। अब फिर इस पर एक मशहूर एतराज़ सामने आता है जिसे फ़लसफे में आर्ग्यूमेंट फ्राम इग्नोरेंस या गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है, यानी आप जिस चीज़ को नहीं जानते वहाँ खुदा को लाकर खड़ा कर देते हैं। समझ कर हम पहली बात तो ये है कि यह आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। बात बिल्कुल ऐसी नहीं कि हम खुदा को हम अपनी लाइलमी की वजह से साबित कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं। इस मौजू की वजाहत ज़रा एक मिसाल से करते हैं। वो ये कि आप किसी सुनसान सहरा में जा रहे हो, अचानक आपकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है, आप देखते हैं कि वहाँ एक जदीद तरीन स्मार्टफोन पड़ा हुआ है। अब ज़रा सोचिए कि आप ये कहेंगे कि चूंकि मुझे मालूम नहीं ये फ़ोन किस फैक्ट्री में बना, किस शख्स ने उसे यहाँ रखा या किस मुल्क से आया, इसलिए इसका कोई बनाने वाला भी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। बल्कि आप फौरन कहेंगे उसका कोई डिज़ाइनर ज़रूर है, उसका कोई इंजीनियर ज़रूर है, उसका कोई बनाने वाला ज़रूर है। क्यों? क्योंकि उसके साख्त, उसका निज़ाम, उसकी तरतीब और उसकी पेचीदगी खुद इस बात की गवाही दे रही है कि हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आया। समय कराम अहले ईमान भी कायनात के बारे में यही बात कहते हैं। वो खुदा को अपने लालमी की वजह से साबित नहीं करते, वो खुदा को कायनात की तरतीब, नज़म, कवानीन और हैरत अंगेज साख्त की बुनियाद पर पहचानते हैं। कुरान मजीद बार बार इंसान को कायनात में गौर व फिक्र की दावत देता है।
کیا آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، رات

तो इसमें एक बुनियादी गलत फहमी मौजूद है इस सवाल में। कॉन्टिजेंसी दलील कभी ये नहीं कहती कि हर चीज का खालिक होता है, बल्कि ये कहती है कि हर कॉन्टिजेंट या मुनहसर चीज का सबब होता है। ये दोनों जुमले मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ हर बीमार शख्स को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो क्या उसका मतलब है कि डॉक्टर भी बीमार होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हुक्म सिर्फ बीमारों के बारे में था। इसी तरह कॉन्टिजेंसी दलील सिर्फ उन चीज़ों के बारे में है जो मोहताज हैं, जो कायम बिज़ात नहीं हैं, जो वजूद में आ सकती भी थी और न भी आ सकती थी। तो कॉन्टिजेंसी दलील की बुनियाद पर जो समझ में आई कि हर चीज़ हर कॉन्टिजेंट या मुनहसर चीज़ का सबब होता है, तो अगर हर किसी दूसरी चीज़ का एक दूसरा सबब हो और उसका भी एक सबब हो और उस सबब का भी एक सबब हो, तो आपको एक हद तक जाके ये बात बताना पड़ेगा कि एक हस्ती जो है ना, उसका वजूद ज़रूरी है, वो किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं, उसका कोई सबब नहीं, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, जिसका ना आगाज़ है और ना अंजाम। इसीलिए कुरान फरमाता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है और न वो किसी से पैदा हुआ। अब मज़ीद एक और एतराज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे कि जिनकी तरफ से, जिन मुल्हिदीन की तरफ से ये बात जो आती है कि तवानाई हमेशा से मौजूद है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है गेंद ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ भी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन उनके अंदर मौजूद एटम और तवानाई तो बाकी रहती है। वो दलील के तौर पर ये आइंस्टाइन का मशहूरी उसूल पेश करते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी तवानाई ना पैदा की जा सकती है और ना ख़त्म की जा सकती है। तो फिर क्यों वो ये कहना चाहते हैं हम ऐसा ना कहें कि तवानाई ही अजली है, यानी वो एनर्जी ही अजली है, वो एनर्जी के पास ही असल ताकत है, खुदा की ज़रूरत न रहे, गॉड कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं। चले हम इस एतराज़ का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आइंस्टाइन का कानून कायनात के अंदर लागू होता है, यानी जब कायनात मौजूद हो, उसके कवानीन मौजूद हों, तब तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, जैसे कि वो कहता है। लेकिन सवाल ये है कि कायनात के आगाज़ का तो आपने इस बात में इसको एतराफ़ कर लिया, तो कायनात के आगाज़ से पहले क्या था? ये तवानाइयाँ जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये तो बिग बैंग के बाद की बात है, तो बिग बैंग से पहले तवानाई कहाँ थी? इसका जवाब खुद साइंस के पास वाज़ह नहीं। फर्ज करें अगर हम मान भी लें कि तवानाई अजली है, तो फिर सवाल ये है क्या तवानाई शऊर रखती है? क्या तवानाई फैसला कर सकती है? क्या तवानाई मंसूबा बनाती है? क्या तवानाई कवानीन वज़ा करती हैं? इसीलिए कुरान बार बार इंसान को दावत देता है कि वो कायनात में गौर करे, सोचे, समझे और इस नतीजे तक पहुँचे कि इतनी अजीम तख्लीक खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, बल्कि उसके पीछे एक हकीम, अलीम, कादिर और मुदब्बिर खालिक मौजूद है, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सामिन प्रोग्राम के अख्तितामी मरहले में साइक्लिक यूनिवर्स के हवाले से जो नज़रियात हैं, इसको गलत साबित करने के लिए हम एक और सादा मिसाल पेश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक जलती हुई मोमबत्ती है, वो मुसलसल रोशनी भी दे रही है और पिघल भी रही है, जितना वक्त गुजरता है उसका मोम कम होता जाता है, वो हमेशा इसी हालत में बाकी नहीं रह सकती। तो बिल्कुल उसी तरह साइंस हमें बताती है कि कायनात में मौजूद तवानाई भी खास तरतीब से खर्च हो रही है। सितारे जल रहे हैं, कहकुशाएं हरकत कर रही हैं, मादा मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजर रहा है। फिज़िक्स की ज़बान में इस तस्वुर को बाज़ औक़ात हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, यानी एक ऐसा मरहला जब कायनात में काबिल इस्तेमाल तवानाई ख़त्म हो जाए और हर चीज़ एक तरह के सुकून और जमूत की कैफियत में पहुंच जाए। अब हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं सामने कराम कि अगर कायनात वाकई अजल से मौजूद होती, अगर ये लामहदूद माजी से चलती आ रही होती, तो फिर आज तक उसकी तमाम तवानाई ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी सूरज रोशन है, आज भी सितारे चमक रहे हैं, आज भी नए कहकुशाएँ वजूद में आ रही हैं, आज भी कायनात मुतहरक है। इसका मतलब यह है कि कायनात की उम्र महदूद है और उसका एक आगाज़ ज़रूर हुआ है। जनरल रिलेटिविटी, कायनात की तौसी और फलकियाती मुशाहदात सब इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि एक आगाज़ रखती है।
और जब आगाज है तो सवाल

0: ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: देता है कि तुम्हारी बदगुमानी तुम्हारी फितानत और चालाकी है, हालांकि उसकी चाल है जो दिलों को अंधेरा कर देती है। तो समीन, ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हुस्न ज़न और नेक गुमानी के हवाले से। आइए हम भी अपने दिलों को बदगुमानी तजस्सुस और नफरत से पाक करें और सुन्नत नबवी की हिदायत के मुताबिक खुशगुमानी के नूर से मुनव्वर करें। समीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोहम्मद मुंतारी के बारे में। मोहम्मद मुंतारी कतर की कौमी फुटबॉल टीम के मशहूर स्ट्राइकर हैं और उनका नाम कतरी फुटबॉल की तारीख में अहम मकाम रखता है। यहाँ दोस्तों मुंतारी एक्चुअली अगर कतर की फुटबॉल हिस्ट्री, इनफैक्ट वर्ल्ड कप की अगर हिस्ट्री में अगर देखें तो ही बिकेम द फर्स्ट गोल स्कोरर इन अ वर्ल्ड कप मैच। और ये बात 2022 वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा और कतर में ही हुआ था 2022 का वर्ल्ड कप। मोहम्मद मुंतारी असल में घाना में पैदा हुए लेकिन बाद में कतर आए और यहीं बस गए और आगे जाकर नेशनल टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी ताकतवर जिस्माना सलाहियत, बेहतरीन हेडिंग और गोल स्कोरिंग की वजह से जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। मोहम्मद मुंतारी ने कतर के लिए एक अहम मुकाबलों में नुमाया किरदार अदा किया और वो मैच जिसके बारे में मैं आप लोगों को शुरू में बताया कि बिकेम कतर्स ओनली गोल स्कोरर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। यहाँ दोस्तों सेनेगल के उस मैच में कतर ने एक गोल किया था और वो एक तारीखी गोल था। ये कतर का फीफा वर्ल्ड कप में पहला गोल था जिसकी वजह से उनका नाम यानी मोहम्मद मुंतारी का नाम हमेशा के लिए कतरी फुटबॉल की तारीख में दर्ज हो गया। उनकी मेहनत, लगन और प्रोफेशनल रवैया नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। क्लब फुटबॉल में भी मुंतारी ने कतर की मुख्तलिफ टीमों के लिए खेलते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ और पेनल्टी एरिया में मौजूदगी डिफेंडर्स के लिए मुश्किल पैदा करती है। मोहम्मद मुंतारी को कतर के सबसे अहम फुटबॉल सितारों में शुमार किया जाता है और उनकी खिदमत को फुटबॉल शायकीन हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।
2: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए जो मुनासिब गजाई प्लान के बारे में। डायबिटीज यानी शुगर खून में शुगर की ज्यादती का मरज है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की एक आम बीमारी है जिसमें जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। मगर अच्छी खबर ये है कि मतवाजन गजा दोनों बीमारियों के असरात को कम करने में मदद दे सकती है। दिन का आगाज सेहत पर नाश्ते से कीजिए और नाश्ते में दलिया, ब्राउन ब्रेड, अंडा, कम चिकनाई वाला दूध या दही शामिल कीजिए। ये गजाएँ तवानाई फराहम करती हैं और शुगर को मतवाजन रखने में मदद देती हैं। रोज़ाना कलरफुल जो वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, ख़ास तौर पर पालक, ब्रोकली, बंद गोभी और खीरे जैसी सब्जियाँ। फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद और बेरीज बेहतर इंतखाब हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और सोजिश कम करने में मदद देते हैं। प्रोटीन ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिए, जैसे कि उसमें फिश है और बग़ैर चर्बी वाला गोश्त है, दालें, चने और लोबिया बेहतरीन प्रोटीन के ज़राए हैं। प्रोटीन जोड़ों और मसल्स की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सेहतमंद फैट्स इस्तेमाल करने ज़रूरी हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, अखरोट, बादाम और फ्लैक्स सीड के जो बीज हैं या अलसी के बीज जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें हमारी इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम करने में मदद देते हैं, जिससे जॉइंट्स के दर्द में आराम मिल सकता है। अब ये भी ज़रूरी है कि किन गजाओं से हमें दूर रहना है। उसमें मीठे मशरूबात हैं, ज़्यादा चीनी वाली अशियाँ हैं, फास्ट फूड हैं और तली हुई गजाएँ और प्रोसेस्ड स्नैक्स से हमें दूर रहना है। ये ना सिर्फ शुगर को बढ़ाते हैं बल्कि वज़न में इजाफे और फिर जोड़ों या जॉइंट्स की तकलीफ का सबब भी बन सकते हैं। ज़्यादा वज़न घुटनों और कोल्हों के जो जोड़ हैं या जॉइंट्स हैं उन पर इजाफी दबाव डालता है, इसलिए बैलेंस डाइट और बाकायदा एक्सरसाइज वज़न कम करने और जॉइंट्स की सेहत बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी आप पीजिए। पानी जिस्म को हाइड्रेट रखता है और अमूमी सेहत को बेहतर बनाता है। लिसनर्स, डायबिटीज़ और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज अगर मतवाजन गजा, मुनासिब वज़न और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तो अपनी सेहत और मायारे ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी गजाई ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर या माहिरे गजाइत से मशवरा ज़रूर कीजिए।
3: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और ब्राइट और प्रैक्टिकल एपिसोड। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी चीज पर जो हर घर में होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स का। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, जरा सोचिए, रात का वक्त है, आप घर में हैं, किचन की लाइट ऑन है, लिविंग रूम की लाइट भी ऑन है और कभी कभी बाथरूम की लाइट भी अननेसेसरीली ऑन रह जाती है। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो लगता है कि भाई इतना बिल कैसे आ गया, मैंने तो इतनी एनर्जी यूज नहीं की। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अप्लायंसेस ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन असल में लाइटिंग का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। भाई, अब थोड़ा सा रियलिटी चेक समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, देखें, ट्रेडिशनल जो बल्ब्स होते हैं ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा हीट भी जनरेट करते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स होते हैं ना, जैसे एलईडी बल्ब्स, ये कम एनर्जी ज्यादा रोशनी देते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। भाई, मतलब सेम लाइट आउटपुट होता है लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। अब अगर इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में ये पूछा जाए तो भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करना, यानी के वो बल्ब्स यूज करें जो एलईडी वाले हों। मतलब आप अपने घर की लाइट को स्मार्टर और सस्टेनेबल बनाएं। अब बात करते हैं कि भाई एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज करने से सफा आखिर फायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। एलईडी बल्ब्स ट्रेडिशनल बल्ब्स के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली कम एनर्जी यूज करते हैं ना। दूसरा फायदा है कॉस्ट रिडक्शन का। देखें, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होने से मंथली बिल्स नोटिसेबली कम नजर आते हैं हमें, बिल हमें कम आएगा। तीसरा फायदा है लॉन्ग लाइफ स्पैन। देखिए, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स ज्यादा देर तक चलते हैं इसीलिए रिप्लेसमेंट कम होती है। चौथा फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। सीधी सी बात है, कम एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है पावर जनरेशन पर कम लोड और कम इमिशंस। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो आप सोचिए कि आपके घर में 10 बल्ब्स हैं। अगर सब ट्रेडिशनल बल्ब्स हों तो हर वक्त का एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा ही होगा ना। लेकिन अगर वही बल्ब, वही 10 बल्ब्स एलईडी या एनर्जी एफिशिएंट हों तो सेम रोशनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का आप जो यूजेज है वो कह लें कि वो हाफ या उससे भी कम हो सकता है। देखिए, दोहा जैसे सिटी में हर घर, ऑफिस और मॉल में लाइटिंग का बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए यहाँ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग अडॉप्ट करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल सेटअप है जो ओवरऑल एनर्जी डिमांड को रिड्यूस करता है। अच्छा, आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं, ठीक है। टिप नंबर 1 ये है कि एलईडी बल्ब्स प्रेफर करें, हर पुराने बल्ब को ग्रेजुअली एलईडी से रिप्लेस करें। नंबर 2, रूम वाइज यूजेज कंट्रोल करें, सिर्फ जरूरत के मुताबिक लाइट्स ऑन करें, अननेसेसरी लाइट्स ऑफ रखें, नेचुरल लाइट यूज करें। साथियों, दिन के वक्त कर्टन्स ओपन रखें ताकि सनलाइट मैक्सिमम यूजेज में आए। नेक्स्ट ये कि मोशन सेंसर लाइट्स कंसिडर करें, स्पेशली कॉरिडोर्स और बाथरूम्स में ऑटोमेटिक लाइट्स हेल्पफुल होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर चेक करें, जहां जरूरत ना हो वहां लाइटिंग रिड्यूस करने की हैबिट डेवलप करें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव इसका देखा जाए तो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि ग्लोबल गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर शिफ्ट कर रही हैं और इसको प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि लाइटिंग एनर्जी कंजम्पशन ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अच्छा, एक और बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक बल्ब चेंज करने से क्या ही कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हर घर, हर ऑफिस और हर बिल्डिंग एक छोटा चेंज करे ना तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी सेविंग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की तरफ चलते हैं। बिहेवियर चेंज एंगल की तरफ देखा जाए तो जब आप एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी डेली हैबिट्स को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ यूजर नहीं रहते बल्कि स्मार्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच बड़ा सिंपल सा है, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करें और अपनी लाइट को स्मार्ट बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि आज अपने घर में कम से कम एक बल्ब को एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब से रिप्लेस करने का प्लान बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए मोटिवेट करें। साथियों, रोशनी सिर्फ घर को ब्राइट नहीं करती बल्कि हमारे डिसीजंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। जब हम एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स यूज करते हैं ना तो हम सिर्फ लाइट नहीं बदलते बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा सस्टेनेबल बना रहे होते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज का टॉपिक है वक्त की कदर. वक्त इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है. ये एक ऐसी नेमत है जो एक दफा गुजर जाए तो किसी भी तरह वापस नहीं आती. अक्सर लोग वक्त की अहमियत को तब समझते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है. इस्लाम हमें सिखाता है कि हर लम्हा कीमती है और हमें उसे बेकार चीजों में जाया नहीं करना चाहिए. कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने वक्त को प्लान करते हैं और हर लम्हे को बेहतरी के लिए यूज करते हैं. मोबाइल, सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा बहुत सारा वक्त ले लेती हैं. अगर हम थोड़ा सा होशमंदी से अपनी रूटीन सेट कर लें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं. आज का अमल यह है कि अपने दिन का एक सिंपल प्लान बनाएं और कोशिश करें कि वक्त को बेहतरीन तरीके से यूज करें. ये था आज का मैसेज. आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
0: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है विजन 2030. देखिए, विजन 2030 असल में ना एक लंबी प्लानिंग है जो कंट्रीज या दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ लेके जाने का कंट्रीज का एक प्लान है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो है क्या? इसका बेसिक आइडिया वो मैं आपको बताती हूँ। इसका बेसिक आइडिया ये है कि 2030 तक हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में तरक्की करें, जैसे इकोनॉमी है, एजुकेशन है, एनवायरमेंट है या सोसाइटी है। हर मुल्क अपनी जरूरत के हिसाब से विजन 2030 बनाता है, लेकिन सबका एम एक ही होता है, बेहतर और सस्टेनेबल जिंदगी। जी हाँ, कतर जैसे मुल्क के लिए विजन 2030 एक रोड मैप है जो फ्यूचर डेवलपमेंट को गाइड करता है। इसका फोकस होता है कि मुल्क जो है वो सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड ना रहे, बल्कि और दूसरी फील्ड्स जैसे एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, इन सारी फील्ड्स में भी ग्रो करे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो विजन 2030 के चार इम्पोर्टेंट पिलर्स भी हैं, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की तालीम और सेहत को बेहतर बनाए ताकि वो स्किल्ड और हेल्दी लाइफ जी सके। वहीं अगर मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो सोशल डेवलपमेंट का फोकस सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कल्चर को प्रमोट करना है और लोगों के दरमियान हार्मनी को पैदा करना है। वहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाना, जहां सिर्फ एक सोर्स इनकम ना हो बल्कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज हो। इससे मुल्क फाइनेंशियली स्टेबल होता है। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की भी बात करना बहुत जरूरी है, और इसका एम है कि तरक्की के साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो, नेचुरल रिसोर्सेज बचें। जी हाँ, ग्लोबल लेवल पर भी 2030 एजेंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक प्लान बनाया है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDGs। इनमें 17 गोल्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिनमें एम रखा गया है गुर्बत यानी पावर्टी को खत्म करना, एजुकेशन को, इल्म को जो है वो उसके मयार को और ज्यादा जो है वो एनहांस करना, इम्प्रूव करना, और हर हाल में, हर लिहाज में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो विजन 2030 एक प्लान है। वो प्लान नहीं जो आप वीकेंड्स पे बनाते हो। हाँ, शायद उसी जैसा कुछ प्लान।

0: जब हम प्लानिंग करते हैं तो कितना कुछ सोचते हैं, कितनी चीजें हम लिख रहे होते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं, कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक उसी तरह से कंट्रीज के लिए भी प्लान होते हैं। एक विजन है, एक गोल तैयार किया जाता है और विजन 2030 वही प्लान है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान ब्रिज बनता है। इसका मकसद ये है कि आज की जनरेशन भी अच्छी लाइफ एंजॉय करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो सेफ रहे। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि विजन 2030 सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो है वो प्लान नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल का भी रोल है। जब लोग एजुकेशन, एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स देते हैं तभी ये विजन सच होता है। बस मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। देखिए, फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी को टारगेट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बंदा ऐप से, मैसेजेस से नहीं फंस रहा है तो क्या किया जाए। अब एक और स्कैम सुनिए। ये स्कैम होते हैं चैरिटी स्कैम्स। कैसे दिखते हैं चैरिटी स्कैम्स? देखिए, चैरिटी स्कैम्स में होता है ये है कि आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। कोई भी करंट इशू चल रहा है, कहीं पर चैरिटी की जरूरत है, खबरों में है, और आप खबर देखते हैं तो एल्गोरिथम उसे फौरन पकड़ लेता है और फिर ये लोग उसका फायदा उठाते हैं और आपको बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट जिनके आगे ब्लू टिक लगा होगा आपके सामने आएंगे, जिनमें मॉर्फ्ड करके अलग अलग इन्फ्लुएंसर की शक्लों को मॉर्फ्ड करके दिखाया जाता है और आपको लगता है कि इस इन्फ्लुएंसर पर मुझे भरोसा है, ये कह रहा है कि चैरिटी करें और कॉज भी अच्छा है तो मुझे कर लेनी चाहिए। और यहीं आपके इमोशंस आप ही का शिकार करते हैं। पर यहां से भी निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जब आप चैरिटी ऐसी कर देते हैं तो आप भी यही सोचेंगे ना कि चलो मेरी नियत तो साफ थी, अब गए तो गए। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ज्यादा चैरिटी करते हैं। अब ये जरूरतमंदों के पास ना पहुंच के अगर आपकी रकम उन लोगों के पास जा रही है जो उसका बिल्कुल भी सही इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो फिर आपकी और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को रोका जाए। अक्सर ही चैरिटेबल जो स्कैम्स होते हैं चैरिटी वाले, ये आपको कोई इशू नहीं बताएंगे, सीधा बोलेंगे, एक वीडियो दिखाएंगे और उसमें आपको ऑडियो वगैरह बिल्कुल अब्रप्ट सा लगेगा और फिर आपसे सीधा कार डिटेल्स मांगी जाएंगी। एंड टू मेक इट मोर जेन्युइन, आजकल ये एड्रेस भी मांगने लगे। प्लीज इनसे बच के रहें। अब अगर आप फंस गए, मान लीजिए आपने कर लिया, यू नॉट श्योर कि क्या मैंने सही चैरिटेबल ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया है, तो इसका भी एक तरीका है। अगर आप फंस गए और आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको एक मैसेज आएगा सडनली जो आपको बोलेगा कि 10 रियाल प्रोसेसिंग फीस और 15 रियाल यहां पे, इतना उतना। और तुरंत आपसे अगर कोई कार्ड मांग रहा है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, आपको तुरंत कार्ड नहीं देना है। ना ना ना ना ना, कुछ लोग एक लंबा प्रोसेस फॉलो करते हैं। दे गिव यू अ सर्वे और उस सर्वे में आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं रादर देन द एक्चुअल सिचुएशन। So be very careful, आपको इससे फौरन कट जाना है एंड फौरन अपने अकाउंट को रीसेट कर देना है। अगर आपने कार्ड अपना पंचिंग कर दिया है, जस्ट ब्लॉक योर कार्ड, देयर इज नो अदर वे। आपके हाथों से अगर सिचुएशन और भी बाहर जा चुकी है और आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो चुकी है, तो सीधा साइबर पुलिस से कॉन्टेक्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, साइबर पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा रखें, यू विल कम आउट ऑफ इट। लेकिन जो सबसे पहली चीज जो आप खुद कर सकते हैं वो है रीसेट योर पासवर्ड एंड रीसेट योर अकाउंट, एंड प्लीज इन चीजों से जरा बच के रहें। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ और मैं चीजें बता देता हूं। सिंपल और इफेक्टिव वे सिर्फ यही है कि आपने अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना है, यू अबाउट टू डू चैरिटी, आप फिलिस्तीन में, सीरिया में, कहीं पर भी आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना है, वहां पे पहुंचाना है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप कुछ श्योरिटी नहीं है तो अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछें जो ऑनलाइन चैरिटीज करते रहते हैं और जो श्योर हैं इन चीज़ों के बारे में, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो जेन्युइन लग रहे हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लें। टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका नंबर ही बड़ा अजीब सा है, तो बहुत ही बाहर का लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, तो फौरन उससे दूर हो जाएं। और सिंपल तरीका ये, इफ यू रियली वांट टू डू चैरिटी, बड़ा ही नेक कॉज है, अल्लाह ताला हम सबको इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम चैरिटी कर सकें। सो कतर में तो बहुत आसान है, कतर चैरिटी की ऐप है, कतर रेड क्रॉसन सोसाइटी की ऐप है, इसके जरिए आप अलग अलग चैरिटी से जुड़ सकते हैं एंड डू योर डीड। ये है तरीका टू आइडेंटिफाई एंड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड सेफ। बस अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से इस अवेयरनेस को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना है, औरों तक भी पहुंचाइए। बी सेफ एंड दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107, शो है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावश खान। हर हफ्ते इस शो में आपके लिए एक नए पैगंबर के बारे में, एक नए नबी के बारे में, उनकी जिंदगी के जो हालात हैं वो हम लेकर आते हैं। उन हालात और वाकयात से हमें क्या सीखने को मिल सकता है आज की दुनिया में, ये हम समझने की कोशिश भी करते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं आज के शो की, और ये मैं आपको बताती चलूं कि आज हम बात करने वाले हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के असीम तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिनका जिक्र कुरान करीम में बार बार आया है। आपका जिक्र ना सिर्फ इस्लामी तारीख में है बल्कि यहूदी और ईसाई तारीख में भी एक अहम मकाम रखते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त के लकब से याद किया जाता है, जो इस बात की हमाजी करता है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक बहुत ही गहरा और खास था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम ईमान, तौहीद और अल्लाह की इबादत का पैगाम था, और आपकी जिंदगी के वाकयात उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का बाइस है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कदीम इराक के शहर उर से था। ये शहर उस वक्त की अजीम तमद्दनों में से, यानी सिविलाइजेशंस में से एक था, और यहाँ की कौम बुतों की इबादत करती थी। उस शहर में रहने वाली कौम ने मुख्तलिफ देवताओं को अपनी इबादत का मरकज बना रखा था और उनके मजहबी अकायद में बुतों की पूजा अहमियत रखती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था और खुद भी वो बुतों के पुजारी थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जिंदगी इसी माहौल में गुजरी, जहाँ हर तरफ बुतों की इबादतों का गलगला था। आपका खानदान बहुत मोतबर था

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है, याद रखिए अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते, मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो उसका सर तोड़ देती है और वो देखते देखते मिट जाता है, और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो न अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और न मलूल होते हैं। शब रोज उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमानों जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन व आसमान दोनों का निदाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं है और सब जवाब दे हैं। क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील, ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह। वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, उसके हुजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो उसके खौफ से डरे रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूं तो उसे हम जहन्नम की सजा दें। हमारे यहां जालिमों का यही बदला है।